0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सर्वहित के लिए, ताकि सभी मानव जन का कल्याण हो सके, उनके दुखों का विनाश हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसी भावना के साथ में हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं और आज भी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनवाया था। आपने कुमार कार्तिकेय के बारे में उनका वर्णन किया था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति आवश्यक थी और सभी देवताओं के प्रयास से भगवान शिव और पार्वती के द्वारा कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो अब सब आपने बताया कि सभी देवता कुमार की स्तुति करते हैं और उनका धन्यवाद किया। तब कार्तिकेय ने कहा कि ये सभी पर्वत आप सभी ऋषियों को, सभी देवताओं को वरदान देंगे, क्योंकि ये सब मेरे माता में हैं, यानी कि मेरे नाना हैं। हम सबको कार्तिकेय की तरह ही आत्मबलि बनना चाहिए। अब फिर कैलाश, सब कैलाश चले गए थे। अब कैलाश में जाके सबने, सारे देवताओं ने भगवान शिव का और कार्तिकेय की उनकी स्तुति की और भगवान शिव ने अपने बेटे का माथा चूमा और स्वागत किया। अब इसके बाद में माँ पार्वती और शिव जी ने भगवान कार्तिकेय का, कुमार कार्तिकेय का स्वागत किया। वो तो सब देवता जो हैं सबको प्रणाम करके, शिव, पार्वती और कार्तिकेय को प्रणाम करके चले गए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय का स्वागत किया और आगे कैसे उनके लिए क्या कहा?
1: हाँ मंजू जी, शिव परिवार की बात चल रही है तो मन आनंदित होता ही है, खुश होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि शिव क्या है, शिव सर्जक है, न केवल इस विश्व के अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के। कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में जब भी सृष्टि की पुनर्रचना होती है तो उसमें शिव और शक्ति ही प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा पुनर्रचना होती है। तो अभी जो हम लोग शिवपुराण पढ़ रहे हैं, उस शिवपुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 13वें अध्याय की ओर हम लोग हैं, जिसमें कि कुमार की विशेषता बताई गई है। कुमार कौन है? कार्तिकेय, जो शिव पुत्र है और पार्वती की गोद में भी विराजते हैं। तो अब देखिए कि उनके विषय में और क्या कहा जा रहा है। कुमार का जन्म हुआ था तारकासुर के वध के लिए। कहते हैं 13 अध्याय में कि तारकारे रीति श्रुत्वा वृतम अद्भुतम उत्तमम नारद सुप्रसन्नो अथ पप्रच्छ प्रीति तो विधिम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि कार्तिकेय का वर्णन किया गया कि कार्तिकेय ऐसे हैं, वैसे हैं, अद्भुत तो होंगे ही, क्योंकि अद्भुत परमात्मा, अद्भुत परमेश्वरी के वो पुत्र हैं, तो अद्भुतता तो उनके साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। और जब जन्म हो गया उसके बाद भी अद्भुत कि किस किस तरह से वो जो है कार्तिकेय के रूप में परिणत हुए। वे सन्मुख वाले थे, छह मुख वाले थे और छह कृतिकाएं जो है उनकी माँ थी। तो उनके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं नारद, क्योंकि नारद जी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वो लोक लोकांतर भ्रमण कर करके भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज के युग में, कलयुग में, एक भक्ति ही ऐसी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भक्ति करें तो कलयुग समाप्त हो सकता है हमारे मन का। हमारे मन में अगर सतयुग आ जाए तो हम यहीं इसी धरा पर स्वर्ग का एहसास करने लगेंगे, क्योंकि मन की धरा पर स्वर्ग का अवतरण होना चाहिए। धरती पर स्वर्ग का अवतरण वो तो अलग बात है, वो सामूहिक रूप से होता है। वो माता है जो अद्भुत कार्य करके यह कार्य करती हैं स्वर्ग के अवतरण का। लेकिन हम और आप अपने जीवन में, अपने मन के धरातल पर, अगर स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिव पुराण हमें जो समझा रहा है वह अपने मन के धरातल पर स्वर्ग के अवतरण की बात करता है। अपने मन के धरातल पर हम कैलाश को ला सकते हैं, अपने मन के धरातल पर हम वैकुंठ को ला सकते हैं।
0: एक मिनट मैं पूछना चाहूंगी बीच में, माफ कीजिएगा, कि अब ये मन के धरातल पर हम कैसे मानसरोवर ला सकते हैं, कैसे कैलाश को ला सकते हैं, ये हमारे श्रोताओं को इसका जरूर थोड़ा खुल के बताइए व्याख्या।
1: अभी देखिए, अभी नारद जी की चर्चा चल रही है। नारद जी सूत जी से पूछते हैं कि आप कार्तिकेय के विषय में और भी बताइए। तो नारद जी क्या है, भक्त हृदय, उनके हृदय में वैकुंठ का वास है। कैसे, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने हृदय में उतार लिया तो वैकुंठ में कौन रहते हैं?
0: भगवान विष्णु,
1: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो उनके हृदय में वैकुंठ का वास हो गया, क्योंकि हृदय में वे भगवान विष्णु और लक्ष्मी को रखते हैं। हनुमान के हृदय में राम बसे हुए हैं और माता जानकी बसी हुई है, तो साकेत उनके हृदय में बसा हुआ है। कैलाश को हम उतारना चाहते हैं तो शिव पार्वती को हम भज ले, और उन वो हमारे हृदय में अगर बस जाते हैं तो क्या होगा कि कैलाश बस जाएगा। कर्पूर गौरम हम सब जानते हैं। तो हृदय रूपी सिंहासन पर हम जिस भी भगवान को बैठा रहे हैं वो भगवान अपने धाम के साथ हमारे यहाँ विराजते हैं। यही कैलाश है, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग का अवतरण है। क्योंकि तो नारद जी जो हैं वो अपनी जिज्ञासा बस पूछना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप उनके विषय में, कार्तिकेय के विषय में कुछ और बताएं। अब देखते हैं आगे क्या है। नारद उवाच, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सद्वृत्तम अमृताद अपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुम इच्छामि गणेशम वृत्तम उत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु का आश्चर्यजनक चरित्र सुनकर नारद ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से पूछा, हे देव देव प्रजापति शिव तत्व के ज्ञाता, मैंने अमृत से भी उत्तम कार्तिकेय का चरित्र सुना, अब मैं सब मंगलों को भी मंगल देने वाले गणेश जन्म के दिव्य चरित्र को सुनना चाहता हूँ। अब उनकी इच्छा जो है गणेश जी के दिव्य जन्म के विषय में जानने की है। सूत जी ने कहा, नारद मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्न चित ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके कहा। अब क्या कहा ब्रह्मा जी ने, कल्प भेदात गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात सनिदृष्टम सृच्छिन्नम संचितम गाजमाननम इदानिम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम सृस्तस्य शिवेन च कृपालुना संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर सूति कृण मुने साही सर्वाधिप संभुर निर्गुणा सगुनो अपि ही। अब वो कहते हैं ब्रह्मा जी की कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कथाएं अनेक प्रकार की हैं, क्योंकि हर कल्प में गणेश जी आते हैं, हर कल्प में कार्तिकेय आते हैं, हर कल्प में राम आते हैं, हर कल्प में कृष्ण आते हैं, तो हर कल्प में हर कोई आता है। अब कैसे आते हैं, क्योंकि सतयुग है तो सतयुग में शिव पार्वती आते हैं, त्रेता युग है तो राम और सीता आते हैं, द्वापर युग है तो राधा और कृष्ण आते हैं, कलयुग में कल्कि अवतार की चर्चा होती है और कलयुग में बहुत तरह के अवतार भी आते हैं क्योंकि उनके द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। जैसे बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा आए, हजरत आए, तो इनके द्वारा क्या हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। लेकिन युग परिवर्तन के समय भगवान जो है युगल रूप में आते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, युग परिवर्तन और धर्म चक्र प्रवर्तन में क्या अंतर है विशेष। तो अब यहाँ पर कहते हैं वो गणेश जी के विषय में कि गणेश जी क्या है, इस समय श्वेत कल्प से में हुई गणेश जी के जन्म की कथा कही जा रही है, जहाँ कृपालु शिव जी ने उनका सिर काटा था। हे मुनि, सृष्टिकर्ता शिव के संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए, वह शिव सगुण तथा निर्गुण होकर भी सबके स्वामी है। हे मुनिवर, उन्हीं की लीला से इस संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन तथा विनाश होता है। शिव की ही लीला है, जो विष्णु भगवान को हम पालक रूप में देखते हैं और ब्रह्मा जी को है सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं, ये सब शिव से ही निकले हैं। क्योंकि शुरुआत में ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है कि अग्नि स्फुरलिंग दोनों के बीच में प्रकट हुआ, कौन दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में। जब दोनों विवाद करने लगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से निकले थे और वहीं विराजमान हो गए थे कमल के फूल पर, तो वो बोलते थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ, विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है तो मैं बड़ा हूँ। तो बीच में अग्नि स्फुरलिंग आ गया और उसने कहा कि ठीक है आप हम इसे नाप लीजिए, जो भी मेरे ओर छोड़ को देख लेगा, आदि और अंत को देख लेगा,
2: वही बड़ा
1: है। तो विष्णु भगवान गए नीचे, ब्रह्मा जी गए ऊपर। चलते गए कहीं और छोड़ पता ही नहीं चले, विष्णु भगवान नीचे गए, जाते गए कहीं पता ही नहीं चले। लेकिन विष्णु भगवान सत्यवादी थे और ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के पुष्प को प्रकट किया और केतकी का के पुष्प को कह दिए कि तुम जो है झूठ बोल देना कि हाँ हम देख लिए। तो भगवान शिव के पास जब दोनों आए, उस अग्नि स्फुरलिंग का स्वरूप था, शिव का स्वरूप था, तो बोले कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मैं बता सकता हूँ, आप बताइए कि किसने देखा मेरा आदि, किसने देखा मेरा अंत। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं तो नहीं देख पाया आपका अंत, और ब्रह्मा जी बोल दिए कि मैंने देख लिया। तो और इसका इसकी साक्षी जो है केतकी है, केतकी को सामने खड़ा किया गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी ने देखा है। उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान शिव के हृदय हैं, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव, कि शिव विष्णु के हृदय हैं और विष्णु शिव के हृदय हैं, तो दोनों एक दूसरे के से लगे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी निकले शिव से और विष्णु भगवान भी निकले शिव से, और सबको काम बांट दिया गया। शिव क्या है, आदि पुरुष, और शक्ति क्या है, आदि नारी कह सकती हैं और अर्धनारी स्वरूप दोनों का है। तो इसलिए हमें शिव को समझना पड़ेगा। शिव के रुद्र अवतार अलग है, महाकाल अवतार अलग है, हर रूप में भगवान शिव हैं। लेकिन परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जो तीन धाराएं निकली, सत, रज और तम, सतोगुण जो है हमारा वो ब्रह्मा जी और सरस्वती है, रजोगुण जो है वो विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी हैं, और तमोगुण जो है वो महाकाल और महाकाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे तभी हम शिव को समझ पाएंगे। तो इस शिव पुराण में उन शिव की चर्चा की जा रही है जिन्होंने भिन्न भिन्न रूप धारण किए, लेकिन पर ब्रह्म परमेश्वर जो है उन शिव की चर्चा की जा रही है शिव पुराण में। तो कहते हैं कि श्वेत कल्प में जो है भगवान गणेश का आविर्भाव हुआ, और ये सृष्टि पालन और विनाश जो है ये शिव के द्वारा, शिव लीला के द्वारा होता है। शेष आदर से सुनो, अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि उद्वाहिते शिवे चात्र कैलासम च गते सती कियता चैव कालेन जातो गणपतेर भवः एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा अभवत् रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्य आज्ञा परायणा ते सर्वे अपि अस्मदीयाश्च नंदी भृंगी पुरः सराः। कहते हैं कि शिवजी के विवाह होने तथा कैलाश जाने के कितने समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियां पार्वती से मिलकर विचार करने लगी। शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा पर तत्पर रहते हैं, वे सभी नंदी भृंगी आदि हमारे भी हैं, असंख्य प्रमथ गण हैं, परंतु उनमें हमारा कोई नहीं है। सब शिवजी की आज्ञा तो मान लेते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन शिव के पीछे पीछे ये ज्यादा रहते हैं, ऐसा जया और विजया ने पार्वती से कहा। वे सभी शिव जी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वे सब भी हमारे हैं, किंतु उनसे हमारा मन नहीं मिलता। और हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिव जी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। सखियां तो होती ही हैं कि हमेशा अपनी सखी के विषय में सोचना कि मेरी सखी किसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी, और कुछ चापलूसी भी कर लेती हैं। तो बोलती हैं कि ये नंदी प्रमथगण जितने भी हैं सब शिव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक को तुम अपने लिए केवल रख लो जो तुम्हारी आज्ञा में तत्पर हो। तो यह बात जो है, अब देखिए पार्वती किस रूप में इसे लेती है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, सखियों द्वारा कहे गए इन वचनों को पार्वती ने हितकर समझा और वैसा करने के लिए वे प्रयत्न करने लगी। पार्वती जी आगे कहते हैं कि उसके बाद किसी समय पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी को डांटकर सदाशिव घर के भीतर आ गए। जगदम्बिका ने असमय में शिव जी को आते हुए देखा तो वह सुंदरी लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त हुई और अपनी सखी की उस बात को उन्होंने सुखद समझा। तो एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी आदि को तो डांट करके शिव जी अंदर आ गए और इनको लज्जा हुई पार्वती मैया को। फिर उन्होंने अपनी सखियों की बात को सोचा कि मेरा कोई ऐसा हो जो बिल्कुल मेरा हो, ठीक है, क्योंकि नंदी आदि तो शिव जी की आज्ञा मानते ही हैं, मेरी भी मानते हैं, लेकिन अपना कहने लायक एकदम मेरा ही हो वैसा नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार कुछ समय बीतने पर परामाया परमेश्वरी शिवा पार्वती ने मन में सोचा। क्या सोचा पार्वती जी ने? कहते हैं, मदीय सेवक कश्चित अद्भुत भवे छुप तरह कृति मद आज्ञया परम नान्य रेखा मात्रम चलेधि विचारयेति च सा देवी वपुसो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाढ़्यम महाबल पराक्रमम। अब देखिए पार्वती जी, उन्होंने सोचा पार्वती ने अपने मन में कि कोई एक मेरा सेवक होना चाहिए जो अत्यंत योग्य तथा कुशल हो और जो मेरी आज्ञा के बिना थोड़ा भी इधर उधर न करे। ऐसा विचार कर उस देवी ने अपने शरीर से निकले हुए मैल से समस्त लक्षणों से युक्त एक पुरुष का निर्माण किया जो सभी दोषों से रहित शरीर के सभी अवयवों से सुंदर बड़े आकार का सब प्रकार से शोभा संपन्न महान बली तथा पराक्रमी था। उसे अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए और अनेक उत्तमोत्तम आशीर्वाद दिए। माता पार्वती शक्ति संपन्ना तो है ही और उन्होंने जब पुत्र बनाया तो बहुत सारे आशीर्वाद भी उन्हें दिए। कहते हैं कि मत पुत्र त्वम मदियो असी नान्य कश्चित इहास्ति में एव मुक्त स पुरुषो नमस्कृत्य शिवाम जगो। कहते हैं सूत जी कि पार्वती मैया ने उस पुरुष से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा करने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। अब गणेश जी ने कहा, वो पुरुष कौन थे? गणेश। उन्होंने कहा, किम कार्यम विद्यते ते अद्य करवानी तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। अब गणेश जी पूछते हैं कि आज आपका क्या कार्य है जिसे मैं आपकी आज्ञा से करूं? ऐसा उनके कहने पर शिवा ने अपने पुत्र पार्वती पुत्र से कहा। अब क्या कहा शिवा ने? हे तात, सुनो मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य मे मत पुत्र त्वम मदियो असी नान्यथा कश्चिद अस्ति मे। कि हे पुत्र, मेरी बात को सुनो, आज तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी कहीं से भी हट से भी मेरे घर के भीतर प्रवेश न करे, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इत्युक्त्वा च तदौ तस्मै यष्टिम चाति दृढ़ं मुने तदीयं रूपम आलोक्यम सुंदरम हर्षम आगता मुखम आचुंब्य सुप्रीत्या आलिंग्य तम कृपया सुतम स्वदारी द्वारी स्थापयामास यष्टि पाणिम गणाधिपम। क्या करती हैं? कि हे मुनि, इतना कहकर उसे एक मजबूत लाठी दे दी और उसके सुंदर रूप को देखकर वे प्रसन्न हो गई। उसका मुख चूमकर प्रेम से उसे आलिंगन कर अपने पुत्र गणेश के हाथ में लाठी देकर उसे अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। हे तात, पार्वती के हित के लिए दरवाजे पर स्थित वह देवी पुत्र महावीर गणेश हाथ में लाठी लिए हुए था और अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर रखकर पार्वती अपनी सखी के साथ स्नान कर रही थी। अब देखिए, सारी लीलाएं माँ है, आदिशक्ति है, तो लीलाएं तो उनके साथ जुड़ी ही हुई है। कौतिक उनके साथ जुड़ा हुआ है, अद्भुतता उनके साथ जुड़ी हुई है, वे अद्वितीय चरित्र वाली है। अब माँ को क्या आवश्यकता थी गणेश जी का को जन्म देने की और यह कहने की केवल तुम ही मेरे हो, जबकि माँ के रोम रोम में भगवान शिव बसे हुए हैं। लेकिन माँ माँ होती, शिव एकांत में भी समाधिस्थ रहते हैं और माँ को चाहिए कोई साथ में रहने वाला। माँ है तो संतान तो चाहिए ही चाहिए। तो कार्तिकेय जो है वो तारकासुर के वध में रह गए और उसके बाद फिर वो भी ध्यान समाधि में चले गए। तो माँ के पास कुछ था नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हम बनाए जो हमेशा मेरे पीछे पीछे करे, मुझे माँ माँ कह करके पुकारे, मेरे साथ खेले। हर कोई चाहता है, क्योंकि शिव समाधिस्थ हो जाते थे तो माँ अकेली पड़ जाती थी। तो उन्होंने मैल से उत्पन्न किया गणेश जी को और गणेश जी ने जब अपना कार्य पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे द्वारपाल हो और हमेशा के लिए तुम मेरे ही हो, तुम में मैं सब कुछ स्वयं को ही देखती हूँ, तुम मेरे हो। तो अब आगे क्या होता है कि पुत्र को तो रख दिया उन्होंने दरवाजे पर और क्या दे दिया, एक डंडा, बड़ा सा डंडा दे दिया और अपनी शक्ति से संपन्न भी कर दिया। छोटा बालक सारी शक्तियों से संपन्न तो बालक है, अहंकार तो आएगा ही, क्योंकि बालक में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो बाल सुलभ चेष्टा उसके अंदर आ जाती है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है कि इसी समय कौतुकी नाना प्रकार की लीला करने में कुशल शिवजी दरवाजे पर आ गए। ये तो होना ही था कि भगवान शिव क्या है, पति हैं माता के। अब माता के पति हैं तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि वो कौन आ गए, भगवान शिव। उवाच च शिवेशम तम अभिज्ञाय गणाधिप मातुराज्ञायाम बिना देव गम्यताम न त्वया अधुना मज्जनार्थम स्थिता माता कोप यासितो व्रजाधुना इत्युक्त्वा यष्टिकाम तस्य रोधनाय तदा ग्रहित। कहते हैं कि गणेश जी जो वहाँ खड़े थे, शिव जी को तो देखे लेकिन वो पहचानते नहीं थे शिव जी कौन है। तो गणेश जी ने शिव जी को पहचाने बिना कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाइए। मेरी माता भीतर स्नान कर रही हैं, कहाँ जा रहे हो, इस समय जाओ। इतना कहकर उन्हें रोकने के लिए हाथ में लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी ने कहा, अब शिव जी उसे देखकर के क्या कहते हैं, वो कहते हैं, तम दृष्टुआ तू शिव प्राह कम निषेधसी मूर्धि माम न जानासी अस्य अद्भुदे शिवो अहमिति नान्यथा ताडितस्तेन यष्टया हि गणेशेन महेश्वर प्रत्युवाच सतम पुत्रम बहुलीलश्च कोपितः। कहते हैं कि वो जब लाठी उठा लिए तब शिव जी कहते हैं, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो, हे दुर्बुद्धि, मुझे नहीं जानते हो, सचमुच मैं शिव हूँ। उस गणेश ने लाठी से शिव जी को मारा। लीला कुशल शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस लड़के से कहा, अब क्या कहा शिव जी ने कि तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं जानते हो, मैं गिरजापति शिव हूँ। क्या कहते हैं कि मैं गिरजा का पति हूँ, शिव हूँ। अरे बालक, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कहकर घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिव जी को, हे विप्र, फिर उसने डंडे से मारा। तब शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी, यह कौन है, यह क्या करता है, हे गणों तुम देखो। इतना कहकर लोकाचार में तत्पर अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाओं को करने वाले शिव जी क्रुद्ध होकर घर के बाहर बैठ गए। अब देखिए, गणेश जी चूंकि माता ने उन्हें खड़ा किया था, वो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि शिव कौन है, लेकिन ये रूपक बहुत ही सुंदर है अगर हम इस रूपक को समझ पाए तो। क्योंकि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से जब हम निकलते हैं, हर मनुष्य माता के गर्भ में आता है, तो जन्म के साथ ही माता पिता का सब कुछ हमें मिल जाता है। अगर हम गरीब घर में जन्म लिए हैं तो गरीबी हमें मिल जाती है, अगर अमीर घर में लिए हैं जन्म तो अमीरी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनके घर में जन्म लेते के साथ ही बच्चा जो है अमीर हो जाता है।
0: लीना जी, प्रसंग तो इतना सुंदर चल रहा है कि रोकने का मन नहीं होता है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब यहीं हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे। अभी लीना जी को हम धन्यवाद देते हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, मुझे भी इजाज़त दीजिए क्योंकि इस एपिसोड को समाप्त करने का समय हो चला है। अगले एपिसोड में हम यहीं मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर मिलते हैं। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रांगा और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूं, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में।
2: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस आध्यात्म की बातें करते हैं तो और ही वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
1: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
1: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी। इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है। जिनको धिकारा जाता है, यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने, अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
1: जी,
2: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम, जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं या फिर राक्षस हैं, उन्होंने उनमें बताया। जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं, कोढ़िन को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारी कोई कमी है तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी, वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये है कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के ये श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं। जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने।
4: जी, और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है।
5: जी।
4: इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है इस संसार से।
5: जी। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप, यहाँ दो चीजों की चर्चा हो रही है। तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका IQ लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहाँ इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है, जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है। यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है, और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है कि अगर इसको हम जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
4: इतना पावरफुल,
5: इतना पावरफुल है। लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है

0: मनस्पटल पर धारण करते हैं। अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है। इसीलिए श्रोताओं गणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरित्र मानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है। यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है, वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है, वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है
1: जी। यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी जी, बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
2: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगे श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई है, कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाया कि समझूत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
1: हाँ जी,
2: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए, और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया, लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं, लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है।

0: लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी न किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई, वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर दें किसी को डिनाई करके, तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं,
1: रूप में,
0: रूप में, नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में, तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
1: उजाले,
0: लेकिन जो उजाला है जो अंधकार को दूर करने वाला है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
1: जी, हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
2: जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
1: बुलाना कैसे।
2: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश, ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए, और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री रामचरितमानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी
2: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महाऋषि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है, यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है, और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है, जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़ ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है, और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंड सेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मनस पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ जो हम करते हैं। नॉर्मली हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस पटल है, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है।
1: बिल्कुल।
2: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेकिन हम आपको रागलेखादासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखादासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखादासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखादासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भर कर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देख कर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता, आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्य वन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए हैं और यक्ष से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी शादी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ ही कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र रास्ता चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है तो आगे जाना अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया, वो बोला मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे, वो मशादी महर्षि गण स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर भयानक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस पर भीमसेन गए थे उस पर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहुयुद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटे करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर अलग कर दिया।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिखा दासी जी से, अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिखा दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिखा दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
1: जी। जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे, वहाँ उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन यात्राज निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि बड़ी तपस्वी थे, उनका शरीर अत्यंत हृष्ट था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में उस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी पनव शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है, आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को नांगकर केवल परम सिद्ध देवऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यहीं निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। तब हम एक प्रसंग लेते हैं भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पास कर गए, वहां सर्प अत्यंत में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम, बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों को विजय प्राप्त करी। उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, इसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोल चाल मैथुन में प्रवृत्ति जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। पर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यंभावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम क्रोध लोभ हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है, वही तिर्य योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिर्य योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इसका आधार क्या है, इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है वही आत्मा अनात्मा से चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। दुष्ट बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, यह धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब सचेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझसे मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका पेट छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त पालकी धो रहे थे, मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर मैंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज्य सिंह गुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर्फ होकर नीचे मुक्त किए गिर रहा हूँ। अगर सुनू से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व विवेक शून्य हो गया था, इससे आप घोर अपराध हुआ है, आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे मैं शाप का अंत हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे और इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर पुण्यों का फल प्राप्त होगा। महाराज तो ये है तुम्हारी भाई महाबली भीमसेन, तुम्हारा कल्याण हो और मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्लोक को जाऊंगा। ये कहकर राजा महेश ने अजगर का शरीर त्याग दिया, दिव्य देह धारण करके वे पुनः स्वर्लोक में चले गए।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहां पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो मानवरश 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, जिसमें बात करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आज मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराधा भाटिया, मैनेजिंग डायरेक्टर मीरा देवी नर्सिंग होम से। बहुत सारी बातें आज हम मैम के साथ करने वाले हैं, क्योंकि मैम एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं ना हमारे मन में जब भी हम गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम ये सोचते हैं शायद से जब पेट में दर्द होता है ना तब इनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हमें जहाँ तक पता नहीं होता है ना कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप भी करवाने चाहिए। तो देखिए, ये सारी बातें लेकर के आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आज जुड़ गई हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रेडियो मानव रचना FM एंड साक्षी मैम फॉर सच अ जेनरस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो वेरी मच। वी आर द बेसिक पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। इफ वी आर हेल्दी, आर फैमिली इज हेल्दी, आवर सराउंडिंग्स आर हेल्दी, इन टर्न आवर सोसाइटी इज हेल्दी, एंड ऑफ कोर्स द होल नेशन एंड होल द वर्ल्ड इज हेल्दी। सो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना, एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक यूनिट मीन्स मी। I have to work on me and around me, both. So both are equally important. So recently I want to start with my latest journey. Medical baatein to hum karte hi rahenge. So recently I won Mrs. India Talented Subcontinent 2024 pageant. Wow, wow. In January. It was held in Solan. So I was chosen as a Mrs. Talented India. So that way I celebrated my womanhood and the great start of this year. And other than that, if we'll go to the medical history, then I am a mother of twin medical boys. I have twins. Both of them are MBBS now and they'll be starting their internship. So now back to my history. I am graduated from MD University, Rohtak. And then I just came in this field. And since I am managing director of Meera Devi Nursing Home since 2002.
0: So jaise ki hum agar baat kare ki कॉमन जो इश्यूज़ हैं, कॉमन मिथ्स की अगर हम बात करें जो कि एक वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आता है, तो वो कौन कौन से ऐसे आपके पास भी केसेस आते होंगे कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आप उजागर करना चाहेंगे, उस पर रोशनी डालना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता है लेकिन लोग इस पर बिलीव करते हैं।
1: यस, एग्जैक्टली। अगर हम वुमेन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रेगनेंसी आती है। और तो प्रेगनेंसी को लेकर कई इश्यूज हैं, लाइक हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको हम अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड करते हैं, बट मेनी टाइम्स यू यूज्ड टू से कि जी 7 अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, 8 अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, इसका बेबी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि दे आर हार्मफुल फॉर द बेबी, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर साउंड वेव्स, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। सो दे आर वेरी सेफ। दिस इज अ वेरी बिग मिथ, सो दे शुड ब्रेक इट डाउन। और दूसरा, कभी जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्शन पे और बेबी की हेल्थ, बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली वो कितना एफिशिएंटली ब्रेस्ट को सक कर पाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरी चीज मैं ये कहूंगी, जब बेबी का बर्थ होता है तो न्यू बॉर्न बेबीज में आपने वो देखा होगा, एक मैं वाइट सी जो उसकी वर्निक्स बोलते हैं हम, उसे लोग उसको घिस घिस के पूरा उतारने की कोशिश करते हैं, विच वी शुड रेकमेंड, वी रेकमेंड कि दैट इज वेरी सेफ फॉर द बेबी। बेबी के बाहर आने के बाद उसका एक थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बेसिक वाइटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो वी शुड रेदर डिलेड बाथ। वो एक बड़े कॉमन सा मिथ है कि अच्छा बेबी को नहलाया नहीं आपने, सो विच इज रेदर प्रोटेक्टिव फॉर द बेबी। तो ये जो मिथ्स हैं विच आर वेरी कॉमन वी यूज टू कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ। सो यस, दीज आर
0: कुछ मिथ्स के बारे में तो बात करी। और यहाँ पर मैम जानना चाहूँगी कि अच्छा, जब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती है ना तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जो कि एक बहुत ही एक गलत बात भी मैं यहाँ पर कहूँगी। एक गायनी के पास जाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है?
1: देखिए, हमें ऐसा ये नहीं सोचना है कि हमें बीमार होने के बाद ही जाना है। देखिए, एक लाइन कही जाती है विच इज़ वेरी ट्रू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर.
0: करेक्ट.
1: इससे पहले कि आपको एक डिजीज अपनी जकड़ में ले ले, आप कुछ उसकी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएं, इट्स बेटर कि आप उसको जितनी अर्ली स्टेज में कैप्चर करेंगे उसको ट्रीट करना भी इजी होगा, आपके लिए भी कम हार्मफुल होगा, मेडिसिन कम, टाइम कम, एंड एवरीथिंग विल बी अ हैप्पियर लाइफ. सो अभी जैसे बात करते हैं हम, अगर रेगुलर चेकअप्स की, अगर हम रेगुलर चेकअप में जाएं तो इट्स अबाउट टोटल हेल्थ, सिर से लेके पैर तक आपका पूरा एक जनरल एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि जो हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जैसे कार्सिनोमा की, सर्विक्स का कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं विच कैन बी पिक्ड अप एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, आपको पता भी नहीं होगा, एंड देन यू विल बी पिकिंग इट अप एंड आप एक अच्छे हेल्थ जोन में रन करोगे. उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनके कई बार आपको साइन सिम्टम्स पता भी नहीं है आपको, तो वो जब तक आप कॉमन हेल्दी होने के बावजूद भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ये सब चीज़ें पिक नहीं होंगी. ठीक है. वेरी कॉमन इशूज़ जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में एनीमिया इज मोर कॉमन, विच इज अगेन वेरी, आप देखें तो बहुत ही हमारे पास में ऐसे डाटा है मैटरनल डेथ के ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी. सो एक आपका एनीमिया का लेवल, एक आपका बीपी है, बीपी शुगर, विच इज अ वेरी ग्रेट ह्यूज, आपको पता है कितनी कम्युनिटी डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से जूझ रही है.
0: correct,
1: हमें
0: correct.
1: लगता है कि 80 बीपी है, 90 है, ठीक है अभी तो अभी जाने की जरूरत नहीं है. वो जब पूरा नीचे डायस्टोलिक का लेवल, नॉर्मल बीपी इज 120-180, तो उसका अगर लेवल हमारा 80, 90, 100 से ऊपर जाने जब शुरू होता है तो हमें लगता है कि हाँ अब बीपी की मेडिसिन की जरूरत है. जब हमारा शुगर 200, 300, 400 पहुंचने लग जाता है, जब आप सीवियर स्टेजेस में पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि मेडिसिन शुरू करें, नहीं. पर जब आप अर्ली स्टेज में उनके पास जाएंगे, इट कैन बी डिटेक्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो आप उसका ट्रीटमेंट नेचुरली इजी होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ रेगुलर चेकअप्स एट अ रेगुलर बेसिस. जब अगर आप हेल्दी हैं तो ईयरली कम से कम 2 बार जरूर जाएं. एंड इफ यू आर सिक, एंड अगेन डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन, अगर कुछ अंडरलाइंग हमारे पास डिजीज आती है तो जैसा भी हेल्थ ये जब हम एडवाइस करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली
0: करेक्ट
1: जाना है. यस,
0: बिल्कुल.
1: सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड.
0: बहुत सारी बातें ना ऐसी होती हैं जिन पर जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें नहीं पता है कि कब जाना चाहिए गायनी के पास, कब नहीं. देखिए, हर ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आपको हर टाइम जाना है या आपको हर महीने जाना है, लेकिन जब तक परेशानी ज़्यादा नहीं हो जाती ना तब तक हम नहीं जाते, जो कि एक बहुत ही गलत बात है. तो मैं कहूँगी कि आपको हर 6 महीने में डॉक्टर के पास, तो आपको जैसे हम अपना बॉडी चेकअप कराने जाते हैं, गायनी के पास भी जाना चाहिए. स्पेशली यहाँ पर वुमेन की बात मैं करूँ तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए कि कुछ हार्मोन्स अगर चेंज हो रहे हैं, हर महीने जो है अब पीरियड्स हो रहे हैं, अगर हर महीने डाउन हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो वो क्या ठीक चल रही है, वो सब प्रोसेस जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है. अगर आप जो है सेक्सुअली एक्टिव हैं तो वो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम लक्षण को कभी कभी पकड़ नहीं पाते हैं. जो पकड़ पाते हैं वो है डॉक्टर, जिनके पास सही नॉलेज है, सही गाइडेंस है. तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा है जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें हम जान रहे हैं. तो मेरा जो अगला सवाल है मैम आपसे, और वो अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे अब 16 की अगर हम बात करें, तो इसके बाद आजकल तो होता है कि 14-13 से ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरुआत उसकी हो जाती है. तो अब शुरुआत से बात करें तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, पहली बात तो जो माएँ हैं वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना बच्चे हो पाते हैं ना ही माँ हो पाती हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ को एक्सप्लेन करना कि आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो कुछ सिम्टम्स से जूझ रहे होते हैं कि प्रॉपरली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रही है और पेरेंट्स उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं या फिर पेरेंट्स से बात नहीं हो पा रही, और जब पूरी बात बिगड़ जाती है तब चीज़ें सामने आती हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे
1: मैम? अगर हम एक फीमेल की रिप्रोडक्शन लाइफ की बात करें तो नॉट ओनली जस्ट एट द एज ऑफ 16, आई विल रदर गो अ लिटिल बिट मोर अर्ली. जैसे कि आपने कहा कि ब्लीडिंग आजकल जल्दी शुरू होती है गर्ल्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट एज आती है दैट इज़ मेनार्क. तो हमारी वो 9-14 के करीब एज है जिसमें 9 ईयर्स से लेके 14-15 की एज तक गर्ल्स को स्टार्ट हो जाती है. उसमें हमारे को क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपने कहा कि बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, कि आपको साइक्लिक ब्लीडिंग कितने टाइम पे आ रही है, जिसमें कि हम मानते हैं कि 26 से लेके 37 डेज का साइकिल इज़ नॉर्मल. कुछ दिन पहले आना और कुछ दिन लेट आना, विच इज़ नॉर्मल. ठीक है, अगर उससे कम या ज़्यादा साइकिल होता है तो यू आर सपोज टू गो टू द हेल्थ प्रोफेशनल. ऐसे ही अगर हम फ्लो की बात करें तो 20-80 ml फ्लो इज नॉर्मल, लेकिन इससे कम या ज़्यादा होता है तो अगेन यू आर सपोज टू गो टू द डॉक्टर. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमें बेसिकली उनको इस एज पर ये ज़्यादा हमें बताना ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल के बारे में, ताकि बच्चे इस टाइम पे जब बड़े होने लगते हैं तो आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे और इन सब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, लेट लेट सोना, और थोड़ा सा मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है अगर वो उसको मैनेज करेंगे तो दे कैन लीड अ बेटर रिप्रोडक्टिव लाइफ. आजकल बच्चों को पता ही नहीं है वो कितनी कितनी अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, एंड दैट विल इन टर्न लीड, आप समझ सकते हैं कि पूरी अपनी फर्टिलिटी लॉस्ट कर सकते हैं, वो अपने ओवम और स्पर्म की क्वालिटी को सब चीज़ों से खराब कर सकते हैं. तो इवन वो आगे आने वाले टाइम में मदर्स नहीं बन पाएंगे, फादर्स नहीं बन पाएंगे, तो ये कोई बहुत छोटा सा

0: होल ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम दिस डिजीज. ठीक है, इसके अलावा अगर हमें ब्लीडिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं कि एच बी कितना है, थायरॉयड लेवल कितना है, और कुछ कैलकुलेशन प्रोफाइल्स हैं, है ना, और लाइक पीसीओडी, इन्हीं सब चीज़ों से. पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन, जो कि इरेगुलर ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगेन मदरहुड में बहुत बड़ी बाधा है. तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो इन सब चीज़ों से आप कम से कम टाइम से बचे रह सकते हैं. तो ये चीज़ें हमें समझनी हैं. फिर उसके बाद मेनार्क के बाद में हम लेते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, कि जो आपके 14-15 से लेके 24-25 ईयर्स तक की गर्ल्स हैं, तो उसमें यही एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर स्लीप, है ना, इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी तरजीह देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि रिड्यूस. सबसे बड़ी बात, मोबाइल स्क्रीन टाइम शुड बी रिड्यूस टू द मिनिमल, स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग. दैट इज़ अ वेरी हेल्दी टाइम फॉर योर डे एंड बिफोर स्लीपिंग ऑल्सो. और उसके अलावा भी, द बिगर द स्क्रीन इज गुड फॉर यू, द स्मॉलर स्क्रीन इज वेरी हार्मफुल फॉर यू. सो इन छोटे छोटे चीज़ों को अपने दिमाग में रख के आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद हमारी साइकिल आती है 18 से, अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें. सॉरी, हम, मैं एडोलेसेंस में आपको एक बात बोलनी भूल गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें उन्हें एजुकेट करना है गुड टच एंड बैड टच.
1: करेक्ट.
0: जो हमारी बेटियां हैं, नॉट ओनली बेटियां, बेटे हैं, वो कई बार इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कोई भी उनको किस तरह से टच कर रहा है. दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट दैट. अगर उनको अवेयरनेस होगी फैमिली में, जो भी उनका मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है, मे बी फादर, मे बी मदर, मे बी सिस्टर, कुछ भी है, उससे आप वो चीज़ें अगर शेयर करें, ताकि वो इन टाइम रहते ही हो पाए, अवेयरनेस हो पाए उस बारे में, और अगर कुछ लीगल एक्शन एडवाइजेबल है तो वो हो पाए, और वो खुद भी एक मेंटल टेरर में जाने से बचे. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेप. हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कि, मतलब माओं को इतनी लेट पता चलता है कि जब उनकी डिलीवरीज होने वाली होती हैं. सोचो कितना बड़ा एक सदमा है पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी. सो हमें बहुत पहले ही इसको रोकना है. जब उन्हें हम एजुकेट करेंगे, तभी हम इस चीज़ के लिए अवेयरनेस दे पाएंगे उनको.
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
0: और इस तरह से हम क्राइम को भी काफ़ी हद तक बचा सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तब उसके बाद हम आए एक मैरिड एज में. 18 के बाद से जब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तब से लेके 40-45 तक की एज तक, जब पेरीमेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं हम उसको, अगर हम उस फेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज़ बैरियर मेथड. मैरिज आइदर, वैसे तो मैं, आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, आई पर्सनली डिस्करेज इट, बट स्टिल अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है, तो यू आर नेवर नोइंग कि आपका जो पार्टनर है वो किस इन्फेक्शन से जूझ रहा है, एंड यू आर ऑल्सो कैरिंग इट. सो एक तो बैरियर मेथड, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी सस्पेक्ट है कि हाँ कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का कुछ वो है, अगर आपने नहीं यूज़ किया, देन इमीडिएटली यू शुड गो टू द डॉक्टर. आपको स्क्रीन कराना चाहिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए पहले ही. और सेकेंडली, आप जब मैरिड हैं, जस्ट टेक अ प्रॉपर स्पेसिंग. अब हमारे पास क्या होता है कि मैरिज हो गई, पहले साल में ही बच्चे आ गए हमारे पास में कि प्रेगनेंसी हो गई, आई वी वॉन्ट टू अबॉर्ट. You should keep a proper spacing after marriage till the time you want to enjoy your married life for 1 year, 2 year. तो उसको proper space दीजिए. उसके लिए methods हैं जिससे आप बच सकते हैं कि pregnancy नहीं होने दीजिए. Don't fall in that abortion cases and all that. उसके अपने further complications हैं. कई लोग, पहले तो ये होता था कि कई लोग अपने आप ही, आज भी कई बार ही मेडिसिन लेके खा लेते हैं और हमारे पास आते हैं. कई बार हैवी ब्लीडिंग करके आ रहे हैं और कई बार तो ब्लड लॉस इतना हो गया होता है कि पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है.
1: ओके.
0: सो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन. तो हमें ऑलरेडी ही इस चीज़ को पहले से ही समझना है, ध्यान देना है इसको. और दूसरा, एक बेबी हो गया, देन स्पेसिंग बिटवीन द टू. दूसरा बेबी कर लिया, उसके बाद में यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली प्लानिंग इश्यूज़, कि आपको जब नहीं चाहिए तो उसको हम एक परमानेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. वसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, जैसे हम नसबंदी के नाम से कहते हैं, और वो तो गवर्नमेंट भी बड़े प्रमोट करती है, तो विच इज़ अगेन गुड फॉर देयर हेल्थ. इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. ये आ गई हम मैरिड लाइफ की बात. अब उसके बाद में जब पेरीमेनोपॉज़ल एज है, जब हमारी पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज है, लाइक 40-45 की एज में, आजकल किसी किसी को थोड़ा जल्दी होता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. सो हमारे को उस टाइम पर हमें ये ध्यान देना है कि किस तरह के कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं या क्या हो रहा है.

0: बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एट दैट टाइम.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, तो उस टाइम में सबसे पहली बात, या तो धीरे धीरे जब पीरियड बंद होने लगता है, या तो पीरियड नहीं होगा अगले महीने या ज्यादा होगा. अगर नहीं होगा, अगेन एट द एज ऑफ 40 आपको एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाए. ठीक है, कई बड़ी एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास आती हैं कि नहीं अब 40 की एज में हो गया, 45 की एज में हो गया, बच्चे बड़े बड़े हैं लेकिन गेट प्रेगनेंट, तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करना मुश्किल हो जाता है. तो हमें उसको पहले से ही रोकना है कि ऑलरेडी हमें ध्यान देना है कि पीरियड नहीं आ रहा, तो हमें ये नहीं मान लेना कि मेनोपॉज हो गया है. ठीक है, और दूसरा, अगर पीरियड कैसे बंद होता है मेनोपॉज, कि या तो हमारा इंटरवल ज़्यादा होगा, धीरे धीरे, पहले एक महीने में आया, दो महीने में आया, अगेन उस एक दो महीने में हमें प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है, दो में आया, फिर तीन में आया, फिर चार में आया, या फिर जो ब्लीडिंग हमें हो रही है, दो से तीन दिन से दो दिन हुई, फिर एक दिन हुई, इस तरह से भी. लेकिन इसके अलावा अगर पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, कई बार हैवी साइकिल्स होती हैं, फिर उसके बाद एक डेढ़ महीने तक पीरियड नहीं आया, फिर आया, फिर हैवी आया, बट ग्रेजुअली इट विल कम डाउन. लेकिन उस टाइम की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस करनी है. एट दैट टाइम जो पैप स्मीयर्स करके एक टेस्ट आता है, लिक्विड पैप स्मीयर विद सेल साइटोलॉजी, जब तक पूरा आपका पीरियड बंद नहीं हो गया, आपको रेगुलर चेकअप कराना है फॉर 1 ईयर.
1: करेक्ट.
0: एवरी ईयर यू शुड गो. एवरी ईयर यू शुड गो. और अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो अकॉर्डिंगली जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेना है, अर्ली स्टेज पे उसको पिक करना है. ठीक है, और अल्ट्रासाउंड हम करते हैं उसमें कि अगर आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस इज मोर देन 6 mm तो उसकी हम एक जांच लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में एंडोमेट्रियल खुरचन सी जैसे लेते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, वो टेस्ट के लिए जाती है. तो हिस्टोपैथोलॉजी उसमें होके कि अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं बन रही, वो सब चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है.
1: बिल्कुल.
0: ठीक है, और इसके अलावा कुछ यूरिन इन्फेक्शंस हैं, बिकॉज अगर कोई अंदर फाइब्रॉयड है, कुछ है, कई छोटे छोटे फाइब्रॉयड होते हैं जो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करते, विच इज़ नॉर्मल. लेकिन अगर कुछ बिग साइजेस के फाइब्रॉयड्स हैं, वो आगे क्या है, हमारा ब्लैडर है, यूरिन का एरिया है, पीछे क्या है, रेक्टम है, पॉटी का एरिया है, तो अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे यूरिन इन्फेक्शंस और पीछे से रेक्टम के एरिया पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं, काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके बाद में आती है हमारी मेनोपॉज़ल एज. जब एक बार ब्लीडिंग बंद हो गई, देन ऑल्सो यू शुड स्क्रीन. अगेन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मैं आपको ये बताना भूल गई कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, पूरे मंथ की एक डेट फिक्स कर लें कि हमें उस डेट को एग्जामिनेशन करना ही करना है. रेगुलर बेसिस जब भी आप नहाते हैं, वो करते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, उसमें कई तरह के चेंजेस होते हैं, लाइक कुछ टेंडरनेस है, हार्डनेस है ब्रेस्ट के किसी एरिया में, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाना है. और कई बार ये होती है स्किन चेंजेस हैं, कोई डिम्पलिंग ऑफ द स्किन है, रिट्रैक्शन ऑफ द निपल है, सिंपल भाषा में कहूँ कि कोई गड्ढा सा पड़ रहा है, या एक साइड पे खिंच रही है कुछ, या कोई उसमें से सिक्रीशंस आप महसूस कर रहे हो, तो वो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, इमिडिएटली जाना बहुत ज़रूरी है. मेमोग्राम्स करके टेस्ट है वो, जिस हम देखते हैं जिसमें हमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा वगैरह के अर्ली स्टेजेस के बारे में देखना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगेन आपको पूरे ब्रेस्ट में या एक्जिला में, यानी कि कांख में, बगल में कुछ अगर गांठ सी महसूस हो रही है, तो वो आपको पल्पेट करना है, महसूस करना है. और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू ना कि रेगुलर एग्जामिनेशन ज़रूरी है. कुछ लिसनर्स हमें समझ पा रहे होंगे और कुछ को अगर ये समझना मुश्किल लग रहा है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप. तो उसको आप इमिडिएटली डॉक्टर को बताएं, ताकि वो अर्ली स्टेजेस में पिकअप होके आपकी हेल्थ इश्यूज को सेव कर सके, प्रॉपर लाइफ सेव कर सके.
1: बिल्कुल, बहुत ही एक गहरी जानकारी जो है वो हमें मिली है डॉक्टर अनुराधा से. डॉक्टर अनुराधा, आपने एक बात कही है जो कि मैं यहाँ पर उस पर रोशनी और डालना चाहूँगी, कि आपने कहा कि जैसे अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभी हम जागरूकता भी महसूस कर पा रहे हैं, जो बाहर भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही हैं, जो अब वैक्सीन जो है वो दी जा रही है. इसी के साथ साथ आपने अभी कहा कि 9 से 14 साल की लड़कियों को ये अर्ली स्टेजेस में 3 जो डोजेज़ हैं वो लगवा लेनी चाहिए. अच्छा, जो अब जिन्हें नहीं पता है, जिनकी एज जो है अब हो चुकी है, अब ज़्यादा है, या फिर अगर मैं 20, 25 या 30 की अगर मैं बात करूँ, तो इनके लिए भी क्या ये वैक्सीन अवेलेबल है, ये लोग भी लगवा सकते हैं?
0: नहीं, वैक्सीन तो अवेलेबिलिटी तो है, लगवा लेनी चाहिए उनको, एटलीस्ट डोजेस शुड बी टेकन।
1: तो कोई एज लिमिट है कि तब तक आप लगवा सकते हैं?
0: फिर जितनी जल्दी आपकी एज में लग जाएगी, देन योर होल लाइफ इज सिक्योर।
1: करेक्ट, करेक्ट।
0: और जितनी आप लेट अगर हम उसको करेंगे, तो इफ़ यू आर पिक्ड अप विद सम इन्फेक्शंस, तो कई बार उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
1: जी, तो होलसेल मैं यही कहूँगी कि अगर अभी भी टाइम है तो आप ज़रूर लगवाइए। और देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक होना। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में ऑलरेडी हम इतना कुछ जान रहे हैं, इतना कुछ सुन रहे हैं, तो अब हाई टाइम है कि आप भी अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी कि यहाँ पर हम डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम टॉपिक है, लोग ज़्यादातर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और अक्सर ये है कि क्योंकि अब हेल्थ के बारे में हमें सारी जानकारी जो होनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास भी लेकर अपनी ये परेशानी नहीं जाते हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए कि हम थोड़ा सा शर्मा जाते हैं उस बात को लेकर कि किस तरह से हम डॉक्टर के सामने बात रखेंगे। लेकिन इस बात पर जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें डिस्चार्ज की, तो वाइड डिस्चार्ज की हम बात करें, या फिर और भी कि किस तरह से होता है और क्या क्या परेशानी इससे हो सकती हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए।
0: देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की बात करूं, बिकॉज की एक म्यूकोजल लाइनिंग है विजाइना की, जो कि एक सिक्रेशन लाइक, या आप लगाइए टीस्पून से टेबलस्पून तक का एक जो डिस्चार्ज है, विच इज़ नॉर्मल। अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल एंड वाइट, एंड उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ठीक है? तो उसमें कोई आपको इचिंग नहीं होगी, कोई बर्निंग नहीं होगी, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है? तो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो उसमें रहते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्टेजेस की बात करें, जैसे मेंस्ट्रुएशन में, तो हमने अभी आपको बताया कि डिफरेंट हमारा फ्लो कितना ज़रूरी है और सब कितना ज़रूरी है। एट दैट टाइम वजाइनल डिस्चार्ज मिनिमल से या ना के बराबर ही होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो में आके आराम से निकल जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, ये 6 to 14 डेज की होती है। जैसे हम नॉर्मल साइकिल अगर हम 28 डेज के अराउंड की माने, तो फर्स्ट 4-5 डेज में आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया। उसके बाद में 6 to 14 डेज हमारा आता है फॉलिकुलर फेज। उस टाइम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस वक्त एक बड़ा थिन सा डिस्चार्ज, बिल्कुल अगेन वाइट, कोई स्मेल ऑर्डर इचिंग नहीं होगा उसमें, वो थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता है, विच इज़ वेरी, बहुत पतला सा होता है। और अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें, तो फिंगर पे लेके अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे, वो एक थ्रेड सा बनाता है, तो काफ़ी दूर तक थोड़ा सा खींचता है, दैट इज़ ए फॉलिकुलर फेज। उसके बाद हमारा एक फेज आता है, विच इज़ कॉल्ड 14वें दिन के करीब में आता है, विच इज़ अ ओवुलेशन स्टेज। उस वक्त क्या होता है कि दैट जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा टर्न होता है, थोड़े से स्लिमी वेट, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द फर्टिलिटी, जिन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कंसीव करने के लिए, दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर वो इस टाइम में नहीं मिलते तो आपका पूरा साइकिल वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दिस इज एन ओवुलेशन टाइम। तो इस टाइम में जो कपल्स प्लान कर रहे हैं, उनका ऑल्टरनेट डे तक रेगुलर मिलेंगे तो ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे मिलना जरूरी है, अदरवाइज जो ओवम होता है वो वेस्ट हो जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाते। तो दिस इज अ प्रॉपर ओवुलेशन टाइम। उसके बाद में आती है ल्यूटियल फेज, जो उसके बाद की फेज है हमारी 28 डेज तक की, लास्ट के जो 14 डेज है, दैट इज अ ल्यूटियल फेज। उस टाइम में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, सो दैट डिस्चार्ज इज अ लिटिल बिट थिक, जैसे हमने पहले बात करी थिन होता है, दिस डिस्चार्ज इज बिट थिक, ठीक है? तो ये गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है, और वो अगर हम जैसे फिर से सेल्फ एग्जामिनेशन सर्वाइकल म्यूकस एग्जाम बोलते हैं इसको हम, तो उसको अगर हम फिंगर पे लेके थोड़ा सा चिपका के अगर उसको खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो जल्दी से टूट जाता है। तो वो प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से रहता है। ये सभी डिस्चार्जेस नॉर्मल हैं। इसके अलावा हमें कोई भी एनी चेंज इन कलर, कुछ कर्डी है, वाइट है, पिंक है, ग्रीन है, ग्रे है, देन यू आर सपोज टू गो टू द डॉक्टर। आपको वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी किसी का थोड़ा कम या ज़्यादा है, इस अमाउंट से ज़्यादा अगर उन्हें होता है तो भी उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सो ऑल दैट इज मैटर्स। एक यहाँ पे मैं एक और बताना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, तो उसमें एक एक अवेयरनेस अब आ रही है बच्चों में कि एक एक डिवाइस आता है जो सिलिकॉन का बना हुआ है, इट्स अ मेंस्ट्रुअल कप,
1: कप करेक्ट,
0: इट इज फॉर्म्ड इन अ शेप ऑफ वजाइना, इट इज रीयूजेबल, इको फ्रेंडली, तो और बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल सा होता है, तो उसको इंसर्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू लर्न हाउ टू इंसर्ट इट. ऑफकोर्स अनमैरिड गर्ल्स के लिए नहीं है, फॉर मैरिड गर्ल्स आपके सैनिटरी नैपकिन्स का खर्चा बचेगा और एंड यू कैन यूज इट फॉर ईयर्स. आपको क्या करना है, आपको यू जस्ट हैव टू लर्न इट, आपको यूट्यूब्स पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, उसको प्रेस करके और वजाइना में फिट करना है. 20 to 80 ml के करीब, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोर आता है अपना, जब उसको निकाल करके 3 or 4 hours में निकाल करके आप उसको वॉश कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं. और जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाए, इन बिटवीन द टू साइकिल्स आपको उसको स्टरलाइज करना है. स्टरलाइज जैसे वाटर में डाल के बॉयल करना है और उसको आउट ऑफ द रीच ऑफ सन हीट से बचा के उसको रखना है. एंड इफ द टाइम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू आर यूजिंग इट, उसके अकॉर्डिंगली वो हमारा काफ़ी टाइम तक चलता है. तो इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग और इको फ्रेंडली भी है, नेचर के लिए भी अच्छा है. तो वी शुड एम्फसाइज कि हाँ, हमें धीरे धीरे उस पर स्विच ओवर करना चाहिए, सीखना चाहिए उसको. इनिशियली थोड़ी बहुत कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं यूरिन पास करने में, दिक्कत क्या, बट वो ग्रेजुअली एज यू लर्न इट, सो दे आर वेरी गुड.
1: बिल्कुल
0: मैनेज.
1: अच्छा, बहुत सारे मिथ इसके साथ जुड़े हुए हैं कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमें और प्रॉब्लम तो नहीं देगा. लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट अब हमारे साथ डॉक्टर हैं, वो खुद ही ये रेकमेंड कर रहे हैं, एक्सपर्ट खुद रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए. हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले और आप भी पैड फ्री, ये जो मेंस्ट्रुअल होता है, ये साइकिल होती है, या आप वहाँ पर आप जो है उसको टाइम को ले सकें. गायनेकोलॉजिस्ट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी की ओर हम वो करते हैं कि अगर प्रेगनेंट है तभी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. तो अब इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे आपके पास केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास ओपीडीज में आप बताते हैं कि बिजी रहते हैं तो इतने केसेस आते हैं, तो अब प्रेगनेंसी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो कि लोगों में एक धारणा जो है वो बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है. साथ ही एक स्मूथ प्रेगनेंसी की ओर हम किस तरह से जा सकते हैं?
0: देखिए, जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि वॉमिटिंग्स. तो वॉमिटिंग्स को हम हालांकि मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, बट एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है कि वो सिर्फ मॉर्निंग में ही होती है. इट कैन हैपन एनी टाइम ऑफ द डे. और यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये है कि हाइपरमेसिस, जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा वॉमिटिंग होना, इज़ नॉर्मल. दैट इज़ नॉट नॉर्मल. उससे पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकती है, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वॉमिटिंग्स हैं तो जितनी भी आपको वॉमिटिंग्स हों वो आप कैरी करते रहें, डॉक्टर के पास नहीं जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि सम पीपल से कि एक्सरसाइजेस उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए. इनफैक्ट एक्सरसाइजेस, नॉट ऑल, सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो कि आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, दैट विल कीप अ मदर एंड बेबी बोथ इन अ गुड हेल्थ. तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, यू कैन नॉर्मलाइज योर डेली रूटीन और आप एक अच्छी हेल्दी की तरफ हेल्दी लाइफ की ओर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस की बात करें, दे हेल्प यू फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो, जो पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करने में सिजेरियंस बल्कि कम हो सकते हैं आपके. तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी. डेफिनेटली आप पुश कर करिए और आप कर सकते हैं.
1: मैम, आजकल एक और मिथ जो है, या फिर मैं कहूँगी एक धारणा जो है ये बनी हुई है कि जो भी प्रेगनेंसी की 9 month पे होता है कि एक डर, एक नर्वसनेस होती है, और उस नर्वसनेस में हम ये कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल डिलीवरी ना करें, हम सिजेरियन पे जाते हैं कि सिजेरियन करवाएं. कि आपकी नज़र में, कि आप जो सजेस्ट करेंगे, तो कौन से डिलीवरी ज़्यादा बेहतर है, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी जो एकदम
0: बीइंग अ डॉक्टर, विच डिलीवरी इज गोइंग टू बी सेफ फॉर मदर एंड बेबी बोथ. ठीक है, सबसे पहले तो वील ऑप्ट फॉर अ हेल्दी साइकिल, हेल्दी लाइफस्टाइल, और उन सबसे आपकी पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, नॉर्मल रहे, उसमें जैसे कि हमने आपको बाकी चीज़ें बताई, टबैको और ये सब चीज़ों को छोड़ करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब को लेकर अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं. आप एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी पेल्विक मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक नॉर्मल वेट गेन करते हैं. आप एक मिसकंसेप्शन एक ये भी है कि ईट फॉर द टू, तो उसके चक्कर में वो बेबी और मदर दोनों को खिलाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा खिलाने लग जाते हैं, विच इन टर्न रिटर्न्स इनटू अ हैवी वेट गेन एंड अगेन हाइपरटेंशन. उससे हमें कई बार इमरजेंसी सिजेरियंस करने पड़ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, गो विद दैट लाइफस्टाइल, ताकि आप एक नॉर्मल डिलीवरी में लैंड कर सकें. बट अगेन, इफ इट इज़ गोइंग टू बी रिस्की फॉर द मदर एंड बेबी बोथ, बीपी ज़्यादा है, एच बी कम है, ब्लड चढ़ाना है या जैसे करना है, या प्लेसेंटा प्रीवी है, कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं कि जिसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है. अगर प्लेसेंटा प्रीविया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इफ दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथवे ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी, नीचे से रास्ता ही उसने बंद किया हुआ है, यू कांट हेल्प इट, तो आपको सिजेरियन करना ही करना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसकी पर्सनल कंडीशंस कैसी हैं. ठीक है, बीपी बहुत ज़्यादा जा रहा है और आप नॉर्मल कंडीशन की वेट कर रहे हैं, दैट कैन फॉल इनटू एक्लैम्प्सिया. एक्लैम्प्सिया यानी कि दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं.
1: ओके,
0: ठीक है, उसमें मदर भी गई और बेबी भी गया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो सीरियस इलनेस में नहीं जाएं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएं, बहुत पहले से आप उनका ध्यान रखेंगे. और हाँ, जहाँ आपने डिलीवरीज की बात करी, तो नॉर्मल एंड सिजेरियंस बोथ आर ओके, जो भी हम जिसमें भी हम मदर को भी सेव रख सकें और बेबी को भी सेव रख सकें. ऐसी डिलीवरी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो और बेबी नहीं बच रहा. ऐसी डिलीवरी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिजेरियन की ही वेट किए जा रहे हो और मदर को लूज कर रहे हो. सो विच इज़ नॉट, तो प्रॉपर डिसीजन एट प्रॉपर टाइम विदाउट द लॉस ऑफ द टाइम. टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. सो हमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है.
1: बिल्कुल, बहुत ही खास जानकारी जो है ये आज हमें मिल रही है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर अनुराधा से. डॉक्टर अनुराधा, जाते जाते, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है हमारे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या वो ख़ास संदेश है जो आज आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगी?
0: सबसे पहले, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, गेट रेगुलर चेकअप्स, ठीक है, डिवेलप हेल्दी lifestyle, good habits, aware of any alarming signs अगर आपके पास हैं तो go to the doctor, ठीक है, एंड ओपन कम्युनिकेशन विद योर डॉक्टर. उनसे कोई बात मत छुपाइए. पता नहीं आजकल पेशेंट्स क्या क्या सोच के कुछ छुपाते हैं. एंड गेट योर टारगेट्स और फैमिली प्लानिंग गोल्स, डिस्कस विद देम. वो आपको सही जानकारी देंगे कि आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ कंडीशंस के लिए क्या बेस्ट है. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर कि गायनोकोलॉजिकल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल well-being. So, and we should invest in preventive care rather than you should fall in any illness. So, just self-awareness lead to a happier life. That is my message. And we, being a woman, being an istri, aur special women's day pe yahi kehna chahungi ki we are the jewels of the society. Bilkul. So, it's our duty to save this jewel. In turn, our society, hum fit, to India hit.
1: बिल्कुल, बहुत ही एक पावरफुल संदेश के साथ यहाँ पर अब मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच डॉक्टर राधा, इतनी सारी जानकारी हमारे लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए, इतनी ख़ास जानकारी. और ये कहते हैं ना कि एक वो कोर आज हमने जो है देखा है, एक डीप बातें जो है हमने आज जानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उजागर जो है हुआ है. तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी.
0: थैंक यू सो मच मैम. Thanks for having me here. It's really an honor to be with you. Thank you so much. Thank you, Radio Manav Rachna FM 107.8. Keep listening. Thank you.
1: और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का. जी हाँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ यानी कि रेडियो मानव रचना के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel live.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम द किचन एक्सप्रेस। और इस किचन एक्सप्रेस में मैं लेके आती हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही कमाल की रेसिपीज। और आज भी बहुत ही कमाल की रेसिपीज के साथ मैं आ गई हूँ आपके संडे की सुबह की मॉर्निंग को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। जी हाँ, अगर अच्छा आहार आप खाएंगे ना तो उतना ही ज्यादा आप देखिए पौष्टिक आहार अगर आप लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ आज जिनकी मैं बात करने वाली हूँ ना, मतलब देखिए अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बीड़ा उठाया और वो ये मिलेट्स का। जी हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे पौष्टिक है आहार है हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमें जरूर अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इन चीजों को ना पीछे छोड़ते आ रहे हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे रह रहा है, जो जंक फूड है और जितना भी खाना बाहर का होता है। आप देखिए कितना लोगों को बर्गर, पास्ता, पिज्जा कितना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन वहां पर आप देखिए कि स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य के लिए हमारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारी जीवन शैली के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो अच्छा खाना खाए, उत्तम पौष्टिक आहार ले। साथ ही साथ एक पुरानी कहावत है ना, जैसा खाया वैसा पाया, और ये प्रेजेंट के टाइम में भी सही लगती है। अर्थात संतुलित आहार लेना, पौष्टिक आहार लेना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मूल मंत्र है। दादी आज देखिए बहुत ही ज्यादा कमाल की जो रेसिपीज है ना वो मैं लेके आ गई हूँ, और ये जो रेसिपीज है ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आज बात करने वाली हूँ, देखिए हमारा जो ये प्रोग्राम है ये मैं डिशेस पे लेके आती हूँ, रेसिपीज पे लेके आती हूँ। तो आज जो रेसिपीज हम लेने वाले हैं ना वो मैं मिलेट्स पे लूंगी, लेकिन ये जो मिलेट्स की रेसिपी है ना उनमें से एक मिलेट यानी कि आज ज्वार पे बात करेंगे। जी हाँ, ज्वार पे आज बात करूंगी मैं, और आज जितनी भी रेसिपीज होंगी ना सब ज्वार से बनी होंगी। और हमें लगता है ना कि जो मीठा होता है, मीठा हो गया और या फिर ज्यादा नमकीन हो गया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आज मैं मीठे की ही रेसिपी लेके आई हूँ। और ये जो मीठा है ना ये बना है ज्वार से। अब आप सोच रहे होंगे कि मीठा ज्वार से, मतलब इसका भी कुछ हो सकता है क्या, मिठाई बन सकती है? जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही कमाल की टेस्टी मिठाई बनती है। तो अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो अब टाइम आ गया भैया, नोट पैड तैयार रखिए आप, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ बेहतरीन ज्वार से बनी रेसिपीज के बारे में, जो कि आपके देखिए जो स्वीट टूथ आपका कर देगी बहुत ही ज्यादा, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और मीठा भी है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ना बहुत ज्यादा कमाल गया, और यही कॉम्बिनेशन लेके आ गई हूँ मैं। तो आप कहीं मत जाइए, प्यारे प्यारे गाने सुनिए, और इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको कि आज कौन सी रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। तब तक के लिए आप सुनिए ये प्यारे प्यारे गाने ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

रेडियो मानवन श्रवणों 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम द किचन एक्सप्रेस। और इस किचन एक्सप्रेस में आज बहुत ही ज्यादा कमाल की टेस्टी डिशेस लेके आ गई हूँ आपके लिए। और आज मीठे में कुछ लेके आई हूँ। जी हाँ, मैं आज देखिए अच्छी अच्छी रेसिपीज जो है ये मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो रेसिपीज है ना सभी ज्वार से बनी है। जी, आप सोच रहे होंगे कि ज्वार से भी रेसिपी बन सकती है? बिल्कुल, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो कॉम्बिनेशन देखिए, वो रेसिपीज जो कि मीठी भी है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, तो ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर फोन करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा कि आपकी जो रेसिपी अगर आपने बताई है मेरी रेसिपी को देखते हुए सुनते हुए, तो वो कैसी बनी है। मेरा नंबर बहुत ही ज्यादा आसान है हमारा, 8010781078, ये हमारा नंबर है। इस पर आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको रेसिपीज कैसी लगती है। आज की रेसिपी पहली है ज्वार चॉकलेट ब्राउनी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। और अगर बच्चे ऐसा हेल्दी खाना खाएंगे ना, ऐसी हेल्दी डिश खाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छी है। और साथ ही साथ अब देखिए बनाने में भी बहुत ज्यादा इजी है। जी हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। और इंग्रेडिएंट्स है ज्वार का आटा 100 ग्राम, शक्कर पाउडर 100 ग्राम, चॉकलेट 80 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, अंडे 2 अंडे आप ले सकते हैं, कोको पाउडर 15 ग्राम आप ले सकते हैं, तो काफी इनफ रहेगा वो हमारी रेसिपी के लिए। नमक ले लीजिए 1 ग्राम और बेकिंग सोडा ले लीजिए 2 ग्राम। सिर्फ ये आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसी में आपकी जो चॉकलेट ब्राउनी है ये बनके तैयार हो जाएगी। ज्वार की चॉकलेट जो ब्राउनी है ये सभी को पसंद आने वाली है, बच्चों से लेके बड़े को। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्वार से बनी हुई है आटे से, तो इससे क्या होगा, जो हेल्दी चीजें होंगी ये भी आपके जो बच्चे खाएंगे, अगर बड़े खाएंगे आप खाएंगे, तो ये भी आपके अंदर जाएगी। और देखिए टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट के साथ अगर कोई भी, आप देखिए हम सोचते हैं कि अगर हम ज्वार का आटा डाल देंगे तो टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट के साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको चॉकलेट ब्राउनी के बारे में, ज्वार से बनी चॉकलेट ब्राउनी के बारे में आपको बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बात कर रही हूँ विधि बनाने की। विधि है, ज्वार के आटे में नमक और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर डाल के आपको अच्छी तरह से मिलाना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से आपको छान लेना है। मिला के आपको छानने के बाद चॉकलेट और मक्खन को मिलाकर एक बोल में आपको अच्छे से उसे पिघलाकर, पहले आप चॉकलेट और मक्खन को अच्छे से दूसरे बोल में डाल के अच्छे से पिघला लीजिएगा। और उसके बाद जब एक देखिएगा एक फाइन पेस्ट बन गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें शक्कर डाल के और वनीला एसेंस आप डाल सकते हैं। और उसको अच्छे से आप छने हुए जो ज्वार का आटा है जिसमें हमने नमक और बेकिंग पाउडर मिला रखा है, उसमें आप एक मिला लीजिए। और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद ये मिश्रण तैयार हो जाएगा, बैटर आपका तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण में 2 अंडे आपको डालने हैं और धीरे धीरे दूध को डालते हुए अच्छे से आपको मिलाना है। और जब ये मिश्रण केक के मिश्रण जैसा हो जाए, आप देखिए बैटर की तरह पूरा बन जाएगा, तब क्या करना है आपको, इसे ग्रीस किए हुए एक केक के सांचे में डालकर 180 डिग्री के तापमान पर आपको बेक करना है। और ठंडा होने पर इसके टुकड़ों में काट के इसे परोसना है। तो इतनी आसान सी ये विधि है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और सारा सामान देखिए, आपको बस ज्वार का आटा अगर आपके घर पे नहीं है वो लेना पड़ेगा, बाकी सारा सामान तो आई थिंक होगा। बच्चे चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट होगी, बेकिंग सोडा हम अपने घर में रखते हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों ना ये टेस्टी रेसिपी आप बनाएं। और मुझे जरूर बताइएगा, फोटोग्राफ आप क्लिक करके मुझे जरूर दीजिएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स ने कितनी मेहनत करी है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा आपकी मेहनत नहीं लेने वाली है ये डिश जो है, और ये जो रेसिपी है हमारी चॉकलेट ब्राउनी ज्वार की बनी हुई, तो ये ज्यादा आपकी मेहनत नहीं लेगी, बट जल्दी जल्दी बन जाएगा और बच्चों को काफी ज्यादा ये टेस्टी लगने वाली है, तो जरूर बनाइएगा। अब बात कर रही हूँ ज्वार के आटे के गुलाब जामुन। जी हाँ, तो आज गुलाब जामुन ज्वार से बने मैं बताऊंगी आपको। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने खुद ये ट्राई किया, जो भी मैं ये रेसिपी जो है लेके आती हूँ आपके लिए, पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, अगर ये लगा मुझे कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी आपको बतानी चाहिए और हेल्दी है, तो जरूर मैं आपके लिए लेके आती हूँ।

हूँ और साथ ही साथ ये जो रेसिपी है ना, ये बड़ी कमाल की है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अगर गेस्ट आता है, कोई भी घर पे आता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये डिश पसंद आने वाली है। कोई भी फेस्टिव का मौका आएगा, आप देखिए न्यू ईयर आ रहा है या क्रिसमस आ रहा है, जरूर बनाइए ये ज्वार के बने गुलाब जामुन, सबको अच्छे लगेंगे। साथ ही साथ ज्वार के बने गुलाब जामुन के लिए आपको क्या करना है, ज्वार का आटा लेना है आपको 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, पनीर 100 ग्राम, खोया 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, दूध 2 मिलीलीटर, शक्कर 100 ग्राम, इलायची और थोड़ा सा आपको तेल लेना है। और अब आपको क्या करना है, इसको बनाने की जो विधि है ना, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपको नोट डाउन करने हैं, ये आप अपने पास रखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद कि हमारी ये जो रेसिपी है ना, ये कैसे बनेगी। और गुलाब जामुन तो आई थिंक सबको ही पसंद होते हैं, कोई मना करता ही नहीं है। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं या फिर कोई भी घर पे आता है, सबसे पहले क्या रहता है हमारा, गुलाब जामुन मंगा लो भाई। और साथ ही साथ आजकल तो क्या चल रहा है, गरम गरम गुलाब जामुन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और मतलब मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती शायद से किसी और डिश को। सब अपनी अपनी वैसे तो जगह है, सारी मिठाइयां, रस मलाई अपनी जगह है, रसगुल्ले अपनी जगह है, और गुलाब जामुन की तो बात ही अलग है। और गर्मियों में गुलाब जामुन का मजा आता है जब हम उसे आइसक्रीम के साथ खाते हैं, वैसे तो सर्दियों में भी मजा आता है जब हम शादियों में खाते हैं। और आजकल तो ऐसी आइसक्रीम्स भी मार्केट में आने लगी है जो कि गुलाब जामुन और आइसक्रीम दोनों मिक्स होती है, लेकिन उसमें ना वो मजा नहीं आता है जितना मजा अगर आप गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, अलग अलग करके जब दोनों मिक्स करके खाते हैं ना, तो उसका अलग ही स्वाद आता है। तो आज घर पे ही हम ज्वार के गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, तो आप बताइएगा मुझे कैसे बने। लेकिन उससे पहले विधि बताऊंगी मैं, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बात कर रही हूँ विधि की। तो बहुत ही आसान सी विधि है, पनीर और खोए को अच्छी तरह से आपको मसलना है और उसके बाद इसमें ज्वार का आटा, मैदा और सोडा मिलाकर धीरे धीरे इसको दूध डालकर अच्छे से आपको गूंथ लेना है। अब क्या करना है आपको, इस गूंथे हुए आटे को आपको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है, और थोड़ी देर यानी कि बस 10 से 15 मिनट आपको रखना है, और उसके बाद इसके हटा दीजिए आप, कपड़ा से आपको ढक के रखना है। कपड़ा हटाने के बाद आप उसमें से छोटे छोटे गोले बनाकर आप उन्हें तल लीजिए। जब आप गोले बनाएंगे, पहले आप सारे के सारे जो बॉल्स हैं वो बना लीजिएगा, और उसके बाद आपको इसे तल लेना है और शक्कर की चाशनी में आपको इसे डालना है। अब शक्कर की चाशनी आप कैसे बनाएंगे, देखिए तार की बनती है। तार यानी जब आप अपनी दोनों फिंगर से, थंब से और अपनी फर्स्ट फिंगर से चाशनी को जब आप देखते हैं ना, तो उसमें देखिए वो कितनी ज्यादा उसमें मोटाई आई है। अगर उसमें तार बन रहे हैं तो उसका मतलब है आपकी चाशनी रेडी हो गई है। 2 से 3 तार इनफ होते हैं अगर आप बना रहे हैं गुलाब जामुन की, 1 तार भी इनफ रहता है गुलाब जामुन की उसके लिए, चाशनी के लिए। साथ ही साथ ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा तार वाली होगी तो आपके जो गुलाब जामुन है उसके अंदर तक चाशनी नहीं पहुंचेगी। चाशनी को ना ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा मोटा रखना है, एकदम अच्छे से होनी चाहिए। और इस चाशनी में आप इलायची को कूट के डाल दीजिए। देखिए अगर टेस्ट ना आए जैसे आप मार्केट में खाते हैं, तब आप बताइएगा मुझे। और साथ ही साथ ये जरूर आपको ट्राई करके मुझे बतानी है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी जो है ज्वार के बने, जो मैं गुलाब जामुन लेके आई हूँ, आपको कैसे लगे। हम बस यही लगता रहता है हमें कि काफी ज्यादा मुश्किल है, हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखिए अगर आप चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं अगर आपकी अंदर से इच्छा होगी। पेशेंस के साथ अगर आप किचन में जाएंगे, काम करेंगे, तो आपकी जो डिश है वो भी बेहतरीन ही बनेगी, अच्छी बनेगी। बस जरूरत है कि थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए और अच्छा बनाइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में जरूर कुछ बेहतरीन बन के सामने आएगा, और उसके बाद सब कहेंगे वाह ये हुई ना बात, ये जो भी बनाया और जिसने भी बनाया बहुत ही कमाल बनाया। उसके बाद बताइएगा जी हाँ मैंने ही बनाया। मैं आपको बता चुकी हूँ चॉकलेट ब्राउनी के बारे में और गुलाब जामुन के बारे में, और ये दोनों ही चीज ज्वार के आटे से बनी है। अब बात कर रही हूँ मैं आपसे नारियल और ये चॉकलेट लड्डू के बारे में। तो नारियल चॉकलेट लड्डू बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो सामग्री है यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है, सबसे पहले तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक भी अगर इंग्रेडिएंट छूट जाता है तो वो मजा नहीं आ पाता है जो कि आना चाहिए, और वो टेस्ट भी नहीं आ पाता है। तो उस टेस्ट को लाने के लिए आपको अच्छे से नोट डाउन करने होंगे, एक एक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है नोट डाउन करने होंगे। इंग्रेडिएंट्स है ज्वार के बिस्कुट 70 ग्राम,
आप जो बिस्किट लेंगे उसको अच्छे से क्या करना है, आपको कूट लेना है और साथ ही साथ नारियल का आपको चूरा लेना है 20 ग्राम। आप नारियल को जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस कर सकते हैं। कोको पाउडर लेना है 20 ग्राम और साथ ही साथ आपको कंडेंस मिल्क लेना है 60 ग्राम। दूध पाउडर लेना है आपको, दूध का वो 20 ग्राम आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अब देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको ले लेनी है। अब ये जब चीजें हैं ना आप इसे मार्केट से अवेलेबल आपको ज्वार के बिस्किट जो होंगे वो मिल जाएंगे, नारियल कटोरा यानी कि जो जो गोला होगा तो सूखा नारियल जो होता है वो आपके घर में मौजूद होगा, अगर नहीं है तो ये भी आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कोको पाउडर ये भी बड़ी आसानी से आजकल मिल जाता है। कंडेंस मिल्क की अगर मैं बात करूं तो आप ये घर में भी बना सकते हैं और साथ ही साथ इसे आप बाजार से खरीद के भी ला सकते हैं। और पाउडर्ड मिल्क की बात करूं तो पाउडर मिल्क तो आप ले सकते हैं, ये भी मार्केट में काफी आसानी से अवेलेबल होता है। अब ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद ये सारी चीजों से ही इनसे मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर ज्वार नारियल के और चॉकलेट के लड्डू। जी हाँ, ज्वार के ये हम लगता है ना कि हमें कि हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें मीठी कैसे हो सकती है। जी हाँ, आज तो मीठे में कुछ लेके आ गई हूँ लेकिन आपके लिए मैं देखा तो साक्षी वैसे शाबाशियां बीच बीच में देते रहिएगा, फीडबैक देते रहिए। हमारा नंबर बड़ा आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है तो फटाफट से फोन उठाइए, मैसेज कीजिए और भेज दीजिए 8010781078 पर। साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बताती हूँ विधि क्या है। सबसे पहले ज्वार के जो बिस्किट है उनका आप मिक्सी में आप एक चूरा बना लीजिए और अच्छे से आप जब ग्राइंड कर लेंगे तब इसमें आपको क्या करना है, नारियल का जो कद्दूकस किया हुआ है या फिर जो चूरा आपने किया हुआ है वो और कोको पाउडर, कंडेंस मिल्क और दूध पाउडर जो मिल्क पाउडर है हमारा उसको डालकर अच्छी तरह से आपको मिलाना है एक बोल में। अच्छी तरह से आप जब मिला लेंगे आप देखिए कि क्या करना है, इसे धीमी गैस पर आपको इस मिश्रण को रख कर अच्छे से चलाना है। अब जैसे ही ये मिक्सचर जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, अब इसमें क्या करना है आपको लड्डू बनाने हैं नारियल के, जो जो चूरे से आपको उसे लपेट देना है। आप जैसे ही लड्डू बना लेंगे जो नारियल का चूरा होगा अलग से यानी कि जो ग्रेट किया हुआ है हमारा नारियल है गोला जो है यानी कि सूखा नारियल जो है उसको आपको ऊपर से अच्छे से उसे कवर कर लेना है। तो इससे जब आप खाएंगे ना तो नारियल का टेस्ट भी आएगा और अंदर से जो ज्वार का जो बिस्कुट के टेस्ट है, बिस्किट के बहुत कमाल के बिस्किट जो हमने बनाए हैं, जो लड्डू बनाया है ये बड़ा कमाल का होगा। और उसके बाद देखिए ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क डाला हुआ है, इसमें मिल्क पाउडर डाला हुआ है और जब पूरा बैटर अच्छे से तैयार हुआ था, हमने जब लड्डू बनाए हैं मिक्स पहले तो हमने किया है उसके बाद धीमी गैस पर रख के हमने अच्छे से चला के इसका एक अच्छा सॉलिड बना लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, पूरे लड्डू गोल गोल बना के और उसके बाद उसे रोल कर देना है हमारे जो हमारा जो चूरा है नारियल का उस पर। बन गए आपके लड्डू और इसको आप काफी दिनों तक जो स्टोर है वो भी कर सकते हैं, सबको खिला सकते हैं और ये आप बना के रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपीज मैं लेके आई आपके लिए। ये जो रेसिपी है ये ज्वार से बनी है, ज्वार से बनी मैं चॉकलेट ब्राउनी, गुलाब जामुन और नारियल और चॉकलेट के लड्डू आपके लिए लेके आई हूँ बड़े कमाल के। ये जो रेसिपी है आप देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और जो मीठे में भी हो, टेस्ट में हेल्थ में दोनों में कमाल है ये। और इसीलिए तो कहते हैं ना ये साक्षी जो है ये कमाल की चीजें लेके आती है आपके लिए। तो अब आपको ये डिशेस कैसी लगी ये जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा, अगर आपने इसे बनाया है तो जरूर बताइएगा। हमारा नंबर बड़ा ही आसान है 8010781078, ये बड़ा आसान सा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए ऐसी ही कमाल की रेसिपीज में लेके आती रहूंगी। मिलेट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं ना तो मिलेट्स को हम आगे बढ़ाएं क्योंकि किसान जो है वो भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं जो मिलेट्स हैं ये कहीं ना कहीं हम इन्हें भूलते आ रहे हैं। तो रागी हो गया, कोदो हो गया या फिर आप देखिए ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, हम इन सब चीजों को तो भूल रहे हैं। इनसे बनी जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा टेस्टी होती हैं और ये जो अनाज है ये इतने ज्यादा कमाल के होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं और हम क्या करते हैं, हम इन्हें भूलते जा रहे हैं, हम इनका सेवन ही नहीं करते हैं। हमें क्या पसंद है, जंक फूड जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आज से अभी से आपको क्या करना है, अब भाई देखिए आपको बस ये जो रेसिपीज है ना इनको ट्राई करना है और अपनी आहार में ये मिलेट्स को आपको शामिल करना है।
और इसी के साथ अब वक्त हो चला है मेरे आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते एक और नए मिलेट के साथ आपको मैं बताऊंगी डिशेस, लेकिन तब तक मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: Gagan Nalang, and you're listening to Radio Manorachana 107.8. Feel good, feel light.
1: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम तक किचन एक्सप्रेस. और इस किचन एक्सप्रेस में आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की जो रेसिपीज होती हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, वो लेके आ जाती हूँ मैं. ना सिर्फ रेस्टोरेंट, बल्कि देखिए कभी कभी होता है कि हम कहीं खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम इसे बना पाएंगे, ये सिर्फ बाहर ही मिल सकता है, या फिर स्ट्रीट स्टाइल है तो सिर्फ स्ट्रीट्स पे ही ऐसे मिल सकता है. लेकिन जो लोग इसे बनाना जानते हैं सिर्फ उन्हीं को ये सारी बातें पता है, उन्हीं को पता है कि किस तरह से इसे बना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बना सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए जो चीज़ आप खाते हैं, देखिए वो जिसने बनाई है वो भी तो इंसान ही है, वो भी बना ही रहे हैं, उनके पास भी बस एक टेक्निक है. हम उस टेक्निक को जान लेंगे, हम उनके इंग्रेडिएंट्स को जान लेंगे तो हम भी उसी तरह से बना सकते हैं. तो देखिए एनीवन कैन कुक. और ये बात जो है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए कभी भी ना, बस आपका अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं बना सकते तो कभी भी ऐसा मत सोचिए. हमेशा बस थोड़ा सा पेशेंस, प्यार रखिए और खाना ना ज़रूर बन जाएगा. तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं. और आज ना एक स्पेशल फरमाइश मेरे पास आई है, और बहुत दिनों से एक मैसेज मेरे पास आ रहा था, जो आ रहा था ये शुरमुशी घोष की तरफ से ये मैसेज है, और वो चाहती हैं कि मैं आज बंगाली थाली बनाऊं और बताऊं आपको कैसे बनती है.

है बंगाली थाली। अब देखिए ये बंगाली थाली बड़ी फेमस है और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं, तो सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूँगी चना दाल, कलर्ड राइस विद किशमिश, और उच्छे भाजा यानी कि करेले भाजा यानी कि करेले को फ्राई किया हुआ, बैगन भाजा यानी कि बैगन को फ्राई किया हुआ, आलू भाजा यानी कि आलू को एक तरीके से बनाया जाता है जिसे आलू भाजा कहते हैं, मिक्स वेज जिसे घेट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ खीर, रसगुल्ला या इसमें आती है मिष्टी दोई। तो देखिए ये सारी जो रेसिपी आप सुन रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अरे साक्षी को तो ये सारा पता है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं इसलिए आराम से आपको बता सकती हूँ क्योंकि देखिए हर चीज़ जो होती है ना, जो हमें पसंद होती है हम बहुत अच्छे से बताते हैं। और देखिए आज फरमाइश आई और आज कहीं ना ये सारी डिशेस मेरी फेवरेट डिशेस हैं क्योंकि मैं भी बंगाली हूँ और इसीलिए शायद से आपको वो जो टोन मिल रहा होगा वो थोड़ा सा मिल रहा होगा। तो बिल्कुल, तो देखिए हर प्रांत का खाना बहुत टेस्टी होता है, हर जगह का। आप किसी भी स्टेट का खाना ले लीजिए, चाहे हम गुजराती खाने की बात करें, चाहे हम हरियाणवी खाने की बात करें, चाहे हम दिल्ली खाने की बात करें अगर साउथ इंडियन फूड की, या बात करें कश्मीर की, तो हर जगह का खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो उन्हीं जगहों में से एक जगह है कोलकाता। तो देखिए कोलकाता से आई है ये बंगाली रेसिपी जो है सारी की सारी, मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। तो थाली में तो ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं ही। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो चना दाल है ये कैसे बनती है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसमें प्याज नहीं डलती है ना ही लहसुन पड़ता है, तो आप इसे कभी भी जब आपका मन हो तब बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, चना दाल जो होती है वो ले लेनी है और उसको आप 2 से 3 घंटों के लिए आप पहले भिगो दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए जब भिगो देंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है कुकर, कुकर में आपको ये दाल डालनी है और पानी डालना है, उसमें आपको हल्दी डालनी है और तेज पत्ते डालने हैं, 2 तेज पत्ते डाल देंगे और आपको डालने नमक, सीटी लगा देंगे। और साथ ही उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, यानी कि हमने सिर्फ नमक डाला है क्योंकि दाल हमारी जो है वो गल जाए, इसीलिए हमने ये नमक डाला है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, हमें बहुत ही आसानी थी कि घर में आपको आराम से मिल जाएंगे। अब आपकी जो दाल है वो गल गई होगी, तो आपको क्या करना है, दाल गलने के बाद एक कढ़ाई लेनी है, तो कढ़ाई से पहले आपको क्या करना है, कटोरी में आपको 1/2 चम्मच आपको हल्दी लेनी है, 1/2 टीस्पून आपको मिर्च लेनी है, या थोड़ी सी आप कम भी ले सकते हैं, मैं कहूँगी कम लीजिएगा क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च का भी उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, हम हरी मिर्च ले लेंगे और हम लाल वाली थोड़ी सी मिर्च लेंगे कलर के लिए, और साथ ही हम इसमें लेंगे जो आपका धनिया होता है वो लेंगे, जीरा पाउडर लेना है आपको, और ये सारी चीज़ें लेनी है, और साथ ही लेनी है आपको अदरक। अदरक को आप पील कर लेंगे, उसके बाद छील के अदरक को उसको कूट लेंगे और बहुत ही बारीक पीस लेंगे, और ये सारे मसाले अदरक में मिला के आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, जो कढ़ाई आपने ली है उसमें थोड़ा सा तेल डालना है, यानी कि 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें आपको क्या करना है, नारियल जो होता है ना वो लेना है, और नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्राई करने के बाद देखिए जले ना वो, ध्यान रखिएगा, फ्राई करके आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सारे मसाले यानी कि जो तेल आपको बच गया, ये सारे मसाले जो हमने पानी को मिक्स करके से रखा है, एक बैटर सा बना के रखा है, तो ये जो पेस्ट है इसमें डालना है आपको तेल में, और उसके बाद अच्छे से आपको फ्राई करना है जब तक वो तेल उसका ऑयल जो है वो ऊज आउट करके होके बाहर ना आ जाए, तब तक आपको उसे चलाते रहना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो दाल है इसमें डाल देनी है, यानी कि दाल का तड़का जैसे हो गया ये ऐसे लगाना है, तो ये डाल देनी है, और साथ ही जब दाल अच्छे से आप मिल जाए तब उसमें ऊपर से आपको ये नारियल जो है डाल देना है। पानी देख लीजिएगा, पानी आपके हिसाब से होना चाहिए, और साथ ही सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है घी। जी हाँ, घी लेना है, और घी ऊपर से आपको 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जितना भी आपको लगे वो डाल देना है। याद रहे थोड़ा सा ना, अगर काओ वाला जो घी होता है ना, यानी कि गाय का घी जो होता है, जो गाय से या गाय के दूध से जो बना होता है, उस घी को लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, खुशबू भी उसकी बेहतरीन होती है। तो ये तो बन गई आपकी चना दाल, और साथ ही इसके साथ होते हैं चावल, और जिसके बारे में आपको बताऊंगी, बात करूंगी राइस की, कलर्ड राइस हम बनाएंगे। तो कलर्ड राइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप चावल जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ना, बना दीजिएगा, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम चावल में जीरा डालते हैं, जीरा आपको डालना है, साथ ही आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसमें जो किशमिश होगी वो डाल दीजिए, और उसके जैसे ही आप डालेंगे हल्का सा स्टर करके आपको जो चावल है वो डाल देने हैं और सीटी लगा देनी है।
जैसे जितने भी सीटी आप लगाते हैं, यानी कि 1, 2 या 3 जितने भी जिस हिसाब से आपके चावल हैं, वो जब पक जाएंगे, जब आपकी जो कुकर की सारी गैस निकल जाएगी, अब आपको क्या करना है, यहाँ लेना है हल्का सा कलर। मार्केट में आपको फूड कलर्स मिल जाएंगे, वो आपको लेना है, उसमें आपको दूध लेना है,

दूध में आपको थोड़ी सी चीनी डालनी है, मिक्स करना है और उसमें आपको थोड़ा सा कलर डालना है। कलर तीन तरीके के अलग अलग ले लीजिएगा, एक येलो कलर, एक ऑरेंज कलर और आप चाहें तो रास्पबेरी कलर भी ले सकते हैं। तीनों कलर को लेना है या चाहें तो आप ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, चार कलर हो जाएंगे। तो कलरफुल राइस बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और जो बच्चों को पसंद आ गए ना एक बार तो बच्चे तो खाएंगे और उसके बाद आपकी ना टेंशन खत्म हो जाएगी कि बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं, जो कि रहती है ना हर पेरेंट को। तो यहाँ पर आप ले लेंगे, सारे के सारे कलर्स लेने हैं, मिक्स करना है और एक साथ सारे कोई कलर नहीं डालने हैं आपको, एक एक करके आपको जो है ये जो जैसे हम जो है जैसे अब कभी भी आप देखिएगा क्रीम डालते हैं जैसे ऊपर से कुछ, जैसे हम होता है ना कि हम डिज़ाइन के लिए या फिर हम प्लेटिंग के लिए डालते हैं, तो वैसे ही ड्रॉप करके आपको ऊपर से उसमें डालना है चावलों में। और पहले आपको येलो कलर डाल देना है, फिर आपको ग्रीन कलर की एक राउंड आपको बना देनी है। तो ऐसे करते करते आपको ये सारी चीज़ें डालनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे आप सारे जो कलर्स डाल देंगे बंद करके आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आप दोबारा 15-20 मिनट बाद चावलों को देखेंगे तो उनका कलर रंग बिरंगा यानी ये कलरफुल हो चुका होगा और किशमिश का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो आता है, बहुत ही कमाल का लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब ये तो बन गई हमारी दाल और चावल, अब हम बनाएंगे यहाँ पर देखिए उच्छे भाजा यानी कि करेले। तो करेले को बनाने के लिए आपको क्या करना है, करेले ले लीजिए। वैसे आमतौर पर हम करेलों को छील लेते हैं लेकिन यहाँ हम करेलों को नहीं छीलेंगे। आपको क्या करना है, करेले को बस आपको गोल रिंग्स के उसमें काटना है, अंदर के बीज आप निकाल दीजिएगा हाथ से और उसके बाद बस गोल गोल कटिंग छोटे छोटे आपको स्लाइस करते हुए आना है करेले की। स्लाइस कर लेंगे, इसको आप नमक लगा के रख दीजिए। आपको क्या करना है, नमक लगा के ओवरनाइट आप इसे रख दीजिए, उसके बाद अगले दिन स्लाइस आप पतली कीजिएगा ताकि जो कड़वापन हो उसमें निकल जाए। कैसे निकलेगा मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है आपको, जब आप ओवरनाइट स्लाइस करके आप उसे रख देंगे करेलों को, आपको उसके बाद अगले दिन उसमें से अच्छे से पानी जो है वो निचोड़ लेना है। तो जैसे ही पानी निचोड़ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, लेनी है एक कढ़ाई, उसमें डालना है थोड़ा सा तेल और थोड़ा थोड़ा करके ये जो करेले आप उसमें डालते हैं। जैसे ही एक आपका लॉट बन जाएगा आपको फ्राई करते रहना है और जैसे ही हल्के से क्रिस्पी हो जाए तो इसे आप बाहर निकालेंगे। याद रहे कि आपको जो है ये जलने नहीं देने हैं, क्योंकि अगर एक बार ये जल गए तो ये बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको हल्का सा फ्राई करते हुए इसे रखना है और जैसे ही हल्के से क्रिस्पी हो जाए इसे आप बाहर निकाल दीजिए, प्लेट में निकाल लीजिए, टिश्यू पेपर लगाना मत भूलिएगा ताकि एक्सेस जो ऑयल है जितना भी एक्स्ट्रा वो उसमें आ जाए। तो ये हमारी बन गई भाई करेले की भी सब्जी, वहाँ पर बन गई है यानी कि फ्राइड करेला बन चुका है। तो दाल चावल करेले हो चुके हैं। अब बात करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने अब यहाँ पर करेले लिए हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं परवल भी। जी हाँ, परवल जो होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, साथ ही साथ परवल जो है ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसे बंगाली में पोटल भाजा कहते हैं। तो पोटल भाजा यानी कि जो है परवल की जो सब्जी है यानी कि जो फ्राइड परवल होगा, इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, परवल लेने हैं और जो होता है उसका सिलेंड्रिकल शेप होता है उसको आपको बीच में से कट कर देना है। अब क्या करना है आपको, अगर उसके बीज हैं तो ज़्यादा बड़े बीज हैं या फिर आपको लग रहा है कि बहुत पका हुआ है तो उसे निकाल लीजिए बीजों को। उसके बाद उसमें नमक आपको लगाना है थोड़ा सा चुटकी सा और उसके बाद आपको अपनी फिंगर की मदद से आप ऐसे करके लगा लीजिएगा और उसके बाद आपको हल्दी भी लगानी है बहुत कम। उसके बाद जिस तरह से आपने करेलों को फ्राई किया था उसी तरह परवल को भी फ्राई कर लीजिएगा, फ्राई करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये जो है करेले जो है जैसे करेले हमारे बन गए वैसी परवल भी बन जाएंगे। उसी तरह से आपको लेना है बैगन और जिसे हम कहते हैं बंगाली में बैगन भाजा। तो बैगन भाजा यानी कि फ्राइड बैगन बनाने के लिए भी आप यही करेंगे। बैगन लेना है, उस पर हल्दी और नमक लगाना है और उसके बाद स्लाइस कर लेंगे बैगन को और स्लाइस करने के बाद उसे फ्राई करना है। आपके जो बैगन भाजा यानी कि बैगन फ्राई है ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अभी तक हम दाल चावल करेले की जो फ्राइड करेला हो गया और फ्राइड परवल हो गए, फ्राइड बैंगन हो गए, ये बना चुके हैं। देखिए बंगाली थाली में दाल चावल कलर्ड राइस जो इसमें हमने बनाए और करेला यानी कि फ्राइड करेला, फ्राइड बैंगन, फ्राइड हमने परवल लिए हैं। अब बात करते हैं आलू के फ्राइड जो है बॉक्सेस टाइप में ये बनते हैं, आलू की भाजी जैसे कहते हैं या फिर कहते हैं इसे आलू भाजा बंगाली में। तो इसे बनाने की विधि भी बहुत ही आसान है। आपको क्या करने हैं, आलू लेने हैं, उसे अच्छे से आपको पील कर लेना है। पील करने के बाद अब इसे डाइज्ड फॉर्म में आप काट लीजिएगा। जब आप डाइस करेंगे याद रखिएगा हर एक जो डाइस होगा यानी कि हर एक जो आलू आप कट कर रहे हैं वो शेप
सेम शेप का होना चाहिए। अच्छे से आप जब चॉप करेंगे, चॉप करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर आलू एक साइज का आप काटें। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको अच्छे से धो लेना है ताकि जो आलू का सारा स्टार्च है वो निकल जाए और आलू आपस में चिपके ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एक टोकरी में रख देंगे उसके बाद सारा पानी जब उसमें से निकल जाएगा, क्या करना है आपको, लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में रखना है आपको तेल। तेल डालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें डालनी है आपको थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी क्या मतलब, आप ले लीजिएगा आधा चम्मच ले लीजिएगा, उतना काफ़ी रहेगा। और आलू की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 आलू इनफ रहते हैं, तो आप वो बना लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप हल्दी डालेंगे उसमें आपको थोड़ा सा जीरा और हल्की सी मेथी डाल देनी है, मेथी दाना जिसे कहते हैं। ये डालने के बाद आपको तुरंत इसमें आलू जो आपने काट के रखे हैं वो आपको डाल देने हैं, और उसके बाद तेज आँच पे इसे अच्छे से आपको फ्राई करना है। फिर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए उसे, और हर 2-3 मिनट बाद इसे आप चलाते रहिए, और 2-3 मिनट का इसका गैप दीजिएगा, और हर तरफ से इसे अच्छे से पकाइएगा। और ये जो है, जब ये आपको लगे कि अच्छे से ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगी है, तब इसमें आपको क्या करने हैं, डालने हैं मसाले, यानी कि मिर्च पाउडर आपको डालना है, नमक, और साथ ही आपको डालना है इसमें हरा धनिया, यानी कि आप जो पिसा हुआ धनिया होता है, सूखा धनिया होता है, वो आप डाल दीजिएगा और अच्छे से आप चलाइएगा। थोड़ी देर में देखेंगे आप इसका कलर चेंज होने लगा है, हल्की सी रेड होने लगी है, क्रिस्पी होने लगी है, तब आपको क्या करना है, इसमें से जितना अगर एक्सेस ऑयल अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसे निकाल लीजिएगा, और बाकी का आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑयल बहुत ही कम लीजिएगा, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि ये बिना ऑयल के बहुत ही कम ऑयल में बनती है, ज़्यादा ऑयल की इसे ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल में बन जाती है। फिर इसे आप निकाल लीजिए और आपकी ये जो आलू की ये जो भाजी है, यानी कि बंगाली आलू भाजा, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे कौन सी रेसिपी है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, देखिए ये सारी तो हो गई, अब एक जो रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। बंगाली खाने का ना एक तरीका होता है इसे खाने का, जब हम थाली खाते हैं तो शुरुआत करते हैं कड़वे से, यानी कि करेले से। करेले से जब शुरुआत होती है तो एंडिंग होती है मिठास पर, यानी कि मीठे पर। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ मीठे में कुछ रेसिपी, लेकिन उससे पहले ना आपको बंगाली जो एक बहुत ही मेन रेसिपी होती है ना, वो आपको बताने वाली हूँ। किसकी है ये मेन रेसिपी, यानी कि क्या बंगाली बहुत ज्यादा पसंद होता है, जो कि हम भी कहते हैं कि एक ही चीज होती है, हमें याद अगर हो, अगर नॉन वेज में हम देखा जाए। अब बात कर रही हूं मैं बंगाली बहुत ही मेन रेसिपी की, और वो है फिश, यानी कि मछली। देखिए मछली एक बंगाली डिश है, और इसे आप सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश विदेश में सब जगह लोग इसे पसंद करते हैं। मछली पानी में रहती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा आयरन होता है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, कमज़ोरी आती है, तो डॉक्टर चिकन की बजाय आपको मछली खाने को कहते हैं। इसीलिए आज जो है मैं आपके लिए ये जो है तीखा चटपटा टेस्टी रेसिपी जो है आपके लिए लेके आ गई हूँ, जिसका नाम है फिश कड़ी, यानी कि मछली कड़ी। तो मछली बनाने के लिए, यानी कि फिश बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगी और बहुत ही कम समय में यह तैयार हो जाती है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ मैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको नोट डाउन करने होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए रोहू फिश 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, तेल चाहिए आपको 150 ग्राम। अब ये ले लिया आपने, अब क्या करना है आपको, जो और जो कड़ी बनाने के इसके इंग्रेडिएंट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जीरा चाहिए आपको 1/2 चम्मच, तेज पत्ता 2 चम्मच, कटे हुए प्याज 1 चम्मच, टमाटर 2 टमाटर काफ़ी रहेंगे, बहुत महंगे हो गए और साथ ही आपको चाहिए 2 आपको कटी हुई आपको हरी मिर्च चाहिए होगी, कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच, यानी कि धनिया पाउडर, और साथ ही जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च चाहिए आपको 1 चम्मच, धनिया पत्ता 1/2 कप, नमक चाहिए आपको स्वाद अनुसार। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये फिश कड़ी बनाने के लिए हमने सारी जो चीज़ें हैं नोट डाउन तो कर ली हैं, लेकिन अब इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में इसलिए बताऊंगी क्योंकि इसकी विधि बताने वाली हूँ मैं। जी हाँ, फिश कड़ी के बारे में। फिश कड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिश को अच्छे से आपको धो लेना है, और आपको क्या करना है, आप एक कटोरे आप ले लीजिए, एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आपको अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक आपको डालना है। और जब आप ये डाल देंगे तब आपको फिर अच्छे से फिश को और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेना है, और 10 मिनट के लिए आपको ढककर रख देना है मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट होने के बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट बाद आपको गैस पे तेल गरम करना है और मध्यम आंच पर इसे 3 मिनट के लिए पकाना है।
फिर इसको आप पलट दें और दूसरी तरफ से भी 3 मिनट तक के लिए आप इसे अच्छे से पकाएं। दोनों तरफ से पक जाने के बाद इसे आप निकाल लीजिए और वैसे ही ये जो सारी की सारी फिशेज हैं जो हमने रखी हैं वो आप इसे बना लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फिर उसी तेल में आपको जीरा और तेल जो पत्ता होता है तेज पत्ता आपको डालना है, फिर उसमें आपको कटे हुए प्याज डालने हैं और उसको थोड़ी देर तक आपको भूनना है। भूनने के बाद आपको बाकी का जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देना है और 2 मिनट तक के लिए आपको उसे भूनना है। फिर इसमें आपको क्या करना है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर उसे अच्छे से आपको भूनना है जब तक कि जो ऑयल है वो ऊज आउट होकर बाहर ना आ जाए। फिर यहाँ पे आप टमाटर पीस लीजिए और उसे आप 4-5 मिनट तक के लिए भूनें। जब आप टमाटर को डाल देंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि ऑयल आने लगा है तब आप टमाटर डाल देंगे उसको अच्छे से जो है ग्राइंड करके। अब उसमें फिर आपको उसमें क्या करना है, अपने हिसाब से आपको पानी डालना है जैसे कि आपको चाहिए हो, और ज़्यादा आपको अगर ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम पानी डालिए, टोटली डिपेंड अपॉन यू। और साथ ही फिर कटी हुई आपको मिर्च और डालनी है और उसके बाद ग्रेवी को अच्छे से उबालने के लिए छोड़ देना है। अब क्या करना है, उबाल आने के बाद इसमें आपको फ्राई की हुई जो फिश होती है वो डालनी है और उसको आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक के लिए आपको अच्छे से पकाना है। फिर उसके बाद जो हमारी फिश है उसमें आपको जब आप देखेंगे कि उबाल आने लगा है तो गैस को बंद करना है। फिर उसमें गार्निशिंग के लिए आपको ऊपर से धनिया डालना है और हमारी ये जो फिश करी है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, जल्दी बन गई। तो इसको बनाना भी बहुत आसानी है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। जब आप बाहर से खाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे, ज़रूर आप बना सकेंगे, बहुत ही आसान होता है ये सारी डिशेज बनाना, आसान बस आपको जो है वो प्यार जो है बनाना होगा। जो प्यार से आप बनाएंगे तो ज़रूर बन जाएगा। बंगाली थाली के बारे में बात कर रही हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए अब डिशेस की बात आ रही है तो सारी डिशेस हो चुकी है हमारी, बात कर रही हूँ अब कुछ मीठे की। तो देखिए मीठे में मिष्टी दो ही हम कैसे भूल सकते हैं। देखिए दही बंगाली जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रेसिपी है, दोई की रेसिपी, मिष्टी दोई की। इसे जो है बंगाल में ही बल्कि मतलब हर जगह बहुत पसंद किया जाता है। इस बंगाली भाषा में इसे दोई भी कहते हैं और ये हमारे अधूरे खाने को पूरा कर देती है। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स है, बस नोट डाउन करते हैं और इसे आप आसानी से बना सकते हैं घर पे। आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल फैट दूध लेना है आपको, आपको जितना भी आपको लगे, एक पैकेट हो सके तो एक पैकेट ले लीजिए, दो लगे तो दो पैकेट ले लीजिए। चीनी इसमें डालनी है आपको 1 चम्मच और साथ ही बूरा चीनी यानी कि ब्राउन शुगर डालनी है आपको 2 चम्मच। मिष्टी दही यानी कि 2 चम्मच आपको दही लेनी है और साथ ही ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको कटे हुए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दूध को उबलने के लिए आप डाल दीजिए और उसमें जब उबाल आ जाए तब उसके बाद उसमें आप चीनी को डाल दीजिए और उसमें चलाते हुए 5 मिनट तक के लिए उसे पकने दीजिए। फिर दूसरी तरफ आपको एक पैन में किसी बर्तन में जो है वो ब्राउन शुगर जो होती है वो लेनी है और उसके बाद उसमें आपको 1 चम्मच पानी डालकर उसे आपको मेल्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको उसको जो फिर दूध में आपको मिला देना है और उसके बाद दूध को करीब 4 से 5 मिनट तक के लिए आपको अच्छे से पकाना है। फिर दूध जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसे आप मिट्टी के बर्तन में, आपको किसी एक बर्तन ले लीजिएगा मिट्टी का, उसमें डाल देना है और साथ ही साथ उसमें आपको थोड़ा सा दही मिला देना है, 3 से 4 चम्मच आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहूँगी जितना बीछन जिसे यानी कि छोटा थोड़ा सा कहते हैं, वो आपको दही उसमें डाल देना है और 4 से 5 घंटों के लिए उसे आप फ्रिज में आपको रख देना है। उसके बाद आपको दही निकालनी है फ्रिज से बाहर, उसके ऊपर डालना है आपको पिस्ता और देखिए जैसे आप पिस्ता डाल देंगे हमारी दोई यानी कि मिष्टी दोई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। स्वाद देखिए इसका मीठा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रहेगी, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और साथ ही साथ मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आज की हमारी जो बंगाली रेसिपीज थी आपको कैसी लगी। तो बताने के लिए क्या करना है, 8010781078 ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी और इस किचन एक्सपर्ट
एक्सप्रेस में आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी। बंगाली रेसिपीज जो है वो मैं लेके आई, बंगाली थाली जो थी वो मैं लेके आई, और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि दाल, चावल, फ्राइड करेला, फ्राइड आलू, फ्राइड बैंगन, ये सारी चीज़ें आपको बताई, और साथ ही बताई आपको फिश करी और बताई आपको मिष्टी दोई। आई होप आपको मेरा ये जो प्रोग्राम है ये अच्छा लगा होगा। बताने के लिए क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगा तो बता दीजिए मुझे मैसेज करके फटाफट से 8010781078, ये देखिए हमारा नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके मैसेज के थ्रू हमें बता दीजिएगा कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा। और साथ ही अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई कमाल की जो डिश हो, या तो आपको याद हो आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके घर में किसी की डिश हो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। नंबर वही बहुत ही आसान सा 8010781078। इसी के साथ अब वक्त हो गया यहाँ से इजाज़त लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे जो गाने वो लेके आ गई हूँ मैं, और साथ ही साथ देखिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले संडे को और भी बहुत ही कमाल की रेसिपीज के साथ, मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाऊंगी आपके पास। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें आपको अलग अलग जगहों पर कहीं घूमने लेकर के चलती हूँ। जी हाँ, अब देखिए आज इस प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह की जहाँ पर आप एक बार जाएं तो बार बार आपका मन करेगा जाने।

अलग अलग। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अलग अलग खाने की डिशेस के बारे में, रेसिपीज़ के बारे में, कौन से फेस्टिवल है या क्या कुछ खास बात है इस जगह में, ये सारी जानकारी आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ। मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है लोनावला। आज लोनावला की बात करूँगी और वैसे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी और जानकारी दूँ तो देखिए हर शनिवार को ना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इस सफ़र नामक ये जो प्रोग्राम है हमारा, इस पे हम चलते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम में ना घूमने के लिए। और आज लोनावला आपको घूमने लेकर के आई हूँ महाराष्ट्र के एक ऐसे हिल स्टेशन में जहाँ बारिश की ड्रॉप्स की एक अलग ही कहानी है, हर एक ड्रॉप की अलग कहानी है, जहाँ हर मोड़ पर आपको नेचर का एक नया रंग देखने को मिलता है और जहाँ चिक्की फॉग और फोज तीनों का एक परफेक्ट फ्यूजन आपको मिलता है। लोनावला जहाँ मौसम में हर हिल एक पेंटिंग सी लगती है, हर पथ पर जो है एक मिस्ट सा छाया हुआ है और हर एक जगह ना मतलब वो बारिश की सुगंध वो डबल हो जाती है जब आप वहाँ से गुजर जाते हो। खुशबू जो है और ज़्यादा वो भीनी भीनी खुशबू आपको मदहोश करती रहती है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी चाय का कप आप अपने हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। हम बढ़ाते हैं आगे आगे लेके चलते हैं और बड़ी प्यारी सी जगह है लोनावला, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मुंबई और पुणे के बीच ऑलमोस्ट हाफ वे में ये लोकेटेड है। मुंबई से अप्रॉक्स कुछ 85 किलोमीटर्स पर ये जगह है और अगर हम पुणे से बात करें तो 65 किलोमीटर्स, तो मतलब एक परफेक्ट वीकेंड एस्केप है अगर आप चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं जो कि खूबसूरत भी हो और आप चाहते हैं कि बिल्कुल वहाँ सुकून भी आपको मिले, तो लोनावला बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादातर लोग देखिए क्या करते हैं ना, बस देहरादून मसूरी यहाँ भाई धनौल्टी हो गया, स्पीति हो गया, यहाँ जाते हैं, लेकिन ये सारी जगह तो हम अब एक्सप्लोर कर चुके हैं ना, यहाँ सारी जगह हम घूम चुके हैं ना, तो आप कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। और अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें हटके चीज़ें पसंद है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ धनौल्टी कसौल जाना पसंद है बल्कि और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आ जाइए मेरे साथ इस सफ़र पर, यानी कि सफ़रनामा के सफ़र पर, क्योंकि मैं आज आपको लेकर के आई हूँ लोनावला। जी हाँ, आज इस जगह की कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ। देखिए ट्रैवल कैसे करें या एक्सप्रेस वे से ड्राइव करें या अलग अलग यहाँ पर जो लश ग्रीनरी घाट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, टनल्स आपको मिल जाएंगी क्लाउड्स के साथ साथ ना, ये ड्रीमी जर्नी बन जाती है जब आप लोनावला आते हैं। जी हाँ, देखिए सेंट्रल रेलवेज का लोकल ट्रेन रूट हो या जिसमें कजरत के बाद जब आप हिल स्टेशन पर जब आप देखेंगे, जब आपकी नज़र जाएगी, जब आप चढ़ाई करेंगे, तब एक मोड़ पर पोस्ट कार्ड जो है वो जैसे मतलब एक फीलिंग आती है, जैसे बन जाता है कि इतनी खूबसूरत जगह है कि हर एक सीन आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सीनरी वाला होता है ना जो वो पेंटिंग में बनाते हैं ना, तो लगता है कितना खूबसूरत है, बस वैसे ही आपको फील होगा। एक फ्रेश मिस्टी ब्रीज आपको जो है वो फील होगी, हर तरफ आपको ग्रीनरी महसूस होगी और हर एक पीसफुल साइलेंस में जो है वो आपको सिर्फ माउंटेन्स जो है वो आपको दिखाई देंगे और वो ही पीस जो है ना वो आपको सिर्फ वही मिल सकता है, वो माउंटेन से ही आपको पीस मिल सकता है। ये शहर आपका स्ट्रेस बिल्कुल डिसॉल्व कर देगा, ये शहर आपको एक सुकून देगा, ये शहर आपको एक नई ऊर्जा देगा, ये शहर आपको मस्ती करने का मौका देगा। चलिए इसी के साथ अभी एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूँ, जिसके बाद आपको बताऊँगी कि लोनावला आप जा रहे हैं अगर या प्लान कर रहे हैं या फिर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्या जगहें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर कोई धनौल्टी मसूरी कभी मनाली कसौल चाहता रहता है, पर ये तो जगहें ऐसी है ना कि जो हम एक्सप्लोर वैसे कर चुके हैं, वही इन जगहों के बारे में भी आपको स्पेशल चीज़ें कभी और ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज ना आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ या बता रही हूँ जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लश ग्रीनरी तो मिलेगी ही मिलेगी,
सुकून आपको मिलेगा, माउंटेन्स आपको मिलेंगे और साथ ही वो मज़ा, वो मस्ती, हर कुछ आपको मिलेगा। और सब कुछ जब मिल जाता है ना, तो मतलब मुझे लगता है कि और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ऑल धनौल्टी मसूरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको जो है और आगे बढ़ना चाहिए और आगे आगे चीज़ें जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब एक वीकेंड का अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो वीकेंड का बहुत ही परफेक्ट सा एस्केप है लोनावला। जी हाँ, लोनावला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, और ये एक हेरिटेज साइट भी है जहाँ हिस्ट्री और लेजेंड्स जीवित हैं। अब यहाँ लोहागढ़, अगर मैं फोर्ट की बात करूँ, तो लो जो है का इसका मतलब है आयरन, और ये फोर्ट जो है एक आयरन वॉल जैसा दिखाई देता है। साथ ही शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को स्ट्रैटेजिक बेस जिसका है वो बनाया था। रेनी सीजन में ट्रैकिंग करते वक्त क्लाउड्स आपके साथ चलते हैं, टॉप पर पहुंचते ही पूरा जो लेक है, पौना लेक है जो, और ये जो पौना लेक है यहाँ से आपको दिखाई देता है, वैली का नज़ारा जो है वो आपको दिखाई देता है। और जब आप ये चीज़ें देखेंगे ना, वो अनबीटेबल लगेगी, वो इतनी कमाल लगेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पे इतनी खूबसूरती कैसे, इतनी खूबसूरत ये जगह है ना, इतनी प्यारी ये जगह है। अब यहाँ मैं बात करूँ तो विसापुर फोर्ट भी है, ये लोहागढ़ के जस्ट ऑपोजिट में है, और थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा इसकी जो ट्रैकिंग है थोड़ी सी टफ है। वाटर स्ट्रीम्स ट्रेल के बीच में ये बहती हैं। एडवेंचरर जो अगर कोई भाई लवर है, कोई काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, तो उनके लिए तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है विसापुर फोर्ट की अगर मैं बात करूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर आती है कारला केव्स और 2nd century BC की बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर। इंडिया का लार्जेस्ट चैत्य यानी कि प्रेयर हॉल है ये, और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वुडन बीम्स अब भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग है शायद जैसे 2000 साल पहले थी, और 2000 साल बाद भी आज भी बिल्कुल स्टिल है, वैसे ही है। बारिश धूप कितने भी मौसम ख़राब हो जाए, आज भी जो वुडन बीम्स है सेम है। एक जायंट स्टोन लायन स्कल्पचर भी गेट के पास है, जो कि एक बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही खूबसूरत वाइब्स देता है उस जगह को। तो अगर आप भी नहीं गए हैं अभी तक, लोनावला एक्सप्लोर नहीं की हैं ये जगहें, तो ज़रूर जाइए। मैं इंसिस्ट करती हूँ आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे जाना तो बॉस बनता है। इसी के साथ साथ अगली जगह की मैं बात करूँ तो भाजा केव्स की अगर हम बात करें, तो कारला के पास लोकेटेड है एंशियंट मेडिटेशन स्पेस विद स्टूपा स्कल्पचर, और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल वाइब्स आपको मिलेगी, और साथ ही एक स्मॉल वाटरफॉल भी है यहाँ पर पास में ही, जो कि आपको इतना सुकून देगा। मतलब आपने जो भाई बचपन में हम सुनते थे ना स्टोरीज, दादा दादी नाना नानी से जो हम स्टोरी सुना करते थे, ऐसी ही कुछ ऐसी ही कहानी बताया करते थे ना कि एक जंगल था, वहाँ पर अलग अलग जो है छोटे छोटे वाटरफॉल थे, वहाँ से जो है एक नन्ही सी गुड़िया निकलती है या एक छोटा सा बच्चा जो है वो जा रहा होता है। मतलब आप जब उस सीन को इमेजिन करेंगे ना, तो आप ऐसा लगेगा आपको कि आप कहानियों में ना खो गए हैं, और आपको बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि कहानियाँ जो है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, वो इमेजिनरी, वो ड्रीमी प्लेस आपको मिल जाएगी, और आपका उस जगह से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो आप ज़रूर लोनावला को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और लोनावला की अलग अलग बातें मैं कर रही हूँ। अच्छा, मूवीज़ में तो हमने बड़ा नाम सुना है, बड़ा हमने ना ये चीज़ देखी है कि भाई खंडाला चलते हैं, लोनावला चलते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी जगहें हैं, बड़ी सीनरिक जगहें हैं जहाँ पर शूटिंग भी होती है, जहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है। लोनावला के मॉनसून सीन्स की बात करें, तो ये एक फैंटेसी फिल्म से भी बिल्कुल भाई कम नहीं है, इतनी खूबसूरत है, आपको लगेगा जैसे आप बॉलीवुड की एक दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर आप भी फ़ोटोज़ क्लिक कराएं ना, तो बिल्कुल एक एक्ट्रेस जैसा महसूस करेंगे, एक एक्टर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप किसी मूवी में पिक्चराइज हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बुशी यहाँ पर बुशी डैम है, जब ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है वो स्टेयर्स से बहता है, लोग बैठकर पानी के बीच में मस्ती करते हैं। क्राउडेड थोड़ा सा ये ज़रूर होता है, पर फन जो है वो गारंटीड है, क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है।
इसके साथ साथ यहाँ पर है एक टाइगर पॉइंट भी। अब ये टाइगर पॉइंट यहाँ क्या है, क्यों इसे टाइगर पॉइंट कहते हैं, चलिए बताऊँगी। वो भी महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्यारी सी सूदिंग सी जगह, जहाँ जाएंगे ना तो वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आज लोनावला के बारे में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, लोनावला के मॉनसून की अगर हम बात करें तो ये एक फैंटेसी फिल्म से कम नहीं लगता है। एक बड़ा ही कमाल के सीन यहाँ लगते हैं मॉनसून के दौरान। साथ ही यहाँ पर भूशी डैम है जो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा क्राउडेड सा रहता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी टाइगर पॉइंट के बारे में। क्लाउड्स लिटरली आपको टच करते हैं यहाँ, सनसेट और सनराइज दोनों ही बड़ा मैजिकल है। फॉग आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फॉग में ऐसा लगेगा जैसे आप चल रहे हैं, और चाय के साथ ही, पकौड़े के साथ ही, और ज़्यादा एक कमाल लगता है, एक ब्लिस लगता है। अब यहाँ टाइगर पॉइंट के साथ साथ ना पास ही में, टाइगर पॉइंट के पास ही है लायन पॉइंट, जी हाँ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ध्यान से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग यहाँ देखने को मिलती है और एक बड़ा थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको भाई जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता है थोड़ा सा जब बारिश होती है, या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की मैं बात करूँ, अगर आपको डर लगता है तो ना जाएं। लेकिन हाँ, अगर कुछ एडवेंचरस आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करना है, तो लायन पॉइंट ज़रूर जाइए। इसी के साथ क्यून फॉल्स की अगर मैं बात करूं, 200 मीटर्स टॉल यहाँ पर थ्री टायर्ड का एक फॉल है और एक फोटो स्पॉट के रूप में भी ये बड़ा फेमस है। ट्रैक करके आप यहाँ पर जाइए तो बहुत मज़ा आने वाला है। अवॉइड कीजिएगा कि आप जो है किसी की हेल्प के साथ, मतलब किसी टू व्हीलर या कैसे आप जाएं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश भी ना करें, क्योंकि अगर जब आप ट्रैवल करते हैं, आप जब खुद चल के जाएंगे ना, तो उस जगह की ना वैल्यू और ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाती है। उस जगह जब हम उस एम तक, उस गोल तक पहुँचते हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए ज़रूर कहूँगी कि आप पैदल जाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर है नैन घाट, यानी कि यहाँ पर जो है रिवर्स वाटरफॉल की मैं बात करूँ, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यहाँ पर विंड्स, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। नेचर का ये अजीब सा मैजिक आपको हैरान कर देगा, नेचर का अजीब सा मैजिक आपको वही इस वही सोच में डाल देगा कि कैसे, मतलब पानी जो है वो रिवर्स वाटरफॉल, इसीलिए फेमस है क्योंकि पानी जब नीचे गिरता है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वो पानी को ऊपर की ओर धकेल देती हैं, तो ये इसीलिए कहा जाता है इसे रिवर्स वाटरफॉल, जो कि बड़ा ही कमाल है। चलिए कुछ और भी आपको चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर कुछ खाने पीने की हम बात करेंगे, क्या आप भाई खा सकते हैं, क्या फेमस है, वो बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करें लोनावला की, और मैं आपको बता दूँ कि लोनावला जो है फूडीज़ के लिए हेवन है। और ये जो है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी हाँ, अब लोनावला चिक्की की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है काफ़ी कमाल है। आइकॉनिक ब्रांड्स वैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पीनट, सेसमे, पिस्ता, चॉकलेट्स, हर फ्लेवर का एक फ़ैन बेस है जो कि जो यहाँ की चिक्की है उसमें आपको मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी टेस्टी होती है, और अगर आपने नहीं खाई ना तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप फ़ैन हो जाएंगे इस चिक्की के और घर ज़रूर लेकर के जाएंगे। इसी के साथ साथ लोकल महाराष्ट्रियन कुजीन आपको मिल जाएगा, यानी कि पिथला भाकरी, मिसल पाव या फिर कांदा भाजी, ये आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड से लेकर ट्रेडिशनल थाली तक आपको यहाँ पर सब मिलने वाला है महाराष्ट्रियन स्टाइल में। इसी के साथ साथ भाई जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, जब बादल एकदम आपके पैरों को छू लेते हैं, या आप फॉग में आप जा रहे हैं, तो एक चीज़ बड़ी काम की लगती है, वहाँ पर चाहिए होती है, हमें बहुत ही ज़रूरत होती है, और वो होती है चाय की। और चाय के साथ अगर वड़ा पाव हो जाए तो क्या बात है, और सोने पे सुहागा अगर आपको कटिंग चाय मिल जाए। देखिए, गरम गरम चाय, स्पाइसी वड़ा पाव और फुल मुंबई वाली फीलिंग जो है ये आ जाती है। हर नुक्कड़ पर आपको एक बेस्ट वड़ा पाव मिल जाता है, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही हिल कैफ़ेज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर जर्मन बेकरीज़ हैं जहाँ पर आपको एक फ्यूजन मिल जाता है, जो कि इंडियन और साथ ही जर्मन एक फ्यूजन जो है आपको मिलता है, बेकरी मिलती है, जहाँ पर आपको बड़े कमाल के टेस्टी टेस्टी आपको रेसिपीज़, आपको कमाल के जो जो स्नैक्स है वो मिल जाएंगे, जो कमाल के डिज़र्ट है वो मिल जाएंगे, और साथ ही
यहाँ से वैली का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, जो कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे तो कैफ़ेज़ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। इसी के साथ डेजर्ट की अगर बात करें तो फज केक, प्लम केक या ड्राई फ्रूट रोल्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो मीठा खाते हैं, जिन्हें मीठा पसंद है या जो स्वीट लवर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रीट है। तो यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बनी हुई मिल जाएंगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसी के साथ शॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो लोनावला मार्केट का स्टाइल ही कुछ अलग है। चिक्की एंड फज जो पैक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे लॉन्ग शेल्फ लाइफ के साथ, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वर्दी हैं ये, तो आप पैक करवा सकते हैं। और साथ ही जो है वो यहाँ पर अरोमेटिक जो ऑयल्स हो गए, जिनका अरोमा बहुत खास है, अच्छा है, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, हर्बल सोप्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट जो है बिल्कुल हाथ से बने हुए ऑर्गेनिक, वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही वुडन डेकोर की बात करें तो हैंडमेड आपको क्लॉक्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कोस्टर्स मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा कमाल लगेंगे, और वुलन हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पर जो है हैंड वीविंग के साथ बनाए गए हैं। हैंड नीट कैप हो गई, शॉल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, जो काफ़ी विंटर्स में यूज़फुल होने वाले हैं। और मिनिएचर फोर्ट मॉडल्स की बात करें तो जो हिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर भाई अलग अलग आपको छोटे छोटे मॉडल्स मिल जाएंगे, तो आप जो मेन बाज़ार है लोनावला का वो आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक और देसी वाली जो फीलिंग है वो आनी गारंटेड है जब आप इस मार्केट में घूमने के लिए आएंगे। फिलहाल आज ना मैं बात कर रही हूँ लोनावला की, बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आज आपको लेकर के आई हूँ। जी हाँ, लोनावला के बारे में बात करें, यहाँ के आपको मैंने खाने पीने के बारे में भी आपको बताया कि यहाँ के जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, और आप क्या क्या यहाँ से ख़रीद सकते हैं वो भी हमने बात करी। चलिए बात करते हैं आप कुछ एडवेंचर और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिन्हें पसंद है, तो क्या क्या आपको मिल जाएगा। भाई थोड़ा सा थ्रिलिंग तो हो जाना चाहिए ना। चलिए आपको बता दूँ, आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं लोहागढ़ या फिर राजमची, तिकोना या ड्यूक्स नोज हो गया, ये सब ऐसी जगहें हैं जो कि मॉनसून स्पेशल है, और डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मॉडरेट से थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। डेला एडवेंचर पार्क, यहाँ पर ज़िपलाइनिंग, एटीवी, यहाँ पर राइड्स आप कर सकते हैं, वॉल क्लाइंबिंग, जॉबिंग, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर पार्क है जो कि आपको ये सारे जो है फन एलिमेंट्स आपको देगा और ये सारी चीज़ें आपको देगा, ये आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है साइकिलिंग और जो बाइकिंग है ये भी होती हैं, तो एक साइड पर हिल्स हैं, दूसरी साइड पर वैलीज हैं, सनराइज राइड्स अनफॉरगेटेबल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए कि आप किसी बस से कार से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ ट्रैवल करना जो आसपास जगहें हैं वहाँ आप साइकिल ले लीजिए, अपने पार्टनर के साथ साइकिल से जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साइकिल नहीं, तो आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं, बाइक आप रेंट कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर हम कैंपिंग की बात करें तो जो पौना लेक है ये बहुत ही खूबसूरत है, ये टॉप चॉइस होगी आपकी अगर आप लेते हैं, और यहाँ पर आप बॉनफायर, स्टार गेजिंग और पीसफुल इन्वायरमेंट जो है रहता है, एक सुकून आपको मिलता है, तो एडवेंचर ग्रुप से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कैंप्स भी आप बुक कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, जैसा भी आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ करें, उस तरीके से आप अपना बजट रख के आप कैंपिंग प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ की आइटनरी की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो परफेक्टली अगर आपको चाहिए दिन, तो दो दिन की मॉनसून की एक आइटनरी जो है वो होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आप आके एक सुकून प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आप आके आपको इतना कमाल लगेगा कि आपको घर जाने का दोबारा मन नहीं करेगा। चलिए तो इन दो दिनों में आपको क्या करना है, लोनावला की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर हमने देखा है कि बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो शूटिंग की अगर हम बात करें, या फिर बड़े सारे लोग हैं जो अपने हनीमून के लिए भी लोनावला जाते हैं, कई सारे लोग हैं जो घूमने के लिए, एडवेंचर करने के लिए लोनावला जाते हैं, तो आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब क्यों जाना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, क्या फिर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आपको कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई करने के लिए जाना चाहते हैं, जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए। नंबर बहुत ही आसान है,
8010781078। इसी के साथ इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं हमारे इंटरनेट रेडियो पर भी। जी हाँ, आप आसानी से इसे आप हमारे इंटरनेट रेडियो पर सुन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या अपना iOS मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेनी है हमारी एप्लीकेशन, जहाँ से आप ढेर सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। ये खास प्रोग्राम

भी सफरनामा आपको मिल जाएगा, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएंगी वहां पर आरजे साक्षी, यानी कि मैं हूं, और आप मेरे सेक्शन में जाके ढेर सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ढेर सारी बातें सुन सकते हैं, एक्सपर्ट एक्सपाई सुन सकते हैं, और साथ ही ये खास प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आइटनरी बताऊंगी। अब आइटनरी की अगर हम बात करें तो दो दिन एक परफेक्ट आइटनरी अगर आपको चाहिए दो दिन की, तो वो मेरे पास ज़रूर है। तो आपको सबसे पहले डे वन पर क्या करना है, मॉर्निंग ड्राइव करनी है आपको। आप मुंबई से पुणे आ जाइए और साथ ही चाय का बीच में स्टॉप ज़रूर लीजिएगा, खंडाला घाट आप ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ साथ आपको विजिट करना है यहाँ पर जो कारला केव्स है या फिर भाजा केव्स है विथ अर्ली सनलाइट, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लंच करना है यहाँ पर, आपको ही किसी कैफ़े में आप लंच कीजिए जो काफ़ी कमाल लगेगा और यहाँ से व्यू वैली का बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इवनिंग में आपको भुशी डैम टाइगर पॉइंट सनसेट के लिए जाना है और वड़ा पाव खाते हुए सनसेट आपको एंजॉय करना है, और रात में बॉनफायर, लाइव गिटार, वो भी आपको कैंपिंग साइट पे मिल जाएगी पौना लेक पे। तो ये सारी चीज़ें आप डे वन पर, मतलब आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो हमने सिर्फ एक ही दिन में निपटा ली। तो आप ये जो है एक दिन में वही जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अलग अलग जगहें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक जगह पर अगर आपको एक दिन में इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो सोचिए दूसरे दिन में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दूसरे दिन की भी आइटनरी आपको बताऊंगी। सफ़रनामा की हम बात करें तो आज जिस जगह पर आपको घूमने के लिए लेकर के आई हूँ वो है लोनावला। वैसे तो हर सैटरडे अलग अलग जगहों पर आपको लेकर के जाती हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं हमारी बातें। फिलहाल आपको बता दूं डे वन आइटनरी की हमने बात करी है, डे टू की बात करें तो सबसे पहले सनराइज़ आपको देखना है और ट्रैक करनी है उसके लिए लोहागढ़ फोर्ट की। इसके बाद यहाँ से आप सनराइज़ ज़रूर देखें, ब्रेकफास्ट करना है आपको, लोकल होममेड जो पराठा हो जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे किसी फोर्ट बेस के आसपास मिल जाएंगे, तो स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपको विज़िट करना है लाइन्स पॉइंट आपको विज़िट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको नज़ारे मिल जाएंगे, और साथ ही रिवर्स वाटरफॉल, ये वैसे तो सीजनल होता है, अब डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हैं। इसके साथ साथ ड्यूक्स नोज ट्रैक आपको विज़िट करना है, जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। और आफ्टरनून में आप शॉपिंग स्प्री मार्केट में जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, और इवनिंग में आप अपने भाई वापस अपनी जगहों पर, अपने जो होटल है वहाँ पर वापस आ सकते हैं, अपने बैग फुल ऑफ चिक्की फोटोज और पीस के साथ आप जल्दी से झटपट से आ जाइए, क्योंकि अब लोनावला जो है वो आपको प्यारा लगेगा लेकिन जाने नहीं देगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं ना कि भाई जाने दिया जाए, आपका ऑफिस का काम है, तो भाई जल्दी जल्दी आपको निकलना होगा। चलिए बस कुछ खास टिप्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, अब वो क्या है बताऊंगी। और आज ना इस जगह के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ, अगर आप इस जगह को जाना चाहते हैं और तो आप जो है मॉनसून टाइम आ सकते हैं, लाश मॉनसून, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस टाइम पर, तो आप जून से लेकर सितंबर तक जा सकते हैं। अगर आप ट्रैक फ्रेंडली हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से फरवरी मंथ में आइए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ एसेंशियल आपको क्या क्या रखने हैं, रेनकोट आपको रखना है, रेनकोट के साथ साथ आपको हाइकिंग शूज रखने हैं, वाटरप्रूफ बैकपैक रखना है, अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी एक वाटरप्रूफ ट्रांसपेरेंट जो कवर होते हैं वो आप रख लीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन आप बारिश में भी चला सके, फोटोज क्लिक कर सके। अब अवॉइड भुशी डैम ऑन वीकेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राउडेड होता है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी उठ के आइएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अपने साथ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोकल वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा टेक सेविक कम है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोकल जो कैश है वो आप लोकल वेंडर्स के लिए लेकर चलें। इसी के साथ अगर आप जो है आप ट्रेल पर निकल रहे हैं, तो आप वाटरफॉल ट्रेन पर अगर निकल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आसपास लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनके कल्चर की, हेरिटेज की। ऐसे ही आप कुछ भी ना करें, कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं तो अच्छे से जाएं, और बहुत ही ख़ास बात, गंदगी ना मचाएं।
चलिए देखिए, हर कोई जाता है ना, मनाली जाता है और कसौल जाता है या हल्द्वानी जाता है, धनौल्टी जाता है, लेकिन इन जगहों को तो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इन जगहों के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। लोनावला एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ अलग हटकर भी हो जाएगा, आप एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा। इसी के साथ बस कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है, कुछ आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक है। अगर आपको बारिशें पसंद है, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में जाइए तो आपको एक अच्छा ट्रैक ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ साथ देखिए, ये था आपको मैं बता दूं हमारा लोनावला का सफ़र, जहां बारिश एक कहानी बन जाती है, हर मोड़ पर नेचर आपको सरप्राइज करता है और चिक्की का टेस्ट कभी नहीं आप भूल पाते हैं। तो आप बड़ी ज़रूर जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं, लोनावला जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ के जो कमाल के सीन हैं उनको भी शूट करके आइए, अलग से आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आजकल कितना सब कुछ है ना कि डिजिटल मीडिया पे आप कितना सब कुछ डाल सकते हैं अपना, आपके पास स्मार्टफोन है, रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए अगर आप गए हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस जगह के बारे में, तो भाई और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं या फिर आपको कोई जानकारी और हमें आप बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव कृष्णा और 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक अलग पहचान दिलाई है. हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न केवल एक दो या दस मेडल जीते होंगे वो भी गोल्ड या सिल्वर, बल्कि अनगिनत मेडल्स उनके घर की एक वॉल पर लगे हुए हैं जो कि आर्चरी के फील्ड में उन्होंने अर्जित किए हैं. जी हाँ, हम आज के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में बात करने वाले हैं देश के जाने माने आर्चर अर्जुन अवॉर्डी, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट अभिषेक वर्मा जी से, जो कि फिलहाल इंडियन आर्चर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स भी हैं. तो आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं. प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ.
1: अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो अभिषेक जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने आर्चरी के क्षेत्र में देश को एक अलग पहचान दिलाई है. और जब मैं आपके मेडल्स के बारे में देख रही थी इंटरनेट पर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे टिपिकली फिंगर से काउंट करने पड़े इतने सारे मेडल्स थे आपके. तो कैसे ये आर्चरी की दुनिया में आपने कदम रखा, किस तरीके से शुरुआत हुई, ये हमारे लिसनर्स को आप बताएं.
2: देखिए, एट दी एंड अगर आपने मुझे भी मेडल याद दिलाए हैं कि इतने इतने इतने, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था कि हाँ इतनी वर्ल्ड चैंपियनशिप, इतने एशियन गेम्स और ऐसे खेला है. टाइम का पता ही नहीं चला कि कब कैसे, देखते देखते 20 साल बीत गए और 20 इयर्स के सर्कल में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. मैं बात करूं 2006 में मैंने फर्स्ट अपना डेब्यू किया था एज अ सीनियर इंटरनेशनल टीम में मैं एंटर करके
1: जी.
2: और फर्स्ट मेडल मेरा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आया था. तो आई सपोज वो स्टार्टिंग जर्नी थी. टिल अभी तक लास्ट मंथ ही हम फ्लोरिडा वर्ल्ड कप खेल करके आए हैं, उसमें मेरा मेडल रहा है. तो बैक टू बैक टूर्नामेंट आते गए, खेलते गए. तो मेरा बस यही है कि एक टूर्नामेंट बीत गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट की सोचो और आगे बढ़ो. अगर आने वालों की खुशी या गम अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा सोचूं, चाहे वो इंटरनेशनल में एशियन गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप्स हो या कोई नॉर्मल नेशनल हो, मैं हर एक को इक्वल ही सोचता आया हूँ. टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की तरह सोचा है और आगे बढ़ता चला हूँ. एक टूर्नामेंट खत्म तो मेरे को दूसरे की प्रिपरेशन करनी है, दूसरा खत्म तो मुझे आगे एक और की प्रिपरेशन करनी है. तो बैक टू बैक मेरा ये रहा और फॉर श्योर मतलब कोशिश करी कि अच्छा कर पाऊँ, मेडल ले पाऊँ. और बैक टू बैक में मेडल दिए भी हैं और पर ये भी है कि इतने सारे मेडल लिए हैं पर इससे कहीं ज्यादा मैंने हार भी फेस करी है. ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूँ और मेडल लेकर के आ जाना, ऐसा नहीं होता. क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, परफॉर्म करते हैं. मेडल सिर्फ तीन ही होते हैं. तो अगर आपने दो जीत देखी है तो उसके पीछे तीन हार भी हैं, जो हार्ड वर्क होता है, जो चीजें होती हैं. तो वो भी एक प्लेयर की लाइफ में इम्पोर्टेंट लेसन है. अगर उस हार को अगर वो बना ले कि अपना फियर बना ले कि नहीं मैं तो हार गया, मैं कोशिश ही ना करूं, तो आने वाली जीत का वो मजा नहीं ले पाएगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और जितनी लंबी आपकी मेडल्स की लिस्ट है, ये आपने आर्चरी में जीते हैं, लेकिन शुरुआत आपने शायद आर्चरी से नहीं, लॉन टेनिस से की थी. आप लॉन टेनिस खेलते थे और उसके बाद आर्चरी में आए, क्या ये सच है?
2: नहीं, बिल्कुल सच है. ये लॉन टेनिस मेरा फर्स्ट गेम था. ऑल्दो मैं काफी सारे गेम्स मैंने खेले हैं अपने चाइल्डहुड में. मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, स्केटिंग करता था, सारे काफी करे हैं. पर प्रोफेशनली मैंने एक बार एंटर फर्स्ट जब मैंने सोचा कि

0: कहने के लिए तो चलो बहुत अच्छा किया, मुझे आर्चरी में डाल दिया, पर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ना कि बहुत ये सबसे मतलब इसमें अमाउंट नहीं लगता वो है, पर एक्सपेंसिव गेम के मुझे लग रहा है कि टॉप एक्सपेंसिव गेम्स में आर्चरी शूटिंग ये सब आते हैं
1: जी।
0: तो वो रहा इसमें, पर ठीक रहा, अच्छा रहा, उनका अच्छा डिसीजन था, उन्होंने प्लेयर को बखूबी नापा कि कैसा प्लेयर, क्योंकि आर्चरी या शूटिंग ऐसे गेम है जो वो होते हैं ना, कई तरह के बच्चे होते हैं हमारे, एक होता है चंचल वाला होता है, एक होता है शांत होता है, तो एक प्लेयर को देख करके जज करना कि कौन सी गेम के लिए सुटेबल है, जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ का, वो शायद पीटी टीचर ध्यान से देखते हैं कि कोई एक्टिव है कोई नॉन एक्टिव है, कौन चेस के लिए बढ़िया है, कौन क्रिकेट के लिए बढ़िया है, कौन रनिंग में बढ़िया है, कौन शॉर्ट पुट में बढ़िया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फर्स्ट डिसीजन लाइफ का उन्होंने दिया था
1: जी जी।
2: सो बहुत सारी बातें हम अभिषेक जी से कर रहे हैं, देश के जाने माने आर्चर जिन्होंने तीरंदाजी को एक नया मकाम दिया है, और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी इससे लेकर, और किस तरीके से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आज भी, ये हम जान रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड द गेम, वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. नाम है मेरे दीक्षा और आपके लिए कार्यक्रम लेकर आई हूँ बियॉन्ड द गेम, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खेल जगत की जानी मानी हस्ती हैं, देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं और आज भी उनकी कोशिशें जारी हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज अभिषेक वर्मा जी से, जो कि वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स विभाग में, लेकिन इसके साथ साथ जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं वो अपने खेल के कारण पहुंचे हैं। और खेल इनका है आर्चरी यानी तीरंदाजी, एक ऐसा खेल जिसमें इन्होंने शुरुआत करी यूं ही मजे मजे में, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाएंगे और मेहनत मशक्कत और अपनी सोच के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। दिन रात की कोशिशें, दिन रात की मेहनतें, पूरे परिवार का सपोर्ट लगता है तब जाकर एक खिलाड़ी तैयार होकर गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम का नाम है बियॉन्ड गेम।
1: तो ये स्कूल से शुरुआत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी स्कूल के दिनों के बारे में, हमें कुछ बताइए कि आप गेम्स तो बहुत सारे खेलते थे, आपने अलग अलग स्पोर्ट खेले हैं और अच्छे खेले हैं। जब कोई रैकेट तोड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो गेम भी बहुत सॉलिड तरीके से खेल रहा है ताकि रैकेट टूट चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद आर्चरी में आए। तो स्कूल के दिनों की कुछ यादें, फिर आर्चरी की शुरुआत आपने करी, उसमें क्या स्ट्रगल फेस करी या किस तरीके से कितना फोकस्ड रहना पड़ता है इस खेल के लिए, ये हमें थोड़ा सा बताएं।
2: देखिए ना, गेम लेना ना एक पैशन का काम होता है। वो फॉर एग्जांपल जब कोई जीत करके आता है प्लेयर और उसको सबके सब सम्मानित करते हैं, प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रेयर सेरेमनी उसको अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको सबके सब जानने लग जाते हैं। तो मेरे जब सीनियर स्कूल नेशनल खेल करके आए तो उनको इमीडिएट माला पहनाई, कैश अवार्ड दिए, चीजें करी, तो बहुत एक तरह से वो प्रेरित, वो करने वाला इमोशन वो मेरे आज भी मेरे पे है। मैंने जब देखा फिर हुआ कि नहीं ये तो हमें भी करना चाहिए, मुझे भी लाना है, मुझे भी करना है। तो एक वो जोश लाना कि स्पोर्ट्स के प्रति कि नहीं ये स्पोर्ट्स करना है, तो अपने घर में जाके बात करना, फिर पीटीटी के, तो एक सबसे अहम भूमिका वो टीचर की रही है, स्पोर्ट्स टीचर की, क्योंकि जो और टीचर होते हैं तो फॉर श्योर एक बच्चे के भविष्य के लिए ही काम करते हैं, पर जो स्पोर्ट्स टीचर है एक ही स्पोर्ट्स टीचर होता है पूरे स्कूल में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: एफर्ट करता है वो कि वो ना हो। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने 100%, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इनिशियली जब करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एकदम रिजल्ट आपका नहीं आता इनिशियली, उसका भी नहीं रहता। मेरी अगर बात करें तो मैंने एट क्लास में मैंने आर्चरी स्टार्ट करी थी, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि कोच वहीं पे थे लोकेश सर मेरे, तो वहां पे वो सिखाते थे। इनिशियली मुझे एक साल मतलब अप्रोक्सीमेट 18 महीने से 2 साल मेरे को लग गए एक नेशनल में परफॉर्म करने लायक बनने के लिए। तो उस ड्यूरिंग पीरियड क्लास 8 to 9 मुझे सपोर्ट चाहिए था मुझे, क्योंकि क्लासेस मिस भी होती थी, मिस होते थे
1: बिल्कुल,
2: तो उसमें हेल्प करने के लिए मेरे पे बस एक ही शक्ल होती थी मेरे पीटी टीचर की, सर प्लीज हेल्प मी। तो वो जाते थे, टीचर से बात करते थे, मेरे एग्जाम में भी उस टाइम पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया। पहले मैं कह सकते हैं 60-70% वाला एवरेज स्टूडेंट था, फिर गेम, और उसको अगर एक गेम को आप 6 घंटे दे रहे हैं लाइफ के, उसके बाद थक हार के सो रहे हैं, तो उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, तो वो एवरेज घट करके 40-50% पे आ गई, पर वो रही, रेगुलर रही। दो साल के बाद ही ड्यूरिंग द स्कूल टाइम ही एट द क्लास ऑफ 10th में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने नेशनल चैंपियनशिप में,
1: तब
2: भी नेशनल था वो। तो इमीडिएट ऐसा एफर्ट हुआ कि मतलब आफ्टर द नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियन बनते के साथ ही मैंने न्यू मॉडर्न बोज में स्विच करते के साथ इंडिया टीम में नेक्स्ट ईयर मैंने सीनियर इंडियन टीम में मैंने अपना डेब्यू किया।
1: तो
2: वहां पे स्कूल में एकदम कैसे मतलब नाम फैल गया अभिषेक। तो
1: स्कूल में और आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस में, अब एकदम हीरो बन जाते हैं, वो वाली सिचुएशन हो गई आपके साथ
2: फॉर श्योर। एक आप एक स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में एक अच्छी एक अचीव करना, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, एक चैलेंजिंग काम था कि
1: वहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं वहाँ पर।
2: कह सकते हैं हमारी 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, फिर एटमोसफेयर भी वैसा ही होता है, बट ठीक है। मैं खुश हूँ अपनी एकेडमिक जो मेरा हिस्ट्री रही है, मेरी क्लासेस रही है, मेरे टीचर्स रही है, मेरे को सपोर्ट रहा है, शायद उसी के बदौलत मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो स्कूल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, क्योंकि वो वही गाइडेंस देता है। वो कहते हैं ना कि बिफोर बिलो 18 तो मतलब एडल्ट भी नहीं, मतलब उनका माइंड काम ही नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट भी वही मानती है। मतलब सारा स्कूल एक तरह से फ्रेशर का स्कूल होता है, जैसा ढाल दो वो वैसा ढलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक बात कही आपने।
2: तो हमें भी नहीं मालूम होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसमें अहम भूमिका जो लाइफ की जो चेंज करने वाले होते हैं शायद पेरेंट्स के बाद वो स्कूल के टीचर्स ही होते हैं जो गाइडेंस करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस पे हमारा पूरा थ्रू आउट द करियर डिपेंड होता है। कई लोग साइंस लेते हैं, कई लोग आर्ट्स लेते हैं, कई लोग गेम में जाते हैं, कई लोग कॉमर्स में जाते हैं, तो वो डिसीजन शायद स्कूल के टीचर देख करके करते हैं और वो वही एक लाइफ लॉन्ग बन जाता है।
1: जी जी,
0: बहुत सारी बातें और भी जारी रहेंगी अभिषेक वर्मा जी के साथ, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इस बातचीत को आप बार बार सुनना चाहते हैं, किसी खेल प्रेमी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिल में मत रखिए, शेयर कीजिए। हमारी ऐप यानी हमारा इंटरनेट रेडियो ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, जो कि प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम। और बियॉन्ड द गेम में हर हफ्ते एक खास खिलाड़ी के साथ होती है मुलाकात, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। और आज इसी कड़ी में हम बात करें हैं अर्जुन अवॉर्डी अभिषेक वर्मा जी से, जो कि देश के जाने माने आर्चर हैं। जी हाँ, आर्चरी को इन्होंने अपने खेल की श्रेणी में रखा। शुरुआत में कुछ और गेम्स खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आर्चरी की तरफ बढ़े तो दुनिया ने इनका लोहा माना। और आज की तारीख में ये असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग हैं, और साथ ही एक बहुत ही जाने माने आर्चर भी हैं, जो कि दुनिया भर में अभी भी भारत का परचम लहरा रहे हैं।
1: तो अभिषेक जी, ये तो स्कूल की बात हुई, स्कूल के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, तो उसमें भी आपके इस गेम का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है।
2: देखिए, ये बहुत हमारे पे एडवांटेज बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन, अब अगर आप कंपेयर करोगे नॉन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स वाला जो मेडलिस्ट होगा उसके पास चॉइस होती है कि कौन से कॉलेज में जाए।
1: बिल्कुल।
2: पर जो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं मुझे ये कॉलेज मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो शायद मेरे लिए लाइफ में भी यही था कि मैं 2007 में मैंने स्टार्ट किया था हंसराज कॉलेज, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है हंसराज से 2007-10 में। तो मेरे पास एट द टाइम ऑफ 2007 मेरे पे ऑप्शन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है।
1: Okay.
2: क्योंकि मैं एशियन चैंपियन बन चुका था, इंडिया टीम के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल ला चुका था, सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुका था, मेडल ऑफ वो थे, और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप लाना मायने रखता है, इंटर कॉलेज मायने रखता है, तो हर कॉलेज भी चाहता है कि हमारे कॉलेज में अच्छे प्लेयर्स आए जिससे कि हम चैंपियनशिप और आगे बढ़ पाए।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और थैंक यू हंसराज कॉलेज एक आउटस्टैंडिंग मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट करने के लिए। उसमें सविता कोचर मैम हुआ करती थी मेरे टाइम पे, एमपी शर्मा सर आज तक मेरे हंसराज कॉलेज में आज भी हैं और सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। तो बियॉन्ड दैट वो कह सकते हैं ना कि वो एकेडमिक भी आपकी चल रही है साइड बाई साइड, आपकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, कि वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड था वो जो कि खोल रखा था उन्होंने कि आप कभी भी ट्रेनिंग करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: जी, यानी फैसिलिटीज बहुत होती हैं, और कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं होती हैं, ड्रामेटिक्स का, म्यूजिक का, हर तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं।
2: बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा कॉलेज वही है ना कि आपको टाइम देता है, ऑप्शन देता है, आपको सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप में आपकी फीस रिफंड कराता है, आपको सपोर्ट करता है कि एक बच्चा का फ्यूचर अच्छे से बन पाए। इसमें अहम भूमिका अदर टीचर्स की भी रहती है, फिर अगेन वही कि इसमें हमारे स्पोर्ट्स टीचर का बड़ा रोल रहता है कि वो जाकर समझाता है, क्योंकि हर कोई टीचर अपने उसमें रहता है कि वो अच्छा करे, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम स्पोर्ट्स काफी सारा टाइम ले लेता है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन दे नहीं पाता, पर फिर भी इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही पीछे हो जाओ। एटलीस्ट मैं 12th में 68% वाला स्टूडेंट रहा।
1: 68 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर मैं कहूँ जिस तरीके से आपने अपना शेड्यूल बताया है उस दौरान रहा करता था।
2: नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे 80 वाले से तो शायद नीचे में आ जाते हैं,
1: पर 80 वाला सिर्फ ट्यूशन जाता है और पढ़ के एग्जाम देता है।
2: हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में 8 घंटे जुड़ गए थे स्पोर्ट्स के नाम के, और उसके बाद 8 घंटे रनिंग भी, एफर्ट भी, धूप में, क्योंकि आर्चरी आउटडोर गेम है।
1: बिल्कुल।
2: करने के बाद थक हार के जो बच्चे जो हालत होती थी कि रात में तो कुछ समझ में नहीं आया, 9 बजे तो बस लेटे, मतलब बैठे बैठे सो गए, ऐसा हालत होता।
1: तो पेरेंट्स खुश हो गए थे इसके बाद आपके बहुत ज्यादा?
2: मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, पेरेंट्स फॉर श्योर बहुत खुश थे नेशनल चैंपियन बनने के बाद, एक अवार्ड मिलने के बाद एक रिवॉर्ड उनको मिला कि इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ली, पर उनके लिए एक चैलेंजिंग था कि गेम स्विच करना। आर्चरी में ना 2-3 तरीके के गेम्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल में जो परफॉर्म करते हैं रिकर्व और कंपाउंड, और एक होता है जो सिर्फ नेशनल लेवल पे किया जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडियन राउंड बोल, दैट इज कॉल्ड, मतलब वुड का बना होता है पर वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो बेसिक बो होता है। तो जब आपको स्विच करना होता है, एक बेसिक बो की कॉस्ट अराउंड उस टाइम पे 2000 थी,
1: पर एक प्रोफेशनल समय आज से 20 साल पहले की बात आप बता रहे
2: हैं, पर एक प्रोफेशनल बुक की कीमत 1,00,000 रुपए थी।
1: ओ जो कि काफी महंगा रहा है, जैसे हम शूटिंग में अक्सर देखते हैं कि बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा स्पोर्ट है, वैसे ये भी महंगा ही है।
2: बिल्कुल महंगा स्पोर्ट है, और कह सकते हैं 1,00,000 रुपए उस टाइम पे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के, और जिसका जिसको हमें मालूम ही नहीं फ्यूचर हमें कैसा होगा या स्पोर्ट्स के टाइम पे क्या होता था। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, मानव रचना जैसे इंस्टीट्यूट इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा हेल्प मिल पा रही है, पर उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है कि फैसिलिटीज उस दौरान थी नहीं, और अब तो जिस तरीके से मेडल्स धीरे धीरे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, तो ये काफी बदलाव है आजकल के खिलाड़ियों के लिए।
2: बिल्कुल ठीक है, तो वही टाइम अगर याद करूं तो मैंने, मुझे भी नहीं मालूम कि पेरेंट्स ने कैसे उन्होंने, मैंने बस मजाक में कहा था कि मॉडर्न बोज में आना है और करना है, और उन्होंने पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम उस टाइम पे नहीं थे हम, पर लेकर के आया और स्विच करवाया, और विद इन अ ईयर मैंने उनको रिजल्ट दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाई हुए हैं इस चीज से कि कहां से कैसे हुआ, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ
1: जी
2: हुआ उस टाइम को,
1: और बहुत अच्छा हुआ तभी भारत को इतने मेडल्स मिल पाए और आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: तो अभिषेक वर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, दोस्तों कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। बहुत ही कमाल की और बहुत ही रोचक बातें चल रही हैं। अभिषेक वर्मा जो कि जाने माने आर्चर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आर्चरी के क्षेत्र में, उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, प्रोग्राम का नाम बियॉन्ड द गेम।

0: Good Feel Live, मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम, जहां पर खिलाड़ी और खिलाड़ियों की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें, उनके करियर से जुड़ी बातें, उनके खेल में आई हुई स्ट्रगल्स और अचीवमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। और आज इसी कड़ी में इस प्रोग्राम में मैं दीक्षा लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही खास मेहमान, अभिषेक वर्मा, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन है और देश के जाने माने आर्चर हैं, जो फिलहाल बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर भारत को मेडल्स दिलवा चुके हैं। और मेडल्स की जो तालिका है वो तो मैं आपको शुरुआत में बता ही चुकी हूँ, लेकिन इनके करियर से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी अभी जाननी बाकी हैं। तो करते हैं और भी बातचीत।
1: बात करते हैं थोड़ी सी आर्चरी की फील्ड के बारे में। जब आप आर्चरी में कदम रखते हैं तो आपने जैसे कहा कि आपको तो लगा कि शायद सस्ता गेम है, लेकिन सस्ता स्पोर्ट है नहीं, ये काफी कॉस्टली है। आपको भी बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो कैसे आर्चरी की फील्ड में एक स्टूडेंट को शुरुआत करनी चाहिए, पेरेंट्स क्या सोचे? क्योंकि हमारा देश वो देश है जहां पर क्रिकेट को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस बात के लिए मैं नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, एक जो प्यार होता है लोगों को, एक जुड़ाव होता है, वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा है। तो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेटर बन जाए, बच्चे को सबसे पहले खिलौने में बैट दिला दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद बाकी चीजों की बारी धीरे धीरे आती है और आर्चरी के बारे में नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं।
2: देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हर कोई चाहता है क्रिकेटर बन जाए, ये एक चाहना एक अलग हो गया, पर एक मेरा इंडिया टीम में खेले, क्रिकेटर बन जाए, फेम आ जाए, पैसा आ जाए, वो एक चाहने वालों की मतलब वो ज्यादा हो गए परसेंटेज, 90% लोग ऐसे सोचते हैं। पर अगर आप देखें पूरे देश में क्रिकेट खेलने वालों की जनसंख्या कितनी है और उसमें से सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल पा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए, देखिए स्पोर्ट्स करना एक मेरे मायने में स्पोर्ट्स करने के दो रीजन होते हैं। हर कोई प्लेयर नहीं बन पाता, हर कोई मेडल नहीं ले पाता, पर
1: बिल्कुल
2: हर कोई अपनी सेहत को अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स करके। स्पोर्ट्स कराया इसलिए जाता था कि पीसफुल माइंड के लिए, बॉडी रिलैक्स के लिए, एक कसरत के लिए, यही तो था मेन फंडा हमारा स्पोर्ट्स करने का।
1: फोकस बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी
2: होती है। ये गेम टू गेम डिफर करता है। अगर आपको रनिंग कराई जाती थी तो आपको स्टेबिलिटी, आपको मतलब मींस आपको बॉडी में स्ट्रेच और सब चीजें कराने के लिए और फोकस करने के लिए, फोकस वाले गेम करवाए तो माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए आपको चेस, आर्चरी, शूटिंग, ऐसे ऐसे गेम करवाए जाते हैं। तो उस टाइम पे अब तो कॉम्पिटेटिव आ गए कि हमें मेडल लाना है, हमें ये लाना है, पर गेम एक्चुअली गेम करने का रीजन यही होता था कि बच्चा एक्टिव रहे,
1: बिल्कुल
2: सेहत एक्टिव रहे। और अब आज की जनरेशन में दूसरे पॉइंट से स्पोर्ट्स हो गया है कि भैया बच्चा मीडिया में ना घुस जाए, वो बाहर निकले, आउटडोर एक्टिविटी करे, वो रनिंग करे, वो स्विमिंग करे, वो आर्चरी करे, वो फोकस करे, वो इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर निकले। वो आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चा फोन लेकर के चिपक गए या टैब में चले गए। आप कहीं पे भी चले जाइए, कोई से भी पेरेंट्स को देख लीजिए, रेस्टोरेंट हो तो बच्चे के हाथ में फोन होगा, या फ्लाइट हो तो भी बच्चे के हाथ में फोन होगा,
1: बिल्कुल
2: फॉर श्योर अट्रैक्ट करता है, फॉर श्योर ये शायद टाइम कंज्यूम, पेरेंट्स को अपना टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो एट द टाइम वो गलत क्यों ना इसको हम दूसरे वे में देखा जाए कि एक बच्चा स्कूल के बाद आने के बाद, अपनी ट्यूशन करने के बाद, अपना एक दो घंटे के लिए कोई भी गेम पकड़ करके उसमें चला जाए, उसमें थक हार के दो तीन घंटे बाद थक हार के आए, उसको खाना खाते के साथ वो नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करा जाए उसकी,
1: बिल्कुल
2: ये भी हमें करनी चाहिए। ये शायद स्पोर्ट्स हमारे लिए एक हो गया जीतना और एक हो गया बॉडी के लिए, माइंड के लिए, अपने लिए, एक अच्छी फिजिक के लिए स्पोर्ट्स हो गया। तो आप क्या चूज करते हैं, वो आपकी सोच है
1: जी। और अगर आर्चरी की फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है या उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो आर्चरी को एक्सप्लोर करें, तो क्या सही उम्र रहती है और किस चीज का ध्यान बच्चों को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करें इस फील्ड में?
2: देखिए, एट द एज ऑफ 6-7 आप स्टार्टअप ले सकते हैं कि हाँ आर्चरी में एंटर 7 ईयर्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्चरी में अब अंडर 10, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 18, 21 ऐसी कैटेगरीज हैं। और जरूरी नहीं है कि इमीडिएट आते के साथ आप मॉडर्न बोज लीजिए, आप जो नेशनल लेवल पे किया जाता है, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, SGFI, स्टेट, वो वाले सारे के सारा इवेंट कवर होता है इंडियन बोज किट में। उसकी कॉस्ट अराउंड 8-10,000 आती है।
1: ओके,
2: थ्रूआउट द ईयर आप उसको कर सकते हैं, एक 1 or 2 or maximum 3 years के बाद आप देख सकते हो कि आर्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटरेस्ट कैसा है, वो टाइम दे रहा है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको मॉर्निंग बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको भी जजमेंट मिल जाती है कैसा बच्चा परफॉर्म करेगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो यानी शुरुआत 6-7 साल की उम्र से अब की जा सकती है।
2: बिल्कुल की जा सकती है
1: जी, और अपने आसपास की एकेडमीज को एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को, और स्कूल में अगर ये सुविधा है तो उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए।
2: हाँ, स्कूल लेवल एक अच्छा है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर साइड बाय साइड आपको एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइन करना एक इजी हो जाता है, आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि आप कैसे कर सकते हैं।
1: जी जी, तो अभिषेक जी आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, आपने एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, ये सारी चीजों में आपने मेडल्स जीते, और उसके बाद आपने जो अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, वो कुछ पल हमें बताना चाहेंगे आप?
2: 2014 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था, मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कंपाउंड इवेंट नॉन ओलंपिक इवेंट था, मैं मेडल्स तो काफी सारे ले आया था पर किसी भी नॉन ओलंपिक आज कंपाउंड में किसी को भी आज तक हिस्ट्री में वो नहीं मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला नहीं था।
1: ओके,
2: मैं बहुत उम्मीद थी, चीजें थी, रिक्वेस्ट थी या परफॉर्मेंस थी, उस टाइम पे फेम था, सब चीजें हुआ था कि मैं इमीडिएट मतलब एशियन चैंपियन बना था, एशियन चैंपियन के साथ तीन ही गोल्ड होते हैं, तीनों की तीनों गोल्ड क्लिंच करे थे मैंने, फिर नेशनल चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप्स मेडल लिए थे कंटिन्यू, और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट होकर के हमारा प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो बड़ा कह सकते हैं कि टाइम बड़ा उम्मीदों भरा था कि फर्स्ट में इंडियन कंपाउंड आर्चर बना जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो कह सकते हैं उसके बाद लाइन लगाने वाला ओपनिंग बेस्ट मतलब ओपनिंग वाला करने वाला अर्जुन अवार्ड का मैं बना था, उसके बाद कंटिन्यू क्योंकि हमने एशियन गेम्स में मेडल गोल्ड मेडल लिया, इमीडिएट फिर एक और को दिया गया, फिर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर अर्जुन अवार्ड तीसरे को दिया गया तीसरे साल, तो कंटिन्यू कंपाउंड के लिए भी ओपनिंग हो गई थी फिर ये।
1: जी जी, और अपने
2: सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिलना, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है अर्जुन अवार्ड मिलना,
1: बिल्कुल
2: आर्चरी में हार्डली अभी तक 7-8 जनों को मिला है, और उसमें अपना नाम बनाना एक अपने आप में सबसे बड़ा मेडल है।
1: जी, और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि जब भारत के टॉप आर्चर्स की बात होती है, टॉप 10 आर्चर्स की बात होती है, तो उसमें अभिषेक जी का नाम उस लिस्ट में जरूर आता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से सभी को आपकी ये बातचीत और आपकी जर्नी सुना रहे हैं आज।
2: जी,
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक जी के साथ। आर्चरी के क्षेत्र में अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं 8010781078। रेडियो मानव रचना की पहल ऐसे ही कुछ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आपकी पहचान कराएं, मुलाकात कराएं, और क्या पता आप या आपके परिवार में कोई और भी कल देश का नाम रोशन करें इनसे इंस्पायर होकर। सो ऐसी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM। प्रोग्राम चल रहा है बियॉन्ड द गेम और इस खास प्रोग्राम में हर हफ्ते मुलाकात होती है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है खेलों के क्षेत्र में। और आज इसी कड़ी में हम बातचीत करें हैं अभिषेक वर्मा जी के साथ, जो कि आर्चरी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है। और साथ ही अगर आप देश के 10 आर्चर्स की बात करेंगे तो उस श्रेणी में ये आते हैं काफी ऊपर लिस्ट में, और अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। मेडल्स की लिस्ट तो आप पूछिए ही मत कितनी बड़ी है, जिसको शायद मैं एक प्रोग्राम में पूरा बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभिषेक जी से जुड़कर बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें उनसे हम जाने हैं आर्चरी के क्षेत्र के बारे में।
1: तो अभिषेक जी, अब अर्जुना अवार्डी तो आप बन गए और आपने इतना कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप आज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं इनकम टैक्स विभाग में। ये किस तरीके से जो है अपॉर्चुनिटी आई और किस तरीके से आप उस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि खिलाड़ियों का करियर खेल में बन गया तो बन गया, वरना फिर नहीं बन पाएगा।
2: देखिए, पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आज का टाइम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड का टाइम कह सकते हैं आप। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लेवल की आपको जॉब मिलती है। अगर कोई नेशनल लेवल में अचीवर है तो उसको क्लास सी की जॉब मिल सकती है। कोई इंटरनेशनल में एक्सप्लोरर है, मेडलिस्ट है, तो उसको ग्रुप बी की जॉब मिल सकती है। और अगर कोई अच्छे गेम्स मीन्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे इवेंट में मेडल आता है तो उसको उसके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास वन ऑफिसर की जॉब मिल सकती है।
1: जी।
2: तो ये अप टू स्पोर्ट्स पर्सन के हाथ में होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके कोटा दे रही है, सीट दे रही है, सब चीजें दे रही है। अगर मेरी बात मानी जाए, मतलब मेरी बात करी जाए, तो मैं एकेडमिकली, मैंने कहा आपको कि मैं आफ्टर द ग्रेजुएशन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड, मैंने अपनी बीपीएड एमपीएड मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी थी।
1: जी।
2: मैंने अपनी एकेडमी को कंटिन्यू रखा, साइड बाय साइड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट टीए ग्रुप सी की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी 2014 में।
1: ओके।
2: मैंने उसको ग्रैब किया क्योंकि मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइम पे जॉब थी ही नहीं, बहुत कम थी। मैंने इमीडिएट मैंने ग्रैब करी, मैंने वेट करा अपना साइड बाय साइड। मैं डिपार्टमेंट का थैंक यू करता हूँ अगेन, वही मेरे स्कूल कॉलेजेस, और अब डिपार्टमेंट की बारी आई कि उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट करा, फ्रीडम दी कि आप खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। और मैंने रिजल्ट दिए एशियन गेम्स 2014 में, मैंने इमीडिएट डिपार्टमेंट ज्वाइन करते के साथ ही मैं डबल मेडलिस्ट बना। बैक टू बैक 15 में मैं वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप विनर बना। बैक टू बैक एशियन चैंपियनशिप में मैंने फिर अगेन चैंपियन बना, तो मेडल मैंने कंटिन्यू रखे। फिर 2016 में अगेन एक अपॉर्चुनिटी आई जो स्पेक्टर की रिक्रूटमेंट

0: हुई ग्रुप बी की।
1: ओके
0: मैंने इमीडिएट मैंने ज्वाइन करा, उसके एक टेस्ट होते थे,
1: एग्जाम देने पड़ते हैं इसके जो लोगों को नहीं पता है शायद,
0: मैंने क्लियर करें। उसके बाद एक जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आपको कंफर्मेशन एग्जाम होते हैं।
1: ओके
0: चार एग्जाम होते हैं कंफर्मेशन, जो कि आपको विद इन अ 10 ईयर आपको करने हैं।
1: जी जी।
0: मैंने डिपार्टमेंट में रहते हुए उस ट्रेनिंग करी, उन एग्जाम की तैयारी करी, साइड बाय साइड मेरा गेम भी चल रहा था, साइड बाय साइड में इसकी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं इसकी भी तैयारी करता था। अपने चारों एग्जाम क्लियर करे मैंने कंफर्मेशन के, उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ ITO इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए।
1: ओके
0: मैंने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के मैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने अपने एशियन गेम्स 2018 का आ गया था, मैंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी, दोनों प्रिपरेशन चल रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 5 एग्जाम होते हैं उनमें से 4 क्लियर कर लिए थे।
1: ओके
0: और एक एग्जाम मेरा रह रहा था क्योंकि मेरा वो टूर्नामेंट से क्लैश कर गया था, मैं दे नहीं पाया था। टाइम पीरियड दिया जाता है कि जो क्लियर कर लिया वो नेक्स्ट ईयर आप आपको, जो नहीं क्लियर करा वो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। पर 2018 में मैंने अगेन मैंने मेडल ले लिया एशियन गेम में। तो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि DOPT में स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेरित करती है, देती है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक, वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन 4 इवेंट में कोई भी अगर आप मेडल अचीव करते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मेडल है, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा।
1: ओके
0: मैं स्पेक्टर तो बन ही गया था, मेरे को आउट ऑफ, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर लिए थे, ऑल्दो मैं नेक्स्ट ईयर कर भी लिया था, पर मुझे आउट ऑफ टर्न एग्जाम के, मतलब आउट ऑफ टर्न देने के बिहाव से मुझे ITO इनकम टैक्स ऑफिसर प्रमोट किया गया।
1: जी।
0: अब आउट ऑफ टर्न के बाद मैंने, मतलब मैंने ज्वाइन करते के साथ अपना गेम को कंटिन्यू रखा और साइड बाय साइड मैंने अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी ACIT ग्रुप के लिए।
1: ओके
0: क्योंकि मंजिलें आगे बढ़ती जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, एक के बाद आके बाद चैलेंजेस आते रहेंगे, वो कंटिन्यू आपको करनी है। तो मैंने अगेन मैं 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने मेडल लिया और उसके बिहाफ पे मैंने अपना सेकेंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैंने ग्रैब करा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, अपॉर्चुनिटी मिली कि ड्यू टू दिस मेरे को मिल सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में मैक्सिमम 3 ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं
1: जी,
0: जो कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT गाइडलाइंस के थ्रू आपको अवार्ड और प्रमोशन देती है। तो मैं ACIT मैंने 2023 में मैंने एज ACIT मैंने ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग हाथ के हाथ कम्प्लीट करी। पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ऑल एग्जाम और सब चीजें, इसके साथ साथ मेरा टूर्नामेंट और प्रिपरेशन कंटिन्यू रही।
1: इसके
0: साथ साथ मैंने MA साइकोलॉजी भी कंटिन्यू ओपन से करता रहा, क्योंकि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाह रहा था कि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी आई है अगर करने की, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। 2022 में एशियन गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन होकर के 2023 में हुए। अगेन ये मेरा थर्ड 2023 में मेरा एशियन गेम्स आया और डबल मेडल मैंने वापस से एशियन गेम्स में क्लिंच करे और मैं एलिजिबल हो गया अपने थर्ड और लास्ट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए। हर एक के रूल्स रेगुलेशन सब चीजें होती हैं, तो उसमें मुझे अपनी ट्रेनिंग और अपना प्रोविजन पीरियड अपना कंप्लीट करना होता है, बीच में एग्जाम्स भी सब चीजें होती हैं, वो सब कंप्लीट करते हुए आपको 2 साल आपको सर्व करना है, उसके बाद आप थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये पीरियड रहता है, ये चीजें रहती है। तो मैं यही सबसे ये कहूंगा कि अपनी एकेडमिक को छोड़ना नहीं है, साइड बाय साइड लेकर के चलना है। अगर आपने वहां पे छोड़ दिया, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन तो अच्छे पर एकेडमिक 12th भी नहीं करी उन्होंने,
1: बिल्कुल बिल्कुल उससे वो रुक जाते हैं,
0: वो रुक जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए कह सकते हैं जिम्मेवार है, ये नहीं सिर्फ कोई डिग्री ले ली और आप एलिजिबल हो गए, वो आपको चीजें सिखाती है, आपका लाइफस्टाइल सिखाती है, आपको बोलना, चीजें करना या आपको आना जाना समझ देना, मतलब एक तरह से आपको लेसन है लाइफ के। ये शायद स्पोर्ट्स के साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ खेल लिया तो काम बन जाएगा, पर खेलों के साथ साथ अगर एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाए तो आपकी तरक्की जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है, एक सिस्टमैटिक वे में होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है
1: जी। तो अभिषेक जी, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मैं कुछ चीजों में ना विजुलाइज करने लग गई थी कि किस तरीके से आप खेलते होंगे या किस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि इन फील्ड्स में एग्जाम देना, खासतौर पर से जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑलरेडी आप उसमें होते हैं और प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है, अपने आप में बहुत थकाने वाली चीज भी हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप एक्सपर्ट अपने खेल के होते हैं, फिर भी आपको दूसरों से कम्पीट करना होता है अपनी फील्ड में भी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होता है अपने मतलब उसी डिपार्टमेंट में बैठ करके, कि जहाँ पे रोज वो रूल रेगुलेशन लगाते हैं और हमें उसकी नॉलेज नहीं, एग्जाम देना, प्रिपेयर करना चैलेंजिंग होता है, फॉर्चुनेट होता है, पर स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा वो है जिसको फाइट करनी आती है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं बहुत ही कमाल की बातें कही हैं, और मैं चाहूंगी बस आप कुछ ही शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज हमारे यंग आर्चर्स के लिए और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फोन छोड़ के किस तरीके से जाएं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये बस बता दीजिए हमें।
0: देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको अभी समझ नहीं है, तो पेरेंट्स को इसमें बहुत अपना रोल अदा करना है, एक उनके साथ साथ आपको भी टाइम देना पड़ेगा, बच्चों को गार्डन ले जाइए, पार्क ले जाइए, स्टेडियम्स ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, उनके साथ साथ आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट कीजिए, आप अपना डेब्यू भी स्टार्ट कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, आप भी गेम कीजिए, जरूरी नहीं सिर्फ बच्चे ही खेलेंगे, बैडमिंटन बच्चा खेलने गया साइड में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे को भी बूस्ट मिलेगा, बच्चे को भी वो होगा कि प्रेरित होगा और आपकी नजरों में भी रहेगा और एक बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज के टाइम में दिल्ली NCR चीजों में ऐसे उलझ गए हैं, पोल्यूशन, हेल्थ, डॉक्टरों के चक्कर काटना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसीलिए है कि एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही, बच्चे की लाइफस्टाइल नहीं हो पा रही, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन इजीली बहुत इजीली बीमार नहीं होता, अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके दिमाग में बिल्कुल मतलब वो है फिजिक को लेकर के मतलब बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिव है। तो अपने बच्चों को एक्टिव रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, पर एक अच्छी हेल्थ रहेगी। बच्चा एक टाइम ऐसा भी आता है मेहनत करने के बाद एक टाइम क्लिंच होगा ऐसा कि आपकी सक्सेस आपको मिलने लग जाएगी, पर मुझे नहीं मालूम वो कब मिलेगी, 2 साल 3 साल 4 साल, पर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू तो एक क्लिंच ऐसा आएगा जिसमें आप बढ़ते चले जाओगे।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं जेन जी कह लें या जेन अल्फा कह लें, इन लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम है, वो पेशेंस ना होने की वजह से ये बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, एक वही है ना, एक हमारे में 10,000 hours लगते हैं किसी भी बड़ी विक्ट्री को अचीव करने में
1: जी,
0: अब आप गिव अप कर देते हैं 500 hours में, तो गिव अप मत कीजिए, आपको अभी 10,000 कंप्लीट करने हैं और 100% विक्ट्री आपको मिलेगी, बीच में नहीं छोड़ना आपको। तो वही सबसे बोलूंगा कि एक हार, दो हार, तीन हार, पर जीत चौथी पांचवी आपकी है।
1: बिल्कुल, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अगर आप हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बार हारेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप जीतेंगे और सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। तो अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा बियॉन्ड द गेम में आपने आज हमसे बातचीत की और आर्चरी की दुनिया से हमें रूबरू कराया, हमारे लिसनर्स को रूबरू कराया, आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत मजा आया और यकीनन हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए और भारत को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें, जिस प्रकार से अनगिनत मेडल्स लेके आपने भारत को एक एक आर्चरी की दुनिया में एक नया मकाम दिया है, ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते रहें आगे भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।
0: थैंक यू सो मच।
2: बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं बियॉन्ड द गेम में और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक कॉन्वर्सेशन रही है। आपको ये बातचीत, ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा बहुत आसान है, इट्स 8010781078। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है या आप किसी के साथ ये जानकारी जो आर्चरी के क्षेत्र से, तीरंदाजी के खेल से जुड़ी हुई शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बस आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप को प्ले स्टोर या iOS किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अनुसार। और फिर ये पॉडकास्ट आपको पूरा कभी भी सुनने को मिलेगा, कहीं भी सुन सकते हैं आप, इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और क्या पता आपके एक शेयर से एक नया खिलाड़ी हमारे देश को मिल जाए। फिलहाल बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूँ, बियॉन्ड द गेम में फिर से होगी मुलाकात एक नए खिलाड़ी और उनके कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है कि मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको अनसंग हीरोज से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, हमारे समाज, देश और दुनिया के लिए अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश करती हूँ जिन्हें मैं अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी कहती हूँ, यानी वो लोग जो मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं धरती माँ ट्रस्ट से। धरती माँ ट्रस्ट की मैं अगर बात करूँ तो इनका नाम बड़ा ही क्यूट है। मुझे याद है बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धरती माँ की सौगंध हमें बड़ी खिलाई है और हम धरती माँ की सौगंध खाते भी आए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओरिजिनली धरती माँ के लिए काम कर रहे हैं। हम सब तो सौगंधे खाते हैं और उन्हें याद करते हैं, पर ये धरती माँ की रक्षा कैसे कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं, आज इसकी कहानी इन्हीं की जुबानी। और इसके लिए मैं करूंगी स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में भवन सिंह बिष्ट जी को और दीपिका बिष्ट जी को। भवन सिंह बिष्ट जी जो धरती माँ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और दीपिका बिष्ट जो की सेक्रेटरी हैं। तो आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल भवन सिंह आप जी से करती हूँ। भवन सिंह जी, मुझे बताइए, धरती माँ ट्रस्ट, आप लोग ना पर्यावरण पर बहुत सारा काम करते हैं, पर मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। मतलब शायद ही मैं किसी ऐसे एनजीओ से मिली हूँ जो कॉन्शियसली सोचा हुआ नहीं है या उसके पीछे कोई कारण नहीं था। तो अगर मैं धरती माँ ट्रस्ट की बात करूँ तो इसकी शुरुआत कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: जी, सभी देशवासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं धरती माँ ट्रस्ट की ओर से सादर नमस्कार करता हूँ। धरती माँ ट्रस्ट की जो नींव रखी एक दिव्य प्रेरणा के माध्यम से, जो मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे यह नाम दिया कि जिस तरीके से मुझे बचपन से ही एक छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको यूजफुल बनाना, यह मेरी आदत में था। और कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में ये जो वाइब्रेशन गई थी, उस माध्यम से मेरे गुरुदेव ने ही मुझे यह सुना होगा कि इस कार्य के लिए, कि उन्होंने इस नाम को मुझे दिया कि धरती माँ नाम रख करके एक बड़ा आपने काम करना है पूरे विश्व के लिए। तो यह नाम मुझे मिला और इस पर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई ऐसी एनजीओ बनाएं, हम छोटा सा अपना एक जो जिससे हमारी फैमिली अच्छे से उसका पालन पोषण हो सके उस तरीके से काम करता था। मैं अपना फर्नीचर का काम था हमारा, और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में एक हम इंटीरियर का, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट भी आज भी है, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से कर रहा था। तो ये बीच में इनिशिएटिव जो मेरे जीवन में आया, तो एक मेरे लिए एक ज़िंदगी का नया मोड़ था जो शायद मेरे लिए ईश्वर ने चुना होगा। तो इस फील्ड में फिर हम आगे बढ़ते रहे। और पर्यावरण क्या है, धरती को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके, फिर धीरे धीरे इस चीज़ पर हमने स्टडी करी और उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमने फोकस किया, उन पर उनको प्रयास किया कि इसको मानव समाज तक हम एक अच्छा संदेश कैसे दे सकें। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा एक टॉफ़ी या बिस्कुट का जो रैपर होता है उसको हमने संभालना शुरू किया, उसको वेस्ट के डब्बे में हमने डालना बंद किया कि ताकि अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो हमारे द्वारा ये धरती बिल्कुल दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। यहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी।
0: वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम आज भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे डंपिंग यार्ड्स बने हुए हैं और हमारे घर से कूड़ा सुरक्षित तरीके से चला जाता है, हमारा घर बहुत ही साफ रहता है, तो आगे ये वेस्ट का क्या होता है, हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इतने सालों में आप खुद देख रहे हैं, चाहे आप रोज़ अगर गुड़गांव जाते हैं तो बंदवाड़ी का वो डंपिंग यार्ड देखते होंगे, फरीदाबाद के आसपास आप देखते हैं तो अलग अलग खत्ते बने हुए हैं और वहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि ये वेस्ट काली पन्नियाँ, नीली पन्नियाँ भर भर कर और उन्हें मवेशी खाते हुए। सो कहीं ना कहीं हमने इस वेस्ट को अब खुद ही अपने पर्यावरण का हिस्सा बना लिया है और अपने घरों से निकल कर शायद हमारी सड़कों पर ये वेस्ट आ गया है। लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस पर कोई है जो काम कर रहा है और वो है धरती माँ ट्रस्ट। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करने वाली हूँ, बस उससे पहले लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम बात कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के बारे में। धरती माँ ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं BS बिष्ट जी, वो मेरे साथ बैठे हैं और उनके सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, सो एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं और क्या है आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पूरी?
1: मेरा नाम दीपिका बिष्ट है और हम लोग सब लोग NGO में मिल के काम करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अपने लेवल पे, अपने सेल्फ लेवल पे हम लोग धरती पर वेस्ट ना पहुंचाए
0: जी,
1: जितना हो सकता है उसको बचाया जा सकता है, रीयूज करें। हम लोग फर्स्टली मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो हम लोग पॉलीथीन का बैग का यूज़ बिल्कुल नहीं करते, अपना एक कॉटन का बैग लेके जाते हैं, सारी सब्जियों को उसी में कैरी करते हैं और घर पे आके उसे कैटेगरीराइज कर देते हैं। जितना हो सकते हैं हमने आसपास हम जितने लोगों को मिलते हैं उनको ये मैसेज जरूर देते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है, हमारे जो पॉलीथीन है वो डेली यूज में आती ही आती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बस जितना हो सकता है अपने सेल्फ लेवल पे उसको अवॉइड करें। और हमारी NGO जो है पर्यावरण के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, तो हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जगह जगह जा करके, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि एक यूथ ही है जो इसको अच्छे से समझ सकता है और जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो उसको जल्दी हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, समझते नहीं हैं। बट जो यूथ है उनको पता है कि हाँ आने वाले टाइम में यही चीज़ हमें प्रॉब्लम देगी, तो हम सस्टेनेबल के व्यू पर काम करते हैं। तो उसका अल्टरनेट हमने मार्केट में ये निकाला, फिर हमने पूछा कि आप इसका अल्टरनेट क्या बताएंगे, तो फिर हमारे हमने बैग्स बनाने शुरू करे
0: जी,
1: कॉटन के बैग्स हो गए, जूट के बैग्स, ताकि उनसे हम बचाया जा सके मार्केट को और अपनी एनवायरनमेंट को।
0: दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। सो इसको सही में अगर आप चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आदत हमें पड़ जाती है, फिर चाहे वो रोज सुबह उठकर चाय पीने की है, कॉफ़ी पीने की है, या फिर एक आदत है कि आप सड़कों पर चलते नहीं हैं, आप सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर घंटों बात करते हैं, या आप अपने घर का वेस्ट जो है आज भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, उसे इकट्ठा करके एक काली पन्नी में डालते हैं और उसे कूड़े वाले को दे देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की आदतें हैं। आपके घर में RO होगा, लेकिन आज भी RO का जो पानी है वो यूं ही, जो वेस्ट वाटर है वो यूं ही बहता रहता होगा। ये सब हमारी आदतें हैं और एक लंबे समय से इन आदतों को हमने पाल लिया है और फिर ये आदतें जाती नहीं हैं। और जैसा दीपिका ने कहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, या फिर कहना चाहिए वो लोग हैं जो अब मिडिल एज हैं, उनका माइंडसेट बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल पा रहे हैं और वो है आज की जेनरेशन। उस जेनरेशन को ये समझ में आता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, और आप घर से नहीं देश से बाहर निकलिए तो विदेश में जाकर आपको चकाचक सड़कें मिलती हैं, खूबसूरत सड़कें मिलती हैं और वहाँ पर कूड़ा नहीं है। सो मैनेज तो किया जा सकता है, पर ज़रूरत है खुद को बदलने की। सो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को बदलने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिन्हें क्रिएट करती है धरती माँ ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक छोटा सा क्लॉथ बैग लेकर जाया जा सकता है, तो आप भी सब्जी खरीदने के लिए एक पहल या एक बदलाव कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि अब है फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड फील लाइक।
2: हाँ, क्या कहा?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट जी और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं इनके एक बड़े खास कार्यक्रम की, स्पैरो कंजर्वेशन। जी हाँ, स्पैरोस को बचाने की बहुत ज़रूरत है। एक ज़माने में हमारे घरों के बाहर या फिर अगर कहना चाहिए छतों पर चींची चींची करती छोटी छोटी चिड़ियाएँ होती थी, बट आजकल ख़त्म हो गई हैं। आजकल हमें कहीं कहीं पर सोसाइटीज़ के बड़े बड़े घरों में या फिर शॉफ्ट्स में हमें सिर्फ कबूतर नज़र आते हैं। सो क्या कारण है इन चिड़ियाओं के चले जाने का, और वो जो वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं होती थी वो कहाँ लुप्त हो गई हैं जानते हैं। सो किस प्रकार से इन चिड़ियाओं को बचाया जाता है भवन सिंह जी?
1: सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, गौरैया हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। जो पहले जिन घरों में गौरैया रहा करती थी वो इतने जानकार थे, इतने समझदार थे और इतने साइंटिफिक थे कि उनके लिए अपने घरों में ही उन्होंने उनके लिए घोंसला छोड़ दिया था, जगह छोड़ दी थी दीवारों में, और ज़मीन से लेकर के 10 फीट के हाइट पे, 15 फीट के हाइट पे, 9 फीट के हाइट पे वो होल होते थे जहाँ पर गौरैया रहा करती थी। तो धरती माँ ट्रस्ट ने उन अपने पुराने दादाजी के घर के उस जगह को देखते हुए, उन होलों को देखते हुए, यहाँ NCR दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव में भी इस इनिशिएटिव कदम को इस तरीके से मार्केट पर पहुँचाया ताकि हम अपनी गौरैया को बचा सकते हैं। और हमने समाज में लकड़ी के पुराने, जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं फैक्ट्रियों से जो वेस्ट बच जाता है उनको हम कलेक्शन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वेस्ट हमें दे दीजिए, कहीं पे हमें वेस्ट फ्री में भी मिल जाता है और कहीं हमें ख़रीद के भी लाना पड़ता है, तो उसका उसके लिए निश्चित जो उसका जो साइज़ है 9x7x8 साइज़ का हम उसका घोंसला तैयार करते हैं और 10 फीट की 9 फीट की हाइट पर उसको स्टेबल कर देते हैं। और इवन आप मुश्किल से उसको लगाएंगे, गौरैया अगर आसपास देख रही होगी तो उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है और खुश होकर के वो धन्यवाद देती है प्रकृति को, मानव को, कि किसी ने मेरे बारे में सोचा और मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूंगी।
0: सो भाई देखिए, अगर हम स्पैरो कंजर्वेशन की बात करें तो न सिर्फ अब हम खुद ही ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब सोसाइटियाँ बन रही हैं और पुराने जमाने के घर नहीं रह गए हैं, बड़े बड़े बंगलोज नहीं रह गए हैं, तो इन सभी जीव जंतुओं के घर छिन गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जंगल खत्म हो गए तो सारे के सारे जानवर, अगर आप देखें तो रोज सुबह अगर आपको अपनी पूरे सोसाइटी में ढेर सारे बंदर नजर आते हैं तो दरअसल ये बंदर तो अपने ही जंगलों में घूम रहे थे, बट परेशानी है कि इनके जंगलों को काटकर हमने सोसाइटी बना ली है, तो अब ये बंदर कहाँ जाएंगे या फिर ये बाकी जानवर कहाँ जाएंगे। सो इन जानवरों को अपना घर बनाने की भी जरूरत है, लेकिन बंदरों के लिए शायद आप बड़े घर नहीं दे सकते हैं, जिराफ के लिए नहीं दे सकते हैं, एलिफेंट के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गोरैया के लिए तो आप अपने ही इस घर के अंदर जगह बना सकते हैं। सो कोशिश करिए कि लुप्त होती हुई गोरैया के लिए आप छोटा सा एक घर जरूर बनाएं। सो अपने घर में एक छोटा सा घोंसला बनाने की जरूरत है, और उस घोंसले को अगर आपने प्रोक्योर करना है तो उसके लिए आप धरती माँ ट्रस्ट को जरूर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको रेडीमेड ऐसे घोंसले देंगे जिसमें गौरैया रहकर खुश रहेगी और आपके घर में चहलकदमी मची रहेगी। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट से हमारे साथ प्रेसिडेंट बी एस बिष्ट और साथ के साथ सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट जी हैं। अब हम आपसे एक बड़ा खास सवाल पूछना चाहेंगे पवन सिंह जी, और पवन सिंह जी वो ये है, आपके दो बड़े खास इनिशिएटिव हैं, नव सृजन टूरिज्म और उसके साथ साथ वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट। मुझे ये बताइए, जो वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट है और नव सृजन टूरिज्म है, दरअसल इसमें आप क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। नव सृजन एक हमारा प्रोजेक्ट है, धरती माँ ट्रस्ट ने इसकी जब नींव रखी धरती माँ ट्रस्ट की, उसके बाद हमने एक नव सृजन एक अलग से हमने प्रोजेक्ट बनाया कि इसके अंतर्गत हम किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। नव सृजन जो वेस्ट क्राफ्ट है, हमारे घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट है, हम मानव समाज तक हर इकाई उस हर एक वर्ग तक हम पहुँचते हैं, जिस तक हमारी पूरी प्रयास रहते हैं कि हम किन किन को इस बातों को कि इस मैसेज को पहुंचा सके। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताने जाएंगे, स्कूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नींव है, वो उन बच्चों को हम सिखाते हैं कि वेस्ट को हमें किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उस किस तरीके से उसको अलग अलग करना है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में इस कचरे को दो तरीके से, तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको दो तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, गीला कचरा और सूखा कचरा। हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को, गीले कचरे को अलग ग्रीन कलर के आप किसी भी तरह का एक डब्बा बनाइए, उसमें रखिए, और सूखा कूड़ा जो होता है उसको एक दूसरे रेड कलर के डब्बे में उसको आप रखिए, ताकि उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो वेस्ट है हम उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको हम आराम से ज़मीन पर गाड़ भी सकते हैं, उससे हमारी खाद बन सकती है। और सूखा जो कूड़ा होता है उससे आप समाज के उस व्यवस्था को, जो समाज ने, सरकार ने हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहां तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से हम, जैसे हमारे घरों में आजकल गाड़ियाँ आती हैं वेस्ट को लेने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलेक्शन के तौर पर करते हैं, तो उनको हम वो सूखा कूड़ा देंगे तो उनको बहुत ईजिली उसको अलग अलग करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और गीले कूड़े से जो आप खाद बनाएंगे उससे एक आप जैविक ताकि और आगे बढ़ सकते हैं, उससे आप कंपोस्ट से अच्छी तरीके से खेती भी कर सकते हैं। आप अपने घर में बालकनीज में छोटे छोटे पौधों में अच्छी सी खाद आप बनाएंगे तो वो गीला कचरा हमारे बाहर जाने से बच जाएगा। और सूखे कूड़े से आप जैसे टॉफ़ी के, बिस्किट्स के, नमकीन्स के, कई तरह के जो आप रैपर्स हैं, उन रैपरों से भी आप बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। और कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, उसको एक छोटा सा एक ऐसा रूप दे सकते हैं। पुराने घर में हमारे कपड़े बहुत पड़े रहते हैं, उसका एक छोटा सा थैला बना करके उसमें आप भरते जाइए, एक कुशन का, एक तकिए का काम भी करेगा, आपके बैठने के काम आएगा। और जिस भी प्रकार का जो भी वेस्ट, जैसे क्लॉथ है, आज हमारे मार्केट में कपड़ों की ऐसी डिमांड आ रखी है, हम कपड़ों को भी यूँ ही फेंक दिया करते हैं डंपिंग यार्डों में। और हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ कपड़े की बहुत सख्त ज़रूरत हो, ठंडियों में आप देखें बहुत से लोग ठिठुरते रहते हैं, बैठे रहते हैं स्टेशनों में, बहुत हम जगह जगह घूमते हैं, हर स्टेशनों में आप देश के कई राज्यों में आप पहुँचे, जैसे गरीब जो लोग रहते हैं उन तक हम इस कपड़े को पहुँचा सकते हैं। आप धरती माँ ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि अपना घर का जो भी वेस्ट है, वो चाहे किसी भी तरह का वेस्ट है, वो भी आप हमें दे सकते हैं एज ए डोनेट के तरीके से आप। और इन चीज़ों को आप यूज़फुल कैसे बनाएंगे, इसको आप क्रिएटिव कैसे करेंगे, हमारी जो यूट्यूब चैनल है धरती माँ ट्रस्ट के नाम से, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, धरती माँ .org पे भी विजिट करें, उससे भी आप इन बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं।
0: सो दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि वेस्ट क्राफ्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट है उसको आप बहुत खूबसूरत क्राफ्ट में बदल सकते हैं और उसे मैनेज करते हुए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे ना तो आप वेस्ट को कूड़े में जाने देंगे और उसे धरती में वापस जाने से अच्छा धरती माँ को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ, जिसके प्रेसिडेंट बीएस बिष्ट और सेक्रेटरी दीपिका बिष्ट मेरे साथ बैठी हैं। दीपिका, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप इन कामों को करने के लिए जाती हैं, खास तौर पर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूंगी, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं? क्योंकि ना, मुझे पता है आप लोगों को जाकर कितना भी समझा ले, बट क्योंकि लोगों का माइंडसेट नहीं बदलना है, लोगों की आदत नहीं है, सो बड़ा मुश्किल होता है। सो किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं?
1: जैसे हम किसी को फर्स्ट समझाएंगे
0: जी,
1: तो वो तो कहते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा
0: जी,
1: पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, ये तो होता ही रहता है, हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: सरकार अपना काम कर रही है। तो वो लोग इसको समझते नहीं है, पर हम जितना हो सकता है हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। जो यूथ होते हैं वो थोड़ा बहुत समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम फॉलो करेंगे, पर कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं, फिर वो भी जो नेचुरली सब कर रहे हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं। और बड़े लोग हैं वो तो मोस्टली सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है उस चीज़ को। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
0: वाकई ये बिल्कुल सही है, मतलब दीज आर सम रियल टाइम चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। आप सोचिए ना कि आप जाएंगे और आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आपके आज के बाद से आपके घर का जो कूड़ा है उसे ना सेग्रीगेट करिए, गीला अलग करिए, सूखा अलग करिए। तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं कि आप अपना काम खुद करिए, ये तो सरकार की ड्यूटी है कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल देंगे, वहाँ जाकर ये कूड़ा आगे सेग्रीगेट हो जाएगा। सुन, सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली सेग्रीगेट हमेशा सोर्स पर होता है, यानी जहाँ कूड़ा बन रहा है वहीं आप उसे अलग कर सकते हैं। एक बार आपने सूखे कूड़े को गीले कूड़े में मिला दिया, तो बड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि वो जो गीला कूड़ा है वो सूखे कूड़े को भी गीला कर देता है। उसके बाद आप उसको वापस सुखाएंगे, एक प्रोसेस सोचिए कि आपके गीले और सूखे कूड़े को जब आप मिक्स कर चुके हैं, तो कहाँ कौन सज्जन है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके इस मिक्स करे हुए कूड़े को पूरा पहले वो अलग करेंगे, फिर सारी चीज़ों को अलग करने के बाद सेग्रीगेट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। सो ये कुछ खास चैलेंजेस हैं, हम अपनी धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। सो चलिए हम सब भी वो बने जो धरती माँ ट्रस्ट की तरह कॉन्शियसली इस वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करें। और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं धरती माँ ट्रस्ट के साथ। धरती माँ ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है पर्यावरण पर, जिनके प्रेसिडेंट बी एस बिश जी और दीपिका बिश जो कि सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं। अब भवन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम कितनी बड़ी है और आप लोग दरअसल किस प्रकार काम करते हैं। सो अवेयरनेस फैलानी है, फिर साथ के साथ लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट के क्राफ्ट्स हैं, आप लोग स्टॉल्स लगाकर इसका सामान भी बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि वेस्ट में से सामान कैसे बनाया जा सकता है। सो किस प्रकार करते हैं
1: इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में किस प्रकार का जो कूड़ा होता है
0: जी,
1: उसको हम कैसे हम उसको यूजफुल बना सकते हैं
0: जी?
1: ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे घर का जो किसी भी प्रकार का जो कूड़ा है, उस कूड़े को हमने ये समझना है कि ये व्यर्थ नहीं है
0: जी।
1: इससे भी हम कुछ न कुछ अर्न कर सकते हैं, इससे भी हम कुछ वेल्थ में इसको बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा, हमारी पुरानी जीन्स की पैंट है, हमने फेंकनी है, अब हमने नहीं पहननी है, उसका आप थैला बना लीजिए। उसका जब आप थैला बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, तो आपका साल या दो साल आराम से वो थैला आपके काम करेगा और एक अच्छी फीलिंग भी आपको देगा कि मैंने अपने हाथों से ये बैग बनाया। और कई सारी ढेर सारी पॉलीथीन को आप बचा सकते हैं। और जो हमारी टीम काम करती है, हम घर से ही इसका प्रयास शुरू करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि हमने जो भी प्रकार का जो कूड़ा है उसको हमने कैसे किया, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा इसको आपने अलग अलग रखना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, समाज की एक नींव कहाँ से रखी जाएगी, अपने घर से। अपने बच्चों को आप सिखाइए, अपनी आदत में बदलिए उसको कि हमने उसको वेस्ट में डालना ही नहीं है। अब इसका करेंगे क्या, लोगों की यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अब हमें इसका, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसको सेग्रीगेट करने का, इसको अलग अलग करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश का जो हमारी जेब से पॉकेट में से जो रोज के आपके बगैर कहे, आपको बगैर समझे हुए आपके 50 रुपये यूँ ही निकल जाया करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि आप रोज़ाना 50 रुपये दे रहे हैं भारत सरकार को। कैसे, समझिए। हमारे घर से जो भी कूड़ा ले जाने वाला व्यक्ति है उसको सरकार सैलरी देती है, कहाँ से देगी, हमारी पॉकेट से देगी। उसके बाद उसने बड़ी गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र करना है, उनको सैलरी कहाँ से जाएगी, हमारी जेब से जाएगा। अब उसके बाद जो ट्रक जाएगा डंपिंग यार्ड में जाएगा, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी कौन देगा, भारत सरकार देगी। भारत सरकार हमारी जेब से निकालेगी, हम जो टैक्स पेयर करने वाले हैं उनकी जेब से जाएगी। अब उस पर सेग्रीगेट करने वाले जो लोग हैं, वो गीले कचरे को और सूखे कचरे को जब अलग अलग करते हैं, उनमें से जो निकलने वाली जब इकट्ठा होता है उसमें डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलती हैं, तो बताइए सो दोस्तों, वो हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान आँख वाले लोग हैं, वो कितनी मुसीबतों के साथ हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे घरों के आसपास हमारी गंदगी ना हो उसको व्यवस्थित करने के लिए, वो इतने गहरे डीपली हम काम कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड, वो दिन रात सूंघते रहते हैं और वो इस चीज़ से बीमार भी हो जाते हैं। आज डंपिंग यार्ड जितने भी बन चुके हैं हमारे देश में, आप वहाँ के आप देखिए, दिल्ली NCR के आसपास आप जब लोग जाते होंगे तो कितनी, मतलब कितनी बदबूदार जो स्मेल जो वहाँ से आती है, उससे हम प्रदूषित भी हैं और आप इसको, मैं 100% ये कहना चाहूँगा, उससे हम लोग बीमार भी रहते हैं। तो जो हमारी टीम है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि उसको हम अलग अलग रखें और उससे फिर यह निष्कर्ष निकालें अब इसको हम किस तरीके से इसको वेल्थ में बदल सकते हैं। जैसे बैग बनाना है, पेंटिंग्स बनानी है और उसके फ्लावर पॉट बनाने हैं, इवन धरती माँ ट्रस्ट जो पॉलीथीन होती है उसकी चप्पलें भी बनाते हैं। हम जगह जगह जा कर के स्टॉलों के माध्यम से अपने गुड्स को बेचते हैं और समाज को ये समझाते हैं कि आप जो है इस चीज़ को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, हमने राष्ट्र को, अपने पूरे विश्व को बदलना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, उसको दुनिया से एक भारत को अलौकिक स्थान दिलाना है। हम उनको संदेश देते हैं कि हम अपनी धरती पर वेस्ट को जाने से यहीं से शुरुआत उसकी करते हैं। हमारी ऐसी इस तरीके से पूरी टीम काम कर रही है

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविता जिसका शीर्षक है बली बली जाऊं, इसमें कहते हैं, भारत पे सैया मैं बली बली जाऊं, बली बली जाऊं हियरा लगाऊं,

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हींग के बारे में। भारत में हींग की खेती की पहल की अगर हम बात करें तो हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड बायोलॉजी यानी CHAB में विशेष अनुसंधान किया जा रहा है। यहां बीजों से तैयार पौधों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया गया है और अलग अलग स्थानों पर परीक्षण चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे और शुष्क क्षेत्रों को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। ये प्रयास देश में पहली बार हो रहा है किसान भाइयों, और इसके सफल होने पर न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। लेकिन अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं हींग का परिचय बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है। हींग का वैज्ञानिक नाम है फेरियोल असाफोरेटा और ये एपीएसी कुल का बहुवर्षीय पौधा है। ये मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी जड़ों से निकलने वाला दूध या पदार्थ सुखाकर हींग बनाई जाती है और भारतीय रसोई में हींग का उपयोग मसाले के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात आप जानते ही हैं, खासकर दाल और सब्जियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का व्यापक जिक्र मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, हींग की खेती के लिए बीज और पौध तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी सुन लीजिए। हींग के जो बीज होते हैं ना, वो हल्के भूरे रंग के और चपटे होते हैं, लेकिन इनमें निष्क्रियता होने के कारण ये आसानी से अंकुरित नहीं होते। इसलिए बीजों को अंकुरित करने के लिए विशेष उपचार की जरूरत होती है, जैसे कि ठंडा उपचार। बीजों को आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ताकि प्राकृतिक ठंड के प्रभाव से उनकी निष्क्रियता टूट सके। इसके अलावा हींग की खेती में प्रवर्धन और प्रजनन, ये सब क्या होता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आपको मालूम ही है कि हींग एक बहुवर्षीय पौधा है जिसमें फूल आने में लगभग 5 साल का समय लग जाता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और एक ही पौधे में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। कीटों के माध्यम से इसका परागण होता है। मई जून के दौरान इस पर फूल आते हैं और अगस्त तक बीज तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस पौधे से बीज लिया जाए उससे हींग का रस नहीं निकालना चाहिए। अब मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ खेत में बुवाई और खेत की तैयारी के बारे में। हींग की खेती के लिए ढलानदार और अच्छी जल निकासी वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ धूप सीधी पड़ती है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सीधे बीज बोने के लिए लगभग 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर पहले नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए जाएं, तो बीज की मात्रा कम हो सकती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है 0.75 से 1 मीटर रखनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी ये खेती अच्छी हो सकती है और आपको इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हींग की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता के बारे में आपसे बातें करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
1: दर्द

0: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, हींग के बारे में आज आपसे बात हो रही है तो थोड़ी जानकारियां और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हींग के लिए ठंडा और शुष्क वातावरण सबसे उपयुक्त होता है। ये पौधा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान और 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम तापमान को सहन कर सकता है। इसके लिए अच्छी धूप जरूरी होती है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, इसके लिए सबसे बेहतर रहती है। लेकिन जल भराव की स्थिति इस फसल के लिए बेहद हानिकारक होती है। हींग की खेती के लिए सिंचाई और उसकी देखभाल की जब बात आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। देखिए किसान भाइयों, हींग की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। रोपाई के बाद शुरुआती 1 महीने तक 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद जरूरत के मुताबिक ही पानी दें, क्योंकि ज्यादा पानी या जल भराव से पौधे खराब हो सकते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करना भी जरूरी है ताकि खरपतवार भी कंट्रोल रहे। आगे आपसे बात करूंगा हींग के उत्पादन के बारे में और उसके संग्रह के बारे में। सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: वाला जिया।
1: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, हींग के बारे में बात चल रही है और मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा इसका उत्पादन और संग्रह के बारे में, लेकिन उत्पादन और संग्रह की बात करूंगा बाद में। फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है हींग की खेती के लिए लागत और मुनाफा। हींग की कीमत तो गुणवत्ता के अनुसार काफी ज्यादा होती है, जो लगभग 5,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। एक पौधे से करीब 20-25 ग्राम हींग प्राप्त होती है। अगर एक हेक्टेयर में खेती की जाए तो 5 साल के बाद लगभग 9 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है। हींग की खेती भारत में एक उभरता हुआ और लाभकारी विकल्प बन सकती है। सही जलवायु और तकनीक के साथ आप लोग इस फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर सरकार और अनुसंधान संस्थानों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आने वाले समय में भारत हींग उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, हींग की बात चल रही है तो मैंने आपसे वादा किया था बताऊंगा इसके उत्पादन के बारे में और संग्रह के बारे में। हींग के पौधे से उत्पादन लेने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। फूल आने से पहले पौधे की जड़ में चीरा लगाकर दूध या राल निकाला जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक राल निकलना बंद ना हो जाए। इस राल को सुखा कर हींग बनाई जाती है और ये आंसू, मांस और पेस्ट जैसे अलग अलग रूपों में बाजार में उपलब्ध होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजी सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइव। ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, द USP, एवरीथिंग। बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुमेह 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते

है टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाई डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री, वी आर एड्रेसिंग इट, द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहां पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो है वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केटप्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाई इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके, इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

la boom, whir, whir. Jingle la la boom, jingle la la boom, jingle la la boom. वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर सभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज। ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए। होता है ना ऐसे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। So that's how things are working. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइफ।

ತಾನು ತಾನ ನದರೆ ನದಿ ತಾನ ನದರೆ ತಾನು ತದರೆ ನಾ ಸಪ್ತ ಸುರನ ತಿಲಕ.

ಸಪ್ತಸುರನ ತೀ

धारा कृता चरण धरण धरत पाग परत नहीं परन झन के

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मा 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी

सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA. सो देर आर यू नो प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए. इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है. रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस. जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत यू नो अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीजें कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं. मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं. वो अच्छी बात यह है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है. आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है. ऑल डिपेंड्स कि आपके पास यू नो कितना कैपिटल है. सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे फेजेस आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकेंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत इजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो इजीली खुद से नेविगेट उसको करके, कोई भी इंसान अगर आए तो वो इजीली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, आप एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करें, इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहां पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिलाकर के एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, प्लान मतलब प्लान। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान होते हैं। जस्ट किडिंग। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योर टेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहां पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप अर्नर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज़ कि यहाँ पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है, जो बहुत ब्रूटल है, वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी। एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीजें हो जाती है हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को केटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहां पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है। छोटे शहरों में ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है। बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज को आवाज दी। So instead of selling an annual policy of ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, small ticket insurance बनाया, contextual insurance बनाया, easy onboarding करी, low annual premiums रखे, ठीक है, जहां पर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने केटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी। दैट इज द थिंग। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की। कौन है फाउंडर, विल टॉक अबाउट इट, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील

बिना वक्त गवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कार क्रू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इन्हें बहुत सारी चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है, जहां पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, जीएसएफ एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। एंड ही गॉट जस्ट वन पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं, जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि IIT ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, देन इसके अलावा खुद ने कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या समहाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की USP की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मेरा नाम है सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी हमारी आज की बीमा प्लान, और अब यहाँ पर बात करेंगे यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फर्स्ट यूएसपी आती है माइक्रो इंश्योरेंस फॉर अनडिजर्व्ड इंडिया। बीमा प्लान जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसी प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रांड के साथ कम्पीट करने का काम नहीं कर रही। इनका बहुत सिंपल सा फोकस है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। कोई ग्लैमरस बिजनेस पोजीशनिंग नहीं करी इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल पर जो है गेम अपना एक्सेल किया, जहाँ पर लोगों को जरूरत है इंश्योरेंस की, पैसे नहीं है, तो उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। एम्बेडेड इंश्योरेंस मॉडल इन्होंने दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कस्टमर्स कम बाय इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में इन्होंने जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे थे वहाँ पर अपना इंश्योरेंस जो है एम्बेड किया, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम हुआ, डिस्ट्रस्ट कम हुआ, अवेयरनेस बैरियर्स भी इन्होंने कम जो है यहाँ पर कम किए। एंड दैट्स हाउ ये कंपनी यहाँ पर निकल के आई। मतलब भाई सीधे तौर पर अगर आप किसी को बोलोगे इंश्योरेंस खरीद लो तो इंसान कतराएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को स्कूटी खरीदनी है और उसको बोला जाए यार इसमें 100-200 रुपये या 500 रुपये कुछ और दे दो और तुम्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो कस्टमर थोड़ा जल्दी उसको लेकर जो है रिस्पॉन्ड करता है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये बात हमें अब समझ में आ रही है डिजिटल इंडिया, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है वर्नैकुलर प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेट वेव है दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो यूजर्स। यहाँ पर tier 2, tier 3 ग्रोथ मैटर करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। अभी आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जिस कंपनी का कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर किसी ब्रांड का कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है, कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रही है, तो उस कंपनी के सामने कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उसकी वजह भी है कंटेंट इज स्टोरी, स्टोरी ब्रिंग्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंग्स मोर पीपल इन। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल स्टैक इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने खुद से तैयार किया है। सो बीमा प्लान प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इंटीग्रेशन, पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम, कस्टमर एंगेजमेंट, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, इंश्योरेंस APIs। सो दे आर नॉट जस्ट सेलिंग पॉलिसीज, दे आर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द USPs ऑफ दिस कंपनी। आई होप यहां तक आप समझ पाए हैं हमारी आज की कंपनी को। अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.0 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के बहुत सारे की ड्राइवर्स हैं, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि राइज ऑफ UPI एंड स्मार्टफोन जब से आया है, लोगों की चॉइसेस काफी चेंज हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए और लोगों की हेल्प हुई है। बेसिकली उनके पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें समझ में आ गए, ठीक है। UPI, ई आधार, चीप इंटरनेट, इन चीजों को कैसे इनकेश किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश ऐसे नहीं कि किसी को कुछ गलत बेचा जाए, बट उसी में कुछ ऐसी चीजें जो उनकी नीड भी है और इसी इकोसिस्टम में कहीं पर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना अमेजिंग, कितना स्मूथ हो जाता है ना। सो स्टार्टअप्स में टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द आइडिया इज बैड, बिकॉज मार्केट या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट आ रहे हैं। इसलिए सही टाइम पर सही चीज जो है ट्रिगर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल सिंप्लिसिटी। इंश्योरेंस को लेकर के एक साइकोलॉजी है कि भैया बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है बेचना, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। प्लस इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी नहीं होते हैं, ट्रस्ट भी बहुत लो है, पेपर वर्क बहुत इरिटेटिंग है। तो यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, प्राइसिंग अपनी अफोर्डेबल कर दी, सबको एक्सेस दे दिया, ऑनबोर्डिंग को स्मूथ बना दिया एंड बूम, कंपनी ग्रो करने लगी। सो दीज आर द थिंग्स। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि मार्जिन बहुत थिन है, कस्टमर ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्लेम का एक्सपीरियंस डिटरमिन करता है कि रिटेंशन कैसा होगा, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी बहुत वीक है इंडिया में, बट स्टिल दिस कंपनी इज कोपिंग अप एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि ये कंपनी बीमा प्लान इज नॉट जस्ट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रीडिजाइन हाउ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीचेस ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज द वन लाइनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, जहां पर ट्रस्ट लेवल लो थे, वहां पर भी एक गैप ढूंढा, उसको भी फिल किया और लोगों का ट्रस्ट गेन करके ये कंपनी मार्केट में कूद पड़ी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो ये हमेशा होता है, आपको कुछ ना कुछ नया देखना होता है, गैप देखना होता है, दैट्स हाउ वी ग्रो। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर शो अच्छा लगा है तो 8010781078 पर कोई वाइन लाइनर मैसेज छोड़ दीजिए मेरे लिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजे सागर आया हूँ लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। अब लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। ये शो हमारा बहुत खास होता है, वो क्या है ना कि इस शो में हम लोग बात करते हैं एक्सपर्टीज की, इस शो में हम लोग बात करते हैं स्किल्स की। मोरओवर यहाँ पर हम हर बार एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो किसी भी डोमेन से हो सकते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर इस शो के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें हम बता सकें। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यम। सत्यम एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, साथ साथ उन्होंने हाल फिलहाल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। तो सत्यम से हम लोग बात करेंगे थिएटर के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, मुंबई की कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सत्यम से आज जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सत्यम का। सत्यम स्वागत है।
1: हेलो भैया, थैंक यू भैया मुझे बुलाने के लिए।
0: सत्यम, मैं सबसे पहले आपके डोमेन के बारे में जानना चाहूंगा, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं अपने शब्दों में, एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल क्या है।
1: ओके, सो अभी मैं 2024 में मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा था थिएटर आर्ट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद मैंने अपना नाटक करने के लिए एक थिएटर ग्रुप खोला है जिसका नाम है रंगरेज। तो उसमें मैं नाटक लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ और उनमें एक्टिंग भी करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल और नए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो मैं रील्स ही बनाता हूँ, तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा ये अभिनय का कीड़ा, थिएटर का कीड़ा, ये उपजा कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
1: स्कूल में क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं तो वो थिएटर करते थे, जब मैं 10th में था तो वो कॉलेज आ गए थे मानव रचना से ही। तो उनको देख के कि उन्होंने थिएटर शुरू किया तो साथ में मुझे लगा कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। और ये वो टाइम है जब यूट्यूब और नेट काफ़ी आ गया था, जियो रेवोल्यूशन जब हो रहा था, तो उस वजह से मैंने गुफ्तगू के एपिसोड देखे यूट्यूब पे, तो समझ में आया कि मंडी हाउस एक जगह होती है तो वहाँ पे जाके आप थिएटर कर सकते हो। तो बस वहीं से था, मैं 10th में था तो मुझे था कि किसी तरह मुझे पढ़ाई करके अच्छी सी मुझे डीयू में जाना ताकि मैं थिएटर कर सकूँ। तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे और मैं डीयू जा सका, तो वहाँ से मैंने थिएटर शुरू कर दिया। फिर चीजें अपने आप धीरे धीरे खुलती गई।
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब मेनली भैया को देख। हाँ सॉरी,
0: हाँ मैं ये अब जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये बताइए कि थिएटर ने आपके अंदर क्या बदलाव दिए, क्या चेंजेस आपके अंदर आए थिएटर करने के बाद जो आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली थिएटर से होता क्या है।
1: बिल्कुल, सो सबसे पहले मैं 17 साल का था जब मैं कॉलेज गया डीयू में, आचार्य नरेंद्र करके कॉलेज है साउथ कैंपस में, वो क्या कहते हैं गोविंदपुरी में है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ की थिएटर सोसाइटी में मैंने अपने आपको एनरोल कर लिया, किस तरह मैंने ऑडिशन दिया और मेरा हो गया था ऑडिशन। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में और देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत ही इग्नोरेंट तरीके से मैं अपनी जिंदगी चला रहा था और मेरी लगभग 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं था मेरे को। तो जब मैं वहाँ गया और हम वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाटक भी होते थे, पॉलिटिकल नाटक भी होते थे, नाटकों की रीडिंग्स होती थी जो सीनियर्स लोग करते थे, तो वहाँ की सीटिंग में बैठ के मुझे काफ़ी अवेयरनेस हो, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया दुनिया के बारे में। और कहानियाँ हम पढ़ते थे बड़े बड़े राइटर्स की, मंटो की, भीष्म साहनी की, तो उससे बहुत कुछ समझ में आया जो मेरी लाइफ नहीं है उनके बारे में जानना। तो उससे वो एक फिर जर्नी शुरू होगी मेरी इस तरफ। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो हाँ थिएटर, हाँ या
0: ओके तो आपको आपकी सराउंडिंग के बारे में पता लगा एंड समाज में क्या चल रहा है, एक तरीके से आप एक जागरूक इंसान बन गए।
1: हाँ हाँ,
0: इट हैज टू बी देयर। अगर कोई भी इंसान जिस समाज में जी रहा है अपने समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकली आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है? आप भले कोई मूवमेंट चलाएं ना चलाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू शुड नो कि आपकी आसपास क्या हो रहा है, इनजस्टिस क्या है, सोशली आप कहां पर स्टैंड करते हो एज अ कंट्री, क्या इश्यूज आपके सामने, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थिएटर जरूरी है, आप अपने बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो, दुनिया में जो चीजें हुई हैं, इनजस्टिस हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आप रूबरू होते हो। दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: तेरी जय। अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: वेलकम बैक गाइस, सो आपको मजा आ रहा है गानों के साथ साथ आपको इस शो पसंद आ रहा है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सत्यम। यहाँ पर रंगमंच के एक अभिनेता हैं, अपना एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, और अभी तक हमने जाना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चेंजेस इनके अंदर थिएटर जो है वो लेकर के आए। आइए शो को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और सत्यम से बात करना चाहेंगे स्किल्स के बारे में। सत्यम, मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि थिएटर में कौन कौन सी स्किल्स की हमें जरूरत होती है, क्या वो स्किल्स हैं जिन्हें हमें चाहिए और कैसे उनको अपने अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है?
1: ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमने शुरू किया था तो या जो भी थिएटर की हिस्ट्री भी रही है, तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपको कम्युनिकेट करना, जो मतलब आपको एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन बेसिक नीड फॉर द थिएटर। तो वो आपने जब ऑब्जर्व किया होगा तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो सबसे बेसिक नीड है मुझे लगता है थिएटर की, वो ऑब्जर्वेशन है। आप जैसे जैसे आप आपकी लाइफ बढ़ती रहती है, आप चीज़ों को समझते रहते हो और पढ़ते हो, देखते हो, लाइफ में आप ग्रो करते हो, इवॉल्व होते हो, तो वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन भी और सटीक होती जाती है। बाकी सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, अपने आसपास को देखना, ऑब्जर्व करना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किल्स की भी बात करना चाहूंगा सत्यम, ऑब्जर्वेशन के अलावा कौन कौन से टूल्स एक एक्टर के पास होते हैं जो थिएटर में जाकर के पॉलिश करने होते हैं, या कोई प्रॉपर थिएटर में नहीं जा पा रहा है, अपने घर पर पॉलिश करना चाह रहा है, तो कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हमें जिनके ऊपर काम करना चाहिए
1: एक एक्टर को?
0: हाँ, एक एक्टर को
1: मैं घर से समझ गया। मैं टूल्स जैसे चार चीजों के बारे में बात होती है एक्टिंग में, तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो उसको अगर हम बेसिक डोमेन में कवर करने की कोशिश करें तो आप अपने बॉडी को फिट रखें, योगा जो भी आपको सही लगता है, और आपको वॉइस ट्रेनिंग के लिए आप अगर कुछ म्यूजिक करते हैं, आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने आप से भी कुछ नॉर्मल, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, नॉर्मल सुर लगा सकते हैं ताकि आपकी वॉइस की क्लैरिटी सही रहे। और बाकी अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आप हमेशा, मतलब वो हमेशा ओपन है, आप कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। और कॉस्ट्यूम, जैसे कि मैंने बात बोली थी पहले कि ऑब्जर्वेशन, तो फिजिकल अपीयरेंस हर कैरेक्टर का, मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैसे कपड़े क्यों पहनता है, कहीं कहीं पे कपड़े फिक्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में आप धोती और कुर्ता नहीं पहन सकते, आपको वहां पे शर्ट और पैंट ही पहनना पड़ेगा। तो ये इसको आहार्य में आता है, ये फिजिकल अपीयरेंस में आता है ये। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन ने, कुछ सोसाइटी ने बनाया और कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से, स्पेस के, एटमोसफेयर के, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन का कैसे कपड़े, कौन सा कैरेक्टर क्या कपड़े पहन रहा है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं। और सात्विक जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, वो ट्रेनिंग से आता है, वो जो हम ट्रुथ की बात करते हैं परफॉर्मेंस में ढूंढने की, वो समय के साथ आता है, इसमें काफ़ी समय देने के बाद आता है। तो ये चार चीजें पर अगर ध्यान दें तो मतलब एक जर्नी में आप जा सकते हो।
0: बिल्कुल, काफी सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग हैं जहां तक आपकी आवाज जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभिनेता बनना होगा। जिसको अभिनेता बनना है उसकी शुरुआत कैसे की जाए अभिनेता बनने की, बिल्कुल बेसिक से रोड मैप क्या बना के आप देना चाहेंगे?
1: जैसे मैं कल ही इंटरव्यू देखा था प्रसन्ना साहब का, तो उसमें उन्होंने एक बहुत कमाल की बात बोली कि हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो आदमी बस देखता है कि जैसे जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं थिएटर देखने गया था, तो मैंने थिएटर देखा और फिर एक मन में एक सवाल आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अभी आज भी का ज़माना जैसा हो गया है, इंस्टाग्राम बूम जब से किया है तब से अब लोग रील्स देख रहे हैं, तो काफ़ी कम्फर्टेबल हो गया है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आपके फ़ोन में आपको दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप देख के ही करने लग जाएंगे, करने के लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज जो है, अब और चीजें आसान हो गई आपके लिए, तो आप बस फोन उठाएं और करें। एक्टिंग में ही एक्ट एक शब्द है, तो एक्ट करना जरूरी है, आप बस करें और चीजें वैसे ही इतनी ईजी हो गई हैं, तो बस आपको एक्शन लेना है। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, विजुअली बम्बार्डमेंट हो रखा है, तो बेस्ट ये है कि आप बस शुरू करें, बस एक स्टेप लें, फिर चीजें अपने आप हो जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्यम ने अभी तक हमें बताया कि थिएटर की शुरुआत कैसे होती है, अभिनेता बनने की शुरुआत कैसे होती है, तो देखने से अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखिए, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, अच्छी जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या अच्छा इसमें किया गया है, किन किन नुआंसेस को उठाया गया है, बॉडी, आवाज, आहार, जो सत्यम ने भी बताया हमें कि चार भागों में इसको मेनली बांटा जाता है, तात्विक, वाचिक, आहारिक और आंकिक। उनको अलग से अगर आप डिकोड करके देख पाते हैं क्या अभिनेता क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, तो शायद थोड़ा आप अच्छे से टेक्निकल वे में उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक एक मैकेनिक की तरह हम इसको देख सकते हैं। जब एक गाड़ी एक मैकेनिक के पास जाती है तो वो कभी नहीं बोलता है कि ये गाड़ी खराब हो गई है, वो हमेशा एक पुर्जा देखता है। उसके लिए वो गाड़ी नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारे पुर्जों का एक जत्था है जिसमें टायर अलग है, इंजन अलग है, स्टेयरिंग अलग है। ठीक ऐसे ही एक अभिनेता होता है, एक कैरेक्टर में अगर आप ऐसे पार्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं कि इसका डायलेक्ट अलग है, आवाज अलग है, बॉडी पॉस्चर अलग है, बाल अलग है, सब कुछ अलग है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, तो एक एक्यूमुलेटिव वे में एक कैरेक्टर बन के तैयार होता है। दिस इज द बेस लाइन ऑफ दैट थिंग। तो अगर कोई भी इंसान इस टाइम एक्टर बनना चाहता है और हमारी आवाज सुन पा रहा है हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपने आसपास के लोगों में सवाल पूछने शुरू करिए। आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद शो में हम आगे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑडिशंस, विल टॉक अबाउट कंटेंट, विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 7.0 FM। फील गुड, फील लाइफ।

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: आपके पास की फीडबैक है हमारे लिए तो 8010781078 हमारा नंबर है, बहुत ही इजी, इस पर अपनी बात हम लोगों तक जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो का हम आगे लेकर चलेंगे। शो है वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान मिस्टर सत्यम, बात कर रहे हैं अभिनय की, बात कर रहे हैं अभिनेता की। आइए थोड़ा सा और आगे एक तरफ लेकर चलते हैं सत्यम, क्योंकि आप मुंबई रह चुके हैं, आप मुंबई कल्चर को अच्छे से समझते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई काम कैसे करता है, और मुझे ये जरूर बताइए कि मुंबई में काम कैसे ढूंढा जाता है।
1: जी जी जी, मुंबई का एक जो बेसिक मोटो है वो ये है कि वहाँ जाते ही सब बहुत इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो क्योंकि आपके दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, पर सबकी एक अपनी खुद की भी जर्नी है, सबको अपना खुद का भी नाम बनाना है, तो वहाँ पे समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सब भाग रहे होते हैं और सब अपने लिए भाग रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, इसलिए हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब भाग क्यों रहे हैं, सब एक मोशन में क्यों है, थोड़ा आराम से चीजें नहीं हो सकती क्या। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगा था, पर धीरे समझ में आता है कि नहीं, ये शहर ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, ये अगर ऐसे वर्क नहीं करेगा तो फिर कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा यहाँ का। तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आता है, एक साल लग के समझ आता है कि हाँ ये ऐसे ही वर्क करता है। दूसरा, काम मिलने का प्रोसेस जितना मुझे समझ में आया वो यही है कि चीजें अभी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऐसा लगा था कि कास्टिंग जब आ जाएगी, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ जाएंगे या कास्टिंग कंपनी आ जाएगी तो चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, पर नहीं, उससे इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, कहीं की जगह है कहीं की जगह नहीं है। तो अभी भी फिजिकली आपको जाना पड़ता है डोर डोर ऑफिस में, और ऑनलाइन भी आपको प्रोफाइल भेजनी होती है। यूजली एक आ जाता है कि हर 4 हफ्ते में एक नया काम आता है, तो आप फिजिकली भी जाओ डोर डोर अपनी अपना शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा, ये मेरा लुक है, अगर प्लीज मेरे लिए काम होता बताइए। दूसरा ऑनलाइन तरीका है ही भेजने का, तो अगर कुछ क्रैक हो गया उन दोनों तरीके से तो हो गया। तो चीज़ें सिस्टम से बना रखी हैं, पर स्टिल अभी भी थोड़ा इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी भी आपको वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है जाके। तो यही तरीका है
0: जी। तो आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि कास्टिंग का अगर कोई तरीका है अभी हाल फिलहाल जितना आपने ऑब्जर्व किया है, काम कैसे ढूंढा जाता है?
1: ओके, जैसे जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बना रखा है कि आप वहाँ जाइए और इंट्रो वो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी काम उनके पास आएगा तो उस डाटा में गो थ्रू करते हैं, और अगर उसमें आपका प्रोफाइल उनको पसंद आया तो वो आपको ले लेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है, और इसमें ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं आते, आपको कॉल आते हैं। और दूसरा, जैसे मैं तरीका आपको बताया कि हर 4 हफ्ते में नया काम कॉल आता ही है, नया काम आता ही है कास्टिंग वालों के पास, तो अगर आप हर हफ्ते हर ऑफिस में जा रहे हैं या ऑनलाइन जो भी कास्टिंग इंटर्न से आपकी बातचीत हो रही है उनके साथ कनेक्ट में रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ काम चल क्या रहा है, और आप ही को काम निकालना है। मतलब ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, पर ऐसे ही काम चल रहा है।
0: आप सही बोल रहे हैं कि काम आपको निकालने का तरीका कोई फिक्स सिस्टमैटिक नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कैसे काम ढूंढ सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, हाउ यू गोना रीच आउट टू दैट पार्ट। कुछ लोग कंटेंट के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ लोग ऑडिशंस के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस के थ्रू काम ले रहे हैं, तो काम करने के बहुत सारे लोगों ने वे ढूंढ लिए हैं अपने, इट्स जस्ट कि आप कहां पर फिट इन हो पा रहे हो, दैट शुड बी द थिंग। अब मैं बात करना चाहूंगा सत्यम कंटेंट की, कंटेंट और थिएटर में पहले मैं फर्क जानना चाहूंगा कि क्या फर्क है दो चीजों में, और कैसे आपने अडॉप्ट किया, कैसे होता है कंटेंट क्रिएशन।
1: मुझे जो मेजर फर्क लगा, क्योंकि मैंने थिएटर की पढ़ाई भी की है, मैंने 3 साल इन्वेस्ट भी किया थिएटर में, मास्टर्स किया है, तो वहां पे हमने वर्ल्ड थिएटर के बारे में पढ़ा, हमने आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा और पेंटिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें टाइम लगी है, आज से 100 साल पहले जो पेंटिंग बनती थी या वैन गॉग ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें उन्होंने काफी टाइम लिया था, और अभी का जो जमाना हो गया वो उसमें कट आ गए हैं, मतलब बहुत स्पीड हो गया है। जैसे ऐसे बोलते भी हैं कि कंटेंट में अगर तू डायलॉग के बीच में पॉज ले रहा है भाई तो उसको कट कर दे तो ये बस ऐसा बोला जाता है। तो ये एक मेजर फर्क है, टाइम का मेजर फर्क है, क्योंकि अगर लोगों की उंगली पे है आपका कॉन्टेंट, तो अगर आपने थोड़ा सा पॉज दिया और आपकी कुछ भी कह लो आपका उस फ्रेम में जो मिसॉन से उनको पसंद नहीं आया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपको हटा देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और थिएटर में एक सेटअप होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लोग अपने घर से निकल के जाते हैं नाटक देखने के लिए, और उस नाटक को बनाने में नाटक की आइडियोलॉजी को बनाने में टाइम लगा होता है। जैसे गिरीश कानार साहब के नाटक 10-10 साल लग के, 10-10 साल लेकर वो लिखते थे नाटकों को, उसके बाद भी लगता था कि इसमें भी थोड़ी आइडियोलॉजी की कमी है। तो वो एक टाइम का मुझे मेजर कमी लगती है। और क्या है, कंसिस्टेंसी एक गेम बन गया है कॉन्टेंट क्रिएशन में, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रोज एक वीडियो आ जाए या दो दिन में एक वीडियो आ जाए, रेदर देन क्वालिटी पे। ये एक मेजर फर्क है, जो कि समय का नीड भी है, तो कुछ गलत नहीं कह सकते इसमें, बस ये समय का कॉल है बस।
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करना चाहूँ तो एक और प्रश्न है, बहुत सारे लोग क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आप कैसे ढूंढते हो कहानियां, कैसे आप वो ढूंढते हो, फिगर आउट करते हो कि ये मुझे बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, कैसे होता है वो पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है, थोड़ा बताइए।
1: ओके, तो मैं भी खुद ही शुरू कर रहा हूँ तो मेरे खुद ही अभी कम फॉलोअर्स हैं काफी, पर जैसे बहुत सारे हर फील्ड में पायनियर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं आपको, जिन्हें टॉर्च बेयरर्स कहते हैं। तो जिन्होंने, जैसे अगर हिचकॉक ने जो टेक्निक बनाई, उसके बाद ही आगे के फिल्म मेकर नॉर फिल्म में, नॉर जॉनर में कुछ ना कुछ कर पाए। जैसे अगर मिर्च का टिकम नाटक कालिदास ने लिखा, तो उसके बाद जो मिडिवल एरा में जो लोग नाटक लिख पाए, उन्होंने वैसा नाटक लिखा। शेक्सपियर ने जैसे, तो उसी सेंस में जिन लोगों ने इंस्टाग्राम के शुरुआती दिनों में अच्छा किया, तो उन्हीं को मैं देखता हूँ, उन्हीं को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है। और तन्मय भट्ट का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप सबसे पहले अपना नीश ढूंढें, आपको क्या करना अच्छा लगता है, जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता, और उसके बाद जो उस नीश में जो सबसे टॉप क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है, तो जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को देखता हूँ, बस उनको देखता रहता हूँ। और उनके मतलब वो कैप्शन क्या लिख रहे हैं, वो फ्रेम कैसे बना रहे हैं, वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी कैसी है। और लकीली मेरे भाई भी उनमें से एक, तो उनको फॉलो करता रहता हूँ, उनका काम मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी देखता रहता हूँ मैं काफी टाइम से, सागर भाई का काम भी मैं देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो यही है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बस।
0: बहुत बहुत उमदा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस भाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उनका नाम है ऋषभ शुक्ला, जिनका हम इंटरव्यू यहाँ पर कर चुके हैं दो बार, और बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छे इंसान हैं, बहुत सुंदर कंटेंट वो बनाते हैं। और डेफिनेटली मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स में आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद शहर से सबसे पहले किसी इंसान ने अगर कंटेंट बनाने का काम शुरू किया था, जिसने हम सबको भी आग दी और केवल आग नहीं मतलब सपोर्ट भी दिया, वो ऋषभ शुक्ला एक नाम मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। तो सत्यम के भाई हैं ऋषभ शुक्ला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सत्यम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सत्यम, मतलब मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: अभी भी फिलहाल ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट।
1: थैंक यू सो मच भैया आपका, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू, एंड आई जेन्युइनली विश कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ये बहुत स्मूथ रहे और बहुत अच्छा रहे। तो जैसे आपने बाकी जगहों पर एक्सेल किया है, थिएटर में और मास्टर्स किया है, पढ़ाई किया है, स्टेज प्लेस किए हैं, ठीक वैसे ही आप कंटेंट को भी अपने आगे लेकर के जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
1: थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
0: Right, दोस्तों अब वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। सत्यम से आदम ने बात करी, उन्होंने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताई। हर एक अभिनेता का, हर एक इंसान का अपना एक अनुभव होता है जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के बाद उन्हें टेक्निकलिटी समझ में आती है, तब जाकर के अपना एक रास्ता बनता है। सत्यम भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी लोगों ने बताने की कोशिश करी, कि आपको अपना खुद का रास्ता एक ढूंढना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, देयर इज नो एसओपी फॉर दैट पार्ट कि ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस आर्ट इज ऑल अबाउट फ्री फ्लोइंग, जितना आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, जैसे आप तरीके ढूंढ सकते हैं वो आप जरूर ढूंढिए। फिलहाल अपने शो को यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा, फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: ये हुई ना बात।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

मॉर्निंग रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और इन 7 दिन होती है हमारी बहुत सारी बातें। अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। हमारा आज का पहला सेगमेंट है दिल धड़कने दो, जिसमें आपसे बहुत सारी करती हूँ बातें। जी हाँ, देखिए प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में आपके हेल्थ के बारे में बातें होती हैं, तो चलिए इसी के साथ पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है दिल धड़कने दो, जिसमें बहुत सारी हेल्थ और फिटनेस की बातें करने वाली हूँ। और उसके बाद

सेगमेंट दूसरा लेकर के आ जाती हूँ जिसका नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। तो आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, ये सारी की सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ आपके पास। सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी फिटनेस की। और यहाँ पर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और अब एक खास देखिए हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर, और वो है डिमेंशिया। जी हाँ, देखिए उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसमें याददाश्त का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। बढ़ती उम्र में लोगों में डिमेंशिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया को भूलने की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन उनके लक्षण और कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, इसकी वजह से व्यक्ति जो है, जिसे ये डिमेंशिया की शुरुआती दौरे में वो आए हैं, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है उन पर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है उनकी ज़िंदगी। इसीलिए डिमेंशिया के लक्षणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान देना उस पर ज़रूरी है। और सबसे पहले तो बात आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिमेंशिया की हम बात करें, डिमेंशिया के कारण व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर बात करें सिंपल प्लस माइनस की, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बात करें, छोटा छोटा भी, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोज के जो लॉजिकल फैसले होते हैं वो भी नहीं ले पाते, उसमें परेशानी आने लगती है। व्यक्ति को बिल भरने में गड़बड़ी होने लगती है, नए डिवाइस चलाने में दिक्कत उनको होने लगती है, और कुछ ऐसी परेशानियाँ सामना उनको करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक लक्षण हो सकता है। साथ ही डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति को प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी परेशानी हो सकती है, और इनफैक्ट उनको अपनी रोज़मर्रा के कामों में प्लान करने में, अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कोई अगर साधारण रेसिपी है, अगर उसे फॉलो की जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या जब वो बना रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल जो है, अगर कड़छी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं उनको याद रहेगा, या फिर अगला स्टेप क्या, क्योंकि फोकस नहीं है। और साथ ही ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि फोकस उनका ले रही है, तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर पैकिंग की जाती है तो वो भी करने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर व्यक्ति के रोज़मर्रा के रूटीन जो है अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ इस तरह से होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर सामाजिक गतिविधियाँ से कटने लगते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सोशली उन्हें कनेक्ट कर रही है उससे वो हटने लगते हैं, और इनमें बातचीत करना, दोस्तों और परिवारों से कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ टाइम बताना, उसमें रुचि जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मन करता था पहले, अब वो ख़त्म हो जाता है, और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक जो मेल जोल है वो उससे बचने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एन्जाइटी की ओर भी ले जाते हैं, और इससे मानसिक समस्याओं का भी संकेत आने लगता है डिमेंशिया में। चलिए, डिमेंशिया से जुड़ी और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही है हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में, एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुकी हूँ। टॉपिक है डिमेंशिया का। जी हाँ, इसके लक्षणों को पहचानने की कुछ आपको बातें जो है वो बता रही हूँ। देखिए, अगर डिमेंशिया को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपके किसी क्लोज वन को जो है अगर डिमेंशिया की शिकायत है, या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता लग सकता है। भाषा से जुड़ी समस्या डिमेंशिया का एक अहम लक्षण है, यानी कि व्यक्ति को शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, और जैसे वाक्य अगर कोई बना रहे, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भी परेशानी हो सकती है, या बातचीत के दौरान गैर जरूरी शब्द बोलने वो लग जाते हैं। कई बार कोई ऐसे होता है कि सही शब्द नहीं वो ढूंढ पाते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो ये भी डिमेंशिया का ही एक लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो गैस चूल्हे को छोड़ देता है, खुला हुआ छोड़ देता है, या फिर अगर कहीं वो जा रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सही से जो है नियमों को पालन नहीं करेंगे, उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं या किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी और सारी खतरनाक स्थितियों में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गंभीर हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियली डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने लग जाए, धोखाधड़ी के शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाए, बिल भरना भूल जाना, या फिर अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो बिना सब्जी लिए सिर्फ पैसे दे के आ जाना, या कहीं भी अगर जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के आ जाना, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ लेना और जानबूझ के, देखिए ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि पैसे दिए हैं, वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये सारी परेशानियां जो है वो होने लगेगी, क्योंकि भूलने की समस्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसके जो देखिए बहुत सारे लक्षण हैं, सिर्फ और सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि फोकस करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आना, ये सारे भी लक्षण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम करते हैं योगा, मेडिटेशन की बहुत सारी बातें। आज क्या है कुछ खास बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसिबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बातें बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, और आज एक बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग के जरिए ना केवल हमारी बॉडी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि मजबूती भी जो है वो आती है, और इसी के साथ साथ मन को भी शांति मिलती है, और हम जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी कि जो तनाव मुक्त हैं ये भी हो सकते हैं। हालांकि योग का पूरा फायदा उठाने के लिए केवल आसन करना ही काफी बिल्कुल भी नहीं है। योग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको योग करने से पहले ध्यान में रखनी है, यानी कि योगा की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: go ahead.
1: Bobby.
2: Hey, can I come be dance for?

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और मंडे टू संडे ये हमारा टाइम है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। फिलहाल सेगमेंट का टाइम हो गया है और सेगमेंट हमारा चल रहा है स्ट्रेच प्लीज। योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, योग करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आपका पेट जो है वो खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद योग करने से बॉडी में भारीपन महसूस हो सकता है और पाचन में समस्या आ सकती है। योगासन करते टाइम आपकी बॉडी को जो है वो मोड़ना या घूमना या स्ट्रेच करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ऐसे में अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कुछ असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए योग करने से कम 2 घंटे पहले अगर आप कुछ खा लें तो सही है, क्योंकि तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको भूख लग रही है तो योगा से पहले आप हल्के स्नैक्स ले सकते हैं, फल या जूस ले सकते हैं, लेकिन जो हैवी खाना है या कोई हैवी अगर लंच कर रहे हैं या सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो ना करें आप। इसी के साथ साथ वार्म अप जरूरी है। योगा आसन शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। वार्म अप आप करने से आपकी बॉडी को का जो तापमान है ये बढ़ता है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इसमें चोट लगने का खतरा भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे होता यह है कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी है योगासन के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योगा करते टाइम आरामदायक और ढीले कपड़े जरूर आप पहने। टाइट कपड़े पहनने से बॉडी को सही तरीके से मोड़ना और स्ट्रेच करना जरा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आरामदायक कपड़े पहने। आप आराम से हिले डुल से सकते हैं और योगासन को आप सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि जब हम काफी भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। सूती कपड़े योगा के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा लगने में काफी मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये सूती कपड़े जरूर पहनने हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगा के बारे में। देखिए, योग जब भी आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को, आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग करने से पहले कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि आपको हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना अगर आए तो वो सोख जाए, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुरुआत करनी ज़रूरी है। यानी कि योग करते टाइम धीरे धीरे शुरुआत करना जो है ये सही माना जाता है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो देखिए, ये तो ज़रूरी है कि आप आराम से अपने जो स्पीड है उसका आराम से लेकर चलें। ये बहुत टाइम बाद अगर आप कर रहे हैं तब भी इस मामले में भी आपको आराम से ही शुरुआत करनी है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती अगर कोई योगा आसन जो है आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा वो कठिन आसन है तो आप उसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इंजरी आपको हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आसान आसनों से आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है मतलब आप बेसिक टू एडवांस लेकर के जाइए कि आपको बेसिक पहले आसन करने हैं, धीरे धीरे जो बहुत ही हल्के आसन हैं या फिर आसानी से जो हो जाते हैं वो आसन करने हैं, और उसके बाद आपको जो है एडवांस होना है। यानी कि कुछ ऐसे आसन जो कि मुश्किल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। योग करते टाइम आपकी सीमाओं का आपको ख्याल रखना है, जबरदस्ती आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। योग करने का मकसद बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। इसीलिए योग करने से पहले आपको खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं, वार्म अप जरूर करना है, और खाली पेट योगा जो है वो करना है आपको, भरे पेट से नहीं करना है। यानी कि आप खाना पीना खा के ब्रेकफास्ट करके आप योगा ना करें बल्कि खाली पेट कोशिश करें। अगर फिर भी आपको भूख लग रही है तो हल्के स्नैक्स आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं या फल खा सकते हैं, लेकिन जो हैवी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं और उसके बाद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे आपको जो है अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग में या फिर उस आसन को करने में मुश्किलात आ सकती हैं। इसीलिए इन कुछ बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल देखिए बातें हमारी चल रही हैं, और अगर आप ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे आप शहर में कहीं पर भी हो, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, और अगर आपको लग रहा है कि अब आप मानव रचना से, देखिए रेडियो मानव रचना से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हम हमेशा हैं। बस आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, चाहे एंड्रॉइड हो या iOS मोबाइल फोन, आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप सुन सकते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रह के भाई एंटरटेन हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐप को कीजिए डाउनलोड, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज द्वारा कह सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ अपना अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ रही हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें एक बहुत ही खास कहानी आपको बताने वाली हूँ, कैसे एथलीट की जो कि मजदूरी से जो मेडल तक का सफर था जिन्होंने तय किया, और जिन्हें दुनिया ने, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी ये ऊपर आए लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गए, यानी कि अनसंग हीरो ऐसे हैं ये जो कि आए तो बहुत जल्दी ऊपर लेकिन एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज किसके बारे में बात हो रही है वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, एक से बढ़कर एक, आप कहीं मत जाइए, इन गानों को सुनिए, इंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। और अब बात कर रही हूँ अपने अगले सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी में। खास आपके पास लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे, मजदूरी से मेडल तक की कहानी। जी हाँ, लक्ष्मी रानी जो है मांझी की एक कहानी है। और जब जिंदगी एक तीर बन जाए तो निशाना चूक बिल्कुल नहीं सकता है, और ये कहानी लक्ष्मी रानी मांझी की है। जी हाँ, और देखिए झारखंड के ट्राइबल विलेज से ये आई एक लड़की, जिसे जंगल में जो लकड़ी काटने जाने से ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन स्कूल टीचर ने एक उन्हें बो दिया और तब जिंदगी का नया टारगेट उनके लिए सेट हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से एक ही इनके पास ड्रेस जो थे उनके पास थी, और रात को मिट्टी के घर में ये प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन लक्ष्मी रानी ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2015 में सिल्वर मेडल जीता और सबको सरप्राइज कर दिया। जब भी वो ट्राइबल एरियाज में बच्चों को आर्चरी सिखा रही है, और अभी इस टाइम पर बिना पैसे लिए उनको सिखा रही हैं, तो ये सबके लिए देखिए मैं आपको कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वो शुरू से स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम पैसे थे घर में, मिट्टी का घर था उसमें रहती थी। लेकिन आज भी जब वो बच्चों को सिखाती हैं, जो तीरंदाजी सिखाती हैं, तो उसमें बच्चों से पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो चाहती है देश का नाम ऊंचा हो। वो चाहती है वो बच्चे बाहर निकल कर के आएं, जो कि कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर जो है सिर्फ घरों में बैठे हुए हैं, तो वो सपने उनके सच करना चाहती हैं जैसे उन्होंने अपने किए। गांव की बेटी ने निशाना लगाया और सीधा इंडिया के नाम पे मेडल लिख दिया। नाम छोटा था लेकिन निशाना काफ़ी बड़ा। लक्ष्मी रानी मांझी की कहानी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में पावर प्ले विद आरजे साक्षी एक सेगमेंट लेकर के आ जाती है। उस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और एक बहुत ही जरूरी बात है आपको बता रही हूँ, कुछ कहानियां आपको बता रही हूँ जो कि ऐसे हीरोज की कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं भाई गुमशुदा तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने भारत का काफी नाम ऊंचा किया। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की शेरनी की, यानी कि जमुना बोरो। जी हाँ, माँ ने चाय बेची इनकी और बेटी ने मेडल जीत लिया। जमुना बोरो की माँ एक रोड साइड चाय स्टॉल चलाती थी। आसाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। फाइनेंशियली स्ट्रगल्स इतने थे कि जमुना ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने की जगह कभी चाय का जो थैला उठाया तो कभी उन्होंने भाई कपड़े हाथ में बांध लिए। लेकिन जब बॉक्सिंग कोच ने देखा कि इस लड़की के पंच में स्पार्क है, उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसके बाद जमुना ने 2019 में AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। आज वो इंडियन बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है और यूथ गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। जिंदगी ने हर राउंड में उनको पंच मारा पर जमुना हर बार रिंग में जीती। माँ की चाय से ज्यादा उनका जोश गर्म था और उन्होंने कभी भी भारत को इस तरह से लेट डाउन नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे लेकर के गई, और साथ ही भारत का नाम एक बेटी ने एक बार फिर से रोशन किया। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी हम कर रहे हैं बातें। इसी के साथ अगली कहानी की ओर आपको लिए चलती हूँ, और ये कहानी है छोटी सी लड़की लेकिन बड़ी सोच जिनकी है, मलावत पूर्णा की। जी हाँ, माउंटेनियरिंग की इनकी कहानी जो कि सभी के दिलों पर छा गई। जब सपना इतना बड़ा हो तो रास्ते की ऊंचाई छोटी लगने लगती है। ये कहानी है मलावत पूर्णा की, तेलंगाना के ट्राइबल विलेज की एक 13 साल की लड़की, जिन्होंने 2014 में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करके उसका रिकॉर्ड एक बना दिया अपना, और दुनिया की सबसे यंग ट्राइबल गर्ल बनी जो कि एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई करी। उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक फाइनेंशियली कम था पहले से ही, जो है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही एक छोटे से परिवार से आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही कम पैसे हैं, ना प्रॉपर शूज़ हैं, ना कपड़े हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन, जो बहुत ज़्यादा। उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली और 0 डिग्री से भी ठंडे टेम्परेचर में एवरेस्ट जो है वो कॉन्कर किया। आज पूर्णा उन बच्चों के लिए आइकन बन चुकी हैं जिनके सपने उनके घरों से बड़े होते हैं। पूर्णा ने एवरेस्ट से ज़्यादा उनकी थिंकिंग बैरियर्स को छोटा किया, जहां लोग कहते हैं कि ट्राइबल्स कुछ नहीं कर सकते या उनका कुछ नहीं होगा, और उन्होंने ये साबित किया कि ट्राइबल का मतलब ट्रबल नहीं होता, बल्कि होता है टैलेंट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ ये बात है मलावत पूना की। इसी के साथ एक और मैं आपको कहानी ज़रूर बताऊंगी, और ये है अतनु दास की। जी हाँ, देखिए अतनु दास के बारे में बताऊं तो अतनु दास ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स, एशियन गेम्स और कई सारे ऐसे मेडल जीते, लेकिन स्पॉटलाइट में कभी नहीं आए। उनकी प्रैक्टिस एक स्मॉल ग्राउंड से स्टार्ट हुई, जहाँ पर वो भी सेकेंड हैंड था, और उन्होंने प्रेशर मोमेंट्स में भी कभी फोकस लूज नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने टॉप रैंक साउथ कोरियन आर्चर को भी जो है वो हराकर सबको सरप्राइज कर दिया। आज भी अतनु ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस क्वाइटली निशाना लगाने पर और मेडल लाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अतनु जैसे खिलाड़ी हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम्हारे पास स्पॉटलाइट ना हो, तब अपना निशाना और ज़्यादा शार्प कर लेना चाहिए, ताकि अपने आप स्पॉटलाइट तुम्हारी ओर खींची चली आए। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। बातें हमारी चल रही हैं पावर प्ले विद आरजे साक्षी में, आपसे कुछ जानकारी आपको बता रही हूँ, यानी कि कुछ ऐसे आपको अनसंग हीरो के बारे में बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनकी कहानी कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है। अब बात करते हैं भक्ति शर्मा की, जिन्होंने आर्कटिक ओशन स्विम कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसी लड़की जिसे राजस्थान जैसी ड्राई जगह में पानी मिलना मुश्किल था, उन्होंने देखिए क्या किया कि दुनिया के सबसे ठंडे ओशियन में 1.4 माइल स्विम किया और इन जस्ट 52 मिनट्स वो पहली एशियन वुमन बनी जिन्होंने आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑल फाइव जो ओशियंस हैं उसमें स्विम किया। और उनकी माँ उनकी कोच थी और माँ बेटी की जोड़ी ने इंडिया के लिए हिस्ट्री लिख दी। भक्ति ने सिर्फ समुंदर नहीं सोच के किनारे भी तोड़ दिए। अगर जज्बा हो तो राजस्थानी मिट्टी से भी लहरें उठ जाती हैं, जहां से भक्ति शर्मा उठ करके आई और उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है और अब आगे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए, जहां पानी नहीं मिलता था वहां से निकल के भक्ति ने समुद्र में फतेह हासिल करी। तो देखिए, आज देखिए हर जगह उनका नाम है, हर जगह उनके उल्लेख हैं। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ मैं, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगले सेगमेंट का टाइम होता चला जा रहा है और अगला सेगमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा खास है। अगले सेगमेंट का नाम जो है वो है कौन बनेगा सेहतमंद। बात करेंगे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूं आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिनों बहुत सारी करती हूं बातें। हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हो चला है और अगला सेगमेंट यानी कि आज का हमारा जो सेगमेंट है ये है बहुत ही ज्यादा खास, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूं। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। पहेलियां आपसे पूछती हूँ, तो सबसे पहली पहेली जो है ये आपसे पूछूंगी, लेकिन इसके बाद पहले इससे आपको बता तो दूं आपको जो है क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए ये कि अगर आप पूरे महीने भाई सही सटीक जवाब देते हैं और सबसे पहला जवाब देते हैं तो आपको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, हमारे रेडियो स्टेशन आने का, और

बहुत सारी बातें करने का, लाइव और सभी आरजेस से भी मिलने का। लेकिन इसी के साथ साथ पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ही। और आपको बता दूं मैं कि अब एक खास पहेली के साथ आपके पास आ गई हूँ। पहेली जो है वो मैं बहुत ही ज्यादा आसान पूछती हूँ, तो इतना घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बस आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, फटाफट से पहेली का जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो चलिए इसी के साथ पहेली का आप दीजिए जवाब जो मैं पूछने वाली हूँ कुछ ही देर में, एक गाने के बाद, खूबसूरत से गाने जो कि लेकर के आ जाती हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती है बातें हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अब आपके साथ रहती हूँ। तो अब एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। जी हाँ, कौन बनेगा सेहतमंद में हम बात करते हैं, एक पहेली आपसे पूछती हूँ, और पहेली जो कि बड़ी आसान सी होती है, बस आपको ध्यान से सुननी है और उसका जवाब जो है वो देना है। पहेली तो बहुत ही आसान सी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका हिंट जो है वो है कि दादा नानी का ये नुस्खा काफी ज्यादा पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो आपको बताना है क्या है इसका जवाब। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आपसे कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ आज ना। आज की हमारी पहली पहेली, क्योंकि अभी सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आज की पहेली बड़ी आसान सी जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। इसका हिंट है कि दादी नानी के नुस्खा है जो है ये काफी पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो इसका जवाब जो दिया है हमारे पास, हमारे लिस्नर बहुत ही तेजी से जवाब जो है देते हैं, जिनका नाम है अल्तमश। और अल्तमश ने जवाब जो है वो दिया है। अल्तमश जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। और भी बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं और यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि इतनी फटाफट जवाब आता है कि भाई क्या कहने। तो अल्तमश जी ने जवाब दिया है और इसका जवाब है बालों का तेल, यानी कि हेयर ऑयल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि हेयर ऑयल जो है ये आपके बालों को पोषण देने में और आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए रोज रात को आपको अपने चम्पी जो है ये जरूर करके सोनी है, इससे आपके तनाव को काफी ज्यादा देगी आप हट जाएगा और साथ ही निजात तो आपको मिलेगा तनाव से, आपके बालों में पोषण की कमी जो है हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं हमारी अगली पहेली, जो कि काफी ज्यादा आसान है. बस आपको जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है और बस यूं आपने पहेली को जवाब देके और हमारे लकी विनर बन जाना है. आपको मिलेगा मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव रेशम 107.8 FM आने का और लाइव बातचीत करने का, साथ ही सभी आर्टिस्ट से मिलने का. तो चलिए अब आपको बताती हूँ हमारी आज की आसान सी पहेली, जिसको आपको ध्यान से सुनना है. और पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ. कभी रेशमी कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूँ मैं. तो इस पहेली का आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए आपको क्या करना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ. मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूँ मैं. तो ये आपको बताना है कि ये भाई किस बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्या जरूरी है, मतलब आपको ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा ही अगर आपको पहली का जवाब जो है वो देना है. दो बार मैं पहली बता चुकी हूँ, नंबर आपको बता चुकी हूँ, तो जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार है. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती है हमारी बहुत सारी बातें। फिलहाल मैंने अपने सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में आपसे पूछा एक सवाल, एक पहेली आपसे पूछिए जिसका जवाब हमें दिया है सबसे सही सबसे सटीक इतनी जल्दी कि बस यहाँ मैं अपने बात करना खत्म करती हूँ आप लोगों से और यहाँ जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जवाब दिया हमें हमारे लिसनर बबलू जी ने और बहुत ही तेजी से इन्होंने जवाब दिया है मस्त से। और पहेली एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर बताऊंगी इसका जवाब क्या है। तो पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान ना दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूं मैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारा है बाल यानी कि हेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बाल हमारे खूबसूरती का हिस्सा होते हैं जिन्हें सही देखभाल की जरूरत होती है, अगर नहीं रखी जाए तो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। बबलू जी आपको बहुत सारी बधाई, आपने दिया है सही जवाब। तो बात करते हैं और भी, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। चलिए इसी के साथ जो वक्त है अब हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अब आ गई है आज दीक्षा जो करेंगी आपसे बातें, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो बातें करता है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहे। इसीलिए हर हफ्ते एक्सपर्ट आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज के समय का सबसे ज्यादा जानकारी जुटाने वाला टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की गर्मी भारत में पड़ रही है, या फिर हम कहें पूरे ही भारत में पड़ रही है, पहले होता था उत्तर भारत में होती थी, आज पूरे भारत को एक भट्टी की तरह गिना जा रहा है, जहां कभी कभी बारिश बीच में आ जाती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर 42 और 45 के बीच पहुंच जाता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट स्ट्रोक होने का। हीट स्ट्रोक सुना तो आपने भी होगा, लेकिन इसको पहचानना कैसे है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू।
0: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम हीट स्ट्रोक की बात करें और ये टर्म बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि हमने जनरली लोगों से सुना है कि आप डिहाइड्रेट मत रहिए, पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या लिक्विड इनटेक होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों में, पर हीट स्ट्रोक जो होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है और है क्या एक्चुअली?
1: जी, जैसा कि आपने कहा हीट स्ट्रोक जो है हमने सबने सुना है कि हीट स्ट्रोक, तो इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसको सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तब थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। सन स्ट्रोक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर नॉर्मली 40 तक रहता है वो 50 तक भी जा चुका है। जो खासतौर पर अभी आपने बताया कि हमारे इंडिया में जो अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें सबसे हॉटेस्ट सिटी में 10 से ज़्यादा सिटीज हमारे देश की एक्चुअली आई थी। तो आपने कहा भी ठीक कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक हिंड्रेंस फैक्टर है, या कहेंगे कि ये छुप जाता है कि किस, ये हीट स्ट्रोक एक तरह से हाई टेम्परेचर है जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए। नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जब आपका ब्रेन का सेंटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना बंद कर दे या टेम्परेचर फेल हो जाए, तो वही हीट स्ट्रोक है। और इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा और 107 या 108 तक भी चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को जो मैकेनिज्म होती है थर्मोरेगुलेशन की, जो टेम्परेचर को मैनेज करती है बॉडी नॉर्मली, लेकिन अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाए, आपकी बॉडी को ये पता ना चले कि इस टेम्परेचर को रोकना कैसे है,
0: यानी वो 107 तक पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जानलेवा है।
1: जी 107, अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में मरीज बोलता है उसको 102 103 आता है तभी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा टेम्परेचर जो 107 भी चला जाए और आपके ब्रेन को ये पता ही ना हो कि इसको नीचे कैसे लाना है, जिसमें आपकी स्वेटिंग भी बंद हो जाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है और इसको पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके।
0: जी, यानी बुखार होना तो कॉमन है, पर गर्मी वाला ये बुखार जो आपकी बॉडी में पसीना ही नहीं आने दे रहा है, तो बुखार बाहर निकलेगा कैसे? दिमाग ये जज नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हमारे दिमाग से हमारे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है, जैसे गर्म चीज को छुआ। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर में भी दिमाग के ही सिग्नल होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें बुखार भी चढ़ रहा है और अब ये बुखार जो है वो उतर भी सकता है। दवाइयों के जो इलाज हैं वो किस तरीके से हीट स्ट्रोक में किए जा सकते हैं और कैसे पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता है और क्या है सिम्टम्स जो एक आम इंसान को पता होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078, और साथ ही ये बातचीत आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना द्वारा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या प्ले स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आप ऑल इज वेल प्रोग्राम की ये सारी बातचीत डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्थ को बेहतर बना देगा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक शब्द बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन शायद इसको विस्तार में नहीं जानते। आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी की चपेट में आने से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और शायद यही हीट स्ट्रोक होता है जिसमें लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। पर जान बचाएं इससे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता किन लोगों को है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा हो सकता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है?
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मैम कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो सकता है, तो हम बात ही कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस बढ़ रही हैं, जिसको हम HRI बोलते हैं। तो जितने भी हीट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के बाद, खासतौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट इस पर भी आ रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर मई जून जुलाई जो ये वाला सीजन होता है, जिस समय टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होने लगेगी थोड़े दिन के बाद, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क इसी समय सबसे ज्यादा होता है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने रिसेंटली जिनका जो किसी ऐसी जगह से आए हैं जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या जहाँ पे ठंड होती है, और वो अचानक से ऐसी जगह आ गए जहाँ की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा खासतौर पर छोटे बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, और जो हार्ट की या किडनी की या तनाव की दवाइयाँ खाते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये दवाई लेते हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर किसी को स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, या किसी को डिहाइड्रेशन पहले से है, लैक ऑफ वाटर है, और या किसी की सीवियर ओबेसिटी, जो हम लोगों को लगता है कि यार मैं मोटा हूं तो इसका क्या मतलब हीट स्ट्रोक से। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको हाइड्रेशन की भी ज्यादा जरूरत है, आपकी कॉप अप मैकेनिज्म्स भी कम होंगी, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमने कहा ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं। और कुछ बीमारी जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा ये इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर हैं। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, और या आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक घर में बैठे बैठे भी हो सकता है।
0: अच्छा, घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता।
1: इंडोर, अगर कोई इंडोर है तो उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज आप जब अंदर रहते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन कर नहीं पाती, और दीज पीपल कैन ऑल्सो गो इन हीट स्ट्रोक। और अगर खासतौर पर वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, और खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई बंदा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलते हैं रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफी रिग्रेसिव या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कई बार वो अपने पानी पे ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ हाइड्रेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड यू आर वेरी मच रिस्क फॉर हीट स्ट्रोक, तो हाइड्रेशन इज द क्रूशियल थिंग, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, और मौसम जब गर्म होता है तब भी ये कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग तो सैर कर लें, लेकिन 8-9 बजे के आसपास आप बाहर ना निकलें गर्मियों में, अवॉइड करें, या दिन में आप जैसे पार्क में जा रहे हैं तो वो ना जाएं। क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है अगर लू चल रही है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट, तो अगर मैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो आपने बोला कि खासतौर पे 11 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है, जिसमें आपका हीट काफी ज्यादा होती है बाहर, तो आप उस समय आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, उस समय आप बाहर कम निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो प्रॉपर लाइट कॉटन क्लोथ पहन के जाएं, हैवी क्लोथिंग ना हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेके जाएं, तो डेफिनेटली आपने जो बोला, एक्चुअली हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा रिस्की आफ्टरनून में होता है, जो आपने बोला, मैं कहूँ 12 से और 3 बजे तक का जो जब सन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सन का होता है, तो उस समय डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे हीट स्ट्रोक में, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर।
0: बिल्कुल, और यही वजह होती है कि शायद स्कूल की जो छुट्टी है वो लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले कर दी जाए या 12:30 तक कर दी जाए, क्योंकि जब 2 से 3 के बीच में बच्चे घर पहुंचते हैं तो उस समय पीक गर्मी होती है, और उस गर्मी में बच्चों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। सो इस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं, खासतौर पर से मैं कहना चाहूंगी लेबर वर्क जो होता है हमारे देश का, वो जब मजदूरी करता है गर्मी में बहुत ज्यादा, और कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, किसी जगह पर कुछ और काम चल रहा है, या फिर कोई रिक्शा ढोकर लेकर जा रहा है, सो ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है। तो इनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हीट स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है. बीच बीच में आ रही बारिश थोड़ी राहत देती है, लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो जाता है. और ये जो गर्मी है, ये अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, इन महीनों में इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि पूरे देश भर को आप अगर गूगल मैप पर देखें और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो पूरा भारत देश आज की तारीख में एकदम लाल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैं दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट भी. और हमारे देश में जिस तरीके से गर्मी का असर इस बार हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर हम सभी की बॉडी और हम सभी के घरों में आप देख सकते हैं. ऐसे में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक से बचकर रहना बेहद जरूरी है, जिसको सन स्ट्रोक भी कहा जाता है. बढ़ती गर्मी, झुलसती गर्मी, लू चलना और इस बढ़ती हुई धूप में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, ये हम जान रहे हैं. तो कैसे सिम्टम्स को पहचाने हीट स्ट्रोक के, ताकि किसी भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसको तुरंत सहायता दी जाए. और क्या होगा उसका इलाज, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, बात करते हैं अब सिम्टम्स की. अब एक व्यक्ति है हमारे घर में अगर कोई रह रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने देर का हमारे पास समय होता है और क्या वो सिम्टम्स हैं जिनको पहचान कर हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता चाहिए?
1: जी, जैसा मैम आपने कहा कि इसमें कितना हमें विंडो पीरियड मिलता है, खासतौर पे कि जब आप कोई हीट स्ट्रोक में जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीट स्ट्रोक से पहले बहुत कुछ होता है, तो इसमें आपके पास समय भी होता है और डॉक्टर के पास भी समय होता है. अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज में है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक है. कोई भी हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, एक नॉर्मल जो GI डायरिया वगैरह लूज मोशन AGE की तरह, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बोलूँ, तो नॉर्मली कोई भी हीट स्ट्रोक एक फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, लूज मोशन उसको होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन सिम्टम्स हैं. लेकिन इसके साथ जो एक अलार्मिंग चीज होगी या बहुत वार्निंग साइन होगा, जो कि एक डॉक्टर को, खासतौर पे हेल्थ केयर वर्कर को पता होना चाहिए, कि वो होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. उसका टेम्परेचर 104 से लेके 107 तक जा सकता है. खासतौर पर अगर टेम्परेचर बहुत टेम्परेचर अगर 104 से नीचे होगा तब तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आप अगर टच भी करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही वार्म होगी, क्योंकि ब्लड
0: गर्म
1: जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक में. आपकी नॉर्मल हमारी स्किन का सर्कुलेशन जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन सर्कुलेशन होता है वो उससे 10 गुना बढ़ेगा, तो आपका जो और जगह ब्लड की जरूरत है, जैसे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, वो कम हो जाती है. तो जो सिम्टम्स भी होते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं. जैसे कि अगर किसी को उसको एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन मैंने बताया, साथ में इसके हीट स्ट्रोक में ब्रेन के सिम्टम जुड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, उसका होश गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट जो है अलर्ट नहीं रहेगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी लगेगी, पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करेगा, पेशेंट इवन यहां तक कि फिट्स, जिसको हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं. तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट भी करें. और मैं तो कहूंगा इससे पहले, जिसको हम बोलते हैं हीट एग्जेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर 104 तक रहता है, तो यहां तक जैसे ही जाए तो आपको सोचना चाहिए कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकली बना सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेशेंट की स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा है, जो कि नॉर्मली किसी भी फीवर में आता है, स्वेट आउट, हीट निकलने की जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है. और हम बात करें कि किसको रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग पानी की, जिनको कमी होती है, खासतौर पर जो हमारे ऐसे लोग जो कि मोस्टली लेबर क्लास होता है, जो हमारे लोग
0: ओपन में काम कर रहे हैं,
1: जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है. और एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं बात करूँ जो नुकसान होता है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि हमको ऐसा कुछ हो सकता है. वो डायरेक्ट सन के एक्सपोज में होते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे समय समय पे पानी पीने की जरूरत भी है, या बीच बीच में आपको छाया में जाने की जरूरत भी है. तो आपको इन बिटवीन अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करके रखें, और समय समय पर आप जो बोलते हैं हम ज्यादा, अगर सन बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप छाया में बीच बीच में जाएं. मैं बात कर रहा हूँ लेबर वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है. और
0: पानी पीते रहें,
1: ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर देखते हैं कि टेम्परेचर मोर देन 104 है, मैं इसको बता रहा हूँ टेम्परेचर को, और पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है, मतलब पेशेंट का होश गड़बड़ हो गया, पेशेंट अलर्ट नहीं है, तो आपको 100% सोचना है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बुखार जो है वो दिमाग पर चढ़ गया है, यही कहलाया जाता है जनरली, क्योंकि आपको होश नहीं रहता, आपको समझ नहीं रहती, सूझबूझ से जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे आप कर नहीं पाते। तो देसी भाषा में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।
1: जी आपने सही कहा मैम, जिसको हम, अगर मैं बोलूँ पेशेंट के रिलेटेड एक कॉमन लैंग्वेज में, तो कहते हैं लू लग गई है। तो किसी को अगर लू लग गई है, मतलब कि उसका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको होश नहीं रहता है, सोडियम पोटेशियम भी गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, और अगर सोडियम ज्यादा कम हो जाता है तो बेहोशी में सोडियम का भी रोल है, वो और ज्यादा आपके अलर्टनेस को डाउन करता है, और डेफिनेटली हीट स्ट्रोक में इवन कई बार ब्रेन को इन्फार्क्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम खालिश बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: और हीट स्ट्रोक तो अपने आप में ही एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट, जो मैंने बताया अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, इशारा कर देता है, बिकॉज ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो डेफिनेटली ये है।
0: जी तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, आगे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल में क्या इलाज मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम कर रहे हैं बात हीट स्ट्रोक के बारे में। बढ़ती गर्मी प्रॉब्लम बहुत सारी लाती है और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है, वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू लग जाना, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये लू लगना सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बीमार कर देगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर सही समय पर इसको पहचान कर इलाज ना किया जाए। अगर आपके घर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्चुअली में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है, सो आपको क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको घर पे देना है या फिर फर्स्ट एड घर पे देना है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना, और हॉस्पिटल कैसे इलाज करेगा, ये जान रहे हैं हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी से, जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, अब मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि अगर कोई हमारे घर का सदस्य है और वो घर में आ रहा है और हमें दिख गया है कि उसको हीट स्ट्रोक है, भरी दोपहर में आए कोई और उसे बुखार हो जाए और बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, जैसा आपने कहा कि पहले तो बेसिकली जो हम बोलते हैं प्रोडोमल सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस तो बंदे को घर पे या जहाँ वो होते हैं वहीं पे आते हैं। तो आपने कहा कि कैसे पता चले, तो आपने कहा कि अगर किसी का कोई बाहर से आ रहा है जो आउटडोर एक्टिविटी करके या सन के एक्सपोजर से आया और उसका आपने देखा कि उसको हाई ग्रेड फीवर है और आपने देखा कि उनको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रखा है और वो कह रहे हैं कि मेरे को आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी भी लग रही है, सीवियर हेडेक भी हो रहा है, या मसल क्रैम्प बहुत कॉमन सिम्टम है कि वो कहेंगे मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर घर पर हो रही हैं तो डेफिनेटली अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक में जाने से बच पाएं। तो ये घर पे ध्यान रखें कि आप उनको प्रॉपर उनको आप हाइड्रेशन करें, उनको आप ORS दें, उनको आप नींबू पानी दें या एक कोकोनट वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस समय, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीविंग फैक्टर भी होता है, तो उनको आप नारियल पानी पिलाएं फ्रेश, और घर पे उनको बोलें कि डी क्लोथिंग करें, लाइट क्लोथ उनको पहनाएं और उनको बोलें कि आप वो जो एयर कंडीशन आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उस समय उनको आप AC की रूम में रखें जिससे कि उनका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई है, वो AC भी टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्प करें। अब ये सब काम आप कर लेते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनका टेम्परेचर लगातार ज़्यादा है और आपने देखा कि टेम्परेचर 104 या 104 के ऊपर है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 100% आपको लगे कि थोड़ा उनका सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है या उनकी अलर्टनेस गिर रही है, ऐसे लक्षण जैसे ही लगे या लूज मोशन का, जो नॉर्मल बोलते हैं कि भाई लू लग गई और लू में आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको एक अच्छे सेंटर पे ले जाएं। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या रिमोट एरिया में डॉक्टर ने देखा है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली आप वहां ले जाएं जहां पे कि हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, खासतौर पर ऑब्वियसली टर्शरी केयर में या बड़े किसी गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे ये फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनको इमीडिएटली ले जाएं। और अगर आप छोटी जगह पे भी है तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे उनको IV फ्लूड्स दिए जाते हैं, जो बहुत ही वाइटल होता है, लाइफ सेविंग होता है, जिसको आप नॉर्मली हम NS और RL कहते हैं, बोलते हैं कि पानी लगा दिया, नॉर्मली समझते हैं लोग, वो ये ध्यान रखें कि वो पानी भी गर्म ना दे दें। आपने देखा होगा कई बार वो भी हीट में उतना ही गर्म होता है तो वो डबल अटैक हो जाता है एक तरह से।
0: ओके,
1: तो ये ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर ठीक हो, जो बाहर से आप फ्लूड का रिप्लेसमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट के,
0: वो
1: एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये चीज डॉक्टरों को या हेल्थ सेंटर पे जो टीम है हमारी, उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो भी ऐसा कर देते हैं कि वो भी उतना ही टेम्परेचर का है, तो बेसिकली पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ साथ और जो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसा हमने कहा कि टर्शरी केयर पे ये भी पता चलता है कि बंदे का ब्रेन को भी इशू है क्या उनका, तो वहाँ पे उनका CT भी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पता चलता है, और हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है वो सारे टेस्ट आप बड़े सेंटर पे ही करा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर हमने जैसा कहा वैसे सिम्टम्स मिले और किसी का टेम्परेचर और उनकी अलर्टनेस कम हो जाए, मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो डेफिनेटली उनको हेयर सेंटर पर जाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घर पे बहुत समय वेट नहीं करना चाहिए अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग घर पे जैसे ठंडे पानी की पट्टियां सिर पे रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियां, क्या वो भी रखी जा सकती हैं या वो ठीक नहीं रहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% घर पे आप लोग उसको ठंडी पट्टियां भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अगर मैं बात करूं तो कई मेडिकल कॉलेज, जो अगर हम दिल्ली NCR में रहते हैं तो सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उसमें अलग से वार्ड बना दिया जाता है इस समय पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। तो डेफिनेटली आप उनको ठंडी पट्टी भी रखें, उनके कपड़ों उनको आइस से उनको आप अपने उनको क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी कोल्ड आइस इमर्जेंट थेरेपी है, मैं ये कहना चाहता था कि आइस डाल के और पेशेंट के टेम्परेचर को कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी सही बताऊँ तो कोल्ड आइस थेरेपी है। तो आपने कहा कि आइस से वो कर सकते हैं कि पट्टी, 100% कर सकते हैं, बहुत ही रिलीविंग होगा। दूसरा जो हीट स्ट्रोक की सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है, और साथ में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड आइस इमर्सन थेरेपी दी जाती है जो कि काफी इफेक्टिव होती है
0: जी।
1: लेकिन आपके जो अंगों को नुकसान हो जाता है उससे बचना काफी मुश्किल होता है, तो ये बेटर यह है कि आप इसको पहले से ही ध्यान दे दें जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं।
0: यानी आप 2-3 दिन तक वेट ना करें, अगर पहले दिन ही ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है।
1: क्योंकि आपने देखा कि जैसे आप रेडियो मानव रचना या ऐसे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया उनको वो कई बार टेम्परेचर को भी नहीं देखते हैं सोशल मीडिया या फोन पे कि आज बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो उनकी उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो वो शायद समझ पाएंगे कि टेम्परेचर का और अपनी बॉडी का पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, यानी पानी जो है वो वैसे ही अमृत नहीं कहलाया जाता, वो वाकई अमृत होता है, और इस गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी अच्छे तरीके से पीजिए, 3 लीटर पानी 2 से 3 लीटर ज़रूरी है पीना, अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पीजिए। अल्कोहल का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम करिए, और उसकी जगह जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी बना के पी लीजिए, बॉडी को बहुत राहत मिलेगी। और ठंडी चीज़ें जो आप खा रहे हैं इतना ठंडा भी मत खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए, कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीज़ें खाइए, और बहुत ज़्यादा बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करिए क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ, और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहां पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।

0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
2: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
0: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी माहेश्वरी भवन में संचालन, समय समय पर हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेड क्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
2: सो भाई बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ तो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहां से मिलेगी और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसे कैसी चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मत जाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो वनब्रश 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो वनब्रश 107.8 एफएम पर हर चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहां पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया जी। बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नूह हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है और वहाँ पे प्रचार करती है। वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है, वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पेम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको देनी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ रामकुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश कट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम लोगों के हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रांग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है और वो फोरफ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशंस की बात करते हैं या एनजीओस की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। 1985 से ये संस्था आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं।
0: वाओ।
1: 42-43 साल से चल रही है, जुड़े।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूं, तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये मेंबर हमारा लगभग मेंबर्स 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप, 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सो क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार, जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम है जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हो या नॉर्मल लोग हो, हॉस्पिटल्स में इसकी काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985, कैन यू बिलीव आई वॉज जस्ट बॉर्न एट दैट टाइम। तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है, इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं। बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप। भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है, क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं। एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं।
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं। और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें। और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी। मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं है कौन नहीं है। तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े। धन्यवाद।
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत जरूरी है ब्लड को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतजार कर रहे होते हैं। और आपने व्हाट्सएप पर तो देखा ही होगा, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज आकर ब्लड डोनेट करिए। बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं। सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए, 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A सेक्टर 7A फरीदाबाद और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
0: भाई देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज़ है, धन। सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से राम कुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूं, और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? राम कुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गांव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है, उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सके। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है, वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं, सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना, वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ राम कुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे, और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी

0: इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी, और धन्यवाद आपका। मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी, महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना, बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके। मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है और वो अपने डिसीशंस खुद ले पा रही है तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे। शशि गनगानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ तो ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहां वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं। और फिर एक पड़ाव आया जहां वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहां तक आ गए हैं, लेकिन यहां आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूं, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते,
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है और फिर हम ना वो उस ढर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और इसकी शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम और उतना ही बेहतरीन सा एपिसोड। शशिकला जी एक ऐसी महिला है जो बहुत सशक्त है, बचपन से ही बहुत सारी कुरीतियों को देखने के बाद भी ये हमेशा से एम्पावर्ड रही और शायद इन्होंने एम्पावरमेंट आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स को भी दी और इसीलिए इनके न सिर्फ स्वभाव में लेकिन आप देखेंगे कि इनके हाव भाव में भी सशक्तिकरण नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने सोशल वर्क को अपनाया है और जिस तरीके से अपने समय का और अपनी कला का सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी कला है शशिकला जी में। शशिकला जी, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सशक्तिकरण की आपकी यात्रा, सो अगर देखा जाए तो आपकी एक लंबी जर्नी रही है इन खूबसूरत 55 सालों की।
1: हाँ।
0: इसमें कई ना कई जिंदगी में आपने कोई एक ऐसा निर्णय लिया होगा जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैंने बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन लिया है, ये बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन है, और उसके बाद ये मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई रिग्रेट नहीं था या आपको लगा कि यस ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है।
1: भावना, मैं राजस्थान से हूँ
0: जी,
1: और मैं राजस्थान में क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक पढ़ी हूँ
0: जी,
1: जहाँ मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। और मैं बात कर रही हूँ वे बैक 1984
0: जी।
1: सो उस टाइम में राजस्थान में 9th स्टैंडर्ड में हम कोर्स ले लिया करते थे अपना, जो अभी 11th में लेते हैं, हम 9th में ले लिया करते थे
0: जी।
1: और मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स अलाउड था
0: जी।
1: सो मैंने अपने दादी जी से कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी आर्ट्स, मैं कॉमर्स करूँगी
0: जी,
1: मुझे कॉमर्स करना है और मुझे सीए कंप्लीट करनी है।
0: वाओ।
1: सो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना अपोजिंग डिसीजन रहा है मेरा।
0: वाकई।
1: और मैंने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी, जो बॉय स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर तुमको करना है तो तुम 5 फ्रेंड्स को ले आओ
0: जी।
1: मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी 5 फ्रेंड से बात करी, उसमें एक मेरे प्रिंसिपल सर की बेटी भी थी
0: जी।
1: तो मैंने उससे कहा कृष्णा से कि कृष्णा हम कॉमर्स करते हैं, एंड वी वेंट 5 लड़कियां हम मैंने बनाया ग्रुप और मैं गई और हमने लिया
0: जी।
1: और बिलीव मी मैंने स्कूल टॉप किया।
0: वाओ।
1: क्लास 9th में, एंड वी वर हम सिर्फ 5 लड़कियां थी पूरे बॉय स्कूल में, 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक का क्लास था
0: जी,
1: उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 5 लड़कियां थी। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से, मेरे दादी जी ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मुझे कहा तुम जो ले रही हो आई एम विथ यू,
0: वेरी नाइस,
1: सी टू इट कि भाई कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, बस और कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। एंड आई वेंट ऑन, आई डिड माई 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम देयर, देन आई शिफ्टेड टू कोयम्बटूर। सो आई थिंक वो हमारे मेरा पहला सशक्तिकरण आप बोल सकते हो,
0: मतलब
1: आई टुक अ डिसीजन
0: एट द एज ऑफ 13। वाओ, इमेजिन एट द एज ऑफ 13 आप इतना एम्पावरिंग डिसीजन लें कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, ऑल बॉय स्कूल में जाकर मात्र 5 लड़कियां वर्सेस प्रोबेबली 250 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यही हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी क्या आप अपनी चॉइसेस को रख पा रही हैं। आज भी आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशंस में हैं, क्यों? क्योंकि टीचिंग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ होता है, आप सुबह सुबह जाएंगी दोपहर तक घर आ जाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रहेगा और आप भी नॉर्मल काम कर सकती हैं, ये कहकर बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में पुश किया जाता है, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहती हो, कहीं और कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहती हो, लेकिन कंपेल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए सेफ है। और यही कुछ ऐसे प्रलोभन है या कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पुश कर करके महिलाओं को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो सशक्त है, जो अपने लिए डिसीजंस ले सकती हैं और अपने डिसीजंस लेने के बाद विदाउट अ रिग्रेट उन पर आप अडिग रह सकती हैं, तो आप एक सशक्त महिला हैं। एक बार अंदर झांक कर देखिए अपने दिल से, और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है तो इट इज टाइम कि आप एक डिसीजन जरूर लें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
2: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
1: जी,
2: हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
1: जी।
2: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ और अगर मैं ये चीज कह दूँ या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूँ, मेरा बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये, मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन, हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
1: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
2: यस,
1: क्योंकि परवरिश महिला का
2: रोल है, महिला का।
1: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
2: छोटा सा वाक्य याद आ रहा है अपनी लाइफ का
1: जी।
2: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9
1: जी।
2: तो जब मैं क्लास 8 में थी, 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई
1: जी।
2: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया
1: जी।
2: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है एंड
1: yes.
2: और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
1: यस,
2: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है, और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
1: यस,
2: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ। नो, अगर मैं घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, मेरी मर्जी से बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, जहाँ मैं ये नहीं फील करती हूँ कि मेरे पे ये थोपा गया है, तो इफ आई चूज लाइक आई हैव चोजन,
1: यस
2: आई एम इक्वली, मैं अपने हस्बैंड के साथ में 92 से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रॉपरली टेक केयर करती हूँ. व्हेन ही इज एब्सेंट फॉर सपोज से वन मंथ, वन एंड हाफ मंथ, आई हैंडल द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ, टेकिंग ऑल द डिसीजंस.
1: यस,
2: सो आई थिंक दैट इज एम्पावरमेंट
1: एक्चुअली.
2: And at the same time, I'm happy handling my house.
1: Yes. देखो यही सही सशक्तिकरण है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है. सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है, ये उसका एक स्टेप हो सकता है. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं, विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं. भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है, आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया, मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है, मुझे आराम करना है, तो आप अपने डिसीजन ले रहे हैं. अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है, तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो, अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए. सो यहाँ पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है, जहाँ आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं, और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं, इस घर में बहुत पैसा है, हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए, सो वी डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न, ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना. ये आप पर थोपा जा रहा है. लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं, आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं, घर बैठकर काम करना चाहती हैं, ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप उतनी सशक्त महिला है. बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं, और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है, यानी क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है. सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशि कला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपनी डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का होता
0: है, यस।
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस।
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे, उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी।
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माय क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीस वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स आल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: nobody knows about it. So and the happiness on her face, she was so happy and she kept asking my class teacher,
0: kisne diya,
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to,
0: wow,
1: do it.
0: To bhai dekhiye, agar wo radio manav rashta 107.8 fm sun rahi hai to ab aapko pata hai ki aapki class mein shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था, एक्सेंचर में, सो ही यूज टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं, और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर, सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पे खुश होके लीजिए और उस पे खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मनोवृष्णा 107.8 एफएम के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी श्रीधर पाठक के बारे में। उनकी कुछ रचनाएं थीं जिनका नाम मैंने आपके साथ साझा किया था, जैसे वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, बाल विधवा, भारत प्रशंसा, भारोत्थान, गुणवंत हेमंत और स्वर्गीय वीणा। ये उनकी रचनाएं थीं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ उनकी और रचनाओं का जिक्र करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

कविता में वो कहते हैं, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, दुई दिवी धूती पूरी राजत भूरी भ्राजत भगन, नखत अवली प्रकाश पुर्वत दिव्य सुरपुर मगन, सुन मुन खिली मंदार महकत अमर भौनन अगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, मिलन प्रिय अभिसारी सुरतिये चलत चंचल पगन, छिटकी छूटत तार किंकिनी टूटी नुपुर गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निहरत गंधर्व निरतत उमग भरी अंग अगन, तहां हरि पद प्रेम पागी लगी श्री धर लगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। लेकिन इस कविता के अलावा उनकी एक और कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। हिंद महिमा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, श्रीधर पाठक की एक कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा।

महिमा में वो कहते हैं, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद, जय जयति जयति सुखदाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद, जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद, जय मलयज मेरु मंदरा हिंद, जय शैल सुता सुरसरी हिंद, जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद। तो ये थी उनकी वो कविता जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। इसके अलावा उन्होंने स्वदेश विज्ञान की बात की है। अब स्वदेश विज्ञान के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बताना या समझाना चाहते हैं। अब उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वदेश विज्ञान। इसमें वो कहते हैं, जब तक तुम प्रत्येक व्यक्ति निज सत्तु सत्तु ना ही जानोगे, त्यों नहीं अति पावन स्वदेश रति का महत्व पहचानोगे। जब तक इस प्यारे स्वदेश को अपना निज नहीं मानोगे, त्यों अपना निज जान सतत शुश्रूषा व्रत नहीं ठानोगे। प्रेम सहित प्रत्येक वस्तु को जब तक नहीं अपनाओगे, समता युत सर्वत्र देश में ममता मति ना जगाओगे। जब तक प्रिय स्वदेश को अपना ईष्ट देव ना बनाओगे, उसके धूली कणों में आत्मा को समूल ना मिलाओगे। पूत पवन जल भूमि व्योम पर प्रेम दृष्टि नहीं डालोगे, हो अनन्य मन प्रेम प्रतिज्ञा पालन व्रत नहीं पालोगे। तन मन धन जन प्राण देश जीवन के साथ ना सानोगे, सोपयुक्त विज्ञान ज्ञान का सुखद वितान ना तानोगे। तब तक क्यों कर देश तुम्हारा निज स्वदेश हो सकता है, स्वतत्व उसी का रह सकता है, रख उसको जो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, उन्होंने अपनी इस कविता यानी स्वदेश विज्ञान के माध्यम से लोगों को स्वदेश की जानकारी दी और स्वदेश के बारे में जागरूक किया। लेकिन इनका एक गीत है जो देश प्रेम के रंग में डूबा हुआ है, उस गीत के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, श्रीधर पाठक के उस गीत की बात कर लेते हैं जो देश प्रेम के रंगों से सराबोर है। जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जग सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। प्यार देश जय देशेश, अजय अशेष सदै विशेष, जहां न संभव अघ कालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोक त्रिय का, सुललित प्रकटी नटी कटी का, ज्यो निशी का राकेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत क्लोनिन गंगा, भानु प्रताप समत्कृत अंगा, तेज पुंज तपवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जग में कोटि कोटि जुग जीवे, जीवन सुलभ अमीरस पीवे, सुखद वितान सुकृत का सीवे, रहे स्वतंत्र हमेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। तो ये गीत था जो देशभक्ति की बात बताता था, लेकिन इसके अलावा एक उनकी कविता है जिसका शीर्षक है बली बली जाऊं। अब ये बली बली जाऊं में क्या कहना चाहते हैं, इसको भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविता जिसका शीर्षक है बलि बलि जाऊं, इसमें कहते हैं, भारत पे सैया मैं बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, हियरा लगाऊं, हरवा बनाऊं, घरवा सजाऊं, मेरे जियरवा का, तन का, जिगरवा का, मन का, मंदिरवा का प्यार बसैया, मैं बलि बलि जाऊं, भारत पे सैया मैं बलि बलि जाऊं, भोली भोली बतियां, सांवली सुरतिया, काली काली जुल्फों वाली मोहनी मुरतिया, मेरे नगरवा का, मेरे डगरवा का, मेरे अंगनवा का क्वारा कन्हैया, मैं बली बली जाऊं, भारत पे सैया मैं बली बली जाऊं। तो दोस्तों, इस तरह का अंदाज था लिखने का श्रीधर पाठक का। कुछ और भी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें मैंने कर ली है और उनकी जो रचनाएं थीं, उनकी जो कविताएं थीं, उनके जो देश प्रेम में डूबे गीत थे, सभी के बारे में आपसे जिक्र किया है और अपने लेखन से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। वाकई दोस्तों, श्रीधर पाठक ने दशकों तक हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ काव्य कृतियों का सृजन किया था, लेकिन 13 सितंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी उनकी लोकप्रिय रचनाओं के लिए उन्हें याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, यार मेरा हर तरफ भरपूर है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 पर शुरू हो चुकी है प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। और इस महफिल में शामिल सभी दोस्तों की खिदमत में फहीम का नमस्ते।

मृत्यु जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है। दोस्तों, सूफियों को किसी धर्म, जाति, संप्रदाय में बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। यहां तक कि सूफी लिंग भेद की पहचान से भी बहुत ऊपर होते हैं। भले ही उनका शरीर किसी भी लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन खुद उनकी कोई जात नहीं होती। संत बुल्ले शाह बड़ी ही प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं कि जाना मैं कोई रे बाबा, कि जाना मैं कोई, जो कोई अंदर बोले चाले, जात असाड़ी साई, जिस दे नाल में नेहू लगाया, ओहो जिहा मैं होई। मुझे क्या पता कि मैं कौन हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं जो मेरे अंदर बैठा है, मेरा भगवान, बस मैं उसी से बातचीत करता हूं, उसी के साथ मस्त रहता हूं, वही मेरा यार है, वही मेरी जात है, उसी के साथ मेरा नेह जुड़ा हुआ है और मैं बस उसी का ही हूं।

0: अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगठन अति आवश्यक है।
1: दोस्तों सच तो ये है, आत्मा की अपनी कोई जाति नहीं होती। सूफी का प्यार खुदा से रूह का प्यार होता है। वो खुद को भी शरीर नहीं आत्मा समझता है। साधना में संत अपनी साधना के जरिए एक ऐसी हालत पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद अपनी खबर नहीं होती। उनका अपना आपा ही अपनी पहचान से परे हो जाता है। प्रेम के पथ में ऐसी ही हालत को उपलब्ध हो जाने का नाम है सूफी। इसलिए वो खुद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपने आप को इस दुनिया

0: ऐसी किताब रोजाना पढ़ना जरूरी है जो आपकी आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति में सहायक हो। दोस्तों, सूफी संत सुल्तान बाहू का कहना है, मैं ना शेर हूं, ना पाव हूं, ना छटांक हूं, ना सरसाही हूं, तोला या माशा भी नहीं हूं, मैं तो पूरी एक रत्ती भी नहीं हूं। अगर रत्ती होती तो रत्तियों के साथ तुली जरूर जाती, मगर अफसोस वो भी पूरी ना निकली, यानी मैं उतना भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि जो मालिक के आशिक होते हैं वो ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी रीति रिवाज के पाबंद होते हैं। वो तो बस अपने खुदा के दीवाने होते हैं, आशिक होते हैं।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

अधकचरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण होता है। दोस्तों, सूफी संत कहते हैं, जो इश्क में अपनी खुदी यानी अहम और हस्ती को गवा देता है वही सच्चा फकीर है, और अपने अहम को मोहब्बत के जरिए ही मिटाया जा सकता है। सूफी संत सुल्तान बाहू कहते हैं, नफ्स यानी अहम और मन ही आत्मा को परमात्मा से अलग रखने वाली ताकत है, जिसकी वजह से माया, खुदी, द्वैत, संचय जैसे कई विकार पैदा होते हैं। केवल प्रेम ही मन को काबू में करके इन दुखों से छुटकारा दिला सकता है। प्रेम खुदी को मारने का अचूक उपाय है, और इसी के जरिए रूहानी राह पर तरक्की होती है।

इस दुनिया में ज्ञान दान करने वाले के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। दोस्तों, खुसरो कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पी को दोनों एक ही रंग। कहने का मतलब है, सुहाग की रात में अपने पिया के संग थी, और जब मैं सोकर उठी तो मैंने पाया कि मेरा तन जरूर मेरे पास था, पर मेरा मन मेरे पिया के रंग में रंग चुका था। खुसरो खुदा को अपना पिया या शौहर कह रहे हैं और खुद को उनकी सुहागन बीवी कह रहे हैं। आगे कुछ और भी कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे गर हारी पी के संग। प्रेम एक खेल है जिसको मैं अपने पति यानी मुर्शिद के साथ खेल रही हूं। अगर मैं जीत गई तो पिया मेरे हो जाएंगे और हार गई तो मैं पिया के संग हो जाऊंगी। इन शब्दों में खुसरो अपने मुर्शिद को यार कहते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर।

हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। दोस्तों, सूफी जो होता है, सूफी मिटने के लिए जीता है। सूफी क्यों जीता है, क्या चाहता है? सूफी समा जाना चाहता है, मिल जाना चाहता है उस खुदा की दुनिया में। सूफी खाक हो जाना चाहता है, फना होना चाहता है, ताकि उसका द्वैतवाद छूट सके और वो अद्वैत में खो सके, उस नूरानी शक्ति के साथ एक हो सके। यही फर्क है आम मोहब्बत और सूफी मोहब्बत में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में। खुदा रूपी सागर में जो जितना गहरा जाता है उतना ही ऊपर उठता है। यही सच्चे प्रेम की निशानी है और यही सच्चे प्रेम की ऊंचाई है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।
1: रंग रेजा, रंग रेजा।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजी सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील

ये शो बहुत खास है। उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, देयर यूएसपी, एवरीथिंग, बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योर टेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योर टेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योर टेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योर टेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योर टेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुंच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर एड्रेसिंग इट। द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योर टेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहां पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो है वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योरटेक कंपनीज, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने यहां पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो ID प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। So that's how things are working. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीजें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात यह है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है। आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे फेजेस आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकेंड आता है फिर टेक्निकल, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत इजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो इजीली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशन। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिला करके एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, प्लान मतलब प्लान। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान होते हैं। जस्ट किडिंग। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योरटेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहाँ पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप ऑनर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज़ कि यहाँ पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही भी आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है, जो बहुत ब्रूटल है, वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी। एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को केटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहां पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है। छोटे शहरों में ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है। बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज को आवाज दी। So instead of selling an annual policy of ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, small ticket insurance बनाया, contextual insurance बनाया, easy onboarding करी, low annual premiums रखे, ठीक है, जहां पर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने केटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी। दैट इज द थिंग। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की। कौन है फाउंडर, विल टॉक अबाउट इट, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

बिना वक्त गंवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं या फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कारक्रू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है। जहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, GSF एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। एंड ही गॉट जस्ट वन पॉइंट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैन इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि IIT ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं। देन इसके अलावा खुद ने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या सम हाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की USP की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे।
1: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मेरा नाम है सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी हमारी आज की बीमा प्लान, और अब यहाँ पर बात करेंगे यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फर्स्ट यूएसपी आती है माइक्रो इंश्योरेंस फॉर अनडिजर्व्ड इंडिया। बीमा प्लान जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसी प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रांड के साथ कम्पीट करने का काम नहीं कर रही है। इनका बहुत सिंपल सा फोकस है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। कोई ग्लैमरस बिजनेस पोजीशनिंग नहीं करी इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल पर जो है गेम अपना एक्सेल किया, जहाँ पर लोगों को जरूरत है इंश्योरेंस की, पैसे नहीं है, तो उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। एम्बेडेड इंश्योरेंस मॉडल इन्होंने दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कस्टमर्स कम बाय इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीजों में इन्होंने जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे थे वहां पर अपना इंश्योरेंस जो है एम्बेड किया, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम हुआ, डिस्ट्रस्ट कम हुआ, अवेयरनेस बैरियर्स भी इन्होंने कम जो है यहाँ पर कम किए। एंड दैट्स हाउ ये कंपनी यहाँ पर निकल के आई। मतलब एक सीधे तौर पर अगर आप किसी को बोलोगे इंश्योरेंस खरीद लो तो इंसान कतराएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को स्कूटी खरीदनी है, उसको बोला जाए यार इसमें 100-200 रुपये या 500 रुपये कुछ और दे दो और तुम्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो कस्टमर थोड़ा जल्दी उसको लेकर जो है रिस्पॉन्ड करता है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये बात हमें अब समझ में आ रही है डिजिटल इंडिया, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है वर्नैकुलर प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेट वेव है दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो यूजर्स। यहाँ पर टीयर टू टीयर थ्री ग्रोथ मैटर करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। अभी आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जिस कंपनी का कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर किसी ब्रांड का कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है, कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रही है, तो उस कंपनी के सामने कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उसकी वजह भी है कंटेंट इज स्टोरी, स्टोरी ब्रिंग्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंग्स मोर पीपल इन। That's how things work. उसके बाद next point आता है full stack insurance infrastructure जो उन्होंने खुद से तैयार किया है। So बीमा plan provide करता है end to end integration, policy insurance claim, customer engagement, digital onboarding, insurance APIs. So they are not just selling policies, they are building an infrastructure. These are the USPs of this company. I hope यहां तक आप समझ पाए हैं हमारी आज की कंपनी को। अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे ले बढ़ाएंगे। So stay tuned, feel good, feel live.

फील गुड फील लाइव, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव 107.8 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के बहुत सारे की ड्राइवर्स हैं, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि राइज ऑफ UPI एंड स्मार्टफोन जब से आया है, लोगों की चॉइसेस काफी चेंज हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए और लोगों की हेल्प हुई है। बेसिकली उनके पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें समझ में आ गए, ठीक है। UPI, ई-आधार, चीप इंटरनेट, इन चीजों को कैसे इनकरेज किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश ऐसे नहीं कि किसी को कुछ गलत बेचा जाए, बट उसी में कुछ ऐसी चीजें जो उनकी नीड भी है और इसी इकोसिस्टम में कहीं पर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना अमेजिंग, कितना स्मूथ हो जाता है ना। सो स्टार्टअप्स में टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द आइडिया इज बैड, बिकॉज मार्केट या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट आ रहे हैं। इसलिए सही टाइम पर सही चीज जो है ट्रिगर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल सिंप्लिसिटी। इंश्योरेंस को लेकर के एक साइकोलॉजी है कि भैया बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है बेचना, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। प्लस इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी नहीं होते हैं, ट्रस्ट भी बहुत लो है, पेपर वर्क बहुत इरिटेटिंग है। तो यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, प्राइसिंग अपनी अफोर्डेबल कर दी, सबको एक्सेस दे दिया, ऑनबोर्डिंग को स्मूथ बना दिया एंड बूम, कंपनी ग्रो करने लगी। सो These are the things. और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि मार्जिन्स बहुत थिन है, कस्टमर ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, क्लेम का एक्सपीरियंस डिटरमिन करता है कि रिटेंशन कैसा होगा, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी बहुत वीक है इंडिया में, बट स्टिल दिस कंपनी इज कोपिंग अप एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि ये कंपनी बीमा प्लान इज नॉट जस्ट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रीडिजाइन हाउ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीचेस ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज द वन लाइनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, जहां पर ट्रस्ट लेवल लो थे, वहां पर भी एक गैप ढूंढा, उसको भी फिल किया और लोगों का ट्रस्ट गेन करके ये कंपनी मार्केट में कूद पड़ी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो ये हमेशा होता है, आपको कुछ ना कुछ नया देखना होता है, गैप देखना होता है, दैट्स हाउ वी ग्रो। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर शो अच्छा लगा है तो 8010781078 पर कोई वाइन लाइनर मैसेज छोड़ दीजिए मेरे लिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

जब तक वासना है, कामना है, क्या तभी तक साधना है? स्वभावतः रोग है तो औषधि है, स्वास्थ्य आया औषधि व्यर्थ हुई। स्वास्थ्य में भी कोई औषधि लिए चले जाए तो घातक है। जो रोग को मिटाती है वही रोग को फिर पैदा करेगी। मार्ग की जरूरत है, मंजिल दूर है, तब तक मंजिल आ जाए फिर भी तो जो चलता चला जाए, तो जो चलना मंजिल के पास लाता था वही फिर दूर ले जाएगा। और प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बीमारी तो छूट जाती है, औषधि पकड़ जाती है। क्योंकि मन का तर्क कहता है जिसने यहां तक पहुंचाया उसे कैसे छोड़ दें, जो इतने दूर ले आया उसे कैसे छोड़ दें, जिसके सहारे इतना कुछ पाया कहीं उसके छोड़ने से वो खो न जाए। तो अनेक यात्री मंजिल के पास पहुंचकर भी

भटक जाते और बहुत सी नावें किनारे के पास आकर टकराती हैं और डूब जाती। मझधार में बहुत कम लोग डूबते, किनारे पे बहुत लोग डूबते। यात्रा पूरी उतनी दुर्गम नहीं है जितनी पहुंच जाने के बाद चलने की जो लंबी आदत है उसको छोड़ना दुर्गम हो जाता है। चित्त में अशांति है तो तुम ध्यान करते हो, धीरे धीरे अशांति विदा होगी, शांति निर्मित हो जाएगी। फिर ध्यान को मत पकड़ के बैठ जाना, नहीं तो ध्यान ही अशांति पैदा करने का कारण बनेगा। फिर ध्यान भी जाना चाहिए। अंधेरे में भटकते हो, किसी कल्याण मित्र का हाथ पकड़ा, फिर रोशनी आ जाए, सुबह हो जाए, तो अब हाथ को पकड़े ही मत रह जाना। हाथ का पकड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। साधन का उपयोग करना है, साधन की गुलामी नहीं अख्तियार कर लेनी। राह पे चलना जरूर है, पर राह सिर्फ राह है इसे जानते रहना है। बहुत विधियां हैं, जो काम आ जाए उसका उपयोग कर लो, लेकिन काम पूरा होते ही छोड़ देना, क्षण भर की देरी भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जो खाली जगह छूट जाती है तुम्हारे भीतर, कहीं ऐसा न हो कि विधि व्यवस्था साधना उस खाली जगह में अड्डा जमा ले। तो ये तो ऐसे हुआ कि तुम्हारे सिंहासन पर दुश्मन ने कब्जा किया था, तुमने मित्रों का सांस लिया, उन्होंने दुश्मन को तो हटा दिया लेकिन खुद सिंहासन पर विराजमान हो गए। तुम जहां थे वहीं रहे, शायद पहले से भी बुरी हालत में हो गए। दुश्मन हो तो सिंहासन छीन लेना आसान भी, मित्रों से कैसे छीनोगे? अपने हैं, मित्र हैं, इनके द्वारा ही तो सिंहासन मिला है, इनसे कैसे छीनोगे? इसलिए सदगुरु की परिभाषा समझो। सदगुरु की परिभाषा यह है कि जो एक क्षण भी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे हाथ को न पकड़े रहे। तुम तो पकड़ना चाहोगे, तुम तो बड़े उलझाव में हो। जब पकड़ने की जरूरत होती तब तुम पकड़ने से डरते हो। जब जरूरत है कि तुम हाथ पकड़ लो तब तुम हजार उपाय करते हो न पकड़ने के, तुम्हारा अहंकार बाधा बनता है। तुम भागते हो, तुम बचते हो, तुम छिपाव करते हो। जब जरूरत थी पकड़ लेने की, झुक जाने की, समर्पित हो जाने की, तब तुम अकड़े खड़े रहते हो, बामुश्किल तुम झुकते हो, बड़ी कठिनाई से तुम हाथ पकड़ते हो। जब जरूरत थी तब पकड़ते में तुम बाधा डालते हो, फिर जब घड़ी आएगी छोड़ने की तब तुम छोड़ने में बाधा डालोगे। तब तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुम जिद बांध के बैठ जाओगे, तब तुम कहोगे ये छोड़ने वाला हाथ नहीं है, इसी ने पहुंचाया, ये चरण हम कभी ना छोड़ेंगे। सदगुरु वही है जब तुम पकड़ना नहीं चाहते पकड़ा दे, और जब तुम छोड़ना नहीं चाहते जब छोड़ा दे। साधना का कोई अर्थ नहीं है फिर। कांटे की तरह है साधना, एक कांटे को निकाल लिया, दूसरे को भी साथ ही फेंक दिया। तुम कोई सदा सदा के लिए साधक मत बन जाना, मार्ग की बात है, उपाय है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य जैसे ही करीब आने लगे वैसे ही साधन से अपने हाथ छोड़ना शुरू कर देना। वाहन पर सवार होते हो, मंजिल करीब आ जाती है, उतर जाते हो। प्रकृति का नियम यही है एक, कि अति का होगा ही विध्वंस। एक अति है वासना कि खो गए, भटक गए संसार में, व्यर्थ में, बाजार में। फिर एक दूसरी अति है कि बचाने में लग गए अपने को संसार से, व्यर्थ से, बाजार से। ये दोनों अतियां हैं, इन दोनों में कहीं भी समत्व नहीं है। जरूरी है साधना, क्योंकि एक अति पर चले गए तो दूसरी अति पर जाना जरूरी हो गया है। लेकिन जैसे ही एक अति कट जाए दूसरी अति भी तत्क्षण

छोड़ देना, अन्यथा घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमते रहोगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाते रहोगे। रुक जाना है कहीं बीच में। देखा, जब घड़ी का पेंडुलम बीच में रुक जाता है, घड़ी रुक जाती। घड़ी यानी समय, जहां तुम संतुलित हुए अति गई, वही समय के बाहर हुए। जब तक तुम डोलते रहते हो एक कोने से दूसरे कोने, तब तक घड़ी भी टिक टिक चलती रहती, तब तक समय चलता रहता, तब तक संसार चलता रहता। तुम्हारा मन का पेंडुलम ही सारे संसार को चलाया जाता है। तुमने कभी किसी नट को देखा रस्सी पर चलते? पूरे समय बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होता रहता है। जब बाएं झुकता है तो एक घड़ी आ जाती है कि अगर और थोड़ा झुका तो गिरेगा, तत्क्षण दाएं झुक जाता है, ताकि बाएं की अति से जो भूल हुई जा रही थी वो दाएं झुकने से पूरी हो जाए। लेकिन तब फिर दाएं में ऐसी घड़ी आ जाती कि अब जरा और झुका कि गिरा, फिर तत्क्षण बाएं झुक जाता है, ताकि जो अति हो रही थी उसका संतुलन हो जाए। ऐसे झुकता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और इसी भांति किसी तरह अपने को रस्सी पर बनाए रखता है। लेकिन जब नीचे उतर आया फिर थोड़ी दाएं बाएं झुकता रहेगा, फिर तो बैठ जाएगा, फिर तो झुकेगा ही क्यों, फिर तो खड़ा हो जाएगा, भूमि मिल गई। अब कोई रस्सी पर थोड़ी चल रहा है, संसार में चलना तनी हुई रस्सी पे चलने जैसा है। प्रतिक्षण तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी सहानुभूति, अभी क्रोध, ये दाएं बाएं। मेरे पास प्रेमी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे ये घटना घटे कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर क्रोध ना करें। मैं कहता हूं ये ना हो सकेगा, इसके लिए तो संसार की रस्सी से उतरना पड़ेगा। ये तो संसार की रस्सी पर तुम प्रेम करोगे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ज्यादा झुके गिरने का डर हो जाता, क्रोध की तरफ मुड़े संभल गए। क्रोध में भी ज्यादा झुकोगे तो डर हो जाएगा, तो फिर पत्नी के लिए फूल खरीद लाए, आइसक्रीम ले आए, फिर थोड़ा प्रेम किया, फिर खतरा पैदा हो जाता है। तो जिससे तुम प्रेम करोगे उससे ही घृणा भी करते रहोगे, और जिससे तुम्हारे मन का लगाव है उससे ही तुम लाग भी रखोगे, उससे ही दुश्मनी भी चलती रहेगी। पश्चिम में एक बहुत अनूठी किताब कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई, उस किताब का नाम है द इंटीमेट इनिमी। वो पति पत्नी के संबंधों के संबंध में किताब है, इंटीमेट इनिमी। लेकिन ये तो सूझ इसको अभी अभी आई। उर्दू में शब्द है, हिंदी में भी उपयोग होता है खसम। खसम का मतलब होता है पति, और खसम का मतलब शत्रु भी होता है। मूल अरबी में तो शत्रु होता है, कैसे शत्रु से पति हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ता। मूल शत्रु है फिर पति कैसे हो गया, जरूर लोग पकड़ गए होंगे बात, सूत्र समझ में आ गया होगा, ख्याल में आ गया होगा कि जिससे प्रेम है उससे दुश्मनी भी है। जहां प्रेम है वहां घृणा है, जहां लगाव है वहां विराग भी, जहां जहां राग है वहां वहां वैराग्य आता ही रहेगा। तुमने कभी ख्याल किया कितनी बार में घर से भागने का मन हो जाता, छोड़ो पत्नी बच्चे, मगर स्टेशन भी न पहुंच पाओगे कि लौट आओगे। इसको कोई स्थायी बात मत समझ लेना, ये कोई स्थायी भाव नहीं है, ये तो कई बार आता है। कितनी बार आदमी मरना नहीं चाहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में कम से कम 10 बार आत्मघात का विचार न किया हो। ये जरूरी है, जिंदगी अति हो जाती है, मरने का भाव करके संभाल लेते, जीवन बोझिल हो जाता, भारी हो जाता। मरने की कल्पना से ही राहत मिल जाती, मरता कौन, राहत मिल गई फिर जिंदगी में लग जाते। ये तो जिंदा रहने का ही ढंग है। तो कोई अगर मरने वगैरह की बातें करे तो बहुत चिंतित मत होना, कहना ठीक है मरो। मैं एक घर में रहता था कुछ दिनों तक, नया नया मेहमान था उस परिवार में,
कुछ उस परिवार का रीति रिवाज मुझे पता ना था। एक दिन मैंने रात को कोई 11:30 बजे पति पत्नी ने झगड़ा सुना, मैं चुप ही रहा, मेरे बोलने का कोई कारण नहीं बीच में। लेकिन बात यहां तक बढ़ गई कि पति ने कहा कि मैं अभी जाके मर जाऊंगा, तो थोड़ा मैं चिंतित हुआ कि अब मेहमान भी हूं तो भी क्या हुआ। फिर भी मैंने कहा कि अभी जाने दो, तब देखूंगा। वो गई भी, जब उनको मैंने घर के बाहर भी निकलते देख लिया तो मैं भागा। मैंने उनकी पत्नी से कहा कुछ करना पड़ेगा, उसने कहा फिक्र न करो, अभी 5-7 मिनट में वापस आते। वो 5-7 मिनट में वापस भी आ गए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि कहां तक गए थे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मामला, कई दफा ऐसा हो जाता है, गुस्से में चला जाता हूं, रेल की पटरी पास ही है, बस वहां तक पहुंचा कि सब ठीक हो जाता है, फिर वापस लौट आता हूं। जीने का हिस्सा है। ऐसे हम अपने को धोखा दे लेते कि चलो मरे जाते, अब तो बात खत्म हुई। मरने के ख्याल से ही जीवन का बोझ क्षण भर को नीचे उतर गया, फिर उठा के रख लेंगे सिर पर, कहीं कोई इतने जल्दी मरा जाता है। तुमसे मैं कहता हूं, जो मर भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी कर लेते हैं मर जाते हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो पछताते मिलेंगे, वो कहेंगे जरा जल्दी कर दी, क्षण भर और ठहर जाते। कुछ लोग तेजी में गुजर जाते, जल्दी कर लेते, क्षण भर में घट जाए तो घट जाए, जरा विलंब हो जाए तो तुम वापस लौट आओगे। ये मन का ढंग है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार, दिशा दिवा निसी की सीमा पर बैठ, निकालूं भी तो क्या परिणाम, व्यस्तता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद नहीं है, लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई इसलिए सांझ रोती हुई मालूम होती है। सुबह मुस्कुराती आती है, वही मुस्कुराहट सांझ आंसू बन जाती है। ये जीवन की सहज व्यवस्था है। आशा निराशा, उजाला अंधेरा, मित्रता शत्रुता, ऐसे हम नट की तरह रस्सी पर सधे रहते। वासना साधना, भोग योग, ऐसे हम रस्सी पर सधे रहते। जानना तो तुम उस दिन भूमि मिली जिस दिन न भोग रह जाए न योग रह जाए, न वासना रह जाए न साधना रह जाए, न प्रेम रह जाए न घृणा रह जाए, न क्रोध रह जाए न अक्रोध रह जाए, सारे द्वंद खो जाए तो तुम उतर आए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई जरूरत ही नहीं, अब गिरने का कोई खतरा ही नहीं है, संभालेगा कोई क्यों। संभालते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नर्क जब तुम दोनों से नीचे उतर आए तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नर्क के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पे चल रहा संसार। साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती है वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वा बहने, सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु ये बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु मुझसे नाराज। साधना वासना जुड़वा बहने, उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, वे साथ ही साथ पैदा हुई हैं और साथ ही साथ मर जाती। साधना की जरूरत को कोई बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना, कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेके शोभा यात्रा मत निकाल देना, वो केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज रोज आता है, इससे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। एक अत्यंत हिंदू बुद्धि के व्यक्ति मुझे मिलने आए थे, कहने लगे भारत भूमि बड़ी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कारण? कहने लगे देखो, हिंदुओं के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्धों के 24 बुद्ध सभी यहाँ हुए। मैंने कहा ये तो दुर्भाग्य मालूम होता है, इतने तीर्थंकर इतने अवतार इतने बुद्ध पैदा होते हैं,
इतने चिकित्सक आते हैं, बीमार की हालत बड़ी बुरी, साफ है कि बड़ा दुर्भाग्य होगा। इतने बार चिकित्सक आते हैं और चिकित्सकों की जरूरत बनी ही रहती, इसे तुम सौभाग्य का मुकुट मत समझो। वो थोड़े चौंके, उन्हें कभी इसका विचार भी ना आया होगा। वो कहने लगे कि बात में तो थोड़ा अर्थ मालूम होता है। अगर देश सच में ही धार्मिक हो तो अवतारों की क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा अपनी गीता ही उलट कर देखो। कृष्ण कहते हैं जब अंधेरा होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और साधु पीड़ित किए जाएंगे तब मैं आऊंगा। साफ है कि कृष्ण वहीं आएंगे जहां अधर्म होगा, और अगर यहां आए तो अधर्म होना चाहिए। इसको तुम धार्मिक देश मत कहना। और मुल्कों में नहीं आए, जरूर हमसे बेहतर हालत में होंगे। चिकित्सक की जरूरत रोगी को है, अवतार की जरूरत अधार्मिक को है। दिए की जरूरत अंधेरे में, सुबह होते ही हम दिया बुझा देते हैं, क्या जरूरत। इसलिए तो दिवाली हम अमावस की रात में मनाते हैं, जब गहन अंधकार होता है तो दियों के अवतार पंक्तिबद्ध फैला देते। सबसे अंधेरी रात वर्ष की जो है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा दिए जलाते। दिन में कोई दिवाली मनाएगा उसे हम पागल कहेंगे। अगर मैं ध्यान करूं तो मैं पागल हूं, अगर तुम ध्यान ना करो तो पागल हूं। मुझसे लोग आ जाते हैं पूछने का, आप ध्यान कब करते हैं। मैंने कहा मैं कोई पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहते थे फिर हमें क्यों समझाते हो। तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम ना करोगे तो तुम पागल हो। बात सीधी है, उल्टी लगती है, जरा भी उल्टी नहीं। पहुंच गए, मंजिल समाप्त हुई, चलना क्या है। पा लिया, खोज बंद हुई, खोजना क्या है। साधना का उपयोग करना, यही उस शब्द का मतलब है। साधना का अर्थ साधन, साध्य नहीं। जब तुम सिद्ध हो जाओगे साध्य मिल जाएगा, साधना भी छूट जाएगी। इसे याद रखना, मोह मत बनाना साधना से। रामकृष्ण ने बहुत दिनों तक भक्ति की साधना की, भक्ति की साधना तो की, लेकिन मन में कहीं एक पीड़ा खलती रही। और वो पीड़ा ये थी कि अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं महिमामयी मां की मूर्ति खड़ी हो जाती, लेकिन एकांत, परम एकांत जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा तो मौजूद रहता ही, परमात्मा सही, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही। और जहां तक दो है वहां तक संसार है, जहां तक द्वंद है, मैं हूं तू है, वहां तक संसार है। तो रामकृष्ण बड़े पीड़ित थे। फिर उन्हें एक सन्यासी मिल गया, अद्वैत का साधक सिद्ध, तोतापुरी उस सन्यासी का नाम था। रामकृष्ण ने पूछा मैं क्या करूं, अब कैसे मैं इस द्वंद के पार जाऊं। तोतापुरी ने कहा बहुत कठिन नहीं, एक तलवार उठा के मां के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण तो कब गए, रोने लगे, मां के और टुकड़े, और ये आदमी कैसी बात कर रहा है। धार्मिक होके परम धर्म इसी भाषा में बोलता है, परम धर्म तलवार की भाषा में बोलता है। जीसस ने कहा मैं तलवार लाया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, तोड़ दूंगा सब, टूटने पर ही तो शांति होगी। तोतापुरी ने कहा इसमें आसन क्या है। रामकृष्ण ने कहा तलवार कहां से लाऊं वहां। तोतापुरी हंसने लगा, उसने कहा जब मां को ले आए कहां से लाए, कल्पना का ही जाल है, बड़ी मधुर है कल्पना, बड़ी प्रीतिकर, पर तुमने ही सोचा, माना, रिझाया, बुलाया, आह्वान किया, कल्पना को सजाया हजार हजार रंगों में, वही कल्पना आज साकार हो गई। तुमने ही उसमें प्राण डाले, तुमने ही अपनी ज्योति उसमें डाली, तुमने ही उसे ईंधन दिया, अब ऐसे ही एक तलवार भी बना लो, काट दो। रामकृष्ण आंख बंद करते कब जाते, जैसे ही मां सामने खड़ी होती हिम्मत ही न उठती तलवार, और मां परमात्मा को कोई काटता तलवार से, आंख खोल देते घबरा के कि नहीं ये ना हो सकेगा। तो तोतापुरी ने कहा ना हो सकेगा तो बात ही छोड़ दो, फिर कैवल्य की
मैं चला, मेरे पास समय खराब करने को नहीं, करना हो तो ये आखिरी मौका है और ये बचकानी आदत छोड़ो। ये क्या मचा रखा है रोना आंसू बहाना, उठा के तलवार हिम्मत से दो टुकड़े तो कर। रामकृष्ण ने कहा मेरी कुछ सहायता करो, लगती है बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बड़े भाव से सजाया है, बड़े भाव से ये मंदिर बनाया है, जीवन भर इसी में गंवाया है, कि मुझसे होता नहीं। तोतापुरी ने कहा तो फिर मैं तेरी सहायता करूंगा। वो एक कांच का टुकड़ा उठा लाया और उसने कहा कि जब तेरे भीतर माँ की प्रतिमा बनेगी तो मैं तेरे माथे पर कांच से काट दूंगा, जब मैं काटूंगा तुझे पीड़ा हो, खून की धार बहने लगे, तब तू भी एक हिम्मत करके भीतर भी माँ को उठा के तलवार काट देना, बस फिर मैं ना रुकूंगा, करना हो कर ले। अब ये जाने लगा तो बेचारे रामकृष्ण को करना पड़ा। इस आदमी ने उठा तो उनके माथे पर कांच के टुकड़े से लकीर काट दी, खून बहने लगा। जैसे उसने लकीर काटी, रामकृष्ण ने भी हिम्मत की और तलवार उठा के भीतर कल्पना को खंडित कर दिया। कल्पना के खंडित होते कैवल्य उपलब्ध हो गया, लेकिन बड़ी अड़चन हुई, बड़े दिन लगे। साधन से भी आदमी की आसक्ति बन जाती। तुम अगर प्रतिमा बना लेते हो मन में तो उससे छोड़ना मुश्किल हो जाए। तुमने अगर ध्यान किया, ध्यान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना की, प्रार्थना छोड़नी मुश्किल हो जाएगी, और ध्यान रखना छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये उपचार थे, इन्हें किसी कारण से पकड़ा था, इनके पकड़ने की शर्त ही खो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई नया मकान बनाता है तो एक ढांचा खड़ा करता है, ढांचे के सहारे मकान बना लेता है, फिर मकान बन जाता तो ढांचे को गिरा देता है। अब तुम्हारा कहीं ढांचे से मोह हो जाए और तुम ढांचे को न गिराओ तो तुम्हारा भवन रहने योग्य न हो पाएगा, ढांचा रहने न देगा। जब भवन बन गया तो ढांचा गिरा देना, जब सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी छोड़ देनी। इसलिए पहले से ही अगर ध्यान रहे इस बात का कि साधना को उपयोग तो कर लेना है, लेकिन साधना के हाथ में मालिकियत नहीं दे देनी, तो शुभ होता है। दूसरा प्रश्न, संसार को, बाजार को छोड़कर अपने को पालो, यह आपने कहा, कृपया बताएं कि प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, और क्या प्रेम का क्षेत्र भीतर और बाहर दोनों तरफ नहीं, समझना पड़े। काम तो बिल्कुल बाहर है, कामना बाहर की तरफ भागती हुई ऊर्जा का नाम है, जिसे भीतर की याद भी नहीं रही, जिसे याद भी नहीं रही कि भीतर जैसा भी कुछ है। कामना बाहर जाती हुई बहिर्मुखी ऊर्जा है, साधना प्रार्थना भक्ति कोई नाम दो, भीतर जाती ऊर्जा है, जिसे याद भी न रहा कि बाहर है, जिसे ख्याल भी न रहा कि बाहर जैसी भी कोई चीज है। कामना बाहर, प्रार्थना भीतर, दोनों अति हैं, प्रेम दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, जैसे कोई अपनी दहली पे खड़ा हो, न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छिटक गया हो, जैसे कोई दोनों तरफ देख रहा हो, बीच में खड़ा हो। प्रेम मध्य बिंदु है प्रार्थना और कामना के बीच में, काम हार गया है, प्रार्थना अभी पैदा नहीं हुई, कामना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी है, सार्थक का अभी उदय नहीं हुआ, यात्रा जैसे थम गई। प्रेम एक ठिठकी अवस्था है, बाहर जाने जैसा नहीं लगता, हार गए वहां, राख ही राख पाई, मुंह का स्वाद सिर्फ बिगड़ा और कुछ भी ना हुआ, और भीतर का अभी कुछ पता नहीं। एक बात पक्की हो गई, बाहर व्यर्थ हो गया और भीतर के द्वार अभी खुले नहीं, बीच में ठिटक के खड़ा हो गई जो ऊर्जा है वही प्रेम है।
अगर तुमने जल्दी न की प्रेम को प्राप्त

पीड़ा है, और पीड़ा यही है कि बहुत बार ठिटक आ जाती है और फिर ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग कर लेते हैं उनके भीतर प्रार्थना का उदय हो जाता है। अब इसे ख्याल लेना, काम अर्थात बाहर, प्रार्थना अर्थात भीतर, प्रेम यानी दोनों के मध्य में, और चौथी अवस्था है दोनों के पार। चौथी अवस्था यानी परमात्मा। इसलिए जीसस ने कहा है कि प्रेम जैसा है परमात्मा। ऐसा नहीं कहा कि ठीक प्रेम ही बस परमात्मा है, नहीं तो परमात्मा की बात की दूरी उठाने की जरूरत न रहे। प्रेम जैसा है, एक स्वभाव, एक समानता प्रेम और परमात्मा में है। प्रेम दोनों के मध्य में है, परमात्मा दोनों के पार है। प्रेम बाहर और भीतर के बीच में है, परमात्मा बाहर और भीतर के ऊपर है। इस जीवन के हमारे जितने अनुभव हैं उनमें प्रेम सर्वाधिक सूचक है परमात्मा दशा का। प्रेम ठिटकता है, परमात्मा ठहरा हुआ है। प्रेम क्षण भर को परमात्मा बनता है, परमात्मा सदा को प्रेम है। प्रेम दो दौड़ों के बीच में एक थोड़ा सा पड़ाव है, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा विश्राम, विराम चिन्ह। परमात्मा पूर्ण विराम है दोनों के पार। परमात्मा की अवस्था में ना तो कुछ बाहर है फिर ना कुछ भीतर है, बाहर और भीतर दोनों परमात्मा में। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा के भीतर कुछ है कहने का कोई अर्थ नहीं। परमात्मा ही है, बस परमात्मा है, बाहर भीतर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाहर कुछ नहीं है तो भीतर कैसे कुछ होगा, ये द्वंद्व गिर जाता है। प्रेम में भी ये द्वंद्व क्षण भर को ठहरता है, इसलिए प्रेम में थोड़ी सी झलक परमात्मा की है। बस इस जगत में परमात्मा की झलक देने वाली घड़ी प्रेम की घड़ी है। इसलिए तुम चकित होगे अगर मैं ये कहूं कि प्रार्थना भी परमात्मा के उतने निकट नहीं है जितना प्रेम, क्योंकि प्रार्थना फिर एक अति हो गई। बाहर से छूटे तो भीतर को पकड़ लिया, बाहर से भागे तो भीतर को पकड़ लिया। जरूरी है, भीतर को पकड़ना पड़ेगा बाहर से भागने के लिए। एक अति से बचने के लिए दूसरी अति पकड़नी पड़ेगी, और अभी दोनों के बीच में तुम ठहर ना सकोगे। दोनों के बीच में ठहरने का तो उपाय दोनों के पार हो जाना है, लेकिन जब तुम पार हो जाओगे तब तुम पाओगे, अरे प्रेम का जो क्षण भर के लिए विराम आया था परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत होकर, सनातन होकर। प्रेम में जिसकी बूंद मिली थी परमात्मा उसी का सागर है। वासना में भी तुम हो, प्रार्थना में भी तुम हो। वासना में दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है, प्रार्थना में दृष्टि भीतर की तरफ जा रही। प्रेम के क्षण में तुम नहीं होते, पर क्षण बड़ा छोटा है, शायद तुम पकड़ भी ना पाओ। इतना छोटा है, आणविक है, तुम्हारी पकड़ से भी चूक जा सकता है। तो या तो तुम वासना को प्रेम कहते रहते हो, कामना को प्रेम कहते रहते हो जो प्रेम नहीं, या फिर अगर बदले तो प्रार्थना को, भक्ति को प्रेम कहने लगते हो। लेकिन प्रेम दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा विराम है। ऐसा ही समझो, एक श्वास भीतर जाती फिर श्वास बाहर आती। तुमने ख्याल किया, भीतर जाने और बाहर आने के बीच में क्षण भर को श्वास कहीं भी नहीं जाती, पर क्षण बड़ा छोटा है। ख्याल करना उस पर, श्वास भीतर गई, छोटा सा विराम है, तब ना तो भीतर जा रही न बाहर जा रही, फिर बाहर गई, फिर छोटा सा विराम है, न तो अब बाहर जा रही न भीतर जा रही। इस छोटे से विराम को जिसने पकड़ लिया
वही प्रेम के विराम

काम को भी पकड़ने में सफल हो पाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते, और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते हो। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां, अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते, वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं, कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है, रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो, आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े, बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर अभी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया, उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा, इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है किन्हीं दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई, प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने को है, बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है, तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो, जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी, कई मिनट भी निकल सकते हैं, कई घंटे भी निकल सकते हैं और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सध जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी है।
सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, उस प्यारे का मार्ग ना मिलता था। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। आंख का बंद हो जाना अर्थ क्या है? आंख तो तुम बहुत बार बंद करते हो, रास्ता कहां मिलता है? आंख तो तुम अभी बंद कर सकते हो, रास्ता कहां मिलता है? तो जरूर इस आंख से कुछ मतलब ना होगा। आंख तभी बंद होती है तुम्हारी जब कोई कामना नहीं रहती। प्रार्थना भी एक तरह की कामना है, वहां भी मांग जारी है। परमात्मा के मंदिरों में बैठे लोगों के प्रार्थना के बाद फैले हुए हाथ भी वासना के ही हाथ हैं। परमात्मा के सामने झुके हुए सिर भी वासना के ही झुके हुए सिर। कुछ मांग जारी है। अब बाहर का धन नहीं मांगते, भीतर का धन मांगते। मांग जारी है। जहां तक मांग जारी है वहां तक आंख खुली है। जहां तक तुम कुछ सोच रहे हो मिल जाए, वहां तक आंख खुली है। जहां तुमने सोचना छोड़ा कुछ मिलने को है, कुछ मिलने का सवाल न रहा, तुम हो गए जैसे हो, बस उसमें डूब रहे। आंख बंद हो गई, फिर आंख खुली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद हो गई। तुमने बुद्ध पुरुषों की मूर्तियां देखी, आंख न तो खुली है और न बंद है, अध खुली। अध खुली प्रतीकात्मक है, उसका अर्थ है न बाहर न भीतर। जरा सी खुली है, नीचे की सफेद पुतली दिखाई पड़ती। इसलिए योग में व्यवस्था है कि ध्यानी जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह बैठे कि सिर्फ नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ता रहे, बस। इसका मतलब हुआ आंख बस आधी खुली हो, आधी बंद हो। प्रतीकात्मक है, प्रयोजन केवल इतना है कि न तुम भीतर जाओ न तुम बाहर जाओ, बीच में संध्या काल में ठहर जाओ। प्रेम संध्या काल है। तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना, प्रेम बहुत कम लोग जान पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रेम को जान लिया उन्हें फिर परमात्मा को जानने में बाधा क्या रही? जिन्होंने प्रेम को जान लिया फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा को जानने से क्यों वंचित रह गए। ये हो नहीं सकता। जिनके हाथ में कुछ हीरे आ गए उनके हाथ में पूरी खदान ही आ गई। हीरे ही ना आए होंगे, कंकड़ पत्थरों को समझ लिया होगा हीरे, इसलिए खदान नहीं मिली। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने उसे गौर से देखा और कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा झंझटों में मैं कभी पड़ा ही नहीं। छोड़ें ये बातें, मुझे तो प्रेम से क्या लेना देना, परमात्मा की खोज। लेकिन रामानुज ने कहा तू थोड़ा सोच, कभी किसी से किया हो प्रेम? किसी से भी किया हो? कोई याददाश्त तुझे आती हो? उसने कहा आप भी कहां की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूं, आप दूसरा ही विषय छेड़ रहे हैं। मैं साधक पुरुष हूं, विरागी हूं, प्रेम वगैरह की झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा। मगर रामानुज भी अजीब, वो फिर पूछे कि फिर भी तू सोच, क्योंकि सारी बात इसी पे निर्भर है। अगर तूने प्रेम का क्षण जाना हो तो फिर परमात्मा की शाश्वतता को भी जान सकेगा। अगर प्रेम की बूंद ही नहीं चखी तूने तो सागर को तू कैसे चखेगा, सागर में तू कैसे उतरेगा? लहर को तो पहचान, फिर सागर को पहचान लेंगे। उस आदमी की समझ में ना आया।
वो शायद नाराज ही होकर चला गया। जिनको तुम विरागी कहते हो उनको समझ में कैसे आएगा, जिनको तुम महात्मा कहते हो वो तो प्रेम के दुश्मन बन के बैठे, उनका परमात्मा प्रेम के विपरीत है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं प्रेम उसका द्वार है। तुम्हारे महात्मा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो परमात्मा है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम की शत्रुता है, वो केवल संसार के विपरीत दूसरी अति है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो अति नहीं है, वो बाहर और भीतर दोनों का अतिक्रमण है, वो परम संतुलन की अवस्था है, पूर्ण विराम है। मेरे पास लोग आते वे कहते हैं कि आप भी परमात्मा की बात करते हैं, हमारे गुरु हैं वो भी परमात्मा की बात करते हैं, सब एक ही है। मैं उनको कहता हूं इतना आसान नहीं, सब एक ही है कहना इतना आसान नहीं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। शब्द तो वही, मैं भी परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूं, तुम्हारे गुरु भी करते होंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु का परमात्मा और ही होगा। प्रेम से भयभीत, प्रेम के विपरीत, प्रेम का दुश्मन। तो तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा उनकी इजाद है, असली नहीं। असली परमात्मा तो प्रेम के खेल को खेले चला जाता है, असली परमात्मा तो प्रेम के नए नए रूप रचे जाता है, असली परमात्मा तो कितने रंग लेता है, कितने रूप लेता है, कितने रंगों कितने रूपों में प्रेम का रास रचता है। संसार के विपरीत नहीं हो सकता परमात्मा, संसार के पार हो सकता है, विपरीत नहीं। जो विपरीत है वो तो जब संसार खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो पार है वही अतियों के पार बचेगा। परमात्मा साधना नहीं है, सिद्धावस्था है। परमात्मा कोई विधि नहीं है, जैसा कि पतंजलि ने माना है कि परमात्मा विधि है, कि उसके आलंबन को लेकर उसके प्रति समर्पण करके आदमी परम अवस्था को पहुंच जाता है। पतंजलि का परमात्मा विधि है, साधना का हिस्सा है, उसका उपयोग केवल इतना है कि तुम उसके सहारे समर्पण कर दो, मगर ऐसा परमात्मा तो जब तुम सिद्ध हो जाओगे छूट जाएगा। जब तुम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होगे तो ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत रह जाएगी, ये तो मार्ग का ही हिस्सा था, ये खो जाएगा। परमात्मा मार्ग नहीं, मंजिल है। परमात्मा दाएं बाएं नहीं। परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिल सकती है तो मार्ग के ठीक मध्य में मिल सकती है, इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, मध्य में, ठीक बीच में। मगर बीच से भी सिर्फ झलक मिलती है, लेकिन बीच से अतिक्रमण जुड़ा है। उस बीच के बिंदु को तुम खोज लो तो पार जाने की सीढ़ी मिल सकती है। ध्यान रखना, प्रेम से लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं कि प्रेम की शर्त ही पूरी करनी कठिन पड़ती। प्रेम की शर्त है क्षण भर को मिटना, क्षण भर को ही सही तिरोहित हो जाना। बेदार राहे इश्क किसी से न तय हुई, सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। कोई प्रेमी कभी प्रेम का मार्ग पूरा नहीं कर पाया। मजनू जंगल में खो गया, फरियाद पहाड़ों में। प्रेमी कभी पहुंच नहीं पाता, खो जाता है, पहुंचने योग्य कोई बचता ही नहीं। प्रेमी मार्ग में ही गल जाता है और खो जाता है, लेकिन इसी खो जाने में पहुंचना है। जहां तुम खो जाते हो वहीं परमात्मा हो जाता है, जहां तुम मिटते हो वहीं वो घनीभूत होता है। तुम सिंहासन खाली करो तो ही उसकी संभावना है कि वो तुम्हारे सिंहासन पर विराज सके। तुम अगर बैठे रहे सिंहासन पर, अवकाश कहां, स्थान कहां? परमात्मा को बुलाते हो, तैयारी कहां है तुम्हारी? कहां बिठाओगे, कहां उसे विराजमान करोगे? अहंकार तो रोए रोए में भरा है,
मैं का भाव तो श्वास श्वास में समाया है। जगह कहां बची है तुम्हारे भीतर? जगह खाली करो। प्रेम का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो अपने को डुबाने मिटाने को राजी है। जो डूबते हैं ये नदी कुछ ऐसी है कि वे ही केवल पहुंचते। जो डूबे वे बचे, जो बचे वे डूबे। अगर किनारे पर पहुंचना हो तो मझधार में डूब जाना ही उपाय है। ठीक है ये पंक्तियां, बेदार राह इस किसी से न तय हुई। ये प्रेम का रास्ता कौन कब पूरा कर पाया? इसका ये कारण नहीं कि रास्ता लंबा है, इसका ये कारण नहीं कि रास्ता बहुत बड़ा है इसलिए लोग पूरा नहीं कर पाए। इसका कारण कुल इतना ही है कि ये रास्ता ऐसा है कि इसे पूरा करने वाला बीच में खो ही जाए तो ही पूरा होता है। पूरा होने का एक ही अर्थ है कि बीच में ही खो जाए। अगर पहुंच जाए दूसरे किनारे तो रास्ता खो ही गया, पूरा हुआ ही नहीं। जो पूरा नहीं कर पाते, जो स्वयं इसको पूरा करने में पूरे हो जाते, वे ही केवल पहुंचते। सहरा में कैश, कोह में फरियाद रह गया। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए, कोई रेगिस्तान में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रार्थनाओं में, कोई साधनाओं में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए। जहां खोए वहीं घड़ी उस परम सौभाग्य की, परम आशीष की, परम प्रसाद की। तीसरा प्रश्न एक उलझन है, यदि ठीक समझें तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध और आप दोनों कहते हैं ध्यान से उपलब्ध आनंद को बांटो, ध्यान को बांटो, और दूसरी ओर ध्यान के अर्जन को गुप्त रखने कर छिपाकर रखने की बात भी कही जाती है। निश्चित ही दोनों बातें कही जाती हैं, क्योंकि दोनों बातें सही है, उनमें विरोध नहीं। विरोध दिखता हो तो केवल आभास है। ध्यान मिले तो बांटो, लेकिन ध्यान जब तक न मिला हो तब तक संभालो और छिपाओ। होगा तब तो बांटोगे, जल्दी बांटने की मत करना। अक्सर नहीं होता तो भी बांटने की आकांक्षा पैदा हो जाती। उपदेश देने का बड़ा रस है, किसी को समझाने में ज्ञानी होने का मजा आ जाता है, किसी को बताने में। चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, थोड़े क्षण को आभास होता है कि तुम्हें पता है। इसलिए तो दुनिया में सलाह इतनी दी जाती है, लेता कोई नहीं। कितने उपदेश दिए जाते हैं, कौन लेता है? उपदेशक पीछे घूमते हैं तुम्हारे, पकड़ पकड़ के समझाते। उपदेशकों से बच के निकलना मुश्किल है, उन्होंने सब रास्ते रोक रखे। जहां से जाओ वहीं वो मौजूद है। मुक्त हस्त ज्ञान बांटते, मुफ्त देने को तैयार है। मुफ्ती देने को तैयार नहीं, साथ में कुछ प्रसाद भी देने को तैयार है। लो भर, फिर भी कोई लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बांटना कहीं अहंकार से न निकलता हो, करुणा से निकले तब बात और। पर करुणा तो तब होगी जब ध्यान सघनीभूत होगा, जब ध्यान एक मेघ बन जाएगा। बुद्ध ने इसलिए उसे मेघ समाधि कहा है। जब एक घने मेघ की तरह, सघन मेघ की तरह वर्षा से भरे हुए तुम हो जाओगे, उसके पहले तो बूंद बूंद मेघ इकट्ठी करता है। इकट्ठा हो जाए तो ही बरस सकता है। मां गर्भवती हो, 9 महीने तक गर्भ को संभाले तो ही जन्मदात्री हो सकती है। बिना गर्भवती हुए, बिना 9 महीने संभाले बच्चों को जन्म देने की कल्पना करने में मत उलझ जाना। इससे धोखा पैदा होगा, इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे। और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचा दो, क्योंकि बड़ी बारीक बड़ी नाजुक बात है। इसे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना।
जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाएं, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाएं, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म। जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की। पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो, तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना। अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है, और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती। जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे। पहाड़ और समुन्दर भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुंचे थे इन लॉस तक। इन लॉस एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन लॉज और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैव गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉस की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को।
1: एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है, कि कोई आदत नहीं पसंद है या वो ऐसे ही बोलते हैं या वो ऐसे ही ताने देते हैं या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1, 2, 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास दो चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाएं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे, नेगेटिव।
0: और सोचते भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं सारे लोगों से, फोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बात है।
1: एंड इट्स वेरी आयरोनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यू नो उसकी सारे अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है। तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है। जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर। और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो बस छोटी सी की,
0: हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं पटपट,
1: क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था और फिर शायद हमें बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है। तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इन-लॉज है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होकर बाहर आ जाता है। एक दिन के लिए सिर्फ, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है। लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है। दो चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे। सेकेंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
0: आई हैव टू,
1: दैट्स ओके, यू नो इनिशियली बिकॉज मे बी इट्स टू चैलेंजिंग फॉर अस के आई लाइक द संस्कार, यू नो दैट इज सेइंग के नहीं, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद, बट इनिशियली मे बी इट विल हैव टू बी, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। वॉट डू आई चूज फॉर माई सेल्फ, पेन एंड टर्मोइल या कम्फर्ट? हम एक्सेप्ट करके ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं
0: और वो मुझ पे हावी हो जाएंगे, एक संस्कार नहीं, उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे। अभी से ही मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो देव देखो।
1: लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना। जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज के सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज। ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज है, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप। द मिनट यू विल से फुल स्टॉप इंटरनली, जस्ट ट्राई इट आउट, इट रियली पुट्स अ फुल स्टॉप। यू नो, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में, हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में। इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट।
0: एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है। एंड आई हैवन सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट,
1: राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था। इट विल स्टॉप, दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप। अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटिफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है। तो अगर कोई बातें हैं भी घर में, हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है। आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं। वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं, so why can't I understand कि you know she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs, तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हम internally accept कर लेंगे, आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे, लेकिन जितना negative energy travel करेगी वो हमारे,
0: और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे या जितने भी हम पैर छू ले, these are the aspects which actually all of us do, लेकिन अंदर से वो continuous, again I can understand कि अंदर का conflict जो है, अंदर की नेगेटिविटी।
1: बाहर आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज करने के लिए, अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है, द अदर पर्सन इज़ विलिंग टू लिसन। अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विथड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी।
0: एंड इन फैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है। दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए,
1: एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो एक घंटे के लिए करके देखें। अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ एक घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के, आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट।
0: आई थिंक इसमें सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू
1: सिचुएशन, बट देन दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सी, रिलेशनशिप इज नॉट विद द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज फर्स्ट विद योरसेल्फ। हर्ट दूसरे से नहीं मिल रहा है, सफरिंग दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह फीलिंग गुड भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू क्रिएट इट, बट देन व्हेन आई एम फीलिंग गुड, it automatically travels and the whole environment of the house will change.
0: I can really feel it, you know, that it can happen.
1: And ye bhi nahi soche ki wo kare pehle.
0: See, whoever is awakened
1: जो पहले एक थॉट सिर्फ क्रिएट कर ले कि हाँ ठीक है, पहले अगर हो सकता है पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हो, कोई ऊपर नीचे बात भी एक दूसरे से कही हो, द माइंड हैज द पावर टू फॉरगेट. हम कहते नहीं, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. माइंड हैज द पावर, जस्ट से इट.
0: हम भूलना नहीं चाहते,
1: हम भूलना
0: बार,
1: नहीं चाहते
0: बार याद दिलाते,
1: हर
0: बार,
1: चीज
0: बार.
1: तो वो एक थॉट की है. हम भूलना नहीं चाहते, हम फॉरगिव करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो डिजायर आ जाएगी कि आई वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वन थॉट एनीवन कैन ट्राई दिस राइट नाउ, कि वन थॉट कि अभी तक जो हुआ फुल स्टॉप, एंड दिस यू आर नॉट डूइंग फॉर द अदर पर्सन, दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग. क्योंकि हम सोचते हैं हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरी इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीबॉडी? व्हाई डू आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ पेन व्हेन आई कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस?
0: चॉइस एक्चुअली, यू नो, लेट्स ट्राई इट आउट. कि एक घंटा या एक दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फॉरगिव करने से पहले फॉरगेट करना जरूरी है. माफ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा अब आपके पास, इन लॉस के पास छोड़ रहे हैं, फेट है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है, बच्चा मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं? तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूं, यू नो. लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज टू बी डन, यू नो, जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें?
1: आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन क्रिएट द थॉट, एक्चुअली रियलिटी, यू शुड नॉट हैव टू क्रिएट इट, कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो, देर इज़ नो डिफरेंस. हाँ, अगेन वो चीज़ है कि मेरा वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, इनका वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, बट देन अगेन एक्सेप्ट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन, मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक छोक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल, यू नो, यू शुड रियली बी सो ग्रेटफुल टू योर इन लॉज के दे आर लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन, बिकॉज इट्स एज गुड एज यूर नॉट देयर बट यूर देयर. क्योंकि एक माँ का जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो उसे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है और मिलता ही है. तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करें उनसे? और वो जो खिला रहे हैं या जो पहना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से राइट कर रहे हैं,
0: हमेशा पेरेंट्स जो है, अगर हम
1: हमेशा
0: अपने आप को
1: राइट करेंगे. आज दिन तक हमें कई बातें वो भी तो नहीं अच्छी लगी जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनके प्रति ये नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ये रॉन्ग कर रहे हैं या मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. दे आर डूइंग देयर बेस्ट, एंड फिर अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि आप जो भी परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी मोर देन रेडी.
0: इट हैज टू बी विद अ पॉजिटिविटी.
1: यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहां वहां नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा.
0: थॉट हैज टू बी एक्चुअली पॉजिटिव. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में भी आता है पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एंड दैट इज द हस्बैंड. एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है. अब जब बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है, कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है. व्हाट हैज टू बी हिज थॉट्स? process, you know.
1: Again,
0: what happens with him also?
1: I think again belief है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा pressure उस आत्मा पर पड़ता है, जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके थ्रू होते हुए गुजरती है, क्योंकि टारगेट वो है. यू नो, एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है,
0: दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है,
1: क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है. तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते. इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है. बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली हाउ आई एम फीलिंग. इफ़ आई रियलाइज दैट, यू नो, आई डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देयर इज़ नेवर अ कॉम्पिटिशन. यू नो, हमेशा हम रिलेशनशिप्स में कंपटीशन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए.
0: एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुंचते
1: हैं. दैट्स व्हाट, सो वो सारा प्रेशर अक्यूमुलेट होता है ना. तो वन इज, आई थिंक व्हाट द बॉय कैन डू इज लेट देम सॉर्ट इट आउट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन दोनों को करने दें. एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ शेयर ऑल योर गुड क्वालिटीज अबाउट द मदर, बिकॉज इट्स एक्चुअली जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है. यू नो, यू आर द ब्रिज, तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार. और हर रोज जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो, या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग. एंड फिर move out of the space, let them create the relationship together. हम कई बार ये the boy tries कि दोनों को थोड़ा सा
0: हाँ सामने ही आने दो, क्योंकि क्यों,
1: you know, I don't know whether that's a very healthy sign, कि दोनों को दूर रखते हैं. ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली, ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नजदीक आते हैं तो फिर conflict है. No, it will not be a conflict. It could be a very beautiful relationship. So make that effort of them coming closer. And again, agar aap bahut zyada pressure feel kar rahe hain, then you meditate first. See, meditation is something that's going to help everyone.
0: In fact, it's not just a relationship which happens, you know. It has to be...
1: ये एक relationship है जो develop होता
0: है. Develop किया जाएगा.
1: ये एक develop होता है over a period of time. और इसको जितना right फाउंडेशन पर हम डेवलप करेंगे विद द थॉट के हाँ कि ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, इट विल डेवलप. और फॉर द बॉय, ओनली केयर दैट ही नीड्स टू टेक इज कि दोनों में से किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा नहीं स्वे हो जाना. यू नो, इट जनरली हैपन्स, वो वाला एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ऑफ क्रिएटिंग द बैलेंस. हम डेफिनेटली दोनों में से एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है या ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो मेडिटेशन हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है,
0: इंटेलेक्ट को बढ़ाता है,
1: राइट और रॉन्ग डिसीशन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है. फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और निर्णय लेने की शक्ति. एंड बैलेंस, यू नो, द सबसे बड़ा बेनिफिट राजयोग का मेडिटेशन से मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट दिस बैलेंस इन लाइफ. तो वो बैलेंस एक बहुत नेचुरल होता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगेगा.
0: एक और एस्पेक्ट, जो जब लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी, और यहाँ आते ही एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें,
1: लेकिन
0: जितने
1: उनको
0: भी
1: छोड़ना ही नहीं है।
0: अच्छा, वो नहीं भी छूटते, लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन रहती है कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, द गर्ल्स पेरेंट्स, यू नो, ऑन द गर्ल, ऑन द बॉय एंड ऑन इवन द इन-लॉज, इट्स लाइक बिकॉज दे आर अफ्रेड। ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किए रखता है माँ बाप पे भी कि पता नहीं क्या किया है हमने, क्या होगा उसके साथ वहाँ पे। हम ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, और मुझे लगता है उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो भी जाता है
1: एक्चुअली,
0: कहीं ना कहीं वो एक बहुत प्रेशर में रहते हैं।
1: जैसे हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी, वो एक आत्मा है जिसकी अपनी जर्नी है, हम गाइड कर सकते हैं लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है, इवन व्हेन द चाइल्ड वॉज विद यू। और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है। कई बार हम बेटी की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने के बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं। तो समहाउ आई पर्सनली वुड फील कि वी शुड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हैं definitely,
0: तो माँ के साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? यू नो, दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बिलीफ विद व्हिच द गर्ल लिव्स।
1: ये भी क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास है, नोबडी एल्स कैन गिव मी द सॉल्यूशन, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है। और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है, तो यो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है वो पावर मेरे पास है। बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं, कोई हमें एडवाइस भी दे दे फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुद से उसको करें। जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम ईजिली सॉर्ट आउट कर पाते हैं। कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है। एज फार एज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए हो वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे। जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं। देखो, एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, they are two different things. If we really look back at our life and we evaluate every relationship, hum dekhenge ki jahan bhi duri aayi hai usko humne khud se create kiya hua hai. Hum definitely blame dusre par dal dete hain, lekin us duri ko humne create kiya hai by doing all these small things, discussing, repeating, bar bar uske bare mein sochna, auron ke sath varnan karna. Fir bahya reeti se hum effort karte hain ki is relationship ko theek karna, and then we realize it doesn't work and andar itni bitterness hai, thoda sa bahar try karte hain, work nahi hota to bahut jaldi se give up kar dete hain ki ye nahi ho sakta, isse acha to baat nahi karo, alag alag raho. And this is one relationship jahan hum bahut jaldi apne aap ko ye option de dete hain,
0: alag ho jao fatafat, you know, that's again yes, because we don't want to work on it, we've already decided ki it will not work.
1: To wo bahut jaldi, kyunki wo ek option hai hamare paas, to hum bahut jaldi usko alag kar dete hain. Agar hame ye dhyan rahe ki is relationship mein agar achhi bonding hogi, uska direct result us girl ki apne husband ke sath ke relationship pe hogi, that relationship will automatically be stronger, it's a direct result of that. That is also possible. They have to take care of that.
0: In fact, yes, we've actually touched all the aspects of within-laws and, you know, daughter-in-law, son-in-law. A small aspect still remains is jab bachcha, jab jaise ab ek mother-in-law hai, daughter-in-law hai, aur unka bachcha, daughter-in-law ka bachcha, grandparents ban gaye. Yahan agar wo working woman hai, bahut baar dekha gaya hai, इन लॉज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता। ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गए। अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज।
1: और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड वो अपने इन लॉज के बारे में अपने बच्चों को यू नो नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी यू नो क्रिटिसाइज करना उनको, लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी। आई डोंट हैव टू ऑलवेज बी, यू नो दिस ऑल्सो हैपन्स विद द हस्बैंड, कि या तो आप पेरेंट्स की साइड पे ज़्यादा है या वाइफ की साइड पे ज़्यादा है। नॉट नेसेसरी, वाई कांट इट बी इक्वली नाइस विद एवरीबडी। हमारे 10 फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स आंट वी जस्ट इक्वली क्लोज टू ऑल ऑफ देम? दिस इज जस्ट लाइक दैट।
0: इन फैक्ट अगेन वी हैव टू रिमेंबर, मदर हैज टू रिमेंबर दैट ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तो एक कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे खराब कर सकते हैं?
1: खराब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इन फैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को, तो इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है।
0: सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन दो कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो, और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है, जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है, लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। कहते हैं कि शिव में विश्व है और विश्व में शिव है, और हट जाए तो शिव बनेगा, ढल जाए तो इंसान शिव बनेगा, और शिव में लग जाए तो शिव विश्व बनेगा। विश्व के कण कण में शिव का वास है, इसलिए शिव में हर जीव का वास है। तो जब दोस्तों हर जीव में ही शिव का वास है और शिव में ही हर जीव का वास है, तो हमें हर जीव में ही शिव के दर्शन करने चाहिए। इसका अर्थ है कि आप हरेक इंसान में सामने, आपके सामने जो भी है उसमें ईश्वर का दर्शन करें, उसमें आप अपने इष्ट का दर्शन, आप विश्वास रखें कि इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। मेरे सामने जो कुत्ता खड़ा है उसमें भी वही ईश्वर है, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ऐसा सोचकर सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। दुत्कारिए मत, कुछ नहीं दीजिए पर दुत्कारिए मत, ना किसी जीव को ना किसी गरीब इंसान को। अगर कुछ देना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो दीजिए, मदद कीजिए, वरना आप ना उपहास उड़ाएं और ना ही उसका अपमान करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी होंगे, आपके खाते में पापों की श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो आप अपने खाते को बिगाड़िए मत। तो दोस्तों, इस सब का ज्ञान कैसे होगा, ये सिखाता है हमको शिव पुराण। शिव पुराण के सुनने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने पढ़ने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का पौधा अंकुरित हो जाएगा। अब ये शिव पुराण सुनवाने के लिए, आपके इसी ज्ञान वर्धन के लिए, हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को हमेशा ही आमंत्रित करते हैं, और आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब शिव ने विष्णु भगवान के पास देवताओं को भेज दिया कि वही निराकरण करेंगे, आप उनके पास जाओ, तो विष्णु भगवान ने गणों को बुला, रुद्र गणों को, यज्ञों को, देवताओं को बुलाकर, उसमें से जो रुद्र थे वो योद्धा, उनको आदेश दिया कि जाकर त्रिपुर नगरों का विनाश कर दो। लेकिन उन्होंने साथ साथ देवताओं को ये भी समझाया कि हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो सारे के सारे जो असुर हैं वो शिव भक्त हैं, और जो शिव भक्त हैं, जो शिव का स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको शिव भक्ति से हटाना होगा, तभी उनका विनाश संभव है, वरना उनका विनाश नहीं हो पाएगा। अब लीना जी, आगे क्या होता है, क्या उनको भक्ति के पथ से हटाया जाता है ताकि उनका विनाश हो सके, या उनको पाप के रास्ते पर अग्रसर किया जाता है, उनमें काम क्रोध मोह लोभ इस प्रकार और भी जो अन्य पाप हैं उनकी ओर अग्रसर किया जाता है, छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी देवता अपनाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका विनाश तो सम करना ही है, और विनाश संभव तब तक नहीं है जब तक वो शिव भक्त हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं देवता, क्या प्रयास करते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, ये रुद्र संहिता के युद्ध खंड का तीसरा अध्याय है, और इस तीसरे अध्याय में देवगणों को विष्णु भगवान समझाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं देवताओं का, लेकिन

0: पूर्णतः स्वभक्ति रहिता ज्ञात्वा तान करिष्यामि भस्मसात। वो कहते हैं कि हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाइए, मैं निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा, मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा, अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है उसे आप सुनिए। तो चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय। सनत कुमार उवाच, असृजच्च महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम एकम माया मयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ मच्युत मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम शीयमानम मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम ही वाचा विकलव या मुनिम। कहते हैं कि उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए उत्पन्न किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिना बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। मुंडित सिर वाला था और मैले वस्त्र वाला था और उसके हाथ में जो झोला था वो बिना हुआ झोला था और हाथ में झाड़ू भी था, तो हाथ जोड़कर हरि से वह कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे, हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे, तो भगवान विष्णु ने तो माया रची थी कि उन लोगों को, त्रिपुरासुर को कैसे भक्ति रहित किया जाए, तो उस माया के कारण उन्होंने मुंडित सन्यासी को प्रकट किया। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, यदर्थम निर्मितो असि त्वम निबोध कथयामि ते मदंगज महाप्राज्ञ मदरूपस्त्वम न संशय ममांगांच समुत्पन्नो मत कार्यम कर्तुम अर्हसि मदीयस्त्वम सदा पूज्यो भविष्यसि न संशय अरिहन्नाम ते स्यात्तु हियान्यानि च शुभानि च स्थानम वक्ष्यामि ते पश्चात् श्रुणु प्रस्तुतम आदरात। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान इस रूप में है, जैसे माता धूमावती के रूप में है, माता बगलामुखी के रूप में है, और धूमावती माता ने क्या किया है, भगवान शिव को का ही भक्षण कर लिया। कब किया, जब क्रोध में थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है, और भगवान तब समाधि में लीन थे, दो बार तीन बार कहीं जब नहीं माने तो उन्होंने शिव को उठाया, शिव को ही खा लिया। तो माता के बहुत सारे रूप है, तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं। तो विष्णु भगवान ने मुंडित सन्यासी के रूप में उत्पन्न किया, मैले कुचेले वस्त्र वाला भी था वो सन्यासी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम महाप्राज्ञ हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा है तुम्हारे अंदर, और तुम मेरे लिए भी पूज्य होगे अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे। तो तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, अरिहंत बुद्ध,
1: हाँ
0: मतलब शत्रु
1: मतलब को मारने
0: तुम शत्रु को मारने वाले होगे, तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, स्थान बाद में बतलाऊंगी, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो, वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा।

0: मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। उन्होंने कर्म परक शास्त्र लिखने की आज्ञा दी भगवान विष्णु ने, क्योंकि वेद क्या है, ज्ञान के स्रोत है। तो उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र विरुद्ध मत वाला शास्त्र लिखो, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता नहीं हो, कर्म की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र तुम लिखो, 16,000 श्लोकों से युक्त जो हो, और अपभ्रंश भाषा में हो, संस्कृत में नहीं हो। अपभ्रंश माने संस्कृत से थोड़ा सा हट करके हो, उससे गिरा हुआ। संस्कृत को तो सुसंस्कृत कहा गया, परिष्कृत भाषा कहा गया, विद्वानों की भाषा कहा गया है, तो वो विद्वानों की भाषा नहीं हो, अपभ्रंश भाषा हो, ऐसा तुम करो। अब देखिए, कहते हैं कि सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे।
1: अच्छा,
0: कहते हैं विष्णु भगवान तो माया भी तो है ही, परम माया भी है और देवताओं का कार्य भी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इत्युक्त्वा पाठयामा शास्त्रम मायामयम तथा इहैव स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाच पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिना कार्यास्ते दीक्षिता नूनम पाठनीया प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोष ते भविष्यति महामते। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गलत काम तो करोगे। गलत काम क्या, भक्ति से दूर करोगे सबको,
1: तो आज्ञा मेरी होगी क्यों,
0: लेकिन आज्ञा मेरी है। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उनसे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे विभू, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग न आ जाए। अब देखिए, कलयुग लाने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही तभी जब धर्म का नाश होगा।
1: हाँ।
0: तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ते तो युगे तस्मिन् वियो धर्म प्रकाश्यताम शिष्यश्च प्रतिशिष्यश्च वर्तनीय त्वया पुनः मदाज्ञया भवद्धर्मो विस्तारम यास्यति ध्रुवम मद अनुज्ञा पुरो नित्यम गतिम प्राप्यसि प्राप्स्यसि माम किम एवम आज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभु विष्णुना शासना देव देवस्य हृदा त्वान्तर दधे हरे। कहते हैं कि तुम जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा, लेकिन तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार करके तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, तुम उसके बाद मरुस्थली में रहना, कलयुग ना आ जाए जब तब तक, कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। जब कलयुग आ जाएगा तो शिष्य प्रशिष्य आदि करके तुम अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने धर्म का। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समस्त विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा यह था वैसे ही वे चार शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन चार शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु है वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सदगति मिलेगी। वे चार मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रत धारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। अब भगवान विष्णु की लीला है ये सब कि क्या क्या वो कर रहे हैं देखते हैं। कहते हैं ऋषिर यति ही तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्यं शुभं पुनः अरिहन्निति तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम् भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतां भविष्यति उत्तमागति। तो कहते हैं कि आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। सब भगवान विष्णु के ही तो है। तो अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है अरिहन। तो आप लोग भी संसार को दुख सुख देने वाला कार्य कीजिए लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ऐसा विष्णु भगवान ने उन लोगों को कहा। अब सनत कुमार जी ने कहा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कहते हैं ततः प्रणम्य तम माई शिष्य युक्त स्वयं तदा जगाम त्रिपुरम सद्य शिवेच्छा कारिणम मुदा प्रविश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विना तेन ऋषिर मायाम तदा करोत नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्त स्थितिम तदा मायाम प्रवर्त्यामास माइनाम अपि मोहिनीम। अब कहते हैं कि तब वह माया भी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिक कर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। अब नारद जी क्या है नारद जी की तो यहाँ की बात उधर उधर की बात इधर करना उनका स्वभाव है और चारों लोकों में भ्रमण सभी लोकों में ये भ्रमण करते हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने याद किया और नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तम गतस्तत्र द्रुतम यत्र स ऋषिर माइनाम वरः नारदो अपि तथा माई नियोगान माइनः प्रभो प्रविश्य तत्पुरम तेन माइनः सह दीक्षितः। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। क्या कहा नारद जी ने कहते हैं नारद जी कि कश्चित समागतः चात्र यतिर धर्मपरायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नैतेन सदृशः पुनः वयम् सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम् तवेक्षा यदि वर्ते तद्धर्मे दैत्य सत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया। पुनः कहते हैं नारद जी कि आपके नगर में कोई धर्म परायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। ये नारद जी किससे कह रहे हैं? त्रिपुरासुर से। सनत कुमार जी ने कहा, महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्यचकित होकर वह दैत्यराज वहां मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली है तो हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, क्या कहा त्रिपुराधीश ने? अब देखिए यहाँ से उसका पतन शुरू हो गया। त्रिपुराधीप उवाच, दीक्षां देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशय। इत्येव तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस् निर्मलं प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः। मदीया करणीया स्याद् अद्य आज्ञा दैत्य सत्तम तदा देया मया दीक्षा नान्य था कोटि यत्न था। वो कहते हैं कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, त्रिपुराधीश ने कहा कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज, यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। अब दैत्य ने कहा क्या कहा? यथाज्ञाम दास्यसि त्वम ही तथैव च न चान्यथा त्वद आज्ञाम नो लंघ्य से सत्यम सत्यम न संशय। कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज, सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो, दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि, स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि, उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। तो यहाँ त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।
1: तो सबको दीक्षा दे दी वहाँ पर।
0: हाँ, जब राजा ही दीक्षित हो गया तो प्रजा तो दीक्षित होगी।
1: हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग रहा और बहुत ही ये प्रभु की माया थी।
0: हाँ,
1: भगवान नारायण की माया जब काम करती है तो तब ऐसे ही फिर बुद्धि भ्रष्ट तो वो कर ही देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लीना जी, एपिसोड समाप्त करने का तो समय हो चला है, तो इसके साथ साथ श्रोतागण भी बैठे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप जो ये कविता एक छोटी सी सुनाकर सबको भक्ति में कर दीजिए।
0: कहते हैं, सूरज की ज्योति में, चंद्रमा की शीतलता में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, कौन है समाये? हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव, हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव।
1: आप हर पंक्तियों में जब भी आप कविता करती हैं उसमें सार कह देते हैं, सार गर्भित जो है कविता होती है वो, और हमारे श्रोता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत बड़ा है, व्यापक है, उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो और बहुत ही आनंद आता है जब चिंतन करते हैं उन पंक्तियों का, उन अर्थों का, तो चिंतन करने में भी बहुत आनंद आता है। और जैसे आप ज्ञानवर्धन करनी है हमारे श्रोताओं का, तो हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद मन।
1: तो श्रोतागणों, दोस्तों, क्योंकि आप इतने ज्ञानवर्धक प्रसंग लीना जी से सुन रहे हैं, शिव पुराण में से सुन रहे हैं, आप खुद भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आप जहाँ भी बैठते हैं, आपके संपर्क में जो भी आते हैं, सबको इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और जितना कि स्वयं तो ले ही रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा सबके हिस्से का भी जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा और सबको लाभ तो मिलेगा ही, सबको सब आनंद में होंगे। इस सबके दुख दूर करने का जो पुण्य मिलता है वो भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ा सकूंगी। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
4: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
2: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
4: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूय अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
2: बिल्कुल,
4: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
2: बिन बुलाए मेहमान।
4: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने, तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
4: वो नहीं पता है, नहीं ना पता। उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
2: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
4: जी। बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
2: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही।
4: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया। और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
2: बिल्कुल। और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
2: जी।
5: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
6: जी।
5: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
6: बिल्कुल।
5: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
2: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
4: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जनम बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो वो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
6: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
4: जी
6: आपको बदलना पड़ेगा
4: जी।
6: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
4: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
6: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.7 वाट पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की। बहुत सारा ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागिनी खदासी जी, चिरणाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागिनी खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में रागिनी खदासी जी हमें बता रही हैं। महाभारत में जो समाहित है, महाभारत ये बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में हम आजकल इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने कर्ण की जन्म कथा को जाना था रागिनी खदासी जी से, तो आज के कार्यक्रम में रागिनी खदासी जी आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: जी, ब्राह्मण की अरनी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर में निर्जीव होकर गिरना।
0: जी,
1: तो द्रौपदी के हरे जाने पर अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कामक वन को छोड़कर भाइयों से ही द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हिरण सिंह खुजलाने लगा। देवयोग से वे काष्ठ उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डॉल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आके कहा, राजन, मेरे अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग, मतलब जो यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है, वही उन्होंने टांग दिया था पेड़ पे। उसमें एक मृग अपने सिंह खुजलाने लगा और वह उसके सिंह में फंस गया। उस विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ लेकर भाग गया। तो आप उसके खुरों पे चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ठ ले आइए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे

कि वहां अवश्य ही पानी होगा। तो स्वामी तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल ने बहुत अच्छा कहा। वहां सारसों से घिरा हुआ एक बड़ा निर्मल जल देखकर वे जो ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल साहस न करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उसकी वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु जो ही वे शीतल जल पिया उसके पीते हुए भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई को बहुत देर हो गई, अब तुम जाकर उन्हें लेवा लाओ और जल भी लेते हो। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा, उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी, वे पानी की ओर चले। आकाशवाणी ने फिर कहा, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो ना, फिर जल पीना और ले जाना। किंतु जैसे ही उन्होंने शीतल जल पिया उसके पीते हुए भी भूमि पर गिर गए। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जाके देखा कि वहां उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होके रोको। फिर से वापस वही आकाशवाणी आई कि तुम नहीं जल ले जा सकते। तो अर्जुन ने कहा, प्रकट होके रोको, मेरे बाणों से भेद होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, वह एक यक्ष था जिसकी आकाशवाणी हो रही थी, अर्जुन इस तथा उद्योगी से क्या होना है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया और पीते हुए भूमि पर गिर गए। महाराज युधिष्ठिर जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पे पहुंचकर उन्होंने देखा उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। इन वीरों को किसने मारा है, उनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का तो चिन्ह नहीं है, यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी नहीं दिखाई देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता और इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। अब ये सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें भी इन्हीं के साथ तुम सोओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र वसु या मरुत आदि प्रधान देवताओं से कौन है। यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ, तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की अमंगलमय कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला। अब आप प्रश्न कीजिए, युधिष्ठिर जी ने कहा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भ्रम सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म और उससे अस्त करता है और वे सत्य में प्रतिष्ठित है। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, प्रश्न यक्ष ने पूछा। उनमें सत्पुरुषों का सब धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तो वेद सारे चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं वही ब्राह्मण है। सब सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियो में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनके असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। विश्व जी बोले, बाण विद्या क्षत्रियो का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, मानवीय भाव है, अधीनों की रक्षा न करना सत्पुरुषों का आचरण है। पृथ्वी से भी भारी क्या है, यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर जी बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है, मछली सोने पर

0: भी पलक नहीं मिलती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। पूरा साथ विष्णु जी बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र हैं, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होके पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है। सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेके पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी हवन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सभी प्रश्नों का बहुत ही उचित जो है उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो जी रागलेखा दासी जी, आगे आप अपनी कथा सुनाएं।
0: यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है जी? और जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है। पुत्र मनुष्य का आत्मा है और स्त्री उसकी देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने कहा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों का दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है। ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, नाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है, राजा को भय के कारण दान देते हैं, भयभीत होते हैं तो राजा को कर दे देते हैं। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो सकता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाते हैं और बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है, मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे दही देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण प्राकृतिक धर्मों की मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। जो लोभवश दान और भोग से सहित जो लोभवश दान और भोग से रहित है और पीछे से कह देता है मेरे पास है ही नहीं वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दे। ऋषि जी ने कहा, जो पुरुष जिस पुरुष पे ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है वह दिन के पांचवें या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पत्ता ही खा ले वो सुखी है। जो प्राणी अंदाज के घर जा रहे हैं क्योंकि जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं, से बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। मैंने पूछा था ना, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तर्क की कोई स्थिति नहीं है। यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। विष्णु जी बोले, जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख भूत भविष्य ये जोड़े के समान है वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है। कृष्ण का राजन जो सबसे धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो उसे जीवित कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: युधिष्ठिर बोले, चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाए। यक्षिका, जिसने 10,000 हाथियों का समान बल है, उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों दिलाना चाहते हो? अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को दिला देने की इच्छा क्यों है?
1: अच्छा।
0: यह राजा युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की कुंती और माधवी दो भार्याएं थी, पत्नियां थी, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माधवी माता है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं को समान भाव से रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित हूँ। तुमने अर्थ और काम की क्षमता का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे साथ भाई जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, प्रसन्न हो गए यक्ष, सारे भाई जीवित। तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए और एक क्षण में उनकी सब प्यास जाती रही। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे सदा ही प्रिय हो, तुमने भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन 6 दोषों को जीत लिया है, तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से जा रहा था, तो काम्य वन में एक स्थान है धर्म कुंड, यह वार्तालाप किया था, तुम्हारी संतुष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अविष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भागा उसका अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारे परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप में लेकर भागा था, वे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष के वन में रहे, अब 13 वर्ष आ लगा है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, और तुमसे जो जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा, इसके सिवाय तुम एक तीसरा वर मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरे लिए क्या दुर्लभ है, तो भी आप मुझे जो वर देंगे उसे मैं फिर आंखों पर लूंगी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं और सत्य में सर्वदा मेरे मन में की प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन अनुसार तुमसे ये सब धर्म बने रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए, वहाँ आकर उन्होंने उस पतस्वी ब्राह्मण को उसकी अरनी दे दी।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज रागलेखा दासी जी से। और युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं वो मर गए थे, और उसके बाद युधिष्ठिर जब अंत में वहाँ पहुँचे तो यक्ष ने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और ये आज बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने जाना महाभारत के अंतर्गत। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। नहीं, रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण।
1: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और इन 7 दिन होती है हमारी बहुत सारी बातें। अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। हमारा आज का पहला सेगमेंट है दिल धड़कने दो, जिसमें आपसे बहुत सारी करती हूँ बातें। जी हाँ, देखिए प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में आपकी हेल्थ के बारे में बातें होती हैं, तो चलिए इसी के साथ पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है दिल धड़कने दो, जिसमें बहुत सारी हेल्थ और फिटनेस की बातें करने वाली हूँ। और उसके बाद अपना सेगमेंट दूसरा लेकर के आ जाती हूँ जिसका नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। तो आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, ये सारी की सारी जानकारी आप तक जरूर पहुँचाऊंगी। लेकिन लेकिन लेकिन अभी फिलहाल ले दी हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

पुरसरार चंदनगढ़ दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ आपके पास। सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी फिटनेस की। और यहाँ पर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और अब एक खास देखिए हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर, और वो है डिमेंशिया। जी हाँ, देखिए उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसमें याददाश्त का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। बढ़ती उम्र में लोगों में डिमेंशिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया को भूलने की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन उनके लक्षण और कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, इसकी वजह से व्यक्ति जो है, जिसे ये डिमेंशिया की शुरुआती दौरे में वो आए हैं, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है उन पर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है उनकी ज़िंदगी। इसीलिए डिमेंशिया के लक्षणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान देना उस पर ज़रूरी है। और सबसे पहले तो बात आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिमेंशिया की हम बात करें, डिमेंशिया के कारण व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर बात करें सिंपल प्लस माइनस की, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बात करें, छोटा छोटे भी, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोज़ के जो लॉजिकल फैसले होते हैं वो भी नहीं ले पाते, उसमें परेशानी आने लगती है। व्यक्ति को बिल भरने में गड़बड़ी होने लगती है, नए डिवाइस चलाने में दिक्कत उनको होने लगती है, और कुछ ऐसी परेशानियाँ सामना उनको करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक लक्षण हो सकता है। साथ ही डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति को प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी परेशानी हो सकती है, और इनफैक्ट उनको अपनी रोज़मर्रा के कामों में प्लान करने में, अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कोई अगर साधारण रेसिपी है, अगर उसे फॉलो की जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या जब वो बना रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल जो है, अगर कड़छी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं उनको याद रहेगा, या फिर अगला स्टेप क्या, क्योंकि फोकस नहीं है। और साथ ही ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि फोकस उनका ले रही है, तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर पैकिंग की जाती है तो वो भी करने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर व्यक्ति के रोज़मर्रा के रूटीन जो है अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ इस तरह से होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर सामाजिक गतिविधियां से कटने लगते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सोशली उन्हें कनेक्ट कर रही है उससे वो हटने लगते हैं, और इनमें बातचीत करना, दोस्तों और परिवारों से कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ टाइम बताना, उसमें रुचि जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मन करता था पहले, अब वो ख़त्म हो जाता है, और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक जो मेल जोल है वो उससे बचने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एन्जाइटी की ओर भी ले जाते हैं, और इससे मानसिक समस्याओं का भी संकेत आने लगता है डिमेंशिया में। चलिए डिमेंशिया से जुड़ी और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही है हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में, एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुकी हूँ। टॉपिक है डिमेंशिया का। जी हाँ, इसके लक्षणों को पहचानने की कुछ आपको बातें जो है वो बता रही हूँ। देखिए, अगर डिमेंशिया को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपके किसी क्लोज वन को जो है अगर डिमेंशिया की शिकायत है, या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता लग सकता है। भाषा से जुड़ी समस्या डिमेंशिया का एक अहम लक्षण है, यानी कि व्यक्ति को शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, और जैसे वाक्य अगर कोई बना रहे, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भी परेशानी हो सकती है, या बातचीत के दौरान गैर जरूरी शब्द बोलने वो लग जाते हैं। कई बार कोई ऐसे होता है कि सही शब्द नहीं वो ढूंढ पाते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो ये भी डिमेंशिया का ही एक लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो गैस चूल्हे को छोड़ देता है, खुला हुआ छोड़ देता है, या फिर अगर कहीं वो जा रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सही से जो है नियमों को पालन नहीं करेंगे, उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं या किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी और सारी खतरनाक स्थितियों में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गंभीर हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियली डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने लग जाएं, धोखाधड़ी के शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाएं, बिल भरना भूल जाना, या फिर अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो बिना सब्जी लिए सिर्फ पैसे दे के आ जाना, या कहीं भी अगर जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के आ जाना, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ लेना और जानबूझ के, देखिए ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि पैसे दिए हैं, वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये सारी परेशानियां जो है वो होने लगेगी, क्योंकि भूलने की समस्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसके जो देखिए बहुत सारे लक्षण हैं, सिर्फ और सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि फोकस करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आना, ये सारे भी लक्षण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम करते हैं योगा, मेडिटेशन की बहुत सारी बातें। आज क्या है कुछ खास बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है या 15 घंटे का या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बातें बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, और आज एक बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग के जरिए ना केवल हमारी बॉडी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि मजबूती भी जो है वो आती है, और इसी के साथ साथ मन को भी शांति मिलती है, और हम जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी कि जो तनाव मुक्त हैं ये भी हो सकते हैं। हालांकि योग का पूरा फायदा उठाने के लिए केवल आसन करना ही काफी बिल्कुल भी नहीं है। योग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको योग करने से पहले ध्यान में रखनी है, यानी कि योगा की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: go ahead. Go ahead.
1: Hey, can I come be dance for?

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ। और मंडे टू संडे हमारा टाइम है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। फिलहाल सेगमेंट का टाइम हो गया है और सेगमेंट हमारा चल रहा है स्ट्रेच प्लीज। योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, योग करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आपका पेट जो है वो खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद योग करने से बॉडी में भारीपन महसूस हो सकता है और पाचन में समस्या आ सकती है। योगासन करते टाइम आपकी बॉडी को जो है वो मोड़ना या घूमना या स्ट्रेच करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ऐसे में अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कुछ असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए योग करने से कम 2 घंटे पहले अगर आप कुछ खा लें तो सही है, क्योंकि तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको भूख लग रही है तो योगा से पहले आप हल्के स्नैक्स ले सकते हैं, फल या जूस ले सकते हैं, लेकिन जो हैवी खाना है या कोई हैवी अगर लंच करें या सुबह ब्रेकफास्ट करें तो वो ना करें आप। इसी के साथ साथ वार्म अप जरूरी है। योगा आसन शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। वार्म अप आप करने से आपकी बॉडी को का जो तापमान है ये बढ़ता है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इसमें चोट लगने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इससे होता यह है कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी है योगासन के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योगा करते टाइम आरामदायक और ढीले कपड़े ज़रूर आप पहने। टाइट कपड़े पहनने से बॉडी को सही तरीके से मोड़ना और स्ट्रेच करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आरामदायक कपड़े पहने, आप आराम से हिले डुल से सकते हैं और योगासन को आप सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि जब हम काफ़ी भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। सूती कपड़े योगा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा लगने में काफ़ी मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये सूती कपड़े ज़रूर पहनने हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। आज बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगा के बारे में। देखिए, योग जब भी आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को, आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग करने से पहले कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि आपको हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना अगर आए तो वो सोख जाए, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुरुआत करनी ज़रूरी है। यानी कि योग करते टाइम धीरे धीरे शुरुआत करना जो है ये सही माना जाता है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो देखिए, ये तो ज़रूरी है कि आप आराम से अपने जो स्पीड है उसका आराम से लेकर चलें। ये बहुत टाइम बाद अगर आप कर रहे हैं तब भी इस मामले में भी आपको आराम से ही शुरुआत करनी है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती, अगर कोई योगा आसन जो है आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा वो कठिन आसन है तो आप उसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इंजरी आपको हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आसान आसनों से आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है मतलब आप बेसिक टू एडवांस लेकर के जाइए कि आपको बेसिक पहले आसन करने हैं, धीरे धीरे जो बहुत ही हल्के आसन हैं या फिर आसानी से जो हो जाते हैं वो आसन करने हैं, और उसके बाद आपको जो है एडवांस होना है। यानी कि कुछ ऐसे आसन जो कि मुश्किल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। योग करते टाइम आपकी सीमाओं का आपको ख्याल रखना है, ज़बरदस्ती आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। योग करने का मकसद बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। इसीलिए योग करने से पहले आपको खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं, वार्म अप ज़रूर करना है, और खाली पेट योगा जो है वो करना है, आपको भरे पेट से नहीं करना है। यानी कि आप खाना पीना खा के ब्रेकफास्ट करके आप योगा ना करें बल्कि खाली पेट कोशिश करें। अगर फिर भी आपको भूख लग रही है तो हल्के स्नैक्स आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं या फल खा सकते हैं, लेकिन जो हैवी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं और उसके बाद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इससे आपको जो है, अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग में या फिर उस आसन को करने में मुश्किलात आ सकती हैं। इसीलिए इन कुछ बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

रेस्टोरेंट से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हम हमेशा हैं। बस आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS मोबाइल फोन। आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप सुन सकते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रह के भाई एंटरटेन हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐप को कीजिए डाउनलोड, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज द्वारा कह सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ अपना अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ रही हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें एक बहुत ही खास कहानी आपको बताने वाली हूँ, कैसे एथलीट की जो कि मजदूरी से जो मेडल तक का सफर था जिन्होंने तय किया, और जिन्हें दुनिया ने, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी ये ऊपर आए लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गए, यानी कि अनसंग हीरो ऐसे हैं ये जो कि आए तो बहुत जल्दी ऊपर लेकिन एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज किसके बारे में बात हो रही है वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ एक से बढ़कर एक, आप कहीं मत जाइए, इन गानों को सुनिए, इंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। और अब बात कर रही हूँ अपने अगले सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी में, खास आपके पास लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे। मजदूरी से मेडल तक की कहानी, जी हाँ, लक्ष्मी रानी जो है मांझी की एक कहानी है। और जब जिंदगी एक तीर बन जाए तो निशाना चूक बिल्कुल नहीं सकता है, और ये कहानी लक्ष्मी रानी मांझी की है। जी हाँ, और देखिए झारखंड के ट्राइबल विलेज से ये आई एक लड़की, जिसे जंगल में जो लकड़ी काटने जाने से ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन स्कूल टीचर ने एक उन्हें बो दिया और तब जिंदगी का नया टारगेट उनके लिए सेट हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से एक ही इनके पास ड्रेस जो है उनके पास थी, और रात को मिट्टी के घर में ये प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन लक्ष्मी रानी ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2015 में सिल्वर मेडल जीता और सबको सरप्राइज कर दिया। जब भी वो ट्राइबल एरियाज में बच्चों को आर्चरी सिखा रही है, और अभी इस टाइम पर बिना पैसे लिए उनको सिखा रही हैं, तो ये सबके लिए, देखिए मैं आपको कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वो शुरू से स्ट्रांग नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम पैसे थे घर में, मिट्टी का घर था उसमें रहती थी। लेकिन आज भी जब वो बच्चों को सिखाती हैं, जो तीरंदाजी सिखाती हैं, तो उसमें बच्चों से पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो चाहती है देश का नाम ऊंचा हो। वो चाहती है वो बच्चे बाहर निकल कर के आए, जो कि कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर जो है सिर्फ घरों में बैठे हुए हैं, तो वो सपने उनके सच करना चाहती हैं जैसे उन्होंने अपने किए। गांव की बेटी ने निशाना लगाया और सीधा इंडिया के नाम पे मेडल लिख दिया। नाम छोटा था लेकिन निशाना काफी बड़ा। लक्ष्मी रानी मांझी की कहानी, जी हाँ। चलिए इसी के साथ और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में पावर प्ले विद आरजे साक्षी एक सेगमेंट लेकर के आ जाती है। उस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और एक बहुत ही जरूरी बात है आपको बता रही, कुछ कहानियां आपको बता रही हूँ जो कि ऐसे हीरोज की कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं वही गुमशुदा तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने भारत का काफी नाम ऊंचा किया। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की शेरनी की, यानी कि जमुना बोरो। जी हाँ, माँ ने चाय बेची इनकी और बेटी ने मेडल जीत लिया। जमुना बोरो की माँ एक रोड साइड चाय स्टॉल चलाती थी। आसाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। फाइनेंशियली स्ट्रगल्स इतने थे कि जमुना ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने की जगह कभी चाय का जो थैला उठाया तो कभी उन्होंने भाई कपड़े हाथ में बांध लिए। लेकिन जब बॉक्सिंग कोच ने देखा कि इस लड़की के पंच में स्पार्क है, उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसके बाद जमुना ने 2019 में AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। आज वो इंडियन बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है और यूथ गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। जिंदगी ने हर राउंड में उनको पंच मारा, पर जमुना हर बार रिंग में जीती। माँ की चाय से ज्यादा उनका जोश गर्म था और उन्होंने कभी भी भारत को इस तरह से लेट डाउन नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे लेकर के गई, और साथ ही भारत का नाम एक बेटी ने एक बार फिर से रोशन किया। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी हम कर रहे हैं बातें। इसी के साथ अगली कहानी की ओर आपको लिए चलती हूँ, और ये कहानी है छोटी सी लड़की लेकिन बड़ी सोच जिनकी है, मलावत पूर्णा की। जी हाँ, माउंटेनियरिंग की इनकी कहानी जो कि सभी के दिलों पर छा गई। जब सपना इतना बड़ा हो तो रास्ते की ऊंचाई छोटी लगने लगती है। ये कहानी है मलावत पूर्णा की, तेलंगाना के ट्राइबल विलेज की एक 13 साल की लड़की, जिन्होंने 2014 में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करके उसका रिकॉर्ड एक बना दिया अपना, और दुनिया की सबसे यंग ट्राइबल गर्ल बनी जो कि एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई करी। उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक फाइनेंशियली कम था पहले से ही, जो है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही एक छोटे से परिवार से आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही कम पैसे हैं, ना प्रॉपर शूज़ हैं, ना कपड़े हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन जो बहुत ज़्यादा। उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली और 0 डिग्री से भी ठंडे टेम्परेचर में एवरेस्ट जो है वो कॉन्करर किया। आज पूर्णा उन बच्चों के लिए आइकन बन चुकी हैं जिनके सपने उनके घरों से बड़े होते हैं। पूर्णा ने एवरेस्ट से ज़्यादा उनकी थिंकिंग बैरियर्स को छोटा किया, जहां लोग कहते हैं कि ट्राइबल्स कुछ नहीं कर सकते या उनका कुछ नहीं होगा, और उन्होंने ये साबित किया कि ट्राइबल का मतलब ट्रबल नहीं होता, बल्कि होता है टैलेंट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ ये बात है मलावत पूना की। इसी के साथ एक और मैं आपको कहानी ज़रूर बताऊंगी, और ये है अतनु दास की। जी हाँ, देखिए अतनु दास के बारे में बताऊं तो अतनु दास ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स, एशियन गेम्स और कई सारे ऐसे मेडल जीते, लेकिन स्पॉटलाइट में कभी नहीं आए। उनकी प्रैक्टिस एक स्मॉल ग्राउंड से स्टार्ट हुई, जहाँ पर वो भी सेकेंड हैंड था, और उन्होंने प्रेशर मोमेंट्स में भी कभी फोकस लूज नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने टॉप रैंक साउथ कोरियन आर्चर को भी जो है वो हराकर सबको सरप्राइज कर दिया। आज भी अतनु ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस क्वाइटली निशाना लगाने पर और मेडल लाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अतनु जैसे खिलाड़ी हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम्हारे पास स्पॉटलाइट ना हो, तब अपना निशाना और ज़्यादा शार्प कर लेना चाहिए, ताकि अपने आप स्पॉटलाइट तुम्हारी ओर खींची चली आए। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही हैं पावर प्ले विद आरजे साक्षी में, आपसे कुछ जानकारी आपको बता रही हूँ, यानी कि कुछ ऐसे आपको अनसंग हीरो के बारे में बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनकी कहानी कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है। अब बात करते हैं भक्ति शर्मा की, जिन्होंने आर्कटिक ओशन स्विम कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसी लड़की जिसे राजस्थान जैसी ड्राई जगह में पानी मिलना मुश्किल था, उन्होंने देखिए क्या किया कि दुनिया के सबसे ठंडे ओशन में 1.4 माइल स्विम किया और इन जस्ट 52 मिनट्स वो पहली एशियन वुमन बनी जिन्होंने आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑल फाइव वो जो ओशंस हैं उसमें स्विम किया। और उनकी माँ उनकी कोच थी और माँ बेटी की जोड़ी ने इंडिया के लिए हिस्ट्री लिख दी। भक्ति ने सिर्फ समुंदर नहीं सोच के किनारे भी तोड़ दिए। अगर जज्बा हो तो राजस्थानी मिट्टी से भी लहरें उठ जाती हैं, जहाँ से भक्ति शर्मा उठ करके आई और उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है और अब आगे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए, जहां पानी नहीं मिलता था वहां से निकल के भक्ति ने समुद्र में फतेह हासिल करी। तो देखिए, आज देखिए हर जगह उनका नाम है, हर जगह उनके उल्लेख हैं। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ और भी जानकारी आपके लेकर के आती रहती हूँ मैं, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगले सेगमेंट का टाइम होता चला जा रहा है और अगला सेगमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा खास है। अगले सेगमेंट का नाम जो है वो है कौन बनेगा सेहतमंद। बात करेंगे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

नौजवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: आज़ाद होने का।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूं आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी करती हूं बातें। हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हो चला है और अगला सेगमेंट यानी कि आज का हमारा जो सेगमेंट है ये है बहुत ही ज्यादा खास, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। पहेलियां आपसे पूछती हूँ, तो सबसे पहली पहेली जो है ये आपसे पूछूंगी, लेकिन इसके बाद पहले इससे आपको बता तो दूं आपको जो है क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए ये कि अगर आप पूरे महीने भाई सही सटीक जवाब देते हैं और सबसे पहला जवाब देते हैं तो आपको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, हमारे रेडियो स्टेशन आने का और बहुत सारी बातें करने का लाइव और सभी आरजे से भी मिलने का। लेकिन इसी के साथ साथ पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है ही। और आपको बता दूं मैं कि अब एक खास पहेली के साथ आपके पास आ गई हूँ। पहली जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा आसान पूछती हूँ, तो इतना घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बस आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, फटाफट से पहेली का जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो चलिए इसी के साथ पहेली का आप दीजिए जवाब जो मैं पूछने वाली हूँ कुछ ही देर में, एक गाने के बाद, खूबसूरत से गाने जो कि लेकर के आ जाती हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती है बातें हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अब आपके साथ रहती हूँ। तो अब एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। जी हाँ, कौन बनेगा सेहतमंद में हम बात करते हैं, एक पहेली आपसे पूछती हूँ, और पहेली जो कि बड़ी आसान सी होती है, बस आपको ध्यान से सुननी है और उसका जवाब जो है वो देना है। पहेली तो बहुत ही आसान सी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका हिंट जो है वो है कि दादा नानी का ये नुस्खा काफी ज्यादा पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो आपको बताना है क्या है इसका जवाब। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आपसे कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ आज ना। आज की हमारी पहली पहेली, क्योंकि अभी सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आज की पहेली बड़ी आसान सी जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। इसका हिंट है कि दादी नानी के नुस्खा है जो है ये काफी पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो इसका जवाब जो दिया है हमारे पास, हमारे लिस्नर बहुत ही तेजी से जवाब जो है देते हैं, जिनका नाम है अल्तमश। और अल्तमश ने जवाब जो है वो दिया है। अल्तमश जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। और भी बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं और यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि इतनी फटाफट जवाब आता है कि भाई क्या कहने। तो अल्तमश जी ने जवाब दिया है और इसका जवाब है बालों का तेल, यानी कि हेयर ऑयल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि हेयर ऑयल जो है ये आपके बालों को पोषण देने में और आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए रोज रात को आपको अपने चम्पी जो है ये जरूर करके सोनी है, इससे आपके तनाव को काफी ज्यादा देगी आप हट जाएगा और साथ ही निजात तो आपको मिलेगा तनाव से, आपके बालों में पोषण की कमी जो है हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं हमारी अगली पहेली, जो कि काफी ज्यादा आसान है। बस आपको जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है और बस यूं आपने पहेली हुए जवाब देके और हमारे लकी विनर बन जाना है। आपको मिलेगा मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव 107.8 FM आने का और लाइव बातचीत करने का, साथ ही सभी आरजेस से मिलने का। तो चलिए अब आपको बताती हूँ हमारी आज की आसान सी पहेली, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। और पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ। कभी रेशमी कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनूं निराले, बताओ कौन हूँ मैं। तो इस पहेली का आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए आपको क्या करना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनूं निराले, बताओ कौन हूं मैं। तो ये आपको बताना है कि ये भाई किस बारे में मैं बात कर रही हूं और क्या जरूरी है, मतलब आपको ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा ही अगर आपको पहली का जवाब जो है वो देना है। 2 बार मैं पहली बता चुकी हूं, नंबर आपको बता चुकी हूं, तो जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार है। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और होती है हमारी बहुत सारी बातें। फिलहाल मैंने अपने सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में आपसे पूछा एक सवाल, एक पहेली आपसे पूछिए, जिसका जवाब हमें दिया है सबसे सही, सबसे सटीक, इतनी जल्दी कि बस यहाँ मैं अपने बात करना खत्म करती हूँ आप लोगों से और यहाँ जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जवाब दिया हमें हमारे लिस्नर बबलू जी ने, और बहुत ही तेजी से इन्होंने जवाब दिया है मस्त से। और पहेली एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर बताऊंगी इसका जवाब क्या है। तो पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान ना दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूं मैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारा है बाल, यानी कि हेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बाल हमारे खूबसूरती का हिस्सा होते हैं, जिन्हें सही देखभाल की जरूरत होती है, अगर नहीं रखी जाए तो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। चलिए इसी के साथ जो वक्त है अब हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अब आ गई है आज दीक्षा जो करेंगी आपसे बातें, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो बातें करता है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहे। इसीलिए हर हफ्ते एक्सपर्ट आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज के समय का सबसे ज्यादा जानकारी जुटाने वाला टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की गर्मी भारत में पड़ रही है, या फिर हम कहें पूरे ही भारत में पड़ रही है, पहले होता था उत्तर भारत में होती थी, आज पूरे भारत को एक भट्टी की तरह गिना जा रहा है, जहां कभी कभी बारिश बीच में आ जाती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर 42 और 45 के बीच पहुंच जाता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट स्ट्रोक होने का। हीट स्ट्रोक सुना तो आपने भी होगा, लेकिन इसको पहचानना कैसे है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू।
0: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम हीट स्ट्रोक की बात करें और ये टर्म बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि हमने जनरली लोगों से सुना है कि आप डिहाइड्रेट मत रहिए, पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या लिक्विड इनटेक होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों में, पर हीट स्ट्रोक जो होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है और है क्या एक्चुअली?
1: जी, जैसा कि आपने कहा हीट स्ट्रोक जो है हमने सबने सुना है कि हीट स्ट्रोक, तो इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसको सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तब थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। सन स्ट्रोक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर नॉर्मली 40 तक रहता है वो 50 तक भी जा चुका है। जो खासतौर पर अभी आपने बताया कि हमारे इंडिया में जो अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें सबसे हॉटेस्ट सिटी में 10 से ज़्यादा सिटीज हमारे देश की एक्चुअली आई थी, तो आपने कहा भी ठीक कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक हिंड्रेंस फैक्टर है, या कहेंगे कि ये छुप जाता है कि किस, ये हीट स्ट्रोक एक तरह से हाई टेम्परेचर है जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए। नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जब आपका ब्रेन का सेंटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना बंद कर दे या टेम्परेचर फेल हो जाए, तो वही हीट स्ट्रोक है। और इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा और 107 या 108 तक भी चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को जो मैकेनिज्म होती है थर्मोरेगुलेशन की, जो टेम्परेचर को मैनेज करती है बॉडी नॉर्मली, लेकिन अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाए, आपकी बॉडी को ये पता ना चले कि इस टेम्परेचर को रोकना कैसे है,
0: यानी वो 107 तक पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जानलेवा है।
1: जी जी, 107 अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में मरीज बोलता है उसको 102 103 आता है तभी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा टेम्परेचर जो 107 भी चला जाए और आपके ब्रेन को ये पता ही ना हो कि इसको नीचे कैसे लाना है, जिसमें आपकी स्वेटिंग भी बंद हो जाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है और इसको पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके।
0: जी, यानी बुखार होना तो कॉमन है, पर गर्मी वाला ये बुखार जो आपकी बॉडी में पसीना ही नहीं आने दे रहा है, तो बुखार बाहर निकलेगा कैसे? दिमाग ये जज नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हमारे दिमाग से हमारे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है, जैसे गर्म चीज को छुआ। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर में भी दिमाग के ही सिग्नल होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें बुखार भी चढ़ रहा है और अब ये बुखार जो है वो उतर भी सकता है। दवाइयों के जो इलाज हैं वो किस तरीके से हीट स्ट्रोक में किए जा सकते हैं और कैसे पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता है, और क्या है सिम्टम्स जो एक आम इंसान को पता होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078, और साथ ही ये बातचीत आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना द्वारा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या प्ले स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आप ऑल इज वेल प्रोग्राम की ये सारी बातचीत डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्थ को बेहतर बना देगा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक शब्द बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन शायद इसको विस्तार में नहीं जानते। आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी की चपेट में आने से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और शायद यही हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। पर जान बचाएं इससे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता किन लोगों को है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा हो सकता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है?
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मैम कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो सकता है, तो हम बात ही कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस बढ़ रही हैं, जिसको हम HRI बोलते हैं। तो जितने भी हीट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के बाद, खासतौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट इस पर भी आ रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर मई जून जुलाई जो ये वाला सीजन होता है, जिस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने लगेगी थोड़े दिन के बाद, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क इसी समय सबसे ज़्यादा होता है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने रिसेंटली जिनका जो किसी ऐसी जगह से आए जहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या जहां पे ठंड होती है, और वो अचानक से ऐसी जगह आ गए जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा खासतौर पर छोटे बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, और जो हार्ट की या किडनी की या तनाव की दवाइयां खाते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये दवाई लेते हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर किसी को स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, या किसी को डिहाइड्रेशन पहले से है, लैक ऑफ वाटर है, और या किसी की सीवियर ओबेसिटी, जो हम लोगों को लगता है कि यार मैं मोटा हूं तो इसका क्या मतलब हीट स्ट्रोक से। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको हाइड्रेशन की भी ज्यादा जरूरत है, आपकी कॉप अप मैकेनिज्म्स भी कम होंगी, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमने कहा ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं। और कुछ बीमारी जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा ये इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर हैं। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, और या आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक घर में बैठे बैठे भी हो सकता है।
0: अच्छा, घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता।
1: इंडोर, अगर कोई इंडोर है तो उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज आप जब अंदर रहते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन कर नहीं पाती, और दीज पीपल कैन ऑल्सो गो इन हीट स्ट्रोक। और अगर खासतौर पर वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। और खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई बंदा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलते हैं रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफी रिग्रेसिव या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कई बार वो अपने पानी पे ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ हाइड्रेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड, यू आर वेरी मच रिस्क फॉर हीट स्ट्रोक, तो हाइड्रेशन इज द क्रूशियल थिंग, उसका उनको ध्यान रखना।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, और मौसम जब गर्म होता है तब भी ये कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग तो सैर कर लें, लेकिन 8-9 बजे के आसपास आप बाहर ना निकलें गर्मियों में, अवॉइड करें, या दिन में आप जैसे पार्क में जा रहे हैं तो वो ना जाएं। क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है अगर लू चल रही है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट, तो अगर मैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो आपने बोला कि खासतौर पे 11 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है, जिसमें आपका हीट काफी ज्यादा होती है बाहर, तो आप उस समय आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, उस समय आप बाहर कम निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो प्रॉपर लाइट कॉटन क्लोथ पहन के जाएं, हैवी क्लोथिंग ना हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेके जाएं, तो डेफिनेटली आपने जो बोला, एक्चुअली हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा रिस्क आफ्टरनून में होता है, जो आपने बोला, मैं कहूँ 12 से और 3 बजे तक का जो जब सन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सन का होता है, तो उस समय डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे हीट स्ट्रोक में, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर।
0: बिल्कुल, और यही वजह होती है कि शायद स्कूल की जो छुट्टी है वो लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले कर दी जाए या 12:30 तक कर दी जाए, क्योंकि जब 2 से 3 के बीच में बच्चे घर पहुंचते हैं तो उस समय पीक गर्मी होती है, और उस गर्मी में बच्चों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। सो इस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं, खासतौर पर से मैं कहना चाहूंगी लेबर वर्क जो होता है हमारे देश का, वो जब मजदूरी करता है गर्मी में बहुत ज्यादा, और कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, किसी जगह पर कुछ और काम चल रहा है, या फिर कोई रिक्शा ढोकर लेकर जा रहा है, सो ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है। तो इनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हीट स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है. बीच बीच में आ रही बारिश थोड़ी राहत देती है, लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो जाता है. और ये जो गर्मी है, ये अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, इन महीनों में इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि पूरे देश भर को आप अगर गूगल मैप पर देखें और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो पूरा भारत देश आज की तारीख में एकदम लाल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैं दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट भी. और हमारे देश में जिस तरीके से गर्मी का असर इस बार हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर हम सभी की बॉडी और हम सभी के घरों में आप देख सकते हैं. ऐसे में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक से बचकर रहना बेहद जरूरी है, जिसको सन स्ट्रोक भी कहा जाता है. बढ़ती गर्मी, झुलसती गर्मी, लू चलना और इस बढ़ती हुई धूप में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, ये हम जान रहे हैं. तो कैसे सिम्टम्स को पहचाने हीट स्ट्रोक के, ताकि किसी भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसको तुरंत सहायता दी जाए. और क्या होगा उसका इलाज, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, बात करते हैं अब सिम्टम्स की. अब एक व्यक्ति है हमारे घर में अगर कोई रह रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने देर का हमारे पास समय होता है और क्या वो सिम्टम्स है जिनको पहचान कर हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता चाहिए?
1: जी, जैसे मैम आपने कहा कि इसमें कितना हमें विंडो पीरियड मिलता है, खासतौर पे कि जब आप कोई हीट स्ट्रोक में जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीट स्ट्रोक से पहले बहुत कुछ होता है, तो इसमें आपके पास समय भी होता है और डॉक्टर के पास भी समय होता है. अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज़ में है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक है. कोई भी हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, एक नॉर्मल जो GI डायरिया वगैरह लूज मोशन AGE की तरह एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बोलूं, तो नॉर्मली कोई भी हीट स्ट्रोक एक फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, लूज मोशन उसको होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, मसल क्रैम्स आएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन सिम्टम्स हैं. लेकिन इसके साथ जो एक अलार्मिंग चीज होगी या बहुत वार्निंग साइन होगा, जो कि एक डॉक्टर को, खासतौर पर हेल्थ केयर वर्कर को पता होना चाहिए, कि वो होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. उसका टेम्परेचर 104 से लेकर 107 तक जा सकता है. खासतौर पर अगर टेम्परेचर अगर 104 से नीचे होगा तब तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आप अगर टच भी करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही वार्म होगी, क्योंकि ब्लड
0: गर्म
1: जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक में. आपकी नॉर्मल हमारी स्किन का सर्कुलेशन जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन सर्कुलेशन होता है वो उससे 10 गुना बढ़ेगा, तो आपका जो और जगह ब्लड की जरूरत है, जैसे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, वो कम हो जाती है. तो जो सिम्टम्स भी होते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं. जैसे कि अगर किसी को उसको एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन मैंने बताया, साथ में इसके हीट स्ट्रोक में ब्रेन के सिम्टम जुड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, उसका होश गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट जो है अलर्ट नहीं रहेगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी लगेगी, पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करेगा, पेशेंट इवन यहां तक कि फिट्स, जिसको हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं. तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट भी करें. और मैं तो कहूंगा इससे पहले, जिसको हम बोलते हैं हीट एग्जेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर 104 तक रहता है, तो यहां तक जैसे ही जाए तो आपको सोचना चाहिए कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकली बना सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेशेंट की स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा है, जो कि नॉर्मली किसी भी फीवर में आता है, स्वेट आउट, हीट निकलने की जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है. और हम बात करें कि किसको रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग पानी की, जिनको कमी होती है, खासतौर पर जो हमारे ऐसे लोग जो कि मोस्टली लेबर क्लास होता है, जो हमारे लोग
0: ओपन में काम कर रहे
1: हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है. और एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं बात करूँ, जो नुकसान होता है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि हमको ऐसा कुछ हो सकता है. वो डायरेक्ट सन के एक्सपोज में होते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे समय समय पे पानी पीने की जरूरत भी है, या बीच बीच में आपको छाया में जाने की जरूरत भी है. तो आपको इन बिटवीन अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करके रखें, और समय समय पर आप जो बोलते हैं हम, ज्यादा अगर सन बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप छाया में बीच बीच में जाए. मैं बात कर रहा हूँ लेबर वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है.
0: और ये पीते करते रहें।
1: ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर देखते हैं कि टेम्परेचर मोर देन 104 है, मैं इसको बता रहा हूँ टेम्परेचर को, और पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है, मतलब पेशेंट का होश गड़बड़ हो गया, पेशेंट अलर्ट नहीं है, तो आपको 100% सोचना है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बुखार जो है वो दिमाग पर चढ़ गया है, यही कहलाया जाता है जनरली, क्योंकि आपको होश नहीं रहता, आपको समझ नहीं रहती, सूझबूझ से जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे आप कर नहीं पाते। तो देसी भाषा में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।
1: जी आपने सही कहा मैम, जिसको हम, अगर मैं बोलूँ पेशेंट के रिलेटेड एक कॉमन लैंग्वेज में, तो कहते हैं लू लग गई है। तो किसी को अगर लू लग गई है, मतलब कि उसका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको होश नहीं रहता है, सोडियम पोटेशियम भी गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, और अगर सोडियम ज्यादा कम हो जाता है तो बेहोशी में सोडियम का भी रोल है, वो और ज्यादा आपके अलर्टनेस को डाउन करता है, और डेफिनेटली हीट स्ट्रोक में इवन कई बार ब्रेन को इन्फार्क्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम खालिश बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: और हीट स्ट्रोक तो अपने आप में ही एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट, जो मैंने बताया अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, ये सारा कर देता है, बिकॉज ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो डेफिनेटली ये है।
0: जी तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, आगे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल में क्या इलाज मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम कर रहे हैं बात हीट स्ट्रोक के बारे में। बढ़ती गर्मी प्रॉब्लम बहुत सारी लाती है, और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू लग जाना, जिसको हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये लू लगना सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बीमार कर देगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर सही समय पर इसको पहचान कर इलाज ना किया जाए। अगर आपके घर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्चुअली में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है, सो आपको क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको घर पे देना है या फिर फर्स्ट एड घर पे देना है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना, और हॉस्पिटल कैसे इलाज करेगा, ये जान रहे हैं हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी से, जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं, वह साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर मीणा, अब मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई हमारे घर का सदस्य है और वो घर में आ रहा है और हमें दिख गया है कि उसको हीट स्ट्रोक है, भरी दोपहर में आए कोई और उसे बुखार हो जाए और बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, जैसा आपने कहा कि पहले तो बेसिकली जो हम बोलते हैं प्रोडोमल सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस, तो बंदे को घर पे या जहाँ वो होते हैं वहीं पे आते हैं। तो आपने कहा कि कैसे पता चले, तो आपने कहा कि अगर किसी का कोई बाहर से आ रहा है जो आउटडोर एक्टिविटी करके या सन के एक्सपोजर से आया, और उसका आपने देखा कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, और आपने देखा कि उनको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रखा है, और वो कह रहे हैं कि मेरे को आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी भी लग रही है, सीवियर हेडेक भी हो रहा है, या मसल क्रैम्प बहुत कॉमन सिम्टम है कि वो कहेंगे मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर घर पे हो रही हैं तो डेफिनेटली अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे आप हीट स्ट्रोक में जाने से बच पाएं। तो ये घर पे ध्यान रखें कि आप उनको प्रॉपर उनको आप हाइड्रेशन करें, उनको आप ORS दें, उनको आप नींबू पानी दें, या एक कोकोनट वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस समय, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीविंग फैक्टर भी होता है, तो उनको आप नारियल पानी पिलाएं फ्रेश, और घर पे उनको बोलें कि डी क्लोथिंग करें, लाइट क्लोथ उनको पहनाएं, और उनको बोलें कि आप वो जो एयर कंडीशन आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उस समय उनको आप AC की रूम में रखें, जिससे कि उनका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर हाई है, वो AC भी टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्प करें। अब ये सब काम आप कर लेते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनका टेम्परेचर लगातार ज़्यादा है, और आपने देखा कि टेम्परेचर 104 या 104 के ऊपर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 100% आपको लगे कि थोड़ा उनका सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है या उनकी अलर्टनेस गिर रही है, ऐसे लक्षण जैसे ही लगे, या लूज मोशन का जो नॉर्मली बोलते हैं कि भाई लू लग गई और लू में आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको एक अच्छे सेंटर पे ले जाएं। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या रिमोट एरिया में डॉक्टर ने देखा है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली आप वहां ले जाएं जहां पे कि हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, खासतौर पर ऑब्वियसली टर्शरी केयर में या बड़े किसी गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे ये फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनको इमीडिएटली ले जाएं। और अगर आप छोटी जगह पे भी तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे उनको IV फ्लूड्स दिए जाते हैं, जो बहुत ही वाइटल होता है, लाइफ सेविंग होता है, जिसको आप नॉर्मली हम NS और RL कहते हैं, बोलते हैं कि पानी लगा दिया, नॉर्मली समझते हैं लोग, वो ये ध्यान रखें कि वो पानी भी गर्म ना दे दें। आपने देखा होगा कई बार वो भी हीट में उतना ही गर्म होता है तो डबल अटैक हो जाता है एक तरह से।
0: ओके,
1: तो ये ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर ठीक हो, जो बाहर से आप फ्लूड का रिप्लेसमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट के,
0: वो
1: एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये चीज डॉक्टरों को या हेल्थ सेंटर पे जो टीम है हमारी, उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो भी ऐसा कर देते हैं कि वो भी उतना ही टेम्परेचर का है, तो बेसिकली पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ साथ और जो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसा हमने कहा कि टर्शरी केयर पे ये भी पता चलता है कि बंदे का ब्रेन को भी इशू है क्या उनका, तो वहाँ पे उनका CT भी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पता चलता है, और हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, वो सारे टेस्ट आप बड़े सेंटर पे ही करा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर हमने जैसा कहा वैसे सिम्टम्स मिले और किसी का टेम्परेचर और उनकी अलर्टनेस कम हो जाए, मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो डेफिनेटली उनको हेयर सेंटर पर जाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घर पे बहुत समय वेट नहीं करना चाहिए अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग घर पे जैसे ठंडे पानी की पट्टियां सिर पे रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियां, क्या वो भी रखी जा सकती हैं या वो ठीक नहीं रहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% घर पे आप लोग उसको ठंडी पट्टियाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अगर मैं बात करूँ तो कई मेडिकल कॉलेज, जो अगर हम दिल्ली NCR में रहते हैं, तो सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उसमें अलग से वार्ड बना दिया जाता है इस समय पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। तो डेफिनेटली आप उनको ठंडी पट्टी भी रखें, उनके कपड़ों उनको आइस से उनको आप अपने उनको क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी कोल्ड आइस इमरजेंट थेरेपी है, मैं ये कहना चाहता था कि आइस डाल के और पेशेंट के टेम्परेचर को कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी सही बताऊं तो कोल्ड आइस थेरेपी है। तो आपने कहा कि आइस से वो कर सकते हैं कि पट्टी 100% कर सकते हैं, बहुत ही रिलीविंग होगा। दूसरा जो हीट स्ट्रोक की सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है, और साथ में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड आइस इमर्सन थेरेपी दी जाती है जो कि काफी इफेक्टिव होती है। लेकिन आपके जो अंगों को नुकसान हो जाता है उससे बचना काफी मुश्किल होता है, तो बेटर यह है कि आप इसको पहले से ही ध्यान दे दें जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं।
0: यानी आप 2-3 दिन तक वेट ना करें, अगर पहले दिन ही ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है।
1: क्योंकि आपने देखा कि जैसे आप रेडियो मानव रचना या ऐसे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया उनको वो कई बार टेम्परेचर को भी नहीं देखते हैं सोशल मीडिया या फोन पे कि आज बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो उनकी उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो वो शायद समझ पाएंगे कि टेम्परेचर का और अपनी बॉडी का पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, यानी पानी जो है वो वैसे ही अमृत नहीं कहलाया जाता, वो वाकई अमृत होता है, और इस गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी अच्छे तरीके से पीजिए, 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर जरूरी है पीना। अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पीजिए। अल्कोहल का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम करिए, और उसकी जगह जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी बना के पी लीजिए। बॉडी को बहुत राहत मिलेगी, और ठंडी चीज़ें जो आप खा रहे हैं इतना ठंडा भी मत खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए। कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीज़ें खाइए, और बहुत ज़्यादा बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करिए क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस